ओम शांति। हमें बाबा को इस संसार में प्रत्यक्ष करना है और अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा अपने परिवार का, अपने संबंधियों का, अपने समाज का और अपनी संपूर्ण वंशावली का कल्याण भी करना है। हम सब रोज सुनते आते हैं कि हमारी स्थिति पर ही सारे संसार की स्थिति निर्भर करती है, सभी धर्मों की, धर्म पिताओं की, धर्म के नेताओं की स्थिति निर्भर करती है। तो हमें बहुत ध्यान देना है अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर। कुछ हैं हमारी साधनाएं, जैसे योगयुक्त होना हमारी साधना है, आत्मिक दृष्टि रखना हमारी बहुत श्रेष्ठ साधना है, अशरीरी होना भी हमारी साधना है, पवित्रता हमारी सबसे बड़ी साधना है। परंतु इन सब साधनाओं के उपरांत हमारी स्थिति का निर्माण होता है। हमें अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान देना है। श्रेष्ठ स्थिति माना हमारा मन कभी भी विचलित न हो, हम कभी परेशान न हो जाएं, हम तनाव में ना आ जाएं, हमारा आकर्षण संसार की ओर न हो जाए, हम बिल्कुल शांत खुशी में एक रस शांत चित्त साक्षी भाव रहें, ये श्रेष्ठ स्थिति है। संसार के लोग जब हमें देखते हैं कि ये तो जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं, 10 साल हो गए इन्हें ज्ञान में चलते हुए, 20 साल हो गए, लेकिन ये वैसे के वैसे ही हैं, तो वो जरूर सोचते हैं

दें, केवल ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा, केवल ब्रह्मचर्य पालन कर लिया इससे काम नहीं चलेगा, बाकी कुछ भी धारण न किया, बोल वैसे ही रहे, क्रोध वैसा ही रहा, अहंकार वैसा ही रहा, चिड़चिड़ापन वैसा ही रहा, संस्कार वैसे ही रहे, दूसरों से व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इससे बाबा का नाम रोशन कदापि नहीं होगा, ना अपने को आत्मसंतोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे तो हमें ये महसूस अवश्य होगा कि हम तो बहुत पीछे हैं, हमने अभी तक कुछ पाया नहीं है। तो आइए हम श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा सबको सुख दें और बाबा से संपूर्ण सुख प्राप्त करें। अगर संगम युग पर हमने भगवान का बच्चा बनने के बाद ईश्वरीय सुख न पाया, अगर हमने अपने साथियों को प्रेम और सुख न दिया, यदि हम उनको भी संतुष्ट न कर पाए, यदि हम उनका भी ध्यान न रख पाए, तो भला हम अपनी प्रजा का ध्यान कैसे रखेंगे? यदि हमारे साथी ही हमसे परेशान रहते हों तो प्रजा कैसे हमसे संतुष्ट रहेगी? तो जिन्हें महान बनना है, जिन्हें विश्व की सेवा करनी है, जिन्हें संसार में बाबा का नाम रोशन करना है, हर दिल पर बाबा के प्यार का झंडा लहराना है, उन्हें अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। केवल यों ही ज्ञान में चल रहे हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हम चलें नहीं, लेकिन उन सब बातों पर चलें जो बाबा हमें कहते हैं। तो आइए आज सारा दिन हम अपने अपने परिवारों में अपने कर्म क्षेत्र पर साक्षात्कार मुहूर्त बन कर रहे हैं। मैं इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ, और मेरा सभी को साक्षात्कार हो रहा है। मेरा वरदानी हाथ ऊपर है, सबको मुझसे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, किसी को भी बद्दुआएं नहीं। अपने इस साक्षात्कार मूर्त स्वरूप का सारा दिन अभ्यास करेंगे, याद रखेंगे जो साक्षी स्थिति में स्थित रहते हैं वही साक्षात्कार मूर्त बनते हैं। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं इष्ट देव देवी हूँ, मैं पूजनीय हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, और सूक्ष्म लोक में जाएंगे, बाबा को सामने देखेंगे और महसूस करेंगे बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और बाबा दृष्टि दे रहे हैं। ये अभ्यास बार बार करके आज के दिन को सफल करेंगे। ओम शांति।

0: रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखला दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, पर जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। आज के युग की चुनौती यह है कि कोई व्यक्ति जिस भूमिका को ग्रहण करता है वह भूमिका उस व्यक्ति के बढ़ने की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। क्षमता और प्रभावकारिता तब आते हैं जब व्यक्ति अपनी विस्तृत होती भूमिका के साथ साथ अपनी क्षमताओं और ज्ञान को भी बढ़ाता जाता है। लगातार सुधार करना ही इकलौता रास्ता है। कोई भी हमेशा सफल नहीं होता, न कोई आजीवन असफल ही रहता है। सफलता विलंबित असफलता है और असफलता विलंबित सफलता है। न असफलता अंतिम होती है और न ही सफलता स्थायी होती है। आज की सफलता और आज की विफलता जीवन की लंबी यात्रा में एक के बाद एक उठाया जाने वाला कदम है। जीवन एक खेल है और यदि आप यह खेल खेलते रहे तो जीत आपकी ही होगी। रास्ते को बीच में छोड़कर न जाएं, अंत तक चलें, चलते रहें। आखिरकार आप समापन रेखा को जरूर पार कर जाएंगे। अधिकांश लोगों के लिए जीवन कोल्हू के बेल की तरह एक ही चक्र में घूमते रहने जैसा होता है। सुबह उठना, बिस्तर छोड़ने से पहले कुछ देर आलस के साथ कश्मकश करना, उसी तरह ब्रश करना, वही कॉफी पीना, वही अखबार पढ़ना, उसी निश्चित समय पर नहाना धोना, फिर हड़बड़ी में जल्दी जल्दी नाश्ता निगलना और काम के लिए दौड़ पड़ना, वही काम, वही ऑफिस, वही गपशप, वही लंच, वही बातचीत, घर वापसी का वही रास्ता, कभी न खत्म होने वाले वे ही टीवी सीरियल, वही बहसबाजी, वही डिनर ठूंसना, वही बिस्तर, फिर निढाल होकर सो जाना और अगले दिन वही उठना और फिर वही क्रम। जीवन को कोल्हू के चक्कर की तरह बना लेना कोई जरूरी तो नहीं है। जीवन का उबाव होना भी जरूरी नहीं है। जीवन साल भर के ऋतु चक्र को पूरा करके उसकी पुनरावृत्ति करते रहने जैसा भी नहीं है। जीवन थोपा हुआ होना भी जरूरी नहीं है। जीवन कोई आजीवन कारावास भी नहीं है। जीवन मात्र जीवित रहने से कुछ ज्यादा भी है।

हर वर्ष कोई नई निपुणता प्राप्त करें और देखें कि जीवन कितना जीवंत है। जीवन में ऐसा कोई समय, ऐसी कोई अवस्था न आने दें जिन दिनों आप एक सक्रिय छात्र की तरह कुछ न कुछ सीख न रहे हों। गायन, वादन, नृत्य, वैकल्पिक चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी कोई नया विधि विधान, योगासन, कोई नई भाषा, उन्नत व्याकरण, लेख या कथा लेखन, भाषण कला, खाना पकाना, पेंटिंग, सुलेख, कला का कोई भी नया रूप, ड्राइविंग, तैराकी, कोई नया खेल, कोई नई तकनीकी शिक्षा, आध्यात्मिक अध्ययन, बागवानी, कोई पशु पक्षी पालना, एक्वेरियम में मछली पालना, फोटोग्राफी, कोई सांस्कृतिक गतिविधि, सीखने के लिए ऐसी असंख्य चीजों की सूची वास्तव में बहुत लंबी है। इनमें से कुछ भी चुनें और सक्रिय बने रहें। जीवन में सदैव खोजी बने रहें, प्रयोग परीक्षण करते रहें, कोशिश करते रहें, अपनी उत्सुकता, जिज्ञासा और कौतूहल को बनाए रखें। कोई ऐसा काम करने की कोशिश करें जो आपने पहले न किया हो। नए नए व्यंजन बनाने में हाथ आजमाएं, उन वस्त्रों को पहने जिन्हें पहनने में आप सकुचाते रहे हैं। कोई नई हेयर स्टाइल आजमाएं, ऐसे स्थानों पर जाएं जहां आप अभी तक न गए हों। यदि आप पुरुष हैं तो एक दिन रसोई संभालें, किसी दिन आंख पर पट्टी बांध कर रहें, किसी दिन अपने वाहन के बजाय सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, कार्यस्थल पर किसी दिन भूमिकाएं बदल कर देखें। कैसा रहे कि प्रबंध निर्देशक एक दिन रिसेप्शन पर बैठे। इस सूची का भी कोई छोर नहीं है। जीवन के साथ सृजनात्मक रहें, बस ऐसे ही कुछ न कुछ करते रहें। आपकी सारी सफलताओं, सारी उपलब्धियों और हासिल किए गए तमाम मुकामों से भी ज्यादा है जीवंत जीवन जीने के लिए अपने आप से अक्सर यह प्रश्न पूछते रहना, पिछली बार कब मैंने किसी काम को पहली बार किया था। जीवन को जश्न बना लें, अपने जीवन में हर दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जीवन को बड़ा बनाएं, जीवंत रहने के लिए जोश में रहें।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

यह एक सामान्य बात है कि कुछ संस्थान बहुत तेजी से उभरते हैं और इसके बाद उससे भी ज्यादा तेजी से ताश के पत्तों के महल की तरह भर भरा कर गिर भी जाते हैं। उन लोगों से पूछें जिन्होंने शेयर बाजार में ऐसी ही कंपनियों में निवेश करके अपने हाथ जला लिए हैं, और उन अन्य अनेक लोगों से भी जो ऐसी ही वित्तीय कंपनियों में धन लगाकर अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। डबडबाती आंखों से वे अपनी व्यथा सुनाएंगे। हाँ, ऐसे संस्थान भी देखे जा सकते हैं जो अपना आधार सुदृढ़ करने में, व्यापारिक आदर्श स्थापित करने में, अपनी आधारभूत चीजों को सही व दुरुस्त करने में और अपनी पद्धतियों, प्रणालियों और आधारभूत ढांचे को यथास्थान व सही सही बैठाने में अपना समय लेते हैं। ये संस्थान हालांकि अपनी शुरुआती अवस्था में सुस्त रहते हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में वे बढ़त पकड़ लेते हैं। तकनीकी रूप से सुदृढ़ इन कंपनियों में जिन लोगों ने निवेश करके अपनी पूंजी खूब बढ़ाई है, उन लोगों से बात करें तो वे आपको सफलताओं की गाथा सुनाएंगे। एक कहावत प्रसिद्ध है कि रोम एक दिन में नहीं बन गया था। यदि वह एक दिन में बन गया होता तो अगले ही दिन धराशायी भी हो गया होता। कहने का भाव यही है कि सफलता इतनी जल्दी नहीं मिल जाती, और मान लीजिए अगर सफलता एक

के में भी मिल जाए तो वह बहुत जल्द ही असफलता में भी बदल जा सकती है। अगर आप धीरे धीरे से अपने आप को हर पहलू से मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी यह सफलता कायम बनी रहेगी, ना कि उन महलों जैसे होंगे जो बहुत तेजी से उभरते हैं, बहुत तेजी से बन जाते हैं, लेकिन उससे भी तेजी से ताश के पत्तों के महल की तरह गिर जाते हैं। कोई भी इमारत जब बनाते हैं तो सबसे पहले उसका आधार तैयार करते हैं, और जितनी शक्तिशाली उसकी नींव होती है उतना ही वह मकान बड़े लंबे समय तक खड़ा रहता है, उसके गिरने का डर नहीं रहता है। तो जरूरी है अपनी नींव को सशक्त बनाना। कमजोर नींव पर बने मकान जल्दी धराशायी हो जाते हैं।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

संबंधों के मामले में भी हम देखते हैं कि जिन संबंधों में लोग बहुत ही कम समय में एक दूसरे के हो जाते हैं, वे संबंध किसी एक गलतफहमी, किसी एक घटना या किसी एक तर्क वितर्क के बाद ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं। लेकिन जो संबंध पर्याप्त समय के साथ साथ सुदृढ़ता, आश्वस्तता, विश्वस्तता, स्पष्टता और घनिष्ठता के साथ बनाते हैं, केवल वे ही समय की कसौटी पर खरे उतरने के योग्य स्थायित्व और गहराई वाले बन पाते हैं। किसमें ज्यादा स्थायित्व होता है, अपनी नोक पर खड़े त्रिशंकु में या अपने आधार पर खड़े त्रिशंकु में? आधार को अच्छी तरह जमाने में समय लगता है, बाद में सामने आने वाले गड़बड़ झाले को ठीक ठाक करने की मारामारी में समय गंवाने के बजाय शुरुआत में ही आधार को अच्छी तरह जमाने में अपना भरपूर समय और मेहनत लगा दें। अगर आप कहते हैं मैं तो भोजन का शौकीन व्यक्ति हूँ, तो निश्चित रूप से और इसी कारण से आप कम खाएं, तब आप भोजन का स्वाद लेने के लिए ज्यादा जी सकेंगे। अगर आपका कहना है मैं तो आराम तलब इंसान हूँ, तो इसी कारण से आप थोड़ा कम सोएं, तब आप सोने के लिए अधिक जी सकेंगे। आप कहते हैं मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो निश्चित रूप से और इसी कारण से उसे मुक्त होने दें। मैं शिखर पर पहुँचना चाहता हूँ, तो निश्चित रूप से और इसी कारण से आप नीचे तलाधार पर रहते हुए इसके लिए तैयारी को पर्याप्त समय दें, तब वह तलाधार ही आपको शिखर तक पहुंचा देने वाला आधार बन जाएगा। सीमित उपयोग जीवन को लंबा करेगा, असीमित उपयोग इसे घटा देगा। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मैं काल चक्र का पहिया आप सभी को आदि पुरुष ब्रह्मा बाबा की कहानी सुना रहा हूं, जो सदा सिर्फ एक परम पिता परमात्मा की याद में मगन रहते थे। उनकी दृष्टि मुख सभी में रूहानियत समाई हुई थी। जो भी उनके सामने जाता उसे यही अनुभव होता था कि वे एक के अंत में खोए हुए हैं। उन्होंने सदैव सर्व के कल्याण, विश्व के कल्याण के बारे में सोचा। राजयोग साधना के माध्यम से अपनी कमी कमजोरियों को मिटाने का संदेश दिया। आज हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका जयंती दीदी के मुख से सुनेंगे ब्रह्मा बाबा की आध्यात्मिक यात्रा के कुछ अनछुए किस्से और उनके स्वयं के अनुभव।
1: अब आप सुनेंगे ब्रह्मा बाबा से जुड़े हुए उनके जीवन के कुछ कहे अनकहे अनुभवों के पल, उन राजयोगियों के मुखारविंद से जिन्होंने साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से पालना ली।
2: मैं 8 वर्ष की आयु में बाबा के साथ पहले मुलाकात रही, ये था रजौरी गार्डन दिल्ली में। बाबा दिल्ली में आए हुए थे और हम पूना से ट्रैवल करके दिल्ली में गए थे। कुछ लौकिक फैमिली भी थी, परंतु खास बाबा से मिलने का भी, मेरी माता जी जो ज्ञान में थे उनको लक्ष्य ये भी था। तो उस समय 8 साल की उम्र में 1957 की ये बात है, तो बाबा की पर्सनालिटी बहुत बहुत एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी लगी, और उसमें मुझे लगता था कि बाबा मेरा ग्रैंडफादर है, क्योंकि आयु के हिसाब से भी वो इस तरह की ही हमारे ग्रैंडफादर की आयु थी। परंतु बहुत एक नज़दीक प्यार संपन्न दृष्टि प्यार वो बाबा से मिला। और फिर जब बाबा ने 2 वर्ष बाद जब हम लंदन में थे, एक मैंगो का बॉक्स 4-6 इस तरह से कुछ था, तो उस समय मैंने सोचा, मैं तभी 10 वर्ष की आयु की थी, तो मैंने सोचा कि इंडिया में इतने हमारे और संबंधी है। परंतु 1959 में कोई ये नहीं सोचता था कि हम कुछ भी चीज़ एयरमेल पोस्ट में भेजें, छोटा सा पत्र भी बड़ी बात लगती थी। तो बाबा की इतनी बड़ी दिल, बाबा बॉम्बे में आए हुए थे तो बाबा आम खा रहे थे, और सोचा कि बच्चों को वहाँ पर आम नहीं मिले होंगे, तो बाबा का इतना दूरांदेशी दृष्टि, जो जैसे बाबा छोटे बच्चों को दूर दूर बैठे देख रहे हैं, और बाबा को ये संकल्प आया और बाबा ने किसको बोला कि ये आप आम लंदन भेजो। तो उस समय लाइफ बहुत सिंपल थी हर एक के लिए, खास करके ब्रह्मा कुमारीज के लिए तो बहुत ही सिंपल थी, परंतु बाबा कुछ और बात का सोचा ही नहीं, एक्सपेंस का या और ये फालतू बातें हैं नहीं। तो बाबा का इतना बेहद का प्यार, बाबा जानते थे कि किस आत्मा को किस तरह से टच कर सकते, तो वो बचपन की बात कभी भी भूल नहीं सकती। तो बाद में तो बाबा के साथ 66, 67, 68 में 3 बारी मुलाकात होती रही जी।
3: दीदी, निमित्त तो ब्रह्मा बाबा बने, टीचिंग्स शिव बाबा की, उसके आधार से ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, जैसा इस कार्यक्रम का भी टाइटल है, आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर। तो आध्यात्मिकता के आधार से जो बाबा संपूर्ण बने, आध्यात्मिकता में ऐसी क्या चीज़ है जो एक व्यक्ति को संपूर्ण बनने में, आत्मा को परिपूर्ण स्टेज रीच करने में, पहुँचने में मदद करती है?
2: हर आत्मा के अंदर कलयुग के अंत में कई अच्छे गुण भी हैं, परंतु कुछ कुछ अच्छे गुण छिपे हुए रहते हैं। और प्रत्यक्ष रूप में वातावरण नेगेटिव है तो उसमें जो अपनी कुछ कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, वही ज़्यादा कार्य व्यवहार में यूज होती, और उसमें भी संसार में आजकल कई आदतों को कम बुरा मानते हैं। मानो कोई समय था जो शराब को कई परिवार में तो उसको बिल्कुल छूते नहीं थे। आजकल कहेंगे ये तो मॉडर्न समय है, ये तो बातें बदल गई है। स्मोकिंग उसका दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार से है। तो कई बातों की जैसे कि समाज छूट दे चुके हैं। ड्रग्स के लिए भी कई देशों में अभी लीगल बना लिया है, कैनबिस मारुआना आदाद। तो उस हिसाब से नेगेटिविटी की जास्ती प्रभाव है आजकल। तो उसमें आध्यात्मिकता शक्ति के बगैर कोई भी आत्मा में वो शक्ति नहीं आ सकती जो अपने कमजोरियों को मिटा सके। तो जब परमात्मा हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारा असली स्वरूप है देव स्वरूप, तो उन देवी गुणों को फिर से इमर्ज करना परमात्मा की याद के द्वारा और ब्रह्मा बाबा के जीवन के एग्जाम्पल्स को देख करके, तो उससे हमें मदद मिलती है। और वो सत का संग, न सिर्फ परमात्मा सत्य है उसके साथ संग रखने से शक्ति प्राप्त होती, परंतु जो अपना देवी परिवार है, स्पिरिचुअल फैमिली है, उनसे भी जो हमें अच्छी प्रेरणाएं मिलती उससे भी हमें बहुत मदद मिलती। और फिर जो अपने बैड हैबिट्स है, कुछ ऐसे कमजोरियां हैं, उसमें भी एक तो हमें जानकारी मिलती है कि इन बातों का क्या नुकसान है और ये बातें शुरू क्यों होती है। मानो कि यदि कोई आत्मा संतुष्ट है आंतरिक हिसाब से, तो वो कभी शराब के लिए नहीं सोचेंगी, या यदि अपने को शांत चित बना करके चल सके, वो फिर टेंशन में आ करके सोचे कि मुझे सिगरेट की ज़रूरत है, वो भी नहीं होगा। तो बाबा ने क्या किया है, बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें बहुत अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची बातें अनुभव कराई है, जिस आधार पर पुरानी आदतें सहज ही छूट सकती। एक तो अच्छाई का अनुभव करने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता, परंतु दूसरा योग के द्वारा जो आत्मा को शक्ति आती, कोई भी और नेगेटिव टेंडेंसी हो, उस टेंडेंसी को हम मन के संकल्प तक ही रोक सकते, ताकि फिर वो आगे हमारी वाचा में या कर्मना में ना आए। तो राजयोग की शक्ति के द्वारा मैंने देखा है कि जो पुरानी बातें हैं वो छूट सकती, और एक माह से एक वर्ष के लिए नहीं, सदा के लिए उसे छुटकारा हो सकता। तो ब्रह्मा बाबा के लिए तो हम ये नहीं कह सकते कोई ऐसी आदतें थी, क्योंकि जो दादी ब्रजेंद्रा अपनी कहानी सुनाती, या जो दादी निर्मल शांता, दादी ब्रजेंद्रा तो बाद में बाबा को देखा क्योंकि वो बहुरानी होके घर पे आई, दादी निर्मल शांता तो बचपन से ही अपने बाप को देखा। तो वो जिस तरह से वो चित्र बताते हैं ब्रह्मा बाबा का, बहुत काइंडनेस था, बहुत बड़ी दिल थी, बहुत सबके लिए भावना थी। मानो कि जब वो प्रार्थना भी करते थे और या टुबकी गंगा में लगाते थे, पहले टुबकी था परिवार के लिए, फिर टुबकी था सब आत्माओं के लिए, फिर लास्ट में अपने लिए टुबकी लगाते थे। तो इसी से ही पता चलता कि बाबा की कितनी भावना थी सर्व आत्माओं का कल्याण हो। तो मैं नहीं समझती बाबा के अंदर कुछ ऐसे ज़बरदस्त कुछ गलतियां थी, या मैंने तो आज तक नहीं सुनी है और न मैंने देखी थी। परंतु फिर भी कुछ छोटी छोटी कुछ आदतें हो भी सकती, परंतु परमात्मा के याद की शक्ति से और अपना स्वरूप याद रखने से कि मैं तो वो देव आत्मा हूँ, बाबा ने सब बातों को समाप्त करके और इतनी विश्व भर की सेवा करके, आत्माओं को इतना सुख दे करके अपना श्रेष्ठ पद प्राप्त किया।
3: दीदी, जो महान आत्माएं होती हैं उनका जीवन भी कुछ सिखाता है, एक चरित्र बन जाता है, और मृत्यु भी शिक्षाप्रद होती है। जैसे दादी जानकी ने हमेशा कहा, जीना कैसे हो और मरना कैसा हो। 1969 में जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो उस समय की क्या शिक्षाएं थीं, क्या अनुभव था, वो समय कैसा था?
2: 17 जनवरी को बाबा ने इशू दादी, जो बाबा की प्राइवेट सेक्रेटरी थी, उनको बोला कि बच्ची आज बाबा ऑफिस में बैठते हैं, पत्रों का स्टॉक समाप्त करने के लिए। तो उस दिन करीब 40 पत्र का जवाब बाबा ने दिया। खुद भी कुछ लिखते थे, कुछ डिक्टेशन करके यीशु दादी से कराया। नेक्स्ट डे सवेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो बाबा क्लास में नहीं आए, परंतु फिर भी एक दो घंटे के बाद फिर ऑफिस में गए और वहाँ पर ये शब्द कहा कि बाबा को अपना कर्जा पूरा करना है। तो उसका गहराई से तो यीशु दादी ने नहीं सोचा, परंतु फिर भी उस दिन भी 40-50 पत्र बाबा ने लिख करके समाप्त किए। बाबा ने कहा कि बच्चों का संकल्प नहीं चलना चाहिए, हमें उत्तर नहीं मिला। फिर शाम के समय बाबा ने ये कहा कि बच्चे जल्दी भोजन की घंटी बजा लें, बाबा आज रात्रि को क्लास में 8 बजे आएंगे। बाबा के बच्चों का ख्याल चला होगा कि सवेरे की मुरली क्यों नहीं चली है, बाबा मुरली में नहीं गए थे उस दिन, तो आज शाम को बाबा मुरली चलाएंगे। तो नॉर्मली मुरली में बाबा आते थे 9 बजे रात्रि को, उस दिन भोजन जल्दी सबका हो गया, 8 बजे बाबा क्लास में आए। तो हम देखते हैं कि बाबा को अंतिम घड़ियों में भी सब बच्चों का इतना प्यार का ख्याल रहा कि सबको कुछ प्राप्ति हो। फिर वो मुरली भी एक ज़बरदस्त मुरली है, और जैसे कि कोई बाप हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखता और अपने हिंदू प्रथा के अनुसार जिस घड़ी कोई शरीर छोड़ता है फिर खाना पीना, तो जब तक वो कार्यक्रम नहीं होता है अंतिम कार्यक्रम, उसको खाने पीने का कुछ करते नहीं है प्रबंध। तो बाबा ने ऐसे चॉइस किया कि रात्रि को मुरली भी सुनाए, सब बच्चों ने भोजन भी कर लिया हो ताकि किसको कुछ कष्ट न हो, फिर बाबा ने शरीर छोड़ा और अपना जो कर्जा था, जो हिसाब किताब था, वो भी बाबा चुकतू करके गए ताकि कोई उलैना न मन में रह जाए कि मैंने बाबा से ये प्रश्न पूछा था और बाबा ने हमें उत्तर नहीं दिया। तो मैं देखती हूँ कि दिन भर जो बाबा का कार्यक्रम था, उस बीच में जो बिल्डिंग साइट थी अपनी, कंस्ट्रक्शन चल रही थी ट्रेनिंग सेंटर की, तो वहाँ पर भी बाबा चक्कर लगाए, वहाँ जो सेवा करने वाले थे उनसे भी बाबा की मुलाकात रही, बगीचे का भी चक्कर लगाया, भंडारे का भी लगाया। तो बाबा रेख देख करते थे ताकि बाबा की नज़र में सब कुछ बाबा देखे, कुछ कमी नहीं है, कुछ तकलीफ तो किसको नहीं है। तो ये सारा कारोबार स्कूल का करके फिर बाबा ने छुट्टी ली। तो आप सोचो कि कितनी आत्माएं होंगी जो उनको, और बाबा को तो पता था कि मुझे जाना है, कुछ समय से पता था। तो जो ऐसे योगी आत्माएं होती हैं उनको मालूम होता है जब समय आता है कि अब छुट्टी का समय है, अचानक कुछ बात नहीं होती है उनों के लिए, वो जानते हैं। तो उस अनुसार बाबा ने भी अपनी सारी तैयारी कर ली थी ताकि फिर ये भी उसमें मैं कहेंगी कि अक्टूबर मास जब 68 में मैं बाबा के पास आई थी, बाबा ने मुझे दीदी मनमोहिनी के साथ टूर पर भेजा और मैं तो फिर वापस दिसंबर में आगरा से आ गई जहाँ पर दीदी मनमोहिनी ने मुझे सेवा के लिए रखा। तो उस समय अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बाबा ने दादी प्रकाशमणि को रखा अपना साथी करके, क्योंकि दीदी मनमोहिनी तो 4 वर्ष से अंग संग रही थी, उनको सब कुछ यज्ञ के सिस्टम का, यज्ञ के खजाने का सब कुछ पता था। तो बाबा उसको टूर पर और आगे जाए और आगे जाए बाबा उसको इनकरेज करते रहे ताकि फिर वो कुंभ में मेले पर थी जिस घर ये बात हुई, और संदेश पहुंचने में 2 दिन लग गए। बाबा ने रात्रि को 9:30 बजे शरीर का त्याग किया। संडे बीता, मंडे दिन किस घड़ी दीदी को पता चला, तब तक वो दूर तक पहुंच गई थी, मोबाइल फोन्स नहीं थे उन दिनों में, परंतु फोन्स लैंडलाइन पर करते ढूंढते रहे दीदी कहाँ तक पहुंची है। फिर मंडे आफ्टरनून को उनको पता चला तो तुरंत ही फिर बॉम्बे आकर, फिर नेक्स्ट डे बॉम्बे से फ्लाइट लेकर फिर उस घड़ी आकर पहुंचे जब रथ को एक ट्रक सजी हुई थी जो सारे तरफ चक्कर लगाने वाले थे प्रोसेशन में। तो उस घड़ी आकर के बड़ी दीदी और दादी निर्मल शांता आकर के पहुंचे तो 3 मास का जो टाइम मिला बाबा दादी जी को तैयार कर रहे थे, क्योंकि बाबा जानते थे कि दीदी के साथ कोई और भी जरूर चाहिए। तो इतनी तक बाबा की बुद्धि अथवा बाबा की तैयारियां, जो बाबा पूरा ही हर प्रकार का सिस्टम बना करके फिर बाबा उड़ के गए। जब कराची में ही थे उस समय से ही बाबा ने इन्हों को 2 बातों का बीज डाला, एक तो योग अभ्यास और दूसरा ज्ञान की प्रकाष्ठा। और फिर तीसरी बात भी मैं सोचती हूँ कि बाबा ने ये भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा कि परिवार का आपस में संबंध बहुत प्रेम संपन्न बना रहे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आबू में आई 1966 में, तो मैंने देखा कि 30 लोग थे सिर्फ मधुबन निवासी, और मॉनसून का सीज़न था तो बाहर वाले तो हम लोग 5-6 ही थे दादी के साथ आए हुए, बाकी तो और कोई नहीं था। तो बहुत छोटा सा परिवार था, हिस्ट्री हॉल में हम बैठते थे मुरली के लिए। तो उस समय भी सवेरे का योग 4 बजे का, और बाबा मुरली में भी उस पर बहुत एम्फेसाइज करते थे, और सेकंड फिर बाबा की मुरली। तो कुछ और कारोबार में न जा कर के सबका संगठित रूप से आध्यात्मिक पुशारत चले, बाबा ने ये पहले बहुत पावरफुल फाउंडेशन डाली जो आज तक भी चलती है। और उससे मैं देखती हूँ कि क्योंकि सवेरे का समय खुद को मिलता अपने अंदर के परिवर्तन करने का, अंदर में शक्ति भरने का, स्वमान की स्थिति को बनाकर रहने का, तो उससे हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए जवाबदारी उठाता। मानो कि आज मेरी मूड ठीक नहीं है और मैं किसी और को दोष देती रहूं, उससे तो मैं कुछ ठीक नहीं हो पाएंगे। परंतु ज्ञान और योग के आधार से मुझे ये रियलाइजेशन होती कि मेरी जो स्थिति है वो मेरे हाथ की बात है। तो उसमें एक तो इंडिविजुअल पुशारत क्या करना होता बाबा मुरली में बताते रहे, साथ साथ आपसी संबंध में किस प्रकार से स्नेह सहयोग बना रहे उसके लिए बाबा बहुत अच्छी तरह से डायरेक्शंस देते रहे। और तीसरा, हर एक अपने योग्य अनुसार सेवा मिले, बाबा ने वो भी देखा। और अनेक आत्माओं को ऐसे ड्यूटीज़ में रखा जिससे उनकी उन्नति भी होती रहे, परंतु वो संगठित रूप में वो कार्य कर सके। 1966 या 67 की बात है, बाबा ने एक सेमिनार बुलाया था। तो सेमिनार बाबा किसको कहते थे? बाबा कहते थे कि जो मुख्य सर्विसेबल बाबा के बच्चे हैं उन्हों को मुझे बुलाना है, वो आपस में राय करें कि और आगे सेवा कैसे बढ़ा सकते। तो उसमें मुझे याद है कि मैं आंगन में बैठी थी, लच्छू दादी ने कुछ पिस्ते दिए थे काटने के लिए मुझे बिजी रखने के लिए, मेरी उम्र थी 17 साल की, तो कोई और कारोबार तो थी नहीं, तो मैं वहाँ ही बैठ करके वो नट्स काट रही थी। तो बाबा अपने कमरे से निकले, फिर मुझे देख करके मुझे अपने पास इशारा किया, बुला लिया। फिर बाबा मेरा हाथ पकड़ो, पिस्ता चाकू वहाँ तो रह ही गया, फिर बाबा मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ ले चले। तो मुझे मालूम था कि बाबा को तो मीटिंग में जाना है, सेमिनार में जाना है। तो सीढ़ियों तक तो मैं आ गई, फिर मैं रुक गई क्योंकि मुझे ऊपर तो जाना ही नहीं था। तो भी बाबा मुझे खींच के हाथ पकड़ के लेके चले, फिर मैं वहाँ भी रुक गई ऊपर कि अभी बाबा को तो अंदर जाना है, मैं नीचे चले जाऊँ। तो भी बाबा ने मुझे खींच के अंदर बुला लिया। तो मैं वहाँ पर ही दरवाजे पर ही चोंट पर ही मैं बैठ गई, क्योंकि मैंने देखा कि बाबा उस समय कुर्सियों का रवाज ही नहीं था मधुबन में, सब पट पर ही बैठे थे। ये है हवाई महल, जहाँ ऊपर में वहाँ पर एरोप्लेन है, हवाई महल में भूल गई हूँ उस बिल्डिंग का नाम। तो वहाँ पर ही सब गोल चक्रे में बैठे थे, एक तरफ सब दादियाँ, दीदी मन मोहिनी, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, आदा दाद, और एक तो उनसे थोड़ी छोटी बहनें मोहिनी दीदी थी इस तरह के। फिर दूसरी तरफ थे भाई, तो उसमें जगदीश भाई, रमेश भाई, निर्भय भाई, प्रजुम्न भाई, इस तरह के भाई थे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था बाबा ने मुझे क्यों यहाँ बिठाया है, परंतु मुझे सुनने का चांस मिला और वो जो सीन थी बहुत ही सुंदर। जैसे दीदी ने प्रश्न पूछा, बाबा ने कैसे उत्तर दिया, बड़ी दादी ने पूछा, फिर बाबा का उत्तर, फिर रमेश भाई ने प्रश्न पूछा, इस तरह से। तो अभी मैं सोचती हूँ कि बाबा तब से आपस में बच्चे किस तरह से मिल करके प्लान बनाए, प्रेम प्यार से लेन देन करे, रिस्पेक्ट से, बेशक विचारों में फ़र्क हो परंतु दिलियों की दूरी न हो, वो बाबा ने ट्रेनिंग दी। तो सेवा का फाउंडेशन भी वो बाबा ने डाला, तो ज्ञान, योग, धारणा, इंटरनल मैनेजमेंट का, और फिर साथ साथ एक्सटर्नल सर्विस का भी बाबा हर बात की ट्रेनिंग दे करके फिर गए।
3: दीदी, बाबा ने आप पर कौन सी ऐसी छाप छोड़ी, कौन सा ऐसा इम्प्रेशन आपके ब्राह्मण जीवन पर पड़ा जो हमेशा आपको आगे बढ़ाता रहा?
2: बाबा की दृष्टि, क्योंकि जब मैंने बाबा से सवेरे बात की झोपड़ी में, बाबा ने ही बुलाया था मधुबन में बात करने के लिए, तो बाबा ने पूछा, बच्ची क्या चाहती हो? मैंने कहा, बाबा मुझे सेवा करनी है, मैं समर्पण होनी चाहती। तो बाबा देख करके कहते हैं, बाबा तो पहले से ही जानते थे। और फिर याद आया कि उससे पूर्व 3 वर्ष पहले बाबा ने कहा था कि बच्ची स्पिरिचुअल लीडर बनेंगी, तो उस समय तो मुझे कुछ समझ नहीं था। मैंने सोचा कि बाबा हर एक को खुश करने के लिए इस तरह की बातें करती हैं। तो फिर बाबा ने कहा, मतलब सारी बहुत डिटेल के इंस्ट्रक्शंस बाबा ने दिए, तो बाबा ने कहा कि रात्रि को क्लास के बाद आप मेरे पास आना। तो साथ में माता जी भी थी, तो फिर बाद में हमने दादी जानकी को भी बताया, तो कहा हाँ बाबा ने मुझे भी बोला है आने के लिए। तो रात्रि को हम लोग कमरे से बाहर जो छोटा सा आंगन है जहाँ अभी छत लग चुकी है, तो वहाँ पर हम गए, तो करीब 8-10 बड़ी दादियाँ थी, और दादी जानकी भी और मैं और माता जी। तो बाबा लेटे हुए थे और सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद था, उस समय छत खाली थी, तो आकाश में भी बहुत सुंदर चंद्रमा था, बाबा के कपड़े भी सफ़ेद, बाबा के बाल भी सफ़ेद, चेहरा भी ऐसे। फिर बाबा एक एक को दृष्टि देते गए, और फिर मेरा नंबर शायद 4th, 5th इस तरह से था, तो बाबा फिर मुझे दृष्टि देने लगे। फिर बाबा मुझे ऐसे करके बुलाया उंगली से, और बाबा के तकिए के बाजू में लच्छू दादी ने मोती के फूल रखे थे, तो उसमें जून मास था तो बड़ी सुंदर खुशबुएं थी, तो बाबा मुझे वो फूल उठा करके हाथ में पकड़ा रहे थे, तो बाबा दृष्टि देते रहे। तो ऐसी दृष्टि थी जो पहले तो बस बाबा का चेहरा भी गुम हो गया और बस बाबा के मस्तक में वो लाइट नज़र आई, फिर जैसे कि वो लाइट मुझे खींच करके मैग्नेट की तरह कहाँ दूर दूर लेके जा रही है, और जैसे मैं परमधाम में पहुँच गई और वहाँ पर शिव बाबा के साथ मेरी मुलाकात हुई। कितना समय तक इस प्रकार का अनुभव रहा मैं कह नहीं सकती, परंतु कुछ समय के बाद ऐसे लगा जैसे कि बाबा वोल्टेज को थोड़ा कम किया, और फिर जैसे कि मैं नीचे आ गई, और फिर बाबा के उस तरफ दादी जानकी थी, तो बाबा ने प्रश्न पूछा, आप जानते हैं बाबा क्या कर रहे थे? तो दादी बड़ी बड़ी मुस्कुराहट से कहती है, जी बाबा मैं हम जानते हैं, और सिर हिला रही थी। तो बाद में मुझे दादी कहती है, बाबा तुमको नया जन्म दे रहा था, और मुझे भी लगा कि हाँ यही बात है। फिर उसके बाद जब मैं बाबा की दृष्टि को याद करती हूँ तो बस ऐसे ही आत्मा उड़ जाती है और शिव बाबा के साथ बहुत सुंदर कनेक्शन हो जाता। तो ये बाबा ने एक वरदान दिया।
0: सच्चा तपस्वी कैसा होता है, उसके आचरण एवं व्यवहार में कितनी सरलता एवं नम्रता होती है, यह सब मैंने ब्रह्मा बाबा के व्यक्तित्व को देखकर जाना। उन्होंने किसी मनुष्य आत्मा के बीच कभी भेद नहीं किया, अपितु सभी को आत्मिक दृष्टि से देखा। ब्रह्मा वत्सों को भी अंतिम घड़ी तक यही शिक्षा देते रहे कि आत्म अभिमानी होने का अभ्यास करो, आत्मा के मूल गुण को सदा स्मृति में रखो कि वह शांत, प्रेम, ज्ञान, शक्ति एवं सुख स्वरूप है। वायुमंडल में कितनी भी नकारात्मकता क्यों न हो, अगर मनुष्य अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है तो उसे ईश्वरीय स्पर्श अथवा संकेत

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: मैं हूँ जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। खुद को पहचानने की इस जद्दोजहद में कई मुकाम हमने तय किए हैं। एक बात जो सामने आई है वो ये कि जिस तरह की ज़िंदगी आज के इस भागते दौड़ते युग में हम जी रहे हैं, उसमें कई प्रॉब्लम्स, कई बीमारियां हमने खुद ही जनरेट कर ली हैं। सॉल्यूशंस भी हमें खुद ही तलाशने पड़ेंगे। ऐसे में एक बीमारी जिससे हम में से हर एक को दो चार होना पड़ता है कभी ना कभी, वो है डिप्रेशन। क्या है एग्जैक्टली डिप्रेशन, ये हम अच्छी तरह से जान गए हैं और ये भी जान गए हैं कि डिप्रेशन को दूर करना हमारे अपने ही बस में भी है, लेकिन कई बार हमें प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ती है। किस तरह के डिप्रेशंस आ सकते हैं हमारी ज़िंदगी में और कौन सा वो वक्त होता है, कौन सा वो मुकाम होता है जब हमें एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद ले लेनी चाहिए, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश, अ वेरी वार्म वेलकम। और नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आज पहले आपसे शुरू करते हैं कि डिप्रेशन के हर एस्पेक्ट को हमने जाना है अच्छी तरह से कि डिप्रेशन क्या है, जिंदगी के किस फेज में हमें समझ में आ जाता है कि डिप्रेशन है। यहाँ पे जब थोड़ी थोड़ी देर खुशी, थोड़ी थोड़ी देर गम होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हम डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं। जो जर्नी हम इंटरनल जर्नी की बात करते आ रहे हैं पूरी इस श्रृंखला में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में, उसमें एक एस्पेक्ट तो ये आता है कि खुद के बारे में अवेयर हो के हम ये जान लें कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो हमें परेशान करते हैं और हमें उनसे दूर होना है। जो डिप्रेशन है, जो कभी कभी गम तक हम पहुँचते हैं, कुछ देर का गम हमें आता है, उसमें क्या ऐसी बातें खुद से करनी है हमें, जो खुद स्व काउंसलिंग की बात करते हैं, अपने आप से बात करने के बाद सेल्फ काउंसलिंग की बात करते हैं, कि हम उस वो चार घंटे के वक्फे को निकाल पाएं और वो जो चार घंटे खुशी के आएंगे वो ज़्यादा बेहतर हो।
2: सेल्फ काउंसलिंग अर्थात अपनी, जब हम पहचान लेते हैं कि कौन सी बात है जो उस चीज़ को ट्रिगर कर रही है, तो हम उसका सोल्यूशन, जैसे दूसरों को सोल्यूशन देते हैं वैसे खुद को सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात कि मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएँ हैं, उनको पहचानना, मेरे अंदर कौन सी शक्तियां हैं उनको पहचानना। ज़्यादातर क्या होता है, हम सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं परिस्थिति को सामना करने की शक्ति नहीं है, या किसी ने कुछ कह दिया या मेरे जीवन में कोई घटना घटी, मुझे मेरे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, मेरे अंदर एक राइट डिसीशन लेने की पावर नहीं है। तो ये जो सारी पावर्स हैं ये हम फील करते हैं कि हमारे अंदर नहीं है और वो खालीपन आना शुरू कर देते हैं। राजयोग जब हम करना शुरू करते हैं तो ये पावर्स एक नेचुरल रूप में इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी पावर्स हमारे अंदर हैं। You know, they don't have to be brought from anywhere outside. सहन शक्ति है, सिर्फ कभी कभी वो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे उसको यूज़ करते जाएंगे वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई भी परिस्थिति और कोई भी व्यक्ति मेरी मन की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकता।
1: लेकिन वही आपने कहा कि सेल्फ काउंसलिंग जो है,
2: हाँ, तो जैसे अगर सपोज आपसे मेरी कोई बात हुई और मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, अब मेरी वो गम वाले फेज में मैं चली गई क्योंकि आपने कुछ ऐसा कह दिया जो मेरी, जो हमने कहा कि जो मेरी अपनी बनाई हुई इमेज है उसको हर्ट हुआ। देखो हर्ट हम कब होते हैं, मैंने अपने बारे में एक पर्टिकुलर इमेज बनाई है, आपने कुछ ऐसे कह दिया जो वो इमेज मेरी बनाई हुई इमेज के साथ मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए आपके बोल मुझे तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें अब सेल्फ काउंसलिंग यही होगी कि सबसे पहले तो मेरी मन की स्थिति का मास्टर मैं खुद हूँ। अगर मैंने अपनी कोई इमेज बनाई है तो अच्छी इमेज अगर बनाई है तो सबसे बड़ी पावर तो यह है कि नोबडी कैन कंट्रोल मी। दूसरा, अपने आप से ये बात करना शुरू करें कि असलियत क्या है, जो मैंने सोचा या जो आप कह रहे हैं, यू नो। एंड सेकेंड, ट्राई एंड टॉक टू माई सेल्फ के ओके, दिस इज वॉट यू फील, मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर नॉट, ईदर वेज लेट मी चेक माई सेल्फ। अगर आप सही हैं तो मैं अपने आप को उस अनुसार चेंज कर लूँ, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपने जो कहा है
1: उसका कोई मायने नहीं,
2: कोई मायने नहीं।
1: और सबसे बड़ी बात, अगर आप सही भी हैं तो आप अपने आप, मैं अपने आप को मार नहीं दूंगा, हाँ, कि मैं चेंज कर सकता
2: हूं। बिल्कुल, तो बहुत इजी है। लेकिन अगर हम, हमारे को प्रॉब्लम उस बात से नहीं होती है, हमें प्रॉब्लम ये ज्यादा होती है उन्होंने ऐसा क्यों कहा,
1: मेरी इमेज जो मैंने बनाई हुई थी
2: उससे, वो तो वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उसमें आ जाता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा, और वो चीज हम बार बार अपने आप को फिर कहते रहते हैं। तो ये फिर हम उस टाइम परेशानी के पीरियड में गुजर रहे हैं, तो उस टाइम कोई और मदद नहीं कर सकेगा। आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ, उनकी जो राय थी वो उन्होंने कही, अब मुझे उसको अपने इमेज के साथ
1: फर्स्ट चेक करना चाहती हूँ आपसे, कि जब हम इस एस्पेक्ट पे हैं कि जब मैं उस डिप्रेशन के फेज में जा रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए भी, क्या ये सेल्फ काउंसलिंग
2: कौन सी बात दर्द कर रही है।
3: शिवानी बेन ने एक बहुत अच्छी बात बताई, सभी को याद रखनी चाहिए बात, कहते नो बडी कैन मेक यू डिप्रेस्ड विदाउट योर परमिशन। उन्होंने बात की ना सारे पावर्स की, उसमें सबसे बड़ा है पावर ऑफ साइलेंस। यू शुड लर्न टू गो इन साइलेंस। साइलेंस में गए तो ऑटोमेटिक परखने की शक्ति आएगी,
1: खुद से बात करने का वक्त,
3: सहन करने की शक्ति आएगी, निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी।
1: तो अब डॉक्टर साहब, हम उस बात पर आते हैं कि ये तो बात है कि जब मैं उस फेज में आ गया कि मैं उतनी देर के लिए तकलीफ में हूँ, दुख में हूँ, खुद से काउंसलिंग, खुद से बातचीत करके कहीं ना कहीं उस एहसास को हम, मैं हटा सकता हूँ। अब बात करते हैं जो इससे परे जा चुके हैं, यू नो, हम थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे आ गए हैं कि डिप्रेशन जो है वो सीप इन कर गया है। आपने पिछली बार हमने बताया था कई तरह के होते हैं डिप्रेशन, आज हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि क्या, कौन कौन सी वो तरीके, कौन कौन से वो डिप्रेशन कहे जाते हैं जिनके कारण शायद अलग अलग होते होंगे और उनके सिम्टम्स शायद अलग अलग होते हों, तो किस तरह के डिप्रेशन।
3: कई प्रकार से डिप्रेशन को डिवाइड करते हैं। एक तो जिसको कहा गया रिएक्टिव डिप्रेशन, मतलब कोई ना कोई परिस्थिति आती है उसके रिएक्शन में अब डिप्रेस्ड होते हैं, कि भाई बिजनेस में लॉस हो गया तो डिप्रेस्ड हुए, किसका देहांत हो गया तो
1: डेथ इज अ मेजर
3: थिंग। दूसरा एक है जिसको कहा एंडोजेनस डिप्रेशन। एंडोजेनस डिप्रेशन थोड़ा ज्यादा ही डीप होता है, जो केमिकल्स के कारण है, कि कोई बाह्य परिस्थिति ऐसी नहीं परंतु फिर भी अचानक व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करता है, दैट इज एंडोजेनस डिप्रेशन। और एक है प्रकार जिसको कहा साइकोटिक डिप्रेशन, विच इज मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, कि इसमें व्यक्ति पागल जैसी हरकतें भी कर सकते हैं, वो डिप्रेस्ड है लेकिन साथ साथ में साइकोसिस भी है उसे।
1: अच्छा, तो सारे जो डिप्रेशंस हैं वो साइकेट्रिक नहीं होते हैं।
3: नहीं, साइकेट्रिक होंगे लेकिन साइकोसिस जिसको कहा, जैसे साइकेट्री में दो प्रकार की बीमारियां, एक तो न्यूरोसिस और दूसरी है साइकोसिस।
1: ओके,
3: न्यूरोसिस ऐसी बीमारियां जो माइल्ड फॉर्म ऑफ बीमारी भी कहेंगे, व्यक्ति खुद रियलाइज करता है कि मुझे कुछ तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साइकोसिस ऐसी बीमारियां जहां पेशेंट स्वीकार ही नहीं करता कि मुझे कोई बीमारी है,
1: एहसास ही नहीं होता।
3: हाँ, वो तो कहेगा आप सब पागल है, तुम ट्रीटमेंट कराओ। इवन डॉक्टर के पास भी जाके पूछेंगे ना क्या तकलीफ है, मुझे कुछ तकलीफ नहीं, इनको प्रॉब्लम है ना, उनका इलाज करो आप। तो जो डीप, जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्रेशन है साइकोटिक डिप्रेशन,
1: जो कि वायलेंट भी हो सकता है, हमने पिछली बार बात की थी, या फिर सुसाइडिकल भी जा सकते हैं।
3: सुसाइडल तो रिएक्टिव डिप्रेशन में भी पॉसिबल है, लेकिन साइकोटिक डिप्रेशन में पागल जैसी हरकतें करेगा।
1: इन तीन को आप, हमने डिफाइन किया, आपने बताया हमें कि किस तरह के जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन है। एक मैं यहाँ से बात आपसे, एक्चुअली हमारे बहुत सारे दर्शक हैं सिस्टर शिवानी, आप भी शायद इस बात से एग्री करेंगे कि आज जब भी हम किसी मानसिक परेशानी की बात करते हैं, मानसिक बीमारी की बात करते हैं, इनफैक्ट आजकल तो इतनी ज्यादा उसके ऊपर बातचीत की जाती है, चाहे वो कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, पहली चीज हर बीमारी का नाम डिप्रेशन दे दिया जाता है। व्हाई, आई एम लाइक, क्या हर जो मानसिक परेशानी है वो डिप्रेशन से उपजी है?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कॉमनेस्ट है इसके लिए डिप्रेशन का, बिकॉज डिप्रेशन इज सो कॉमन, और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि फोबिया आज बहुत बढ़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं चीजों का लोगों को डर लगता है, पानी का डर लगता है, घर से बाहर जाने का डर लगता है, फोबिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसे और एक बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सन, कि एक चीज व्यक्ति बार बार करता है, कि भी नहीं 100 बार हाथ धुलाई करेगा,
1: वो अपना वो देखेंगे कि ताला लगाया कि नहीं, बार बार देखते हैं वो।
3: कई बार कुछ रिचुअल्स भी होते, एक डॉक्टर मेरे पास आए थे, कि भी चौराहे पे और ऐसे स्पेसिफिक उसकी विधि तो चक्कर नहीं लगाएंगे तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे नहीं। कहते क्लिनिक में जाने को मुझे 3 घंटे लग जाते, एक बार ये ऑब्सेशन बुद्धि में आ गया फिर मैं आगे बढ़ता ही नहीं। ऐसी एंजाइटी एक बहुत बड़ी और बीमारी है जो डिप्रेशन से बिल्कुल भिन्न है, उसके ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। और जो है वो है साइकोटिक बीमारियां कि जिसमें सिज़ोफ्रेनिया हो गया, ऐसे और एक है मैनिक डिप्रेशन।
1: तो ये इट मींस दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिप्रेशन,
3: दे आर नॉट पार्ट ऑफ
1: डिप्रेशन। कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर होल ट्रीटमेंट या पूरा प्रोसेस, बट दे आर नॉट डिप्रेशन।
3: या तो ऐसा कहेंगे कि भी और बीमारियों के साथ साथ भी डिप्रेशन हो सकता है, परंतु ये सब डिफरेंट एंटिटीज है कि जिनका हम इलाज, जैसे मैनिक डिप्रेशन कहा वो अलग प्रकार की बीमारी है जहाँ कुछ समय तो व्यक्ति एक्साइटमेंट में जाता है, 1 दिन 5 दिन 1 मास, और फिर कुछ समय वो डिप्रेशन में जाएगा, ये साइकिल उसका चलता रहेगा। कुछ समय बहुत खर्चा करेगा, बहुत बातें करेगा, गुस्सा भी कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, फिर कभी ना कभी उसे डिप्रेशन भी आता है, थोड़ा समय वो उसकी भी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इसके कारण प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, तब ठीक से इलाज हो सकता है।
1: तो यहाँ तो अभी हम 3 तरह के जो डिप्रेशन की आपने बात की, रिएक्टिव डिप्रेशन और आपने
3: एंडोजेनस
1: डिप्रेशन,
3: साइकोटिक डिप्रेशन।
1: एंडोजेनस डिप्रेशन में क्या था, रिएक्टिव तो ये था कि किसी
3: रिएक्शन
1: कर रहे हैं।
3: एंडोजेनस डिप्रेशन में केमिकल का इंबैलेंस है, जीन्स के कारण हो सकता है, और भी कोई कारण पॉसिबल है कि बाहरी कोई परिस्थिति नहीं। व्यक्ति भी कहता है कि भी मुझे कोई ऐसे विचार भी नहीं आए, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक मैं डिप्रेस्ड हो गया। वह संभव है कि उसे वह एंडोजिनस डिप्रेशन हो।
1: एंड देन थर्ड इज
3: साइकोटिक
1: डिप्रेशन,
3: जिसमें पागलपन भी है डिप्रेशन,
1: और फिर मेजर कहीं ना कहीं साइकियाट्रिक प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। कैन वी help these kind of, when we've talked about real 3 depressions, major depressions, jinme kahin na kahin chemical changes bhi hain, kya hum self counseling ya jo pura process,
2: dono aspects sath sath chalenge na, medication, psychotherapy jo kar rahe hain, and meditation,
1: khud apne aap
3: aisa kahenge, first 2 hai, while self counseling can help reactive depression में भी हो, endogenous depression में भी होगा,
2: psychotic,
3: लेकिन psychotic depression में नहीं होगा। even मैं तो कहता हूँ psychotic

0: वाले मेरे पीछे लगे हैं, ऐसे भी लोग तो सच मान लेते हैं कि भी सचमुच ऐसा हुआ होगा, बट लेकिन उसका वह डिल्यूजन है। ये भी हो सकता है कि मैं कृष्णा हूँ, मैं भगवान हूँ, तो इसके कारण ये जो इस प्रकार का साइकोटिक डिप्रेशन, उसमें मेडिटेशन नहीं सिखाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, पिछली बार हमने बात की थी जो मेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, यू नो, जो लक्षण दिखने लगते हैं, तो कुछ फिजिकल लक्षण भी होते हैं जब डिप्रेशन हो रहा होता है?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा ये प्रश्न है और ये जानना चाहिए सचमुच। ये तकलीफ भी हो रही है क्योंकि फैमिली फिजिशियन के पास जो जाने वाले लोग है उसमें भी 30-40% को डिप्रेशन है। इवन एमडी फिजिशियन के पास जो जाने वाले लोग है कहेंगे पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं तकलीफ है, लेकिन एक्चुअली उन्हें डिप्रेशन है। स्टडी भी हुई है, प्रॉपर कहीं टेस्ट आती है साइकोलॉजी में, जैसे क्रोशाक टेस्ट है, 16PF की, ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट्स है जिसके द्वारा हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट होती है ऐसे ही ये साइकोलॉजिकल टूल्स है। वह जो फिजिशियन के पास जा रहे थे लोग, उन लोगों को ये साइकोलॉजिकल टूल्स दिए गए और पता चला कि बड़ी संख्या में 25-30% पेशेंट्स हु आर विजिटिंग अ एमडी फिजिशियन आर एक्चुअली डिप्रेस्ड।
1: ओहो, तो मतलब ये फिजिकल एलिमेंट्स की जो बात कर रहे हैं आप, दे कैन बी ड्यू टू डिप्रेशन,
0: दे आर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। नहीं, वो डिप्रेशन का एक पार्ट है।
1: ओके,
0: उन्हें वो फिजिकल सिम्टम्स भी हो रहे, भी पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और कोई तकलीफ है, लेकिन साथ साथ में डिप्रेशन भी है।
1: तो अगर
0: जो फिजिशियन को समझ में नहीं आता है,
1: डिप्रेशन दूर कर पाएंगे तो क्या वो सिम्टम्स
0: भी ठीक हो जाए? हाँ, अगर डिप्रेशन आपने दूर कर दिया तो वह जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, या तो उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी रिलीफ कर देंगे।
1: तो फिर सबसे पहली चीज यही है कि सेल्फ रियलाइजेशन की डिप्रेशन है।
2: नहीं, बीच में आपको याद हो कि आया था कि बहुत सारे स्कूल के बच्चों को
1: पेट में दर्द
2: होने लगा है और उसमें अल्ट्रासाउंड भी कराया, सारे डायग्नोस भी कराए, लेकिन कुछ फिजिकल एलिमेंट ही नहीं निकल गया, लेकिन फिर भी वो दर्द नहीं ठीक हो रहा, तो देन इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। लेकिन हम लोग दूसरे एस्पेक्ट पर इतना ध्यान देते हैं ना, एक्सटर्नल, तो इंटरनल एस्पेक्ट पर न ध्यान देने के कारण उसको जड़ से उस प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर पाते।
0: फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिजीज आर इंटरलिंक्ड। जैसे ना हाइपोथायरॉयडिज्म एक तकलीफ है जिसमें थायराइड का लेवल कम है, इट कैन बी लिंक्ड विद डिप्रेशन। Either way is possible.
1: Depression can lead to hypothyroidism.
0: Hypothyroidism also can cause depressive symptoms.
1: Because it will be second one, second जो chemical change हो रहा है।
0: Chemical ये even hypothyroid के symptoms भी ऐसे ही है।
1: अच्छा।
0: Lack of energy, कुछ कम करने का नहीं होगा मन, even reflexes are very slow. तो वो दोनों चीजें interlinked हो सकती।
1: और आपने कहा कि जो पहले दो तरह के, जैसे रिएक्टिव डिप्रेशन और जो दूसरे डिप्रेशन की आपने बात की जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें हम सेल्फ काउंसलिंग से दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली एम जब हम उसकी तरफ पहुंचते हैं, जब भी इस कार्यक्रम में भी बात कर रहे हैं, कि मकसद हमारा यही है कि हम सोल्यूशंस जरूर तलाशें। और सोल्यूशंस अगर हम खुद की पहचान के दौरान ही तलाश लें, जो सफर पे हम हैं, तो क्या हैं वो सोल्यूशंस,
0: जो सेल्फ काउंसिलिंग के सॉल्यूशन? अच्छा, एक तो कि भी सेल्फ काउंसिलिंग से, या तो कहेंगे कि मेडिटेशन से, आप अपने आप को सही रूप से पहचान पाते, अपने सिम्टम्स को जो है, तो अधिकतर व्यक्ति अपने सिम्टम्स को ही पहचान नहीं पाता है। और अगर आप अपने सिम्टम्स को ठीक से पहचानने लगे तो थोड़ा भी डिप्रेशन शुरू होगा पता चल जाएगा, और फिर उसके लिए कोई कदम उठाना भी संभव है। आमतौर पर जब काफी डिप्रेशन बढ़ जाए तभी व्यक्ति को पता चलता है।
1: कॉन्स्टेंटली उस स्टेट में रह पाना सिस्टर शिवानी, कि कुछ देर के लिए तो मैं खुद से बातचीत करके अपने आप को उस स्टेट से बाहर ला सकती हूँ, लेकिन कई बार फिर ये लगने लग जाता है कि क्या मैं झूठ तो, मतलब मैं क्या जिंदगी जी रही हूँ? ये बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल अब मन में आता है, जब when we've been talking about कि अपने आप से बात की जाए, सेल्फ काउंसलिंग की बात की जाए, कई बार क्योंकि सब चीजें बेमानी लग रही होती है तो खुद से बात करना भी बेमानी लगता है कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या चीज है। लेकिन कितनी देर तक वो उस स्टेट में रह सकते हैं, क्योंकि हर लम्हा हर क्षण उस स्टेट में रह पाना, जैसे हमने पहले बात की थी, दैट इज द यू नो द बेस्ट, लेकिन वो नहीं रहा जा सकता, नहीं रहा, अब ये भी कंडीशनिंग हो सकती है, लेकिन वो रह नहीं पा रहे हैं अभी आज के इस वक्त में नहीं है। तो कैसे हम अपने आप को हर पल समझा सकते हैं?
2: हर पल समझाना नहीं पड़ेगा एक्चुअली, ये सिर्फ एक शुरू में थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है। जैसे आज नेगेटिव सोचना या परेशान रहना ये बहुत नेचुरल हो गया है, उसी तरह खुश रहना बहुत नेचुरल होगा। इट्स नॉट दैट लाइफ लॉन्ग आप ये करते रहेंगे कि बार बार अपने आप को समझाना पड़ेगा, कुछ एक दिन के लिए या

0: कुछ एक मास के लिए कहें, ये एक जर्नी पे आप चलते हैं जहाँ परिस्थिति आती है, आप परेशान होते हैं, आप अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को उससे निकालते हैं, 2, 4, 8, 10 बार आप जब इस तरह से करते जाएंगे, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी, आप अपसेट होंगे, तुरंत आप कहेंगे नो इट्स इन माई कंट्रोल, चलो 5 मिनट्स एंड बैक. सो द टाइम ड्यूरेशन की हम कितनी देर वो डाउन,
1: 4 घंटे के बजाय हम,
0: इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. पहले वो 4 घंटे था, अब वो थोड़ा और कम होता जाएगा, एंड धीरे धीरे वी विल रीच अ स्टेज, कुछ बात आई, आप अपसेट हुए, क्विक आप वापस आ जाएंगे, एंड धीरे धीरे स्टेज आएगी कि आप अपसेट नहीं होंगे.
2: राज्योग में जो मेरा अपना अनुभव है कि इसमें स्पेशल बहुत बैठने की आवश्यकता नहीं है. कई बार और जो टेक्निक्स होती है जिसमें आपको स्पेशली बैठना पड़ता है, 20 मिनट ध्यान किया फिर शांत लगने लगा, राज्योग की विधि ऐसी है कि आप चलते फिरते भी कर सकते. जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परंतु भी मैंने ऐसे इंटरव्यू तो ढेर सारी दिए, नॉलेज इज देयर, मुझे भी सोचने की आवश्यकता नहीं है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. तो जब आपसे बात कर रहा हूँ तभी मैं ये अवेयरनेस ला सकता हूँ कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, नहीं आई एम पीसफुल और मैं आपको अपने विचार बता रहा हूँ. तो देन इवन व्हाइल टॉकिंग आई एम इन अ मेडिटेटिव स्टेज. मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं आप मेडिटेटिव स्टेज में हो सकते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं वो स्टेज आपकी बन सकती है. तो शिवानी बेन ने बिल्कुल राइट कहा कि वो जो रूट जब स्टार्ट हो रहा है देयर इटसेल्फ यू कैन कट इट ऑफ.
1: तो ये हमने पहले भी बात ये की थी कि ये जो पूरा अवेयरनेस है ये हम आज इतनी देर बाद आकर हम जानने की कोशिश करते हैं. द जर्नी शुड स्टार्ट फ्रॉम एट अ वेरी यंग स्टेज यू नो, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग थ्रू दैट डिफिकल्ट फेज ऑफ क्वेश्चनिंग यू नो, नॉट रियलाइजिंग. अगर वो 5वीं का बच्चा या 6वीं का बच्चा भी काउंसलर के पास जा रहा है, अगर ये अवेयरनेस उसके पास ही आ जाए वहां से, तो ये कितना जरूरी है, कहाँ कैसे किया जा सकता है.
0: जितना आजकल जैसे स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, लेकिन काउंसलर्स भी यही ध्यान रखें कि वो उस इंडिविजुअल को, उस बच्चे को इनर पर लेकर जाएं, यू नो, वो भी कहीं सल्यूशन आउटर ही ना देना शुरू कर दे कि एक ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इस तरह से बिहेव करो. नॉर्मली हम जो चेंज लाने की कोशिश करते हैं वो बिहेवियरल लेवल पर बहुत ज़्यादा होता है. आप इस तरह नहीं, आप अपने व्यवहार को परिवर्तन करो, सोच को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहेवियरल चेंज बहुत टेम्प्ररी होता है. फिर कोई और थोड़ी बड़ी परिस्थिति आ गई, अगेन द बिहेवियर विल चेंज. तो बिहेवियर विल कीप चेंजिंग, वो फ्लक्चुएशन से गुजरता ही जाएगा, लेकिन अगर एक परमानेंट बिहेवियर में चेंज लाना है तो द सोर्स को चेंज करना पड़ेगा, दैट विल बी द थॉट लेवल चेंज, जिससे एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा. फिर कोई भी बात आपको उस तरह के बिहेवियर पर लेकर नहीं जाएगी. सो द काउंसलर हैज़ टू टेक केयर कि यू आर चेंजिंग द एंटायर वे ऑफ थिंकिंग of the child, not just the behavior.
1: And that is what meditation is all about, actually.
2: That's all. I think still, like, jab ye to kehte hain panchvi, main to samajhta hu parents are best counselors. Aur bachcha 2 saal ka hai na tab hi start ho. It's not actual counseling. Kaha gaya bachchon ko dekha hai ki bhi bachche hai na teaching se nahi sikhte. They don't do what you say. They do what you do. एक बार मैं भी अपनी analysis कर रहा था कि ऐसे spiritual कैसे बने, you know what happened in life. Like my parents were not so spiritual. फिर भी एक ऐसे बात आई, तो जब सोचते तो मुझे पता चला कि जब हम छोटे थे तो मेरे नाना, हम गांव जाते थे, गुजरात में एक छोटा सा गांव है, वैकेशन में 2-2.5 मास जाते थे, और मेरे जो नाना थे वो 2-3 घंटे तक कुछ पूजा पाठ अपना करते थे, हम लोग भी साथ में बैठ करके एवरीथिंग वी यूज टू डू. And I thought that must be the seed.
1: Somewhere deep within
2: raha. वो seed था सचमुच कि जो आगे चल करके वो सचमुच full blown phase में आया. तो parents को भी यही करना है.
1: बिल्कुल.
2: Parents गलती ये करते हैं. हमारे पास भी कहते हैं कि बच्चों को ले जाओ center पे. हमको नहीं आना है. And unless you do, children will never
0: will
2: practice
0: do.
2: that.
0: Yes. And it won't have its effect also.
2: As well.
0: Because then you are creating a wrong thought pattern. So agar aap bachcho ko right thought pattern create, you know, sikha bhi rahe hain, unless aap khud practice kar rahe hain, वो जो संस्कार है वो चेंज नहीं होंगे.
1: वो बच्चा तो फिर अपनी सही बात बोले लग जाएगा.
0: एक्चुअली बहुत ज्यादा बच्चे का थॉट पैटर्न हम ही बनाते हैं. यू नो, इवन ये कहना वहां मत जाना, वहां भूत है, ये फियर क्रिएट करना, ये हमने ही तो क्रिएट किया. बच्चा चल रहा है, इतना छोटा सा, उसको टेबल लग गई. अब बच्चे को समझाने की बजाय कि आपकी गलती थी, हम टेबल को मार देते हैं. दिस इज ब्लेम कल्चर. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर टॉट इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, it was the table's fault. So they're very small, small things. Lekin ye sare thought patterns hum chote se unke andar dal rahe hain. Instead, you know, राइट सोर्स, क्योंकि इजी वे आउट, बजाय कोई समझाना कि बाहर अंधेरा है या क्या, नहीं बाहर भूत है, बाहर मत जाना, तो इजी वे आउट विल नॉट वर्क.
1: भूत आ जाएगा, यू नो, सो जाओ और इस तरह से सुलाने के लिए
0: तो ये
1: दूध पी लो, ये इस तरह से, यस डेफिनेटली,
0: ये सारी छोटी छोटी चीजें जो लॉन्ग टर्म में हमारे थॉट पैटर्न को फिर डिटरमिन कर देंगे.
1: हाँ, और कहीं ना कहीं जब फिर वो जो अचीवमेंट की बात है, एक अगेन अनदर टाइप ऑफ डिप्रेशन. एक्चुअली अभी तो हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन इस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी. अचीवर्स, जो अचीव करने की एक लालसा कि मुझे वहीं पहुंचना है और नहीं पहुंच पाते, वो जो डिप्रेशन है, चाहे वो पीयर प्रेशर से है, जो जो सुसाइड्स इतनी ज्यादा रिजल्ट्स को लेके होती हैं कि मेरे में कैपेसिटी है या नहीं, मुझ में क्षमता है या नहीं, लेकिन अचीव वो करना है, वो जो मेजर डिप्रेशन जिसे आज का यूथ जो है वो बहुत ज्यादा रूबरू हो रहा है. अगली बार हम पूरे, हमारे पास बहुत से ईमेल्स भी आए हैं सर शिवानी, उन पे बात करेंगे. और ये कि वो अचीव अगर नहीं कर पाए तो उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है. डॉक्टर गिरीश पटेल, आज कार्यक्रम में आप शामिल हुए, थैंक यू सो मच. एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. इसी के साथ वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत में जो बात सामने आई वो ये कि डिप्रेशन के कई फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं. तो ज़रूरत ये है कि ना सिर्फ हमारे मन में क्या चल रहा है, बल्कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमारे फिजिकल सिम्टम्स क्या कह रहे हैं, क्या हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए. और वहीं एक पॉज लेकर, एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से बात करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, तुझे क्या चाहिए जिंदगी. ये हर बार हम कहते हैं, तो उस जिंदगी को तलाशना है, अपने अंदर की इस जर्नी, इस सफर को तय करना है और ये जानना है कि किस तरह से एक बेहतर, ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बाहरी जिंदगी को भी हम जी पाएंगे. आपके पास भी जरूर कोई ना कोई सवाल होगा, तो आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है ओम शांति स्टूडियो @gmail.com.

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 6 अगस्त 2026 आज का तारीख है। भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा 1948 15 गते 21 श्रावण गुरुवार आज है। विक्रम संवत 2083 श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार भरनी आज है। इस्लामी हिजरी 1448 22 सफर जुमेरात बुतेन आज है। इसके साथ ही हिरोशिमा दिवस है और साथ ही साथ कुछ खास लोगों का जन्मदिन है जिनके बारे में हम आगे बात करते हैं। और आज सद्गुरुवार है तो सद्गुरुवार की आपको मंगल कामनाएं करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं सीधे आपको शांतिवन के प्रांगण में ले जाता हूं, जहां पर विशेष भोग लग रहा है परमात्मा को, तो हम भी एंजॉय करते हैं, है ना। और आप भी एंजॉय करें, उसके बाद फिर हम बातें करेंगे खास। और सुनते रहो मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और सदगुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए, आप शांतिवन के प्रांगण की विशेष जो है भोग का समय चल रहा था, जो ये गीत बज रहा था तो आपने भी एंजॉय किया होगा। आइए इस खूबसूरत शमा को और सुंदर बना देते हैं और इस आत्मीय योग अग्नि को और प्रज्वलित करते हैं। चलिए बात करते हैं, जैसे ही हम लोग योग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, गीत के माध्यम से या फिर संवाद के माध्यम से भी, अफर्मेशन थॉट्स के माध्यम से भी योग का एक अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें मन हमारा जो है शांत रहकर, अगर हम सिर्फ म्यूज़िक तरह एकाग्र हो जाए तो भी मन जो है हमारा ईश्वर के साथ जुड़ने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिल जाता है। इसके साथ में अगर हम किसी अफर्मेशन को सुनते हैं, यानी कुछ संवाद सुनते हैं जो हल्के फुल्के और आत्मीयता के मार्गदर्शन करने वाले, तो वो भी हमें जो है परमात्मा से मिलन बनाने का या आत्मानुभूति का बहुत अच्छा एक माध्यम बन जाते हैं। तो आप देखिए, जो जो माध्यम आपको अच्छा लगता है उस माध्यम का प्रयोग करें, उस माध्यम का आनंद उठाएं और इस तरह से आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से, आत्मा को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो आइए, 6 अगस्त आज है तो हिरोशिमा दिवस भी आज है। ये वो दिन है जहाँ पर हम सभी के लिए दुख और ब्लैक समय की बात कह सकते हैं, जिसमें अमेरिका ने 6 अगस्त को 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा नगर पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम का प्रयोग किया था, यानी गिराया था। इस बम के फटने से 13 वर्ग किलोमीटर में तबाही मच गई थी और हिरोशिमा की 3.5 लाख की आबादी में से 1,40,000 लोग एक झटके में ही ख़त्म हो गए। तो ये सब सैनिक नहीं थे, इसमें से अधिकांश साधारण नागरिक, बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां थीं। इसके बाद भी अनेक वर्षों तक अनगिनत लोग यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कुछ कारणवश उनके जो है किसी न किसी रूप में मरते रहे। अमेरिका इतने पर भी नहीं रुका, उसे एक और अन्य प्रयोग के बम के प्रभावों को अभी और अजमाना था। इसलिए इस अमानवीय विनाश के 3 दिन बाद 9 अगस्त को फैट मैन नामक यूरेनियम के बाद प्लैटिनियम बम नागासाकी पर गिराया गया, जिसमें अनुमानित 75,000 लोग विस्फोट व गर्मी के कारण मारे गए। इनमें भी अधिकांश निरीह नागरिक थे। और हिरोशिमा के 6 अगस्त 1945 तक जापान के एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता था और दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान सेना की 5वीं डिवीज़न का यह मुख्यालय भी था। यहाँ सैनिक छावनी भी थी और यहाँ सैनिक आपूर्ति मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ाव भी था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त से पूर्व ही इस नगर पर अमेरिका ने बमबारी नहीं की थी ताकि अनुभव से होने वाले नुकसान का सटीक आकलन किया जा सके। विश्व में पहली बार 6 अगस्त 1945 को जब ये शहर, इस पर लिटिल बॉय नामक अनुबम गिराया गया, तब जापान सरकार के राशन आपूर्ति के आंकड़ों के अनुसार शहर में कुल आबादी 2,55,000 थी, लेकिन इस शहर में लगातार सैनिक और सहायक मजदूर आना जाना इनका रहता था और गैर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नगर की तत्कालीन आबादी थी 3,81,000 के आसपास। तो अमेरिका की विमान कार्रवाई कमांडर कर्नल पॉल टिबेटस की कमान में 6 अगस्त को अमेरिकी सेना ने विमान एनोलाम B-29 ने दक्षिण प्रांत में वायु सैनिक अड्डे टीनियान से 2 अन्य B-29 विमानों के साथ उड़ान भरी और फिर विमानों का नाम एनोलोगे उसके पायलट पॉल टिबेट्स की मां के नाम पर रखा गया था। 7 उड़ान भरने वाले विमानों में एक का नाम था प्रेड आर्टिस्ट। अनुभव का प्रभाव नापने वाले यंत्रों उपकरणों से सुसज्जित विमान को मेजर चार्ल्स सीनी उड़ा रहे थे और दूसरे अनाम विमान बाद में, जिसका नाम नेसरी इलिविया रखा गया था, दुनिया को अनुभव की संवरक क्षमता और अमेरिकी व्यक्ति के प्रमाण जुटाने के लिए उच्च क्षमता के कैमरा लगे हुए थे। इसके पायलट थे कप्तान जॉर्ज मैड्रिक टीनियान।
उड़ान भरने के बाद तीनों विमानों ने जापान की वायु सीमा में प्रवेश किया और उस वक्त विमान 8000 फीट की ऊंचाई से उड़ रहे थे और हिरोशिमा के पास पहुंचकर विमान की ऊंचाई 32,300 फीट हो गई। उड़ान के दौरान जल सेना और कैप्टन विलियन पेल्टन के विभाग में लिटिल बॉय को फिट किया गया और लक्ष्य पर साधने के 30 मिनट पूर्व उनके सहायक सेकंड लेफ्टिनेंट टैनट मॉरिस जापनिस ने उस अनुभव पर लगे सुरक्षा उपकरणों को हटाकर उसे सक्रिय कर दिया। तो ये कुछ खास बातें थी, इसीलिए हिरोशिमा में या जापानी लोगों के लिए ये दिन ब्लैक डे के रूप में है, क्योंकि वहाँ पर ये ऐसा एक प्रयोग किया गया था अमेरिका के द्वारा जो यूरेनियम से लेस बम को गिराया गया था, जिसके कारण वहाँ की आबादी ख़त्म तो हुई लेकिन सालों तक उसका असर भी बना रहा। तो ये भी एक विशेष बात थी। तो इसको मापने के प्रयोग से ये किया गया था, लेकिन अमानवीय जो बात थी वो आज भी अमेरिका के लिए और जापान के लिए एक मुश्किल खड़ी है। तो ऐसे में किसी चीज़ को प्रयोग करने के लिए आप मानवों को बीच में लाना अच्छा नहीं होता। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत सद्गुरुवार के इस दिन को यादगार बनाता हुआ। ये खूबसूरत गीत आपके लिए अभी सदगुरु मैं तेरी पतंग आपके नाम अभी सुनते रहो मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, सदगुरु की महिमा वाला। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं और गुरुवार का ये खूबसूरत समय जो है आपके लिए बहुत ही यादगार हो सकता है अगर आपने इसको गहराई से अनुभव कर लिया हो, है ना। तो आइए गुरु सिंह ढिल्लो के बारे में बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। और ऐसा बताया जाता है भारत के पांचवें लोकसभा अध्यक्ष थे जीएस ढिल्लो, नाम से भी प्रसिद्ध है गुरु दयाल सिंह ढिल्लो। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने कानून से लेकर पत्रकारिता तक, शिक्षा और खेलकूद से लेकर संवैधानिक अध्ययन में रुचि। सिद्धांतों से समझौता करना उन्हें कोई कतई पसंद नहीं था और उनके लिए सांसद लोकतंत्र का मंदिर था और इसलिए सभा और इसकी परंपराओं पर परिपाटियों के प्रति उनके मन में अत्यधिक सम्मान भी रहता था। उनमें सभा की मान स्थिति को पल भर में भापने की अद्भुत क्षमता थी और उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक हुआ करता था। इन्हीं गुणों के कारण वे अध्यक्ष पद के गुरुत्व दायित्व का निर्वहन गौरवशाली तरीके से कर पाए और अंतर संसदीय संघ की अंतर संसदीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में ढिल्लो का चुनाव न केवल उनके लिए बल्कि भारत की पूरी जनता तथा भारतीय संसद के लिए बहुत सम्मान की बात बनी हुई थी। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना, कबीर के दोहे आप सुन रहे थे और बड़ा ही आनंदित होकर आप इस बात को समझ रहे थे, निश्चित तौर पे आपको अच्छा लग रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए ध्यान खिंचवाना चाहूँगा इस पंक्ति पर।

0: जी, लेकिन फिर भी इच्छा है।
1: हाँ जी, नमस्कार, ओम शांति सुरेश जी, बोलिए, कैसे हैं?
0: ओम शांति, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
1: बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
0: बस अच्छे हैं, आज सब गुरुवार है, बाबा का वार है, अच्छे गुरु के गाने भी सुन रहे हैं, आपने अच्छे अच्छे गाने सुना दिए। तो चलो, हमारा भी एक गाना है, गुजराती गाना है जो हेमंत चौहान की आवाज में है, की यातलो संदेश हमारा गुरु जी ने कह जो सेवक बनी ने रुदिया मरे जोरे, तो गुरु जी का गाना है। सुना देना सर हमारे सभी मित्रों को, आपको आज के दिन की शुभकामनाएं, सबको गुरु की कृपा बनी रहे। और अभी बारिश तो नहीं है, रुक गई है, सही है, क्योंकि अभी बारिश रुकेगी तो कोई किसान भाई काम करेगा खेत में, वरना तो

0: उसे कोई उगा सकता है खेत में। फिर भी बोल रहे हैं हवामान खाता वाले के 8 तारीख को अभी बारिश आने वाली है, तो कोई बात नहीं आने दो तो सही है, आना आएगे तो कौन रोकेगा, रोकने वाला तो कोई है नहीं।
1: स्वागत है उनका, है ना
0: जी? हाँ स्वागत है, आएंगे तो स्वागत है। नमस्ते
1: नमस्ते जी, नमस्ते, ओम शांति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे सुरेश जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और सुरेश जी जहाँ रहते हैं जोटाना में, वहाँ पर बारिश का कोई वो नहीं है, बारिश नहीं है, लेकिन कुछ इलाके में बारिश काफ़ी हुए है गुजरात में। बाढ़ की सिचुएशन है जो वडोदरा सूरत की तरफ में, तो धीरे धीरे वह भी नॉर्मल हो रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश वाला गुरुजी का अभी सुनते हैं हेमंत चौहान की आवाज़ में आपके लिए।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए धीरे धीरे हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और बड़ा ही प्यारा सा गीत सदगुरुवार का आप सुन रहे हैं। आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है। चलिए अब एक और शख्सियत के बारे में बातें करते हैं, उसके बाद फिर समाचारों की तरफ चलेंगे। आज राजेंद्र सिंह, इनका भी जन्मदिन है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले भारत के बहुत ही पॉपुलर पर्यावरण कार्यकर्ता रहे। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य करने के लिए पॉपुलर रहे। राजस्थान का अलवर जिला शुरू से ही एक सूखा इलाका माना जाता रहा, जहां पानी का दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी। उस दौर में पानी के जलाशय बनाकर उनमें वर्षों का पानी इकट्ठा करके उन्हें सुरक्षित रखना एक पारंपरिक तरीका था, जिससे पानी की मुश्किलों को दूर किया जाता था। इन जलाशयों को जोहाड़ कहा जाता था। विकास के दौर में खदानों और पहाड़ियों के तलेटी में जंगलों की कटाई के काम ने इन जोहाड़ों को लगभग ख़त्म कर दिया था। पुरुष ज़्यादातर शहर भाग गए और इलाका पानी के गंभीर संकट में आ गया। राजेंद्र सिंह ने इस संकट की स्थिति को बुनियादी तौर पर समझ कर उसे दूर करने की विचार बनाया और तरुण भारत संघ की स्थापना की, जिसमें स्वयंसेवी युवकों ने फिर से परंपरागत जोहाड़ों की वापसी की, जिससे पानी की समस्या का काफ़ी हद तक हल हो गया। राजेंद्र सिंह ने इस काम को लिए 2001 में उन्होंने इनको खास रेमन में इसके पुरस्कार प्रदान किया गया। और राजेंद्र सिंह का जन्म आज ही के दिन 6 अगस्त 1959 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के डौला नामक गांव में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे और उनके पास एक पहाड़ की जमीन पर खेती की व्यवस्था थी, जहां वो गन्ना, धान और गेहूं आदि फसलें उगाते थे। राजेंद्र का बचपन वहीं पशुओं के साथ खेलने कूदने में बीता। हाईस्कूल की पढ़ाई पास करने के बाद भारतीय कृषि कुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय से आयुर्विज्ञान में उन्होंने डिग्री हासिल की। उनका ये संशोधन बागपत उत्तर प्रदेश में स्थित था। इसके बाद राजेंद्र सिंह ने जनता की सेवा के भाव से गांव में प्रैक्टिकल करने का इरादा किया। साथ ही उन्होंने जयप्रकाश नारायण की पुकार पर राजनीति का जोश बढ़ा चढ़ा और वे छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के साथ जुड़ गए। छात्र बनने के लिए उन्होंने बड़ौदा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज में एमए हिंदी में प्रवेश ले लिया और एमए करते ही उनका 1980 में सरकारी नौकरी मिल गई उन्हें, जिसने उन्हें नेशनल सर्विस वॉलंटियर फॉर एजुकेशन बनाकर जयपुर भेज दिया गया और वहां पर उन्हें राजस्थान के दौसा ज़िले में प्रौढ़ शिक्षा का प्रोजेक्ट दिया गया। और इस बीच उन्हें पिता ने इनका विवाह भी कर दिया था और मीना उनकी पत्नी बनकर उनके साथ आ गई। राजेंद्र जी को ये खास जो काम है वो मज़ा नहीं आया और राजस्थान की स्थिति से भी धीरे धीरे परेशान भी हो रहे। पानी का संकट उन्हें चुनौती दे रहा था और 1981 में जब उनका विवाह हुआ, बस 1.5 बरस हुआ ही था, उन्होंने नौकरी छोड़ी, घर का सारा सामान बेचा, कुल 23,000 रुपये की पूंजी लेकर अपने कार्यक्षेत्र में उतर गए। उन्होंने ठान लिया कि वो पानी की समस्या का कुछ हल निकालेंगे। 8,000 रुपये बैंक में डालकर शेष पैसे उनके हाथ में इस काम के लिए उन्होंने लगाया और फिर तरुण भारत संघ की स्थापना की और इस संघ के माध्यम से उन्होंने गांव-गांव में जाकर लोगों को इकट्ठा करके और साथ ही साथ उनको पानी की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनका सलूशन क्या है वो बताते रहे और इस तरह से दोहरे संघर्ष की शुरुआत हुई और फिर कार्य में उनको लास्ट में सफलता मिली और सफलता के बाद फिर उनको कई पुरस्कार सम्मान मिलते गए और लोग उनके साथ जुड़ते गए। तो ये थी कहानी राजेंद्र सिंह की, तरुण भारत संघ के विशेष प्रेसिडेंट। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है समाचारों का। मैं अभी आपको सीधे ले चलता हूँ समाचारों की तरफ और उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
2: India is proud to be one of Africa's
3: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रूपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
4: इस संभावित समझौते से हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
5: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। 3 जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
6: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 2400 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों का जो है बंच के साथ मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे आज के दिन विशेष के बारे में, तो 6 अगस्त 2026 को जन्मे उन लोगों के बारे में बातें कर रहे थे जिनका आज जन्मदिन है। तो KM चंदी के बारे में बातें आप करते हैं, इनका भी जन्मदिन है। और भारतीय सेनानी तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रहे हैं। राजनीति में 17 वर्षों की उम्र से ही हिस्सा लेना शुरू कर दिया था KM चंदी ने, और फिर 12वीं कक्षा के छात्र थे उस समय जब इन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया। और 1946 में जब M चंदी मिंचिल तालुका कमेटी के सचिव बने तब उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का और प्रबंधन देने का अवसर मिला। वे आज़ाद संग्राम में भाग लेते रहे और चंदी ने पलाई में सेंट थॉमस कॉलेज की स्थापना में विशेष योगदान किया और कॉलेज में उन्होंने 1950 में अध्ययन कार्य भी शुरू किया और 15 मई 1982 को M चंदी पंडिचेरी के उप राज्यपाल बने और 6 अगस्त 1983 को गुजरात के राज्यपाल बनाए गए और बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद इन्हें मिला और 19 मई 1984 को इन्होंने वो ग्रहण किया। तो अगर बात करें M चंदी के बारे में तो इनका जन्म आज ही के दिन 1921 को केरल के कोट्टायम जिले के पलाई नामक नगर में हुआ। अपनी शुरुआती शिक्षा वहीं पर उन्होंने किया और उसके बाद महाविद्यालय के लिए उच्च शिक्षा चंगनाचेरी नाम के एक गांव में गवर्नमेंट आर्ट ऑफ कॉलेज में इन्होंने त्रिवेंद्रम में शिक्षा प्राप्त की और इस तरह से शिक्षा पूरी होने के बाद सीधे पॉलिटिकल लीडर बन गए। राजनीति का सफ़र इनका शुरू हुआ। तो ये थी कुछ ख़ास बातें आपके लिए M चंदी के बारे में। आइए एक और खूबसूरत सा गीत आपको सुनाते हैं। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

कुछ भी हो औरत। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बाबी इस एल्बम का महमूद रफी साहब की आवाज में ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे अभी। चलिए इसी के साथ यम चंडी के बारे में बातें कर रहे थे। यम चंडी के जीवन में जैसे ही राजनीति का उनका राजनीति में आना हुआ, फिर उसके बाद कई आंदोलन और फिर प्रतिबंधन और तथा गिरफ्तारी, इस तरह की चीज़ें उनके साथ घटती गई। लेकिन इन सभी को समझते हुए उन्होंने इन सभी के साथ अच्छी तरह से मैनेज किया। त्रिवेंद्रम में अध्ययन के दौरान उन्होंने प्रख्यात गांधीवादी जी रामचंद्र जी के नेतृत्व में टैगोर अकादमी में गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। विद्यार्थियों तथा युवाओं के माध्यम से राष्ट्रवादी आंदोलन को सक्रिय करने के कारण इस अकादमी को 1941 में प्रतिबंध कर दिया और 1946 में जब वे एन चंडी मीनाचिल का तालुका कमेटी के सचिव बने, तब उन्होंने इसमें भाग लिया और प्रतिबंधित कर दिया गया इस विद्यालय को। फिर से उन्होंने आज़ाद किया और उसके ऊपर काम किया। तो ये थी कुछ खास बातें इनकी, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और बड़ा प्यारा प्यारा गीत आप सुन रहे थे और इसी के साथ आइए मैं आपको ले चलता हूँ। यम चंडी जो है इस तरह से कार्य करते हुए विधायक बने और विधायक के बाद अध्यापन का कार्य उन्होंने सेंट थॉमस कॉलेज की स्थापना करके बच्चों के लिए अध्यापन कार्य शुरू किया और उनका योगदान विशेष रूप से केरल तथा कोचीन के विश्वविद्यालयों को स्थापित करने में काफ़ी काम किया उन्होंने और श्रमिकों का संगठन बनाकर उनको एक राह दिखाया और अन्य पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने लघु उद्योग पर, रबर उद्योग पर काफ़ी काम किया और उसके बाद कुछ विदेश यात्राएं भी उन्होंने की। कृषक समस्याओं के लिए संघर्ष भी किया उन्होंने और इस तरह से एक कृषक परिवार के होने के कारण चंडी कृषकों की समस्याओं से गहरी रुचि लिया करते थे और उन्हें विशेष रूप से निदान करने के लिए काफ़ी संघर्ष भी उन्होंने किया। इस बीच उनके प्रतिनिधि जो है कुछ लोगों को उन्होंने नियुक्त किया इस समस्याओं से निपटाने के लिए और वो काम भी उनका चलता रहा और फिर बाद में प्रोफेसर एम के चंडी 7 सितंबर 1998 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये थी कुछ खास बातें एम चंडी जी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार। भाई सुबह से कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था।
0: अच्छा, तो अभी आ गया नेटवर्क।
1: चलो बात कर, चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत निकल गया गुरु भजन पे। अब तो जन्मदिन के दिन आ गए, भरद्वाज का आज भरद्वाज का जन्मदिन है। सपने में कूड़ी मिलती है, सपने में कूड़ी मिलती है, वो गाना है उसका भरद्वाज का। इसको भी सुना देना सर, टाइम मिले तो। और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपको भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गुड़ीलाल जी, सपने में कुड़ी मिलती है ये गाना सुनना चाहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ और अगर गाना मिल जाता है तो कोशिश करेंगे, है ना। और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे एम चंडी के बारे में और अब बात करते हैं आज के दिन जन्म में उन लोगों के बारे में और आज के दिन की कुछ खास बातें आपसे शेयर करूंगा। 6 अगस्त की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर एक नज़र। तो 6 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालें तो 1914 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया द्वारा रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा हुई और 1945 में आज के दिन जापानी नगर हिरोशिमा पर अमेरिका ने पहला परमाणु गिराया। 2001 में आज के दिन भारत व ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक समझौता हुआ और 2002 में भारत और पाकिस्तान में तनाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों को वापस बुलाया। 2004 में आज के दिन 2000 में फिजी के प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के खिलाफ तख्ता पलट के मामले में उपराष्ट्रपति जोपो सेनेलेलियो को 4 वर्ष की जेल हुई। 2005 में आज के दिन दोनों देश सीमा पर साझा गश्त तेज करने पर हम सहमत और 2007 में तैनात में एक पुराने हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हंगरी के वैज्ञानिकों ने लगभग 80 लाख साल पुराने देवदार के वृक्ष का जीवाश्म प्राप्त करने का दावा किया और 2008 में आज के दिन सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड को आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में 880 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल बॉयलर लगाने का ऑर्डर मिला जो श्रेणी का पहला ऑर्डर है और बंगाल सरकार ने टाटा समूह को सिंगापुर से संयंत्र नहीं हटाने पर राजी किया और सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा पर प्रतिबंध हटाने के विरुद्ध फैसले पर रोक लगाई। तो ये थी कुछ खास बातें इतिहास के पन्नों से आपके लिए। बातचीत सुनते रहो, मुस्कराते रहो।
2: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कराते।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आपको फिर से एक बार स्वागत है और बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। गुड़ीलाल जी याद कर रहे थे इस गीत को। अब आइए आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। आप भी अपने यहाँ किसी का जन्मदिन हो तो ज़रूर बता सकते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा और खुशी होगी। तो आइए कुछ खास जन्मदिन और जिनका खास कुछ लोगों का हो, एक्टर्स वगैरह, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, नई किरण है इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। और

तो 1959 में आज ही के दिन भारत के बहुत ही पॉपुलर पर्यावरण कार्यकर्ता जिनका नाम था राजेंद्र सिंह, और ये राजस्थान में ही इन्होंने काम किया, और इसके पहले उनका जन्म तो वैसे यूपी में हुआ लेकिन उनका कार्यस्थल राजस्थान रहा। तो जिस तरह से उन्होंने पानी के

काम किया, आज भी उन्हें याद करते हैं। तरुण भारत इस संस्थान के माध्यम से उन्होंने काम किया। आइए इसके साथ ही भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री जिनका नाम है अविनाश दीक्षित, 1944 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। आज़ादी के दीवाने गुजरात और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल एम चंडी, 1921 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारत के पांचवें लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, 1915 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय क्रिकेटर ए जी कृपाल सिंह, 1933 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। अमेरिकी फिल्म निर्देशक एम नाइट शामलन, भारत के 1970 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। तो चलिए आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: हेलो जी,
1: आज कैसे
0: नमस्कार।
1: कार्य। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अरे नमस्कार है तो आपको, रेडियो मधुबन को, नवी किरण को और सभी शो को। कभी क्या बादल आते हैं तो आवाज जो नहीं आती सच हो जाता है पकड़ा जाए इसलिए वो बंदोबस्त इस काम में लगा रहता, कभी आएगा जब बात करेंगे करेंगे काम में वो मालूम नहीं पड़ता। तो आपको नमस्कार करते हैं, नवी किरण को और सभी शो थोड़े थोड़े सुने बहुत अच्छा लगे। और बस आज जिनका भी जन्मदिन है इनको हम रेडियो मधुबन और हमारे सभी सुनने वाले फैंस करते हैं ओम शांति और उनका बर्थडे अच्छे रहे। और बस गाते रहो मुस्कुराते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मिलाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मिलाते रहो। ये गाना आज सत गुरुवार है तो सत गुरुवार को सत्य सत्य नमन है, एक एक सेकेंड एक एक मिनट का उनका शुक्रिया करते हैं हम। ओम शांति।
0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं शाम 4 बजे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। हमें सभी से मिलजुल कर और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, न जाने कब बुलावा आ जाए, इसलिए सभी से प्यार से रहना है। और जी हाँ, आपको बहुत ही सुंदर टिप्स देने वाली हूँ कि इस पर बहुत ही सुंदर गहनों के ऊपर ही है, लेकिन कौन से गहने को हम आज चमकाएंगे वो आप आशियाना सुनेंगे तो जान जाएंगे। और जी हाँ, आज खुशनुमा जीवन की बात करने वाले हैं और आज बनाएंगे चोराफली। प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: रुक रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात। आज आपको बहुत ही सुंदर विचार देने वाली हूँ। वैसे तो आपको सुना चुकी हूँ कि भाई हमें सभी से मिलजुल करके प्रेम से रहना चाहिए। न जाने कब हमारा बुलावा आ जाए और इस दुनिया को छोड़ करके हमें जाना पड़े। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी कि एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। इसी दौरान उनका एक शिष्य जो स्वभाव से क्रोधी था उनके समक्ष था। शिष्य बोला, गुरुजी आप अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं, न तो आप किसी पर क्रोध करते हो न ही किसी को भला बुरा कहते हैं, कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे रहस्य के बारे में अवश्य जानता हूँ। शिष्य विस्मय से भर गया और बोला, वे क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तो गुरुजी बोले, तुम एक हफ्ते में ही मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले, कोई और कहता तो शिष्य को ये बात बुरी और मजाक लगती, लेकिन स्वयं संत तुकाराम जी के मुख से निकली बात को कोई कैसे भला टाल सकता है, काट सकता था। तो शिष्य उदास हो गया और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के वहाँ से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और अपने स्वभाव से उलट किसी पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, क्रोध नहीं करता। वह अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में बिताने लगा। वह उनके पास भी जाने लगा और प्रेम पूर्वक मिलने लगा, जिनको पहले वो नफरत करता था, दूरी बनाए रखता था, जिनसे उसने कभी अभद्रता भी की थी या गलत व्यवहार भी किया था। वह उनसे माफ़ी मांगता, हंसता बोलता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को हफ्ता पूरा होने को आया। इस पर शिष्य ने सोचा, चलो एक बार आखिरी बार गुरुजी के दर्शन करके आशीर्वाद ले लेना चाहिए। अब समय आ पहुंचा है इस दुनिया को छोड़ करके जाने का। वे गुरु के समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। इसके बाद गुरुजी बोले, ये बताओ कि तुम्हारे पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? शिष्य बोला, नहीं नहीं, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे, तो मैं भला कैसे सबसे नाराज हो सकता हूँ। मैं सबसे प्रेम से मिला, इतना ही नहीं मैंने जिन लोगों का दिल दुखाया था उनसे भी क्षमा मांगी। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, हाँ बस यही तो मेरे लिए ये तो मेरा कहना था भाई, तुम कहते हो ना कि मेरा व्यवहार अच्छा कैसे है, तो यही रहस्य है कि मैं सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहता हूँ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ, और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम जी ने उसे जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि हमें भी सभी से मिलजुल कर एवं प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। वास्तव में हमारे पास 7 दिन ही तो बचे हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 8वां दिन तो बना ही नहीं। आज से परिवर्तन शुरू करें, और अगर पेंसिल बनकर किसी की खुशियां न लिख सको तो रबर बनकर के किसी का दुख तो मिटा सकते हो ना। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर हम सभी गौर करेंगे। और आइए सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर टिप्स। मैंने आपको कहा कि गहने हैं, बर्तन है, आप चमका सकते हैं चांदी के, ठीक है भाई। दीपावली के काम चल रहे हैं तो ऐसे तो नहीं कि हम सिर्फ तांबा पीतल स्टील के बर्तन ही साफ करेंगे। हमारे मंदिर में मूर्तियां होती है चांदी की, घर में कुछ बर्तन भी होते हैं, ज्वेलरी भी होती है, उनको भी चमकाना पड़ता है ना। तो बहुत ही सुंदर आपको मैं टिप्स दे रही हूँ ताकि आप सोने के या जा करके नहीं चमकाए, अपने घर पर ही चमकाए। बहुत सारी बहनें क्या करती है, जैसे पायल काले पड़ जाते हैं, बिछिया काली पड़ जाती है या बर्तन काले पड़ जाते हैं, तो सोने की दुकान पर जा करके उनसे साफ करवाते हैं, इससे चांदी घिस जाती है। पता है आपको, आप करवा करके देखिएगा। बहुत सारी बहनों का फ़ोन आता है, हमारे पायल पतले हो गए, हमारे बर्तन पतले हो गए। तो भाई होंगे ना, थोड़ी बहुत चांदी तो निकाल ही देते होंगे, पतले पड़ जाते हैं इसका मतलब तो चांदी निकल जाती है। तो ऐसा क्यों करना है, अपने घर पर ही हम चमका सकते हैं ताकि हमारे बर्तन न तो पतले पड़े, न हमारे पायल पतले पड़े, ना ही घिसे, नए के नए पायल घिस जाते हैं और हमको क्या लगता है, अरे वाह जैसे कि आज ही खरीदे हो, ऐसे हो जाता है। तो क्यों ना हम घर पर ही ये सब कुछ आजमाएं। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप अपने चांदी के बर्तनों और गहनों को चमकदार बनाना चाहते हैं तो उन्हें हेयर कंडीशनर से भी साफ कर सकते हो, ठीक है। हेयर कंडीशनर से भी आप अपने चांदी के बर्तनों और गहनों को साफ कर सकते हो। अगर ये टिप्स नहीं आजमाना चाहते तो दूसरी भी आपको बता रही हूं कि टूथपेस्ट, सिर्फ इससे दांत ही साफ नहीं होते हैं, इससे फीके पड़ चुके चांदी के बर्तन भी आप चमका सकते हैं। ब्रश से अच्छी तरह घिस सकते हैं, नहीं तो ग्रीन कलर का बर्तन मांजने का जो स्क्रब आता है उससे भी आप अच्छी तरह घिस करके टूथपेस्ट लगा दीजिए और उस कुच्चे से आप अच्छी तरह घिसिए, एकदम चमक उठेंगे। फिर धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह, न तो हमारे बर्तन न हमारे गहने घिसे हैं और जैसे कि आज ही खरीदे हो, ऐसे चमकदार बन जाते हैं। अगर ये भी टिप्स नहीं आजमाना चाहते हो तो मैं और भी सुना रही हूँ आपको। नींबू और सोडा कैसे आप यूज़ करेंगे, अगर देखिए चांदी के बर्तन हो चाहे गहने हो, ठीक है, इसको चमकाने के लिए आप कुछ घंटों के लिए इन्हें नींबू और सोडा के घोल में छोड़ दीजिए, ठीक है, और इसके बाद आप बाहर ला करके अच्छी तरह इसको पोंछ लीजिए तो चांदी के बर्तन चमक उठेंगे। नींबू और सोडा का घोल बना दीजिए, घोल बना करके इसमें बर्तनों को थोड़ी देर, गहने हो चाहे बर्तन हो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें ही इस घोल में। उसके बाद आपको भले धुलाई कर लीजिए, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए, भले पहले थोड़ा सा रगड़िए स्वच्छ कपड़े से, फिर धुलाई करके फिर से पोंछ लीजिए, तो देखिए गहने हमारे चमक उठेंगे। और लास्ट आपको नुस्खा दे रही हूँ कि आप चाहे तो, हम घर में देखिए सर्फ तो यूज़ करते ही हैं, अलग अलग प्रकार के डिटर्जेंट होते हैं, कोई सा भी आप ले लीजिए और इस पानी में इसको डाल करके गर्म करिए, फिर चांदी के बर्तन या गहने इसमें डुबो करके रख दीजिए। कुछ देर डुबो के रखना है, उसके बाद निकाल करके ब्रश से हल्का हल्का रगड़िए, उसके बाद साफ पानी से धो करके पोंछ लीजिए तो भी चांदी के बर्तन हो या गहने हो साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे अच्छे हैं, आप चाहे तो आजमा सकते हो। और भाई ऐसे तो नहीं कि भाई चांदी के बर्तन के लिए हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो हम घर पर ही इस तरह साफ कर सकते हैं, न सोनी के यहाँ जाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्यों हम बैठे बिठाए अपनी चांदी को घिसवाएं। तो ये टिप्स तो आपको दी है, अब मैं आपको बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साधु संत और योगी हैं तब के और हम सभी हैं अब के, साधु संत और योगी ये है तब के और हम सभी है अब के, कैसे तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है। हमारे नंबर है 94 14 15 14 15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए पुनः सुनते एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: आज का विषय है कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, कहीं पे इशारा, कहीं पे निगाहें, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। आज हम चलिए इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं, कैसे बेटियों को समझाते थे पहले और कैसे बहुएं समझ जाती थी। आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। नंबर हमारे हैं 9414151415। हेलो
2: हेलो, जय माता दी, जय श्री हरि।
1: जी जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
2: आपका भी आशियाना प्रोग्राम के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: क्योंकि आप बोलते हो कि जब सुबह का समय खास होता है तो उत्साह आती है आपके पास।
1: अच्छा,
2: तो वैसे भी सुबह का समय फिर खास हो जाता है।
1: अच्छा, धन्यवाद।
2: और खास में फिर पास तो हो ही जाता है ना
1: जी।
2: और बस हमारे सभी सुनने चाहने वाले मेरे अजीत मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपको भी
1: जी।
2: और टॉपिक तो आप बहुत ही सुंदर लेके आए हो। सबसे पहले तो आपको एक धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने सुविचार भी बहुत ही सुंदर कहा।
1: थैंक यू।
2: क्योंकि किसी के साथ मिलजुल के रहना, क्योंकि ये जिंदगी छोटी है इसलिए
1: जी।
2: तो बहुत ही सुंदर, आपको जितना धन्यवाद बोले जितना कम है। और
1: अरे नहीं, नहीं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है।
2: बिल्कुल। और अभी का खुशनुमा जीवन की बात है जो आपने कल के प्रश्न के ऊपर लेके आए हो
1: जी,
2: तो बहुत ही सुंदर है। देखिए, पहले के जमाने में तो चलो बहुओं को दाज भी बोलते थे तो चलता था
1: जी,
2: बेटों के सामने भी बोलते थे तो चलता था, मगर आज के जमाने में मतलब 100 में से 10% तो अभी भी बहू मतलब सिंपल साधारण है। मतलब वो अपने कभी सास ससुर को कुछ मतलब सामने जवाब भी नहीं देंगे
1: जी,
2: मगर 90% कुछ महिलाएं ऐसी है कि आप उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने एक गाना भी बनाया था ना कि आजा आजा सासू माँ दुल्हन मेरे हाथों में।
1: जी जी जी।
2: तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आजकल की बहुओं को आप डायरेक्ट नहीं समझा सकते, नहीं तो घर में हंगामा शुरू हो जाएगा
1: जी।
2: और हंगामा शुरू हो गया ना तो बेटे आजकल क्या है, बेटे भी है ना शादी के बाद बहुओं पत्नियों की ज्यादा सुनते हैं
1: जी जी जी,
2: क्योंकि वो रोटी हाथ में लेती है ना तभी पत्नी की बात चालू हो जाती है
1: जी जी जी जी,
2: क्योंकि उनको भी पता है कि ये खाना खाते खाते तो कहीं नहीं जाएंगे, बात पूरी सुनेंगे
1: जी।
2: तो मतलब बेटी इस ये कलयुग है, और कलयुग में अगर आप बेटियों को समझाएंगे ना कि बेटा आपको भी ससुराल जाना है, ससुराल में ऐसे रहना है, कैसे ज्यादा नहीं करने हैं, ऐसे सबका कहना मानना है, वैसे करना है, तो वो इशारा शायद बहुए समझ सकती है और घर का माहौल भी खराब नहीं होगा
1: जी।
2: और मतलब सब ठीक भी हो सकता है
1: जी।
2: वो कहते हैं ना कि देखिए वो जो बुद्धिमान होता है उसको इशारा ही काफी है।
1: बहुत सुंदर।
2: और मूर्ख होते हैं ना उनको तो फिर आप कितना मतलब कहते हैं ना कि वो उनके सामने ढोल पीटने से कोई मतलब नहीं है
1: जी जी।
2: बहुत ग्राम में ढोल पीटोगे तो भी उनके कोई असर नहीं पड़ेगा
1: जी। सुरेश भाई बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है।
2: आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार
1: जी। तो आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है, जरूर आप जवाब दीजिएगा कि साधु संत और योगी है तब के और हम सभी है अब के, कैसे? तो जवाब जरूर दीजिएगा। और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है कि बेटी को समझाते हैं और बहुएं समझ जाती है, तो इस विषय पर भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के विषय में आप जुड़ सकते हो, आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। सुरेश भाई ने कहा है कि देखिए पहले बेटियों को समझाया जाता था और बहुएं समझ जाती थी, और बिल्कुल सही है। आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं, आज भी अगर घर में बेटियां हैं और बहू भी है और बहू कुछ गलत कर रही है तो हमेशा माँ अपनी बेटी को ही कहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि बेटियों को तो माताएं बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा और संस्कार देते हैं। फिर तो वो कहते हैं ना कि कुछ अपने भी संस्कार होते हैं जो अपने ससुराल में जाकर के वो प्रकट करते हैं, बाकी माता पिता अच्छी शिक्षा संस्कार ही दे करके विदा करते हैं। हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
3: बस मैं भी आज थोड़ी गड़बड़ हो गई है।
1: क्या हुआ?
3: सच में थोड़ा ये हो गया है, तो जुड़ा हूँ घर पे।
1: क्या हुआ, बुखार आ गया, क्या हुआ?
3: नहीं, कब्जियत थोड़ा हो गया है, थोड़ा पेट में गड़बड़ हो गई है।
1: जी जी जी जी जी जी
3: हाँ, तो घर पे ही हूँ, रेडियो सुन रहा हूँ
1: जी।
3: बहुत विषय भी आज का बहुत अच्छा है, और कल का भी जो बात थी वो आप बता रहे थे, तो मैं मेरी बात बताऊँ
1: जी
3: कि भाई अभी अभी हमारे एक बहू है बड़े बेटे की, तो मैं तो घर पे नहीं था, लेकिन मेरे घर से थोड़ा बोल गई
1: जी
3: भाई, बाहर पास में भजन मंडली है तो आप जल्दी जल्दी सब हम काम निपटा दे, लोग आएंगे तो बाहर का जो कपड़े धोने का काम है ऐसा वैसा
1: जी
3: कर दे, तो वो तो बोलने लगे मोबाइल पे बात बाद में बात करना ऐसा मेरे घर से बोल
1: जी।
3: तो वो बोले कि भाई उसने तो बहुत मचा दिए,
1: हंगामा खड़ा कर दिया
3: कि आप छुपा के घर में बस पिए रखते हो, ऐसा है तो ऐसा है, फ्रिज में दूध रखते हो तो छुपा के रखते हो। तो भाई फिर मैंने समझाया कि देखो ये बोले हैं तो सही बोले हैं, और फ्रिज में दूध रखते हैं तो कोई ताला फ्रिज को तो ताला तो नहीं लगाते
1: जी जी।
3: आपको ये इसका है अलग अलग रखते हैं, लेकिन आपको उसमें से लेना है तुझे
1: जी।
3: मैंने थोड़ा ये कर दिया, फिर मेरी बेटी आई तो बेटी ने ऐसा मैंने बेटी को बोला जो आप आज का विषय है, वो बोला कि आप तू कैसे ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, तेरे को तेरे ससुर और सास ने ऐसा मुझे खोल करके बताया था, तो तू ऐसा करते ऐसा करते डायरेक्टली मैंने
1: जी जी
3: थोड़ी बात मेरी बेटी को की, तो ये बहू भी है पास थी तो उसको समझ में आ गया ये सब बातें
1: जी।
3: तो ऐसा थोड़ा ये जरूरी है जी, डायरेक्टली शुभ बात
1: जी जी। बहुत सुंदर, देखिए आपका तो प्रैक्टिकल अनुभव है।
3: हाँ, प्रैक्टिकल अभी अभी हुआ था
1: जी जी। होता है घर में चार जने होंगे तो वो कहते हैं चार बर्तन भी आपस में टकराते हैं, तो चार जने होंगे तो उनके विचार अलग अलग होंगे जी।
3: लेकिन हमें बड़ों कैसे लेना है, इसको सुलत में कैसे ये करना है, वो एक करना पड़ेगा तुरंत जी, वरना तो ये हो जाएगा। कल तो मैं समझ में नहीं आया था, ये आपने बात बताई थी, लेकिन आज तो
1: जी जी
3: प्रैक्टिकल जो हुआ जो बताया
1: जी जी। बहुत सुंदर, आज के प्रश्न का जवाब देंगे?
3: जवाब तो थोड़ा विचार करके ऑफलाइन में देंगे।
1: ठीक है आभार आपका, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है कि भाई देखिए बेटियों को समझाएंगे तो बहुएं समझेगी, बाकी डायरेक्ट आप कहेंगे तो फिर तो तुत्तू मैं बढ़ेगी, इसलिए प्यार से बेटियों को ही समझाना है। वो भी कहते हैं कि शादी के बाद नहीं, शादी होने वाली होती है या कुंवारी होती है तब बेटियों को समझाते हैं, शादी के बाद तो उसके भी ससुराल का माहौल कैसा होता है, तो माता पिता अक्सर पूछते हैं कि अच्छा बेटा कैसे हैं, सभी कैसे हैं, क्या है। फिर भी अगर अपनी बेटी कुछ कहने लगे कि सास ऐसी है वैसी है, तो उसको शांत रखना है और बोलना है देखो जैसे भी है अब उन्हीं के साथ रहना है, और कोई बात नहीं वो ऐसे तो आप ऐसे रहिए, प्यार से रहिए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर इस तरह की शिक्षा हम देते हैं और हमारी बहुएं सुनती हैं तो उनके मन पर भी प्रभाव पड़ता है। और भी अधिक हम आपसे सुनेंगे, परंतु पहले सुनेंगे गीत। आज के प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा, इस विषय में अपनी राय भी व्यक्त करिएगा। नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। और आइए सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: पांच यूट्यूब वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: बेटी शान है घर की, बहू मान है घर की,

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका
1: हाँ
0: रेडियो मधुबन
1: नमस्कार।
0: में।
1: ठीक है, सक्सेना बोल रहा हूँ। मैं अभी बात कर रही थी, वो कट गया था।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में।
1: मैंने पहली बार जो मिला रहा हूँ, दूसरी बार मिला रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही
0: नहीं,
1: है।
0: हिचकिचाइए मत। देखिए रेडियो मधुबन पूरा एक परिवार है, आप बिंदास होकर के बात करिएगा।
1: नहीं, वो तो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे
0: जी
1: यहाँ नरोरा में कभी कभी आता है नेट से, कभी कभी चला जाता है। अभी 3-4 दिन तो बिल्कुल नहीं आया।
0: जी जी जी जी अच्छा
1: तो आज मैं घर पे हूँ तो मिल रहा है, लेकिन बाहर नहीं मिलता है ऐसे।
0: अच्छा घर पर अच्छी तरह आवाज आती है?
1: हाँ, आवाज सही आती है घर पर।
0: अरे वाह क्या बात है,
1: हाँ, तो
0: बाहर नहीं
1: मुझे बहुत
0: आती।
1: अच्छा प्रोग्राम लगता है आपका।
0: जी थैंक यू।
1: और ये पहले शुक्रवार को आता था, अब चेंज कर दिया है प्रोग्राम आशियाना वाला। अच्छा
0: नहीं तो सोम से शनिवार तक रोज आता है।
1: अच्छा तो मैंने
0: जी
1: पहले 1 साल पहले सुना था, तो वो शुक्रवार में या शनिवार को ऐसा आता था ही।
0: नहीं, ये सोम से
1: हाँ
0: शनिवार तक रोज रहता है, एक रविवार के सिवाय।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं अब आगे से भाग लूंगा इसमें।
0: जी जी जरूर। तो आइए, आप रेडियो मधुबन सुनते हैं तो इसके द्वारा आपके जीवन में कुछ बदलाव आए?
1: हाँ जी बिल्कुल आया है। अपने को विचार को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कमी है उनको दूर कर रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: अभी अभी आपका प्रवचन आ रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: जी तो आप क्या कहेंगे, आज के प्रश्न का जवाब देंगे?
1: अभी मेरे आज तो मेरे समझ में नहीं आया था, इसलिए देख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा सुन के तो
0: कोई बात नहीं, विषय तो बहुत
1: बताऊँ।
0: अच्छा है कि भाई बेटी को समझाओ तो बहू अपने आप समझ जाएगी, आप क्या कहेंगे?
1: हाँ, तो इसमें तो ये है कि अपने बच्चों को पहले समझाओ। जब अब ये तो बहू तो दूसरे घर से आती हैं, तो वो जो है हम अपने बच्चों को समझाएंगे तो वो भी समझेगी।
0: जी
1: हाँ नहीं, तो भी अपने बच्चों को समझाएंगे जब ही, तो दूसरा बच्चा समझेगा। अब हम उन्हें डायरेक्ट डांटेंगे तो उन्हें तो बुरा लगेगा कि
0: जी
1: अपने बच्चों की तो बताते नहीं है, हमारी बताते हैं।
0: जी
1: और मिलजुल कर रहेंगे तो और ही अच्छा है, दुख
0: जी
1: सुख में सब साथ रहे तो और अच्छी बात है।
0: मिलजुल कर रहना है, इसीलिए कहते हैं कि कुछ गलतियां छोटे करते हैं तो बड़ों को समझाना पड़ता है, परंतु
1: हाँ बिल्कुल।
0: डायरेक्ट नहीं समझा सकते। क्यों
1: हाँ है जी।
0: डायरेक्ट नहीं समझा सकते? आज का समय चेंज हो चुका
1: हाँ
0: है, डायरेक्ट समझाएंगे तो कोई सुनना पसंद नहीं करेंगे। कारण क्या
1: हाँ
0: इसके
1: वही।
0: पीछे?
1: हाँ हाँ तो ये
0: एक तरफ बहुएं कहती है कि हमें भी बेटी की तरह रखो, तो फिर
1: हाँ
0: बेटियों
1: जी
0: को तो हम डांट भी देते ना गलती पर,
1: हाँ।
0: फिर बहुओं को डायरेक्ट क्यों नहीं डांट सकते?
1: नहीं, अपना बच्चा समझेंगे तो उन्हें भी डांट सकते हैं, उनसे प्यार भी करेंगे तो उनके डांटने का भी अधिकार है,
0: जी
1: उनकी
0: बिल्कुल
1: बात हम मानेंगे तो उनको भी समझा सकते हैं और समझना चाहिए उनको भी।
0: जी
1: और जब भी परिवार चलता है, जब सब एक दूसरे का ख्याल रखें।
0: जी बिल्कुल बहुत सुंदर।
1: हाँ, और जब हम अब बहू को बेटी मानेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा
0: जी
1: ना।
0: बहू को बेटी माने और बेटी
1: हाँ
0: सास को माँ माने,
1: जब
0: तब
1: माँ
0: रिश्तों में
1: मानो।
0: मधुरता
1: हाँ
0: रहेगी।
1: हाँ जब भी मदद कर रहेगी।
0: जी
1: और अभी तक तो हमारे 5 साल हो गए, बहू आई है, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गलती होती है तो समझा देते हैं, वो समझ जाती है।
0: बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि जो भाग्यशाली होते हैं उनके ऐसी
1: हाँ
0: बहुएं
1: जी
0: आती है, और
1: हाँ
0: अक्सर आती
1: बिल्कुल।
0: है। ऐसा नहीं है कि सभी खराब है, देखिए सिक्के के दो पहलू है ना।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: जी
1: और बहू भी हमारी बहुत अच्छी है, और जैसा कहते हैं मान लेती है कहना। और 2-4 मिनट तो सभी नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर मिल जाते हैं आपस में।
0: जी जी वो तो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा तू तो मैं थोड़ी हो जाती है, लेकिन
1: हाँ
0: मन मुटाव नहीं होना चाहिए।
1: नहीं होना चाहिए, हम
0: जी
1: उसे समझा देते हैं, बेटा कोई गलती हो जाती है तो थोड़ा सा उस समय नहीं कहते हैं, थोड़ा बाद में उसको समझा देते हैं तो उसकी समझ में आ जाती है।
0: जी जी यही
1: और
0: तो
1: ऐसे ही मिलजुल कर सबको रहना चाहिए, ऐसे ही समाज में रहना चाहिए। किसी से गलती हो गई तो उसे उस समय ना कह के थोड़ी देर में कहो,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसकी समझ में आ जाती
0: जी बिल्कुल,
1: है।
0: बहुत
1: हाँ
0: सुंदर बात आपने कही है।
1: जी
0: और हाँ बार आपका
1: और
0: जी बोलिए बोलिए जी कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: नहीं कुछ नहीं, यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं जोड़ना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: अभी मौका मिलेगा कल फिर बात करूंगा मैं।
0: जरूर, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में और आशाना कार्यक्रम में। ठीक है, परिवार को भी जोड़ सकते हैं आप, बहन जी को भी जोड़ सकते हैं, बहू को भी जोड़ सकते हो।
1: हाँ बिल्कुल, मैं कराऊंगा। अभी पहले मैंने कि मैं थोड़ा सा बात करूँ, फिर आप अपने मिसेज से कहूंगा, बहू से कहूंगा।
0: जी जी, अंताक्षरी कार्यक्रम रहता है शनिवार के दिन, तो उस दिन कुछ न कुछ थीम रहती है, भले देशभक्ति गीत, भले पुराने पिक्चर्स के गीत, आध्यात्मिक गीत, अलग अलग थीम रखते हैं, तो उस थीम पर भी भाग ले सकते हैं। बहन जी है, आपके बहू है, आप स्वयं।
1: ठीक
0: है जी, बहुत बहुत आभार आपका।
1: धन्यवाद, नमस्ते
0: जी। नमस्ते।

0: वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो?
1: जी जी जी थोड़ा सा लेट हो गया यार, क्योंकि
0: कोई बात नहीं
1: बात कर रही थी
0: कोई बात
1: बात
0: नहीं
1: कर रही थी भाई साहब की, तो मैंने सोचा चलो बात पूरी हो जाए तो बात कर लो।
0: जी जी जी
1: तो बस अच्छे धीरे बहुत खुशी हो रही है, अच्छी बातें चल रही है। बहू बेटी की कल की जो बात हुई थी वो भी आज बहुत स्पष्ट होने वाली है, बात सही है
0: जी।
1: और बताया कि दीदी की बहू को हम नहीं बोल सकते, बेटी को बोल सकते, लेकिन कई कई बहू ऐसी होती है दीदी की खुद हम बोलेंगे तो भी समझ जाती है
0: जी।
1: तो वो क्या है कि मैं समझाऊँ कि वहाँ से इससे पिताजी से घर से जो बात होती है
0: जी
1: कि भाई हम वहाँ जाके अच्छे रहेंगे, सब कुछ वहाँ ससुराल में हम अच्छी तरह से रहेंगे, किसी से ऐसा मत बोले, किसी को गलत लगे, किसी को ऐसा वो काम करेंगे अच्छी तरह से, तो जो वही बात उसके दिमाग में रह जाती है तो ससुराल में आती है कहना तो नहीं पड़ता है, लेकिन हम कुछ बोलेंगे तो वो आराम से सुन लेगी और कर देगी, वो भी सही है
0: जी।
1: तो बोलने की जरूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि वहां से जो संस्कार लेके बेटी बहु बनकर आती है तो कुछ कहना नहीं पड़ता। कई घर जगह पे ऐसा करके जाए मैं है बहु कुछ कहना ही नहीं पड़ता, खुद आराम से काम कर लेती है, किसी के बोलते नहीं, झगड़ा भी नहीं करती है और परिवार में भी अच्छी तरह से रहती है
0: जी जी।
1: लेकिन
0: बहुत अच्छी
1: हम
0: बात।
1: बेटियों को सलाह देना जरूरी है, टीम बेटी को कुछ बोल डायरेक्ट नहीं बोले, लेकिन बेटियों से कुछ कहते हम बहुत समझ आती है, समझ तो जो समझे वाले समझ आती है, लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं बहु ऐसी आती है तो उनका समझ लेती है
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: मेरे
0: जी,
1: मुझे बोल रहा है फिर बेटी को कहता, लेकिन मेरे
0: जी बिल्कुल ऐसा होता है जी जी जी
1: ऐसा होता है। तो बस ये तो माँ बाप के संस्कार पर रहता है दीदी, माँ बाप का संस्कार अच्छा होता है तो बहू है बेटी चाहे,
0: माँ बाप के संस्कार भी और कुछ क्या अपने भी पुराने संस्कार रहते हैं स्वयं के भी
1: जी,
0: क्योंकि माँ हमेशा तो, माँ अगर अच्छी शिक्षा देती है लेकिन ससुराल में जाकर तो नहीं देखती ना कि बेटी क्या कर रही है।
1: नहीं सही बात है, कोई माँ बाप ऐसा नहीं कि बेटी को संस्कार अच्छे ही देते हैं, बुरा तो कोई देते नहीं, लेकिन फिर भी ससुराल में आकर थोड़ा सा चेंज हो जाता है,
0: थोड़ा
1: सा चेंज ना हो और बेटी की तरह ही घर में रहे बहू जैसे बेटी जैसे उसे
0: सही
1: रहेगा। ठीक है दीदी
0: ओके।
1: जो आपने प्रश्न पूछा वो तो समझ में नहीं आ रहा है।
0: साधु संत और योगियों को कहते हैं तब के और हम सभी हैं अब के, कैसे?
1: वो तो सही है क्योंकि पहले जमाने से वो चल रहा है योगी जोगी और संत
0: जी।
1: वो तो सही है दीदी, कहे संत से ही हमारी शुरुआत हुई है, संत से ही हमको संस्कार मिले हैं, इसलिए साधु संत पहले के यार और हम अब के हैं, तो हम साधु संतों से संस्कार लेंगे, बात करें अच्छी सुनेंगे। तो अब ऐसी बात है मुझसे जो ज्यादा पता नहीं चलता तो यही कहूंगा बस साधु संत
0: कोई बात पहले, नहीं पहले बहुत अच्छी कोशिश तो किया आपने जी।
1: तो साधु संत का मानिए और वो पहले के जमाने है कि उसको बहुत पता है, और हम तो आपके हैं, हमको कुछ पता नहीं, संस्कार हमारे में अभी तक कम है, तो
0: जी जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आभार आपका सुरेश भाई, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। और वो कहते हैं कि बात चल रही थी बेटी को समझाओ और बहू समझ जाए, लेकिन आजकल थोड़ा समय भी बदला है, आजकल भले आप बेटियों को शिक्षा दो तो भी क्या कहेगी, ओ देखो मुझे सुनाने के लिए अपनी बेटी को समझा रहे हैं, जैसे कि सुरेश भाई ने कहा ऐसा भी हो रहा है, हर प्रकार के इंसान है समाज में, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं हैं या सभी बुरे हैं, अच्छे भी है और इस तरह के भी है। कल ही एक बहन का फोन आया इसलिए मैंने इसी विषय को ले लिया, उनका यही फोन आया कि बहुत दुखी है वो, उनके बहू कुछ भी काम नहीं करती, अपने ही कमरे में बैठी रहती है, खाना भी सास बनाएगी तब नीचे आकर के खाया और वापस ऊपर, दीपावली के दिन चल रहे हैं, साफ सफाई में कोई हेल्प नहीं, अकेले सास कर रही है, अब सास भी क्या करेगी, तीन मंजिल का घर है, हमारे आबू के अंचल की ही बात है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन तीन मंजिल का घर है, लेकिन बहू को कम से कम 5-6 साल हो गए शादी हुए, घर पर आए हुए लेकिन 5-6 साल हो गए, परंतु कोई भी कार्य में हेल्प नहीं करना, माने भोजन भी बना करके नहीं देना, कुछ भी नहीं। हेलो
2: हाँ जी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार कुपाराम जी, कैसे हो आप?
2: कार्यक्रम सुन के काम भी करते
0: जी जी, अच्छी बात है।
2: इस विषय के बारे में ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा बोलता हूँ।
0: जी
2: घर सुना

0: बिन काम ने और घर सुधारे काम ने
1: जी,
0: बुआ को भी वो ससुराल भी अपना घर लगना चाहिए
1: जी,
0: और वो चाहे तो उसको स्वर्ग भी बना सकती है और चाहे तो उसको नरक भी बना सकती है।
1: बिल्कुल
0: हाँ जी, ये मेरा तो है
1: जी, बहुत सुंदर बात
0: है। ठीक है, आदमी को तो कमाने का उसका धंधा होता है, वो धंधा करके ला के देता है, घर में कैसे जीजे चलना है, कैसे चलाना है, वो तो घर का काम है
1: जी जी जी।
0: और संतों का वो प्रश्न तो मुझे लगता है कि संत तो क्या है, बार बार वो इसी योनियों में आते रहते हैं
1: जी,
0: और उनके तो वो संस्कार चलते रहते हैं
1: जी।
0: और हम अब के हिसाब से के क्या पता कितने जन्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिला होगा।
1: अच्छा
0: जी, हम अब के और संत तो वो तो जन्म जन्मांतर से भगवान उनको तो भेजते रहते कि भाई जाओ सृष्टि में अच्छा काम करो, सृष्टि को सुधारो।
1: अच्छा चलिए, बहुत अच्छी कोशिश की, आभार आपका कुपाराम जी। तो बहुत ही देखिए, सभी ने अपने अपने हिसाब से प्रश्न के जवाब बहुत अच्छे दिए हैं। और बात चल रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि उनका फ़ोन आया, 5-6 साल हो गए, लेकिन उनकी बहू इकलौता बेटा है, इकलौती बहू है, अच्छा समाज है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वो काम नहीं करती है तो रिश्ता तोड़ देवे, फिर भी वो तालमेल बिठा के चल रही है कि चलो किसी भी तरह हमारे प्यार को ये समझे, लेकिन अभी कोई महसूसता नहीं, घर में बात नहीं करना, सास से तो बिल्कुल ही बात नहीं करना। और बेटा कुछ सालों से, बेटे की डेथ हो गई, बहू है, एक पोता है, पोते को भी जब इच्छा होती है तो सास ससुर को रखने देते हैं, नहीं तो वो अपने पास रख लेती है, देती नहीं है। और कभी कभी मूड पर आधार है, कभी कभी नीचे भेज देती है, वो कहते हैं बच्चे तो बंद के नहीं रहते ना, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं कि बच्चा भी रूम में ही रहता है, जब उसका मूड होता है तो ही नीचे जाने देती है और वो कमरे से नीचे नहीं उतरते। अब सास ससुर परेशान है, वो बोलते हैं कि भाई या तो आप इस घर में रहो तो हमसे बातचीत करो, हम आपको बेटी की तरह रखते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि आप चाहो तो हम आपकी दूसरी शादी करवा सकते हैं, क्योंकि 5-6 साल ही हुए है शादी हुए, लेकिन वो न घर छोड़ने के लिए तैयार है, न ही प्यार से रहने के लिए तैयार है। तो बेचारे सास और ससुर किसको कहे, वो कहते कि हम बात बाहर नहीं करते, नहीं तो समाज में बातें हो जाएगी। और कहते ना कि भाई बहू को बिचारी समझ करके सास ससुर पर ही आरोप लगाएंगे, लेकिन ऐसा उनके घर में हो रहा है। उनके पियर वालों, बहू के पियर वालों को भी कहा, लेकिन वो भी कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं आपके घर की आप जानो, हमको नहीं कहना है, हमारी बेटी अच्छी है। और वो बेटी, मतलब वो बहू बिल्कुल काम नहीं करती है और न ही नीचे आती है, अपने ही कमरे में रहती है। जब खाना बनता है, देखता है कि खाना बन गया तो खाने के लिए आ जाती फिर से ऊपर। अब आप क्या कहेंगे, तो समाज में हर प्रकार के मतलब इंसान है, हर प्रकार के लोग हैं। उनकी बेटी से भी जब वो ससुराल से आती है तो बहू बात नहीं करती है, तो बहुत जगह पर तो ऐसा है कि बेटियों को समझाते, बहू समझ जाती है। और बहुत सारी जगह पर भले कितने भी सास ससुर उसके आगे पीछे घूमे, भले प्यार देवे, बेटी की तरह रखे, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं रहती है। तो मैं अपनी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि देखिए, तकलीफ है तो आप मुँह से बोलिए कि मुझे ये तकलीफ है, नहीं तो फिर इस तरह आप रूठे रहेंगे तो घर हमारा बिगड़ेगा, घर जुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। चाहे भले बहू टिकी रहेगी तो सास ससुर कितनी बार वो कहते हैं कि हमारी इच्छा होती है हम घर छोड़ के चले जाए, लेकिन लोग यही कहेंगे कि देखो बहू के छोड़ करके अकेली छोड़ करके चले गए, अब घर में क्या हो रहा है लोगों को नहीं पता। इसलिए प्यार से रहिए और जो भी कुछ आपको कहना है कह लीजिए, झगड़ा करना हो तो कर लीजिए, एक बार फिर से सुनिए कि हमारे सास ससुर हमें क्या कहना चाहते हैं और हम उनको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बाकी तो बातचीत तो करो उतनी कम है, समय इशारा कर रहा है, इसलिए चलिए सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: मैं हूँ वजाहत हबीबुल्ला और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो भाई, कुछ दिनों से आपको गुजराती आइटम सिखा रही हूँ। सुवारी आपने सीखी, मठिया आपने सीखा, आज आपको सिखाएंगे चोराफली। भाई, ये ऐसा नहीं कि गुजरात में बनता है और दूसरे स्टेट में नहीं बनता है। आजकल तो हर स्टेट की चीज़ें हर कहीं बन जाती हैं, क्योंकि हर स्टेट के लोग हर जगह पर रहते हैं। गुजरात में जैसे बाहर के लोग रहते हैं, दक्षिण के लोग रहते हैं, तो उधर के इडली डोसा भी बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, चटनियाँ वगैरह। और यहाँ के लोग भी बाहर रहते हैं, तो वो एक दूसरे का कल्चर तो सीखने में आ ही जाता है ना, और वही मज़ा आता है हिल मिलकर रहने में और बनाने में। तो चोरा फली के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ, लेकिन आज का प्रश्न बहुत सुंदर है कि साधु संत और योगी है तब के और हम सभी है अब के, कैसे? प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। और आइए अब चोरा फली आपको सिखाती हूँ। सामग्री ले लीजिएगा, जैसे आप 1 किलो लोट लेना है आपको, तो आप 700 ग्राम लीजिएगा बेसन, 300 ग्राम लेना है उड़द की दाल का आटा, ठीक है? फिर आप लीजिए स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक, और थोड़ा सा आपको लेना है खाने का मीठा सोडा, आवश्यकता के अनुसार तेल लेना है, ठीक है? और मसाला बुरकाने के लिए आप लीजिए लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, और अगर चाट मसाला पसंद करते हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं तो भाई, ये कहते हैं कि समय के साथ चेंज आया है, अभी की नई पीढ़ी चाट मसाला भी ऐड करती है, पहले नहीं करते थे, पहले लाल मिर्च पाउडर और काला नमक मिक्स करते थे, ठीक है? तो बस सामग्री यही है कि बेसन 1 किलो का अगर मठिया बना रहे हैं तो आप ले लीजिए 700 ग्राम बेसन और 300 ग्राम उड़द की दाल का आटा। फिर आप स्वाद के अनुसार नमक लीजिए, और तेल आवश्यकता के अनुसार लेना है, बेकिंग सोडा लेना है थोड़ा सा, और मसाला भुरकाने के लिए लीजिएगा लाल मिर्च पाउडर और काला नमक। अगर आपको ज़्यादा पसंद है चाट मसाला तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको साथ ही साथ बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। भाई, इसमें भी मेहनत है, जैसे मठिया बनाए ना, मठिया में कितनी मेहनत है, ऐसे ही चोरा फली बनाने में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप क्या करेंगे, बेसन का और बेसन और उड़द की दाल का आटे को छान लीजिए, मिक्स कर दीजिए, और इसमें खाने का मीठा सोडा डाल दीजिए, ठीक है? और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। फिर थोड़े से पानी में आप नमक गर्म करिए, भले आप नमक सेक करके डाल दीजिए डायरेक्ट ही, वो आप पर छोड़ा है कि आप कैसे क्या करते हैं। अगर नमक डायरेक्ट डालना चाहते हैं आटे में, तो फिर आप थोड़े से तवे पर सेक दीजिए, ठीक है? और पानी को गर्म कर दीजिए, और इसमें आप 1 चम्मच तेल डाल दीजिए। बहुत जने डालते, बहुत जने नहीं डालते, अब आपकी इच्छा हो तो डालिए, बाकी 1 छोटा चम्मच तेल डालिए, ठीक है? और फिर वो नवसेक के पानी से इस आटे को अच्छी तरह बांध दीजिए, गूंद दीजिए, अच्छी तरह इसको गूंदना है, फिट रखना है, और अच्छी तरह गूंद करके फिर इसको आप आधे घंटे के लिए गीले कपड़े से ढक करके रख दो। आधे घंटे के बाद फिर से इसको एक मेक करिए अच्छी तरह, और फिर इसको भी मूसल से, हमान दस्ता जो होता है ना लोखन वाला, उससे आप कूटिए। जैसे मैंने आपको तरीका बताया ना मठिया का, कैसे, बस यही तरीका है चोरा फली बनाने का भी। इसमें भी बनाने में बड़ी मेहनत है। आप चाहे तो प्लास्टिक के कट्टे के बीच में रख करके पैरों से आपको चल सकते हैं, और आप चाहे तो हमान दस्ते के मूसल से कूट सकते हैं। अब वो आप पर छोड़ा है, ठीक है? अच्छी तरह इसको कूट पीट करके जब इसमें अच्छी लोच आ जाए तो फिर आप लीजिए, और फिर इसको भी तुंबना है, ठीक है? मतलब इसका थोड़ा थोड़ा लुआ लेकर के दोनों हाथों से इसको खींचिए, फिर से ये लुआ बनाइए, फिर से खींचिए, फिर से लुआ बनाइए, फिर से खींचिए, ठीक है? जब अच्छी मेहनत करने के बाद आपको लग रहा है कि अब इसमें लोच अच्छी आ गई है और अब ये टूट नहीं रहा खींचने पर, बाकी तो क्या लोच नहीं आती ना, तो हम जैसे खींचेंगे वैसे फट फट फट फट टूट जाएगा, लेकिन जब लोच अच्छी आती है तो हम खींचते हैं तो फिर वो टूटता नहीं है, पतले पतले तार की तरह चिपका रहता है, तो पता चल जाता है कि अब हमारा चोरा फली का आटा परफेक्ट हो गया है। उसके बाद आप अच्छी तरह इसको एक मैक करके वही मठिये के बनाए ना बेल, ऐसे ही इसके भी बेल बना दीजिए बेलन की तरह लंबी लंबी चकले पर रख करके, और फिर धागे से इसके लुए काट दीजिए, जो भी आप साइज पसंद करते हो उस अनुसार आप लुए काट लीजिए। और फिर थोड़े से वही प्रोसेस है जो मठिया का है, बस इसमें मटेरियल थोड़ा सा अलग तरीके से डालने का है, उसमें थोड़ा सा अलग है। तो आप थोड़े से तेल में आटा या फिर थोड़ा सा आटा रखिए और आटे में थोड़ा तेल मिला करके एक मेक करके ये सारे लुए उसमें डाल दीजिए अच्छी तरह, सभी पर लग जाना चाहिए, ठीक है, सभी लुओं पर ये तेल वाला आटा लग जाना चाहिए ताकि बेलने में आसानी रहेगी, बाकी इसका कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि बेलने के लिए हम पहले से ही इतना आप तेल और आटा लीजिए कि इसमें ये सारे लुए अच्छी तरह चुपड़ जाए। उसके बाद आप बेलिए, और बेल करके आपको अगर कटर है तो कटर, नहीं तो चाकू से आप लंबे लंबे काटिए, ठीक है। पर कैसे काटना है, गोल गोल आपने बना दी साइज, जो भी रोटी की साइज है चाहे पूरी की साइज है, जो साइज आप पसंद करते हो बेल दी आपने। बेलने के बाद अब आप बीच में से थोड़ा सा काटिए, आपको एक उंगली किस साइज का आपको रखना है, फिर तो आप चाहे तो चौड़े पसंद हो तो चौड़े रखिए, सकड़े पसंद हो तो सकड़े रखिए, जो भी साइज पसंद है रखिए। लंबे लंबे काटना है लेकिन साइड में से किनारे नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो बड़ी मेहनत पड़ जाती है तलने में, इसलिए रोटी की तरह ही रहना चाहिए, बस बीच में से काटिएगा, किनारे रहने दीजिए, जब आप तलेंगे फिर निकालेंगे तो वैसे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप पहले तो बेल बेल करके रख दीजिए, जब तलते हो ना उसी समय काटिए। तो बस बेल करके आपने वही थप्पी लगानी है, थोड़े थोड़े से सुखाने हैं, ज़्यादा नहीं, और फिर इसको आप जब ये सारे बन जाए तो फिर आप रखिए कढ़ाई में, तेल डालिए गैस पर रखिए और तल दीजिए। तल करके आप अच्छी तरह, मतलब दोनों तरफ से तले लेकिन बहुत ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। और तलने के बाद आप निकाल दीजिए, फिर एक कटोरी में या एक प्लेट में लाल मिर्च पाउडर और काला नमक मिक्स कर दीजिए, चाट मसाला पसंद है तो उसको भी मिक्स कर दीजिए, और जब आप निकाल दो इनको तो फिर सभी के ऊपर ये नमक मिर्च बुरका दो, ठीक है। ऊपर से डालना है, अंदर नहीं डालना, अंदर तो स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ही डालना है, ऊपर से आप ये मसाला डालिए और फिर खाइए, फिर मुझे फ़ोन करिए कि कितना स्वादिष्ट लगता है, चोराफली कितनी स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए चोराफली तैयार है, देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली और थाली में आप चोराफली रखिए, सब्जी चपाती जो भी बनाई है रखिए, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास पर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा चोराफली का। साथ ही साथ एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: बहू
1: बहू
0: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो ना।
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं। बहुत ही सुंदर विचार था कि भाई सभी से हिल मिल करके प्रेम से रहना चाहिए, न जाने कब बुलावा आ जाए। ठीक है, तो ये इस बात को जरूर गांठ बांध देनी है कि हमको सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। फिर आपको टिप्स भी बहुत अच्छी दी है कि कैसे आप चांदी के बर्तन और अपने गहनों को चमकाएंगे। भाई दीपावली के काम चल रहे हैं, साफ सफाई जरूर करिएगा, पर इन सभी की भी साफ सफाई की आपको टिप्स दी है, तो आजमा करके साफ कर सकते हो। खुशनुमा जीवन की बहुत ही अच्छी बातें हुई है कि भाई बहू मतलब बेटियों को समझाएंगे तो बहू है समझ जाएगी, जो समझदार होती है वो समझ जाती है, फिर तो आप सभी जानते हो। और बहुत ही सुंदर आपको चोरा फली बनाना सिखाए, तो आपने सीख लिया ना? सीख लिया है, बनाओ तो ज़रूर हमें भी खिलाना। चलिए वो तो मजाक थी। और आज का प्रश्न था कि साधु संत और योगी थे तब के और हम हैं अब के। सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, इन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की, अच्छा जवाब दिया उन्होंने भी। और मतलब इनका जवाब था कि साधु संत सभी को ध्यान में रख करके, भूत भविष्य वर्तमान को सोच करके चलते और हम अभी को सोच करके चलते हैं। बहुत अच्छा जवाब है। और सुरन कुमार जी सक्सेना यूपी नारोल से आप जुड़े हैं, आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की, विषय को अच्छा स्पष्ट किया आपने। फिर कंचन भाई आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया। सुरेश भाई झोटाना से आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की प्रश्न का जवाब देने की। और कुपाराम जी कोजरा से आपने भी विषय को स्पष्ट किया है। तो पहले तो मैं आप सभी के लिए ताली बजवाना चाहूँगी कि भाई आपने बहुत अच्छी कोशिश की और इस विषय में भी आप जुड़े और अपनी राय व्यक्त की। और आज का प्रश्न यही है कि साधु संत योगी है तब के, कैसे? देखिए साधु संत योगी बहुत तपस्या कर चुके हैं, बहुत तपस्या कर चुके हैं, तो उनको सब सीधा मिल रहा है, बना बनाया मिल रहा है ना? और उनके द्वारा समाज को, देश को दुआएं मिल रही है, इसलिए कहते हैं कि साधु संत योगी है तब के और हम सभी है अब के। जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तपस्या करें, कुछ भक्ति करें, कुछ योग साधना करें, अभी हम चल रहे हैं, इसलिए अब के और वो है तब के। ठीक है, और अब मैं आपको चंद पंक्तियां सुनाना चाहूँगी बेटी और बहू पर। आप लोग लेंगे इन पंक्तियों का आनंद, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, जरूर आप ध्यान दीजिएगा और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। आंगन अपना छोड़ घर किसी और के जा रही हूँ, आंगन अपना छोड़ घर किसी और के जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी अब बहू बनने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी अब बहू बनने जा रही हूँ। पिता की शान से पति का मान बनने जा रही हूँ, पिता की शान से पति का मान बनने जा रही हूँ। मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ। अपना वजूद भुलाकर पहचान नई बनने जा रही हूँ। अपना वजूद भुलाकर पहचान नई बनने जा रही हूँ। मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ। बेफिक्रियां भूल के जिम्मेदारियां उठाने जा रही हूँ। मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ। बचपन यहाँ छोड़ संजीदगी से रिश्ते निभा रही हूँ। बचपन यही छोड़ संजीदगी से रिश्ते निभा रही हूँ। मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ। मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम जागृति में आप सभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो रहे हैं। दोस्तों, हम जब मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारी मन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसका जो प्रारूप है वो हमारे जीवन शैली में दिखता है। वो कैसे है, क्या है, इसीलिए हमें हमारी मनोरोग विशेषज्ञ है या मानसिक रोग विशेषज्ञ है, इन सभी से चर्चा करने की और समझने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हमने पिछली कड़ी में अनिद्रा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली और ये भी सीखा कि हमें नींद करना कैसे है, स्लीप हाइजीन कैसे करना होता है और वो प्रिपरेशंस करना कितना आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे जो ओवर स्लीपिंग है, यानी कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सो जाते हैं या फिर जब एक बार हम सोते हैं तो फिर उठने का कोई समय नहीं रहता है, कभी भी उठते हैं और उस कारण से हमारी बहुत दिनचर्या डिस्टर्ब होती है। घर वाले बोलते रहते हैं बहुत टाइम हो गया, अभी उठो उठो, दोपहर हो गया है, दिन चढ़ रहा है, बट देन हमारा मन नहीं करता है कि हम उठें और थोड़ा सो जाएं। लेकिन क्या वाकई में वो नींद हमारे लिए फ़ायदेमंद है? क्या हम वाकई में वो नींद से रिलैक्सेशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर हम कुछ और चीज़ों को हमारे जीवन में इन्वाइट कर रहे हैं? तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारियाँ लेंगे और हमें अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमारे साथ है हर्षिता जी और डॉक्टर वीरेंद्र जी। आप दोनों हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप दोनों एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो एक साइकियाट्रिस्ट हैं। आप दोनों को जागृति इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है
2: जी। नमस्कार।
1: नमस्ते सर। नमस्ते हर्षिता जी।
3: तो
1: सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि स्लीप हाइजीन जिस तरीके से आपने पिछली बार हमें अवेयर किया है हमारे श्रोताओं को, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कई बार हम रात को लेट हो गया इसीलिए सुबह कभी भी उठेंगे, 12 एक बजे दो बजे तक भी सोते रहते हैं, या फिर शाम को अगर जल्दी भी सो जाते हैं तो भी हम दिन में लेट उठते हैं। तो जैसे पिछली बार ये कहा गया कि 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन जब देर रात में सोए हैं, पूरा हफ्ता बहुत हार्ड वर्क रहा है या हॉलीडेज हैं इसलिए हम ओवर स्लीपिंग कर लें, या फिर कोई काम नहीं है इसलिए हम सो जा रहे हैं, किताब पकड़ लिया नींद आ गई सो गए हैं, फिर इस तरीके की जो स्लीप की कोई साइकिल नहीं है या फिर टाइम नहीं है और जब मर्जी सो रहे और जब सोते हैं तो उठने का कोई ठिकाना नहीं है, इस तरीके की जो स्लीप साइकिल रहती है वो क्या ये सही है और इसके कारण भी हमारे जीवन में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करते हैं?
2: पिछली बार जब हमने बात करी थी नींद नहीं आने या निद्रा के ऊपर में, उस समय मैंने कुछ बातें आपको अगर याद हो तो बताई थी कि नींद 7 से 8 घंटे की नॉर्मल है। कुछ लोग होते हैं जिनको उससे कम नींद आती है और कुछ लोग होते हैं जिनको उससे ना ज़्यादा नींद आती है, उनको हम लॉन्ग स्लीपर्स या शॉर्ट स्लीपर्स भी बोलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए 10 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है और कुछ लोगों के लिए 5-5 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है। बट अभी जब हम नींद के बाकी डिसऑर्डर्स या बाकी बीमारियों की बात करते हैं निद्रा के अलावा, तो इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां नींद से जुड़ी हुई आती हैं। उसमें जो सबसे कॉमन जिसके ए पी हम बात कर रहे हैं, ओवर स्लीपिंग जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं, हम डॉक्टरी भाषा में उसको हाइपरसोमनियाज और पैरासोमनियाज बोलते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत एक्सेसिवली ज़्यादा आ रही है। मनुष्य जो है वो 10 घंटे से बहुत ज़्यादा 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे सो रहे हैं और उनके जगने का समय बहुत कम रह गया है। एक तो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हुआ कि जब आपकी स्लीप साइकिल का पैटर्न पूरा गड़बड़ हो गया, मतलब जब आप सुबह के 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं उसके बाद सीधा शाम को 4-5-6 बजे उठते हैं, या अक्सर जो पार्टी करते हैं लोग वो बहुत बार ऐसा करते हैं, यानी जिनके लाइफ स्टाइल ऐसे हो गए हैं कि उनकी नाइट लाइफ ही बहुत ज़्यादा है और डे लाइफ उनकी बहुत कम हो गई है, कुछ उस तरह के लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सो तो ज़्यादा रहे हैं या सो तो नॉर्मल रहे हैं बट जब वो उठते हैं तो उसके बाद वो दिन में भी सोए सोए से महसूस करते हैं खुद को, मतलब खुद को उतना एनर्जेटिक महसूस नहीं करते। रात को तो ठीक से सो गए हैं पर जब सुबह उठ के कहीं भी बैठे हैं थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बैठे तो आँख की झपकी लग गई, कहीं भी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव चल रही है पीछे गाड़ी में बैठे तो नींद आ गई, मूवी चल रही है कुछ भी कर रहे हैं तो बैठे बैठे जिनको नींद आ जाती है, काम पे बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए भी, तो उस तरह नींद की बीमारी, नींद बीमारी। तो इनको हम बारी बारी से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिसमें मैं बात करना चाहेंगे वो हाइपरसोमिया या अधिक नींद आना जिसको बोलते हैं। देखिए अधिक नींद आने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, और हमें सबसे पहले अधिक नींद आने के कारण ढूंढने पड़ेंगे कि कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है। डायबिटीज़ के लोगों को बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत ज़्यादा नींद आती है, जिनको डायबिटीज़ या शुगर अनकंट्रोल होती है उनकी नींद की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत देर तक सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं और ये मतलब विशेष साइकिल है। आप वो ज़्यादा देर तक सो रहे हैं उसकी वजह से उनकी शुगर और बढ़ रही है, उनकी शुगर और बढ़ रही है उसकी वजह से वो और ज़्यादा देर तक। उसके अलावा कोई अन्य बीमारी तो नहीं है उनको शुगर के अलावा, कोई और मेडिकल इलनेस जिसमें नींद उनको ज़्यादा आ रही है, या वो किसी तरह की दवाई का सेवन तो नहीं कर रहे जिसमें उनको नींद ज़्यादा आ रही है। बहुत सारे खांसी के सिरप जो हमारे होते हैं उनके अंदर में ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे कि ना चाहते हुए भी नींद आती है, या कफ कोल्ड लगा, कुछ लोग एलर्जी की दवाई बहुत रेगुलर लेते हैं, सिट्रिजिन की दवाई बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो महीनों महीनों सालों सालों खाते ही जा रहे हैं, उस दवा के बिना उनका काम ही नहीं चल रहा, तो उन लोगों में भी नींद ज़्यादा आने की समस्या हो जाती है। क्योंकि ये सब दवाइयाँ हमारे उन एरियाज में काम करती हैं जो नींद को इंड्यूस करते हैं, जो नींद को प्रोलॉन्ग करते हैं, तो उन केसेस को हम लोग हाइपरसोमनिया बोलते हैं। तो हाइपरसोमनिया केसेस के अंदर हमने सबसे पहले उसका कारण ढूंढना पड़ता है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे केसेस है कि सिर्फ नींद ही ज़्यादा आ रही है और कोई मेडिकल इलनेस नहीं है उनको, और भी कोई या कोई दवाई भी नहीं ले रहे, तो ऐसे केसेस को हमें अलग ढंग से ट्रीट करना होता है। तो जिन केसेस में जो मेडिकल इलनेस है जिनको कोई जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर कोई दवाई ले रहे हैं, तो पहले हमें उसको देखना है, शुगर को कंट्रोल करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, उनकी उस दवाई को टेपर डाउन करके कम करके बंद करना है ताकि उनकी नींद ठीक हो। पर जो लोगों को नेचुरली ये हाइपरसोमनिक हो रखे हैं, जिनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, उन केसेस के अंदर में हम कोशिश करते हैं कि उनकी स्लीप को रेगुलेट किया जाए। उनकी स्लीप को रेगुलेट करने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है, जनरली हम उनको अचानक से कि आप वो 10 बजे सोते हैं और फिर सुबह 11 12 बजे उठते हैं तो उनकी नींद जो है वो 16 17 घंटे की हो रही है, तो हम अगर उनको अचानक से बोलेंगे कि आपको कल से सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है तो वो उनसे नहीं हो पाएगा, वो एक दिन हो पाएगा दूसरे दिन नहीं हो पाएगा। तो उस केसेस में हम जो करते हैं हम उनको ग्रेजुअली टेपर डाउन करते हैं, उसकी को ग्रेजुअली कम करते हैं कि जैसे अभी आपके उठने का समय अगर अभी 12 बजे आप रेगुलर उठ रहे हैं रात को 10 बजे सोने के बाद, तो उसको कोशिश करें कि पहले उसको 11 पे करें, फिर उसको 10 पे शिफ्ट करें, फिर उसको 9 पे शिफ्ट करें, ऐसे करते करते हर हफ्ते एक एक घंटा कम करते जाएं और अगले एक डेढ़ से दो महीने के अंदर में अपनी नींद को 10 से लेकर सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक ले आए, तो उस कंडीशन में आपकी 8 घंटे की नींद पूरी होगी। जब आप ग्रेजुअली कम करेंगे तो आपके शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप बहुत समय से बहुत देर तक सो रहे हैं तो आपके शरीर को उस प्रकार की नींद की आदत पड़ जाती है, तो अगर ग्रेजुअली बदलेंगे तो वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी, बहुत समय तक रहेगी और वो पूरी तरह ठीक हो पाएगी।
1: जी सर, जिस तरीके से आपने कहा कि कई बार हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है या बीपी शुगर या इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उस कारण से भी हमारी नींद के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और हमारी जो लाइफस्टाइल है जैसे आपने कहा कि चाहे वो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं या फिर नाइट पार्टीज कर रहे हैं उस कारण से, बट देन इसमें हम ये जानना चाहते हैं जब ओवर स्लीपिंग होता है क्या वाकई में वो इंसान नींद कर रहा होता है, या जो वो डीप स्लीप या फिर साउंड स्लीप जिसे हम कहते हैं, या फिर वो सिर्फ सोया हुआ है लेकिन वो गहरी नींद नहीं है जो बॉडी को हील कर रहा है, या फिर जो स्लीप साइकिल जो बॉडी को रेस्ट देने के लिए होता है।
2: इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि नींद की प्रकार, नींद में दो तरह की नींद होती है, आरईएम स्लीप और एमरीएम, मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमारी आंखों की पुतलियां हिलती रहती हैं, उस समय वो हिल रही है, वो नींद हमारी रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप होती है, और बहुत सा सीन हमें नींद का ऐसा होगा जब हमारी आँख की पुतलियाँ नहीं हिल रही होती, उसको हम एनआरईएम स्लीप बोलते हैं। तो इसमें जो एनआरईएम स्लीप होती है उसको हम जनरल अधिकतर गहरी नींद या फिर डीप स्लीप बोलते हैं। उसके भी आगे पार्ट्स होते हैं, एनआरईएम 1, एनआरईएम 2, एनआरईएम 3, एनआरईएम 4, कि आप कितना गहरी नींद के अंदर में जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम जैसे ही हम सोने तो हमारी एनआरईएम स्लीप सबसे पहले एक्टिवेट हो जाती है, और उसके 45 मिनट बाद पहली REM स्लीप की बाउट आती है। हमारे जो सारे स्वप्न हैं, जो हमारे सपने हैं, वो हमें REM स्लीप केंद्र में दिखाई देते हैं, और NREM स्लीप में हमारा ब्रेन बिल्कुल डीप स्लीप केंद्र में और एकदम गहरी गहन अवस्था केंद्र में चला जाता है, जहां वो बिल्कुल अपने उसने सिर्फ कुछ जरूरी काम छोड़कर बाकी सब काम करना उसने बंद कर दिए हैं। तो उस समय ब्रेन जो है वो एक्चुअली रिकवर कर रहा है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप चाहे 8-10 घंटे सो रहे हैं या 15 घंटे सो रहे हैं, आपकी NREM की स्लीप की टोटल जो क्वांटिटी है वो फिक्स है कि आपको पूरे रात के अंदर में 3 घंटे की NREM स्लीप आनी है, जो कि डीप स्लीप है, वो 3 से 3.5 घंटे की आनी है, वो आपकी फिक्स है। अब अगर आप 7 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएगी, आप 10 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएगी, और आप 12 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएंगे। तो जो एक्चुअल नीडेड स्लीप है, हालांकि दोनों नींद की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ NREM स्लीप की जरूरत है, बट जो ब्रेन को एक्चुअल रिलैक्स कर रही है, जिसको हम डीप स्लीप या गहन निद्रा बोलते हैं, उसका टाइम बहुत फिक्स है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो नेचुरल स्लीप है, क्योंकि अगर जब आप इससे ज़्यादा सो रहे हैं पर आपकी NREM स्लीप उतनी रह रही है, तो जो आपकी बाकी स्लीप है वो बेसिकली उसमें आपका बॉडी फंक्शन और आपका दिमाग फंक्शन कर रहा है, वो रेस्ट स्टेट में नहीं जा रहा है। तो हमें अपनी डीप स्लीप को बढ़ाना जरूरी है कंपेयर टू REM स्लीप।
1: जी, कि कई बार लोगों का ये होता है कि वो नींद हमें क्यों रिड्यूस करना है, वो 10-12 घंटा 15 घंटा जो भी है, हमें नींद आ रही है, हम सो रहे हैं और हमको कोई काम नहीं है इसलिए हम सो रहे हैं, तो नींद तो अच्छी होती है, हम क्यों कम करें। ऐसा भी लोगों का विचार होता है, खास करके जो यंग जनरेशन्स है, हॉलीडे है या फिर हमने रात को पूरा काम किया है तो अभी दिन में सोएंगे, और वो ऐसा कंटिन्यू होता है कि दिन की 10-12, 1-2 भी बज रहा है लेकिन उठने का वो नहीं होता है उनसे। तो हम कैसे वो मेंटल प्रिपरेशन करें कि नहीं, मुझे कितना भी काम करे मुझे इस टाइम तक सोना है, इसके बाद नहीं सोना है।
2: ये सबसे जरूरी है जानना यहाँ पे कि आपकी प्रोडक्टिविटी आपके जगने में होती है, सोने के अंदर में नहीं होती। नींद हम अपने दिमाग को और शरीर को रिलैक्सेशन देने के लिए कर रहे हैं, और नींद का कोई काम नहीं। नींद का काम यह है कि हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा दिमाग रिलैक्स स्टेट में जाए, और उसको एक लेवल तक की रिलैक्सेशन चाहिए, उसके बाद वो रिलैक्सेशन चाहिए इसलिए कि वो दोबारा काम कर सके। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो जगने के अंदर में है, सोने के अंदर में कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। सोने से हम कोई काम नहीं कर सकते, दुनिया में सारे काम सब मेहनत चक्कर ही होती। तो इस समय जो लोगों का कहना है कि हम क्यों जागें, तो सबसे पहले तो इसमें जानना ये जरूरी है कि अधिक सोने से आपको कुछ अधिक फायदा नहीं हो रहा, कुछ लाभ नहीं हो रहा, ना आपको ना आपके शरीर को कोई लाभ नहीं हो रहा, ना आपके मन को, ना आपकी बुद्धि को, ना आपके शरीर को कोई लाभ नहीं हो रहा अधिक सोने से। उल्टा उसके नुकसान जरूर हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड हो रही है, आपका थायराइड फंक्शन अनकंट्रोल होने लग पड़ता है अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। जब हम जगेंगे तभी हमें, अगर हम 10-12 बजे तक 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो हम अपने जो सुबह के रूटीन है, जो मॉर्निंग वॉक है जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जिम जाना है, जॉगिंग करना है, मेडिटेशन करना है, वो कब करेंगे अगर हम 12-1 बजे तक सो रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर को उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो अधिक सोने से हमें कोई लगता अधिक सोने से हमारे शरीर को अब नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहे हैं, वो बीमारियों का घर बनता जा रहा है। तो इसलिए सोने के समय को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो सोने के शुरुआत का समय, जब हमें सोने का समय निर्धारित करना जरूरी है, इस समय सोने चले जाना है, 10 बजे मैं बेड पर जाऊंगा, और उसको रोजाना वैसा ही रखना। जब आप वैसा रखेंगे और उसके बाद सुबह उठकर बेड से उठना, जगने का मतलब ये नहीं है कि आप जग गए और उसके बाद बिस्तर पे ही लेटे हुए हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं। जगने का मतलब जब सोने के लिए आप बिस्तर पे जा रहे हैं, तो जब आप जग रहे हैं तो आपने बिस्तर छोड़ देना है, अपने बिस्तर से खड़े हो जाना है और अपने नित्य कर्म करने हैं। तो जब आप वो करना शुरू करेंगे, एक बार जब बिस्तर छोड़ देंगे, तब फिर दोबारा नींद आने की संभावना कम है। बट अगर आप जग गए और बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं, सुबह 6 बजे का अलार्म बजा, आपने अलार्म बंद कर दिया, आप गए और बिस्तर पर लेटे हुए हैं, फिर आप दोबारा नींद एक देगी। तो हमें उस चीज के ऊपर काम करना जरूरी है कि हम ये समझना होगा कि हमें बिस्तर को छोड़ देना है, नित्य कर्म जो करने हैं, मेडिटेशन करना है, वॉक करना है, या पढ़ाई करनी, पढ़ने की जो चीज जो है वो सुबह का होता है, उस समय सबसे ज्यादा चीजें याद रहती हैं। तो उठते हैं तो आपके पास आपको 1-1.5 घंटा मिलता है दिन के सब काम निपटाने के लिए, तो आपके पास में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
1: जी सर, ये तो ओवर स्लीपिंग और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स और स्लीपिंग आवर्स की बात हो गई है। इसमें नींद की जब हम बातचीत करते हैं तो और चीज़ें हैं। एक तो खर्राटे मारते हैं, क्या उनकी नींद उतनी ही गहरी और रिलैक्सिंग होती है? और दूसरा, जब वो खर्राटे मारते हैं उस कारण से दूसरों की नींद डिस्टर्ब होती है, फिर वो लोग नींद ना होने के कारण इरिटेशन है वो सभी चीज़ों से वो जूझते रहते हैं, तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या खर्राटे का भी कोई इलाज होता है? ये साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है, इसका क्या कारण है?
2: जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बात करनी चाहिए बेसिकली कि हम लोगों को क्या लगता है, जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके बीच में ये मिथ है कि खर्राटे वाली नींद जो है वो बहुत अच्छी है। मतलब कोई अगर खर्राटे मार के सो रहा है तो लोग उसको बोलते हैं कि अच्छा खासा तो एकदम खर्राटे ले रहा था, इतना अच्छा सो रहा था। ये बात जनरली हम लोग आपस में जो पब्लिक जनरल पब्लिक है वो ये बात हमेशा करती है आपस में कि एकदम गहरी नींद में सो रहा है, घोड़े बेच के सो रहा है, मतलब खर्राटे लेके सो रहा है। तो अब यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि खर्राटों वाली नींद अच्छी नींद नहीं होती। अच्छी नींद वो है जो बिना खर्राटों के आ रही है। खर्राटों वाली नींद बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं होती। जो व्यक्ति खर्राटे लेकर सो रहा है हम उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। वो खर्राटे किस लिए आ रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। खर्राटों का कारण क्या है?
1: जी,
2: खर्राटे एक फिजिकल फिनोमिना है। वो इसलिए हो रहा है कि जब दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो गई
1: जी,
2: तो दिमाग ने ऑक्सीजन की डिमांड करनी शुरू करी बाकी शरीर के साथ। तो दिमाग जग गया, दिमाग सो रहा था, अचानक से उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, वो जग गया, उसके सारे पार्ट अलर्ट हो गए और उसने ऑक्सीजन की डिमांड करनी शुरू करी। अब उस ऑक्सीजन की डिमांड के लिए वो छाती के ऊपर में प्रेशर सिग्नल भेजता है कि आप मुझे और हवा सोख के दीजिए। तो उस कंडीशन के अंदर जो छाती है वो जोर जोर से हवा खींचने की कोशिश करती है और उस समय जो आवाज़ पैदा होती है वो खर्राटे हैं। तो बेसिकली वो ब्रेन डिमांड कर रहा है ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। अब वो क्यों नहीं पहुंच पा रही, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसको जनरली जो हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि ज़्यादातर जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा होता है वो लोग बहुत खर्राटे मारते हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। उनमें क्या होता है कि जो जीभ है जब वो सो रहे हैं वो पीछे चली जाती है, टंग फॉल बैक की नाम होता है, वो जीभ पीछे चली जाती है और वो सांस की नली के रास्ते को रोकने लग पड़ती है। इसलिए हवा फेफड़ों में ठीक ठाक नहीं जा रही। तो जब हवा ठीक ठाक फेफड़ों में नहीं जा रही तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही खून के अंदर में, और खून में जब ऑक्सीजन कम हो रही है तो वो दिमाग को कम ऑक्सीजन मिल रही है। तो इसीलिए खर्राटे का फिनोमिना आता है। तो खर्राटों का मतलब यह है कि जब जब खर्राटे लग रहे हैं तो एक्चुअली ब्रेन जो है वो गहरी नींद में नहीं जा रहा है, वो एकदम कच्ची नींद में रह रहा है, वो नींद अच्छी नहीं है। खर्राटों वाली नींद बहुत बहुत ख़राब है। और जिन भी श्रोताओं को खर्राटे आ रहे हैं उनको ज़रूर अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए। खर्राटे साथ वाले मनुष्य के लिए तो जो नुकसान, उसकी नींद तो डिस्टर्ब होती है बट आपकी नींद की क्वालिटी भी एक्चुअली ख़राब है और धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है वो परेशान होता जा रहा है। और जो लोग रात को खर्राटे लेकर सोते हैं उन्हीं को दिन में डे टाइम स्लीपीनेस आती है। जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि बैठे बैठे नींद के झटके लग जाना, वो उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं जो रात में खर्राटों वाली नींद ले रहे हैं, जिनको रात में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली अपने टेस्ट करवाने चाहिए, आगे जांच करवानी चाहिए कि ये खर्राटे क्यों आ रहे हैं, कि इनका कारण नाक या मुँह में है या शुगर की वजह से हो रहे हैं या ब्रेन के अंदर में कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से खर्राटों वाली नींद, जो सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं, जबकि ब्रेन के अंदर में नींद के सेल्स गड़बड़ कर रहे हैं या फिर जीभ नीचे जा रही है या वजन बहुत अधिक है। खासकर मैंने जैसे बताया कि मोटे लोगों में खर्राटे लेने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जिनका वजन अधिक है उनमें खर्राटे लेने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो खर्राटों वाली नींद को ठीक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं।
1: जी, तो इसका साइकोलॉजी से कोई संबंध नहीं है खर्राटे वालों से?
2: खर्राटे की नींद का न्यूरोलॉजी से संबंध है, बेसिकली न्यूरोसाइकोलॉजी से संबंध है उसका। बेसिकली सिर्फ साइकोलॉजी, साइकेट्री और न्यूरोसाइकेट्री से संबंध है उसका। नसों का काम है सिर्फ कि ब्रेन जो है वो रात को बार बार जाग रहा है। इसके अंदर में सबसे पहले हम मरीज को वजन कम करने की सलाह देते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो बाईपास बोल के एक मशीन आती है जनरली, वो यूज़ करने के लिए दी जाती है, जो ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ में नाक से अंदर की ओर भेजती है ताकि रात की नींद गहरी हो। तो जब एक बार ब्रेन को ऑक्सीजन ठीक ठाक मिलने लग पड़ती है तो चीज़ें ठीक होने लग पड़ती हैं। बट मरीज से हम कोशिश करते हैं कि उसकी शुगर ठीक रहे, उसका वजन कम हो, ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं। ये एक प्योरली मेडिकल इलनेस है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें कि खर्राटे की दिक्कत आती है।
1: जी सर, दूसरी प्रकार की जो नींद है जिसमें हम सपने बहुत देखते हैं, कई बार ये कहावतें भी सपनों के रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, जो दिन में सपने देखते हैं या फिर वो जो मृत वेले के टाइम पे जो सपने आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कई लोगों की सपने ऐसे होते हैं वो नींद ख़राब कर देती हैं, हॉन्टिंग होते हैं, इससे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं और वो सपने किसी को सुकून की नींद देती है तो किसी की नींद उड़ा देते हैं, लेकिन अलग, लेकिन क्या ये जो सपने हम देखते हैं उसमें भी हमारी नींद और नींद से जो शरीर को रिलैक्सेशन मिलनी है वो हो रहा है, या फिर हमारी नींद पूरी हो चुकी है लेकिन हम ख्याल कर रहे हैं कि हम सो रहे हैं, या जो भी हम फिजिकली यहाँ पे सो रहे हैं लेकिन कॉन्शियसली कहीं और हैं, एंड देन वी आर नॉट, वो नींद फुलफिल नहीं हो रही है।
2: देखिए, सपने हमारी नींद का बहुत जरूरी हिस्सा है। मैंने जैसे आपको बताया कि नींद के दो पार्ट होते हैं, NREM और REM। तो REM स्लीप के अंदर में सपने आते हैं, क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, पुतलियाँ घूम रही होती हैं, तो उस समय जो भी दिन में या उसके कुछ दिन पहले घटित हुआ है, जो दिमाग में स्टोर हुआ है, दिमाग उसी को आसान फॉर्म में रिलीज करने की कोशिश करता है, और वही चीज़ें जो है वो सपने की फॉर्म में आती है। आप जब, जैसे कि आप किसी पुराने अपने मृत रिलेटिव की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों से, तो आप देखेंगे कि तीसरे चौथे दिन अगर आप लगातार बात कर रहे हैं तो आपको सपने में वो व्यक्ति दिखाई देने लग पड़ा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमने इतनी बात करी कि दिमाग में जो उस व्यक्ति की छवि थी वो एक्टिवेट हो गई, तो वो सपने में हमें वही छवि दिखाएगी, और हम उस व्यक्ति के बारे में जो जो सोच रहे थे वो वैसा वैसा कुछ, मतलब बिल्कुल वैसा नहीं, बट उससे जुड़ा जुड़ा कुछ ना कुछ आपके सपने में आएगा। तब अब जो सपने, जैसे कि जिनको बोलते हैं कि जिनको सपने में भूतों के सपने आते हैं, वो डर जाते हैं, तो बेसिकली वो लोग एंग्जाइटी की बीमारी से पीड़ित होते हैं। उनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है तो उन लोगों को सपने अत्यधिक आते हैं, क्योंकि उनका दिन, ब्रेन जो है वो सारा दिन बहुत बेचैन और बहुत कोशिश करता रहता है अपने आप को कंट्रोल करने की, तो इस वजह से बहुत डिस्टर्ब रहता है उनका ब्रेन, तो सपनों की फॉर्म के अंदर में आती है, जिसमें उनको ऐसे सपने आएंगे कि जैसे कि आपको बहुत बारी सपना आएगा कि मेरा एग्ज़ाम छूट रहा है, हालांकि अब मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा, फिर भी मुझे रात को ये सपना आता है कि मैं अपने एग्ज़ाम में टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा, मेरी ट्रेन छूट रही है। बहुत बारी सपना आता है कि मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन निकल चुकी है, इस तरह के सपने आते हैं। उससे उन सपनों से आदमी घबरा के आदमी की नींद खुल जाती है, तो बेसिकली वो हमारी इनर एंग्जाइटी को शो करते हैं। तो अगर एंग्जाइटी के ऊपर में काबू पाया जाएगा वाई JPMR करके, या दवाई के साथ में, या मेडिटेशन के साथ में, जैसे भी एंग्जाइटी में जब कंट्रोल किया जाएगा तो सपनों की नींद जो है वो कम होने लग पड़ेगी, और सपनों की क्वालिटी अच्छी होने लग पड़ेगी। मतलब आपको अच्छे अच्छे स्वप्न आएंगे। स्वप्न आने तो जरूरी है, स्वप्न आएंगे ही आएंगे, उसको बंद नहीं किया जा सकता, बट अच्छे स्वप्न आएंगे तो हमको दिन के समय वो याद नहीं रहेंगे, बट अगर डरावने सपने आए जिसमें हमारी नींद खुल गई अचानक से, तो वो हमें काफ़ी देर तक याद रहते हैं, अगर हमारे REM स्लीप वाले स्वप्न आ रहे हैं।
1: तो जिस तरीके से आपने एक स्लीप हाइजीन के बारे में बोला है अनिद्रा के लोगों के लिए, तो इज देर एनी मेथड या फिर कोई प्रिपरेशन जो ओवर स्लीपिंग या फिर ये सपने हैं, ये सभी तरीके के जो डिजास्टर्स हैं आज जिन चीज़ों पे हमने चर्चा की है, उसके लिए भी कोई तरीका है या प्रिपरेशन है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए?
2: ओवर स्लीपिंग के लिए तो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई कि सबसे पहले है, जैसे नींद सोने जाने का समय निर्धारित करना है, वैसे ही उठने का समय भी हमें फिक्स करना है। पहला पॉइंट है ये कि हमें उठने का समय हमेशा फिक्स करना है, और उठने के बाद हमें बिस्तर को छोड़ देना है। ये दूसरा पॉइंट है कि हमें बिस्तर पे नहीं रहना है। जब सोने जाना है स्लीप हाइजीन के समय, तब बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना है। तो जैसे ही आपके उठने का समय हुआ, आपको बिस्तर को छोड़ देना है, बिस्तर का त्याग कर देना। तीसरी चीज, रात के समय शराब या इन सब का सेवन नहीं करना है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, वो हमारे को हाइपरसोमनिया को बढ़ा देते हैं, या नींद को कम भी करते हैं, पर बहुत केसेस में वो नींद को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो कोशिश करनी है कि हम नशे से दूर रहें, तो उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। चौथी, हाइपरसोमनिया का हमें कारण निकालना पड़ेगा कि कहीं कोई शारीरिक परेशानी की वजह से, कोई मेडिकल इलनेस की वजह से तो नहीं आ रहा। अगर वैसा हो रहा है तो हमें उसको ठीक करने की कोशिश करनी है।

0: के ऊपर में काम करने की कोशिश कर रही है। तो एंग्जाइटी के लिए जैसा डॉक्टर हर्षिता ने बताया था कि जेपी हमारे टेक्निक होती है, जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, वो मैम इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बताएंगे। ये हो गया, या फिर एंग्जाइटी के लिए थोड़ा मेडिटेशन, सोने से पहले थोड़ा ध्यान लगाकर सोए तो उससे आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो आपके सपने जो हैं वो अच्छे स्वप्न रहेंगे और ऐसे नहीं रहेंगे कि आपको सुबह याद रहें या आपकी रात की नींद में खलल डालेंगे।
1: जी सर, यहाँ पर एक और सवाल है जहाँ पर हम महिलाओं की जागरूकता और महिलाओं की मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी इस प्रकार की स्लीप साइकिल्स को देखने को मिलता है, वो जो रेस्ट चाहिए, या कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान ओवर स्लीपिंग की जो आदत पड़ जाती है, घंटों तक वो सोने की इच्छा होना या नींद करने की, तो इज़ इट समथिंग डिसऑर्डर या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे या महिलाओं को खास करके अपनी हेल्थ को देखते हुए कुछ प्रिकॉशंस लेना होता है?
0: देखिए प्रेगनेंसी के समय डेफिनेटली नींद कभी कुछ लोगों की बढ़ जाती है, कुछ लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि वो हार्मोनल डिपेंडेंट होते हैं। बट कोशिश यही करनी है कि नींद जो है प्रेगनेंसी के समय में भी हम 8 से 10 घंटे के बीच की नींद रखें, इससे ज़्यादा की नींद ना लें, ठीक है? क्योंकि आपको प्रेगनेंसी के अंदर में दिन के सारे कार्य भी करने हैं, नॉर्मल कार्य भी करने हैं अपने, तो अगर आप नींद बहुत ज़्यादा लेंगी तो उसका एज सच तो कुछ असर नहीं करता पटवाड़ता, पर जब एक बार डिलीवरी हो जाएगी, जब पोस्टमार्टम पीरियड आएगा, क्योंकि उस समय जब बच्चा आएगा तो बच्चा माँ के पास ही रहेगा, तो उसके बाद में अचानक से आपकी स्लीप साइकिल चेंज होगी, क्योंकि बच्चा जो है वो रात को भी जगेगा, रात को बहुत बार रोएगा, आपको उठना पड़ेगा, उसको दूध पिलाना पड़ेगा, तो उस समय आपकी नींद जो है वो अचानक से चेंज हो जाएगी। अगर आप प्रेगनेंसी के समय 15-15 घंटे सो रही हैं आखिर में जाकर, तो फिर जब अचानक से आपकी नींद 5-4 घंटे की रह जाएगी तो आप फिर बहुत डिस्टर्ब फील करने लग पड़ेगी, तो जैसे पोस्टमार्टम की इस तरह की बीमारियां सिर उठने लग पड़ती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रेगनेंसी के समय अपनी नींद को निर्धारित रखें, और पोस्टमार्टम समय में जो मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि बच्चे ने तो रात को जगना ही है, तो मैं हमेशा ये माँ जो पोस्टमार्टम मदर्स होती है उनको सलाह देता हूँ कि आप अपने सोने का समय अपने बच्चे के साथ निर्धारित करें। जिस समय बच्चा सो रहा है आप उस समय कोशिश करें कि आप अपनी नैप ले लें, क्योंकि आपको कभी भी इकट्ठी 5 घंटे सोने की फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चे को 2-2.5 घंटे में भूख लगनी ही लगनी है, और उसके बाद वो उठेगा, रोना शुरू करेगा, तो आपको जगना पड़ेगा। उसमें जो जीवन साथी उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो भी वाइफ की मदद करे, कि जिस समय वाइफ आराम कर रही है तो उस समय बच्चे की देखभाल वो करे, क्योंकि पोस्टमार्टम पीरियड आजकल जैसा कि बोलते हैं कि सिर्फ महिला का नहीं पति का भी साथ में होता है, उसको भी साथ में पूरा का पूरा सहयोग देना पड़ता है। तो महिलाओं के लिए जो क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम भी महिलाओं के लिए है, तो उनके लिए प्रेगनेंसी में अपनी नींद को ठीक ठाक रखना है, 8 से 10 घंटे सोना है, उसी शेड्यूल को सारी प्रेगनेंसी में मेंटेन करना है, अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं होने देना, और जब पोस्टमार्टम पीरियड आना है तो उस समय कोशिश करनी है कि अपनी नींद को बच्चे की नींद के साथ साथ पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको डेफिनेटली पहले 3-4 महीने सोने का समय बहुत कम मिलने वाला है।
1: जी, इसके अलावा और कोई प्रिकॉशंस या फिर कोई बातें हैं जो नींद को रिलेटेड खासकर महिलाओं के लिए?
0: डॉक्टर हर्षिता अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहती हैं तो वो बता सकती हैं।
1: जी
2: हाँ श्योर, जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, लाइक रिलेटेड टू जब हम स्पेसिफिकली वुमेन की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो एक स्लीप केयर है वो वुमेन की लाइफ में अगर बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे चेंज होता है, अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें, उसका जो साइकिल होता है उसकी बात करें, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो एक इन जनरल से वहाँ पे PMS के सिम्टम्स अगर आते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो हॉर्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं उनकी वजह से वुमेन की जो स्लीप डिस्टर्बेंस फील वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो पीरियड्स के पहले जिनको हम PMS बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और पीरियड्स के दौरान स्लीप की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। तो अगर हम कुछ चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखें तो हम उसको भी अच्छा कर सकते हैं, कि जैसे हीट पैड्स होते हैं, हॉट वाटर बॉटल हो सकती है, उसका यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसी टीज आती हैं, चाय आती हैं, अगर वो उनका सेवन करें बेड टाइम पर तो वो बहुत रिलैक्सिंग, एक आपको रिलैक्स करने में हेल्प करती है। सो एक ये चीज़ हम स्पेसिफिकली वेमेन के लिए कर सकते हैं। दूसरा, जब टाइम आता है मेनोपोज का, उस टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो रात को वेमेन फील करती हैं कि उनको नाइट स्वेट्स होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, एकदम से गर्मी लगती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है,

0: वहाँ पे भी वो लोग अपनी स्लीप का उस समय पर भी ध्यान रखें, अपने बेडरूम को थोड़ा ठंडा रखें, एसी या फैन का यूज करें और अपना सोने का उठने का टाइम फिक्स करें और एक एक्सरसाइज जो है वो उसमें स्पेसिफिकली ऐड ऑन करें, क्योंकि डेली एक मॉडरेट एक्सरसाइज से हमारी स्लीप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम स्पेसिफिकली वुमेन के लिए ऐड कर सकते हैं।
1: थैंक यू सो मच आप दोनों को, डॉक्टर वीरेंद्र जी और डॉक्टर हर्षिता जी। हमारी जो नींद जीवन का सबसे प्यारी चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में एक संतुलन और एक सही तरीके से सोना और क्यों ज़रूरी है और उसको ठीक कैसे करना है, इन चीज़ों के ऊपर आज प्रकाश डाला और हमारी श्रोताओं को, खास करके हमारी महिलाओं को जागरूक किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: जी शुक्रिया, धन्यवाद
1: जी। तो दोस्तों यहीं पे हम विराम लेते हैं और मैं समझती हूँ कि आप सभी को कुछ बेहतर जानकारियाँ मिली हैं और जहाँ पे भी आपको लगा है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है या फिर हमारे घर में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें और जल्द से जल्द उसको ठीक करने की कोशिश करें और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं या फिर जो भी जिनसे भी आपको संपर्क करना है उनसे संपर्क करें और अपनी स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखें। हम फिर मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक और जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है मन की आंखों से, आज मन की आंखों से कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूं। और मन की आंखों से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में हम ऐसे साथियों से आप सबको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने आंखों संबंधित

0: और कहीं ना कहीं समाज को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही एक मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं कोमल अग्रवाल मैम का। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार आप सभी को और रेडियो मधुबन के हमारी तमाम श्रोताओं को भी मेरी तरफ से सादर अभिवादन।
0: श्रोताओं मैं बताऊं आपको, कोमल मैम दृष्टिबाधित हैं और कोमल मैम बहुत ही अच्छी लेखिका हैं जितना मैं इनके बारे में जानता हूं। इसके अलावा वो क्या क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से संघर्षों से किस किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है और वर्तमान में वो क्या कर रही हैं, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज मन की आंखों से के इस अनोखे सफर पर। तो कोमल मैम बताइए जरा अपने बारे में, बिल्कुल शुरुआत से जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर, सर्वप्रथम तो संदीप सर पहले आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। आप जिस तरह से पूछ रहे हैं बहुत कंफर्टेबल है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो एक लेखिका होने से पहले मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर और एक लाइफ कोच रही हूँ। ये जो सफर शुरू हुआ ये आफ्टर ब्लाइंडनेस शुरू हुआ।
0: अच्छा।
1: वो सब कहते हैं ब्लाइंडनेस इज अ कर्स, मैं कहती हूँ ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ब्लाइंडनेस मेरे लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि अगर ये नेत्रहीनता नहीं होती तो हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते ना। ऐसा होता है ना कि फैमिली में औरतें जो होती हैं या तो पति पर डिपेंड है, पहले पिता पर डिपेंड, फिर पति के ऊपर डिपेंड, उसके बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड। यस, तो ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। ये मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने कुछ ऐसा किया मेरे जीवन में कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपना आत्मनिर्भर होना सीखा। जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ब्लाइंडनेस नहीं था, तब हम दूसरों से सहारे की उम्मीद करते थे। अब हम स्वयं आत्मनिर्भर हो गए हैं तो मुझे लगता है ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो ये बात है। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूं सर। तो ये एक बहुत मतलब बड़ी विकराल समस्या है उन लोगों के लिए जो लेट ब्लाइंड होते हैं।
0: निश्चित रूप से,
1: क्योंकि जैसा ये बिल्कुल वैसा ही है संदीप सर, जैसा कि आपने ट्रेन की टिकट कटाई है मुंबई के लिए और आपको रास्ते में उतार दिया गया।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
1: तो हाँ, जो और फिर ना ऐसे वक्त पर हो जाती है कि जहां पर हमारे करियर का एक मोड़

0: होता है ना, जहां से हमारी करियर की जर्नी शुरू होती है वहीं पर जाकर ये ब्लाइंड होती है। और दिस इज रेटिनाइज पिगमेंटोसा वट एवर आई हैव आई एम बीन सफरिंग। और ये जो डिजीज है, जैसे कि लोग कहते हैं जेनेटिक है, ओके, तो बचपन से ही कम दिखता था, तो क्लास 7 तक आते आते मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मुझे बाकी लोगों की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोगों देख पा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड इतना अच्छा से दिखाई नहीं देता, फर्स्ट रो से भी ब्लैक बोर्ड इतना क्लियरली मतलब देख नहीं पाती थी, तो मैथमेटिक्स में इसलिए कमजोर है, बाकी तो देखिए थ्योरेटिकल होते हैं सब सब्जेक्ट, तो वो सारे सब मैं आसानी से कर लेती थी, लेकिन जहाँ मैथमेटिक की एल्जेब्रा ज्योमेट्री की बात आती थी तो वहां पर मैं बिल्कुल मतलब निराश हो जाती थी और अपने फ्रेंड्स की कॉपी से चीटिंग मार मार के लिखती थी आंसर। तो क्या होता था कि सेवेंथ में आते आते जैसे कोई नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, पूरा तो नहीं लेकिन काफी हद तक नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो जिसकी वजह से कभी किसी ड्रेन में गिर जा रहे हैं, चलते चलते ठोकर लग जा रही है ना, थाली परोस रहे हैं, तो ट्यूबुलर विजन की वजह से क्या हो रहा है कि भाई राइट साइड का आपको लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है, सेंट्रल आपका विजन है, राइट लेफ्ट का विजन नहीं है, तो ये चीजें ऊपर नीचे की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी चीजें और स्क्विंट भी आई मेरा, हाँ, तो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा ना कि भाई अब चेहरे की सुंदरता खत्म हो गई, स्क्विंट आ गया आई में कि एक आंख से तिरछा देख रहे हो और एक आंख सही दिख रही है, तो लोग इसके लिए हमको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगे, ताने मारने लगे कि
1: अच्छा परिवार में,
0: हाँ मतलब परिवार में भी और जैसे कुछ भी मतलब नॉट इन माय फैमिली, लेकिन जो रिलेटिव होते हैं जैसे चाचा ताऊ में मामा ऐसे होते हैं ना लोग, हमारे रिलेटिव होते हैं तो होता है, तो वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो भीतर कहीं ना कहीं बस गया, तो बस गया ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कुछ बोलने के लिए आगे नहीं दिया। और चूंकि मेरा जीवन बहुत अभावों में गुजरा, पिता बहुत ही कह सकते हैं बहुत सामान्य मतलब मध्यम वर्गीय भी नहीं करेंगे, लोअर मिडिल क्लास बोलेंगे कि उस तरह से रहे, बिजनेस बिजनेस पापा का पहले शुरू में अच्छा चलता था, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास 7-8 तक पास किए तब तक पापा का बिजनेस है ना ठप हो गया, किसी पर्सनल कुछ कुछ रीजंस की वजह से, तो बिजनेस ठप हो गया, दुकान वगैरह बंद करनी पड़ी, तो इस वजह से पापा भी बहुत परेशान रहे, तो हम लोग का जीवन अभाव में गुजरा, तो क्या बोलेंगे कि हमको डॉक्टर के पास दिखाओ, है ना, तो ऐसे करके 10th आ गया। 10th में जब स्कूल में मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं जैसे कुछ कैंप वगैरह लगते हैं, तो वहां पर डॉक्टर ने मुझे सीरियसली बोला कि आप जाकर के अपने घर में बोलो कि आपको कोई मतलब एकदम कोई सीरियस मेजर प्रॉब्लम है, ओके, और आप जाके घर में ये बात बोलो, ओके, तो आई वेंट ओके और मैं पापा के पास जाके बोली कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोले हैं, तो फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया, तो वहां पर डॉक्टर ने कहा देखो कि ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और आप लोग कहीं बाहर दिखाइए, मैं इसमें कुछ समाधान नहीं कर सकता हूँ, है ना, तो चूंकि बाहर जाने के लिए ना तो फाइनेंशियल है ना दशाएं ऐसी थी, ठीक है, तो ये सब चीजें रही, तो कहीं बाहर दिखा नहीं पाए, ये रही, ये चलता रहा, चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये समस्या चलती रही सर। क्लास 10 में मैथ्स में मैं फेल हो गई इसी वजह से, और उसी दौरान मुझे टाइफाइड हो गया, तो उस समय पेंसिलिन इंजेक्शन लगते थे और उसका साइड इफेक्ट हुआ या क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जब ये इंजेक्शन लगते थे उसका मैं काफी बीमार हो गई, तो उस समय ब्लाइंडनेस काफी बढ़ी, मतलब काफी मतलब जो दिखता था वो विजन भी काफी लॉस हो गया, लेकिन तब तक ये पता नहीं था कि ये बीमारी है, तो आगे इस तरह से चलता रहा। प्लस टू में फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ाई करके पूरे हमारे जिले में टॉप किया, तो
1: क्या बात है,
0: हाँ जी, तो क्योंकि पढ़ना बहुत मतलब पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा एक क्रेज था, तो एक सर से इंग्लिश भी सीखी उस दौरान, वो बहुत अच्छा गाइड किए,
1: ये प्लस टू का बता रहे हैं आप, 12th का बता रहे हैं जिसमें आपने टॉप किया, 12th
0: का बता रही हूँ जी, 12th में मैंने
1: क्या सब्जेक्ट उस समय, 12th में सब्जेक्ट क्या रहे आपके,
0: जैसे पॉलिटिकल साइंस था और हिस्ट्री लाइक था, ओके, तो और हिंदी जो इंग्लिश मीडियम, 10th तक देखिए मैं 7th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी, फिर हमारी तरफ इंग्लिश मीडियम का इतना चलन नहीं था, पैसे बहुत लगते थे, तो मैं ओडिया मीडियम में गई, 10th तक ओडिया मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम, एक वुमेन्स कॉलेज था वहां पे मैंने प्लस टू किया, प्राइवेट कॉलेज था, तो वहां पर मैं जितने कॉलेजेस थे हमारे जिले में उस समय 2 ही कॉलेज थे, तो उस समय दोनों कॉलेज में मैंने टॉप किया उस समय, तो उसके बाद जो अब आई प्लस थ्री के बाद, तो प्लस थ्री में हिंदी ऑनर्स को एज अ सब्जेक्ट चुना, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की सिचुएशन नहीं थी, पैसे नहीं थे फीस भरने के, फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज था शहर से बहुत दूर और कोएड भी था, तो पिता थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव भी फैमिली से हम लोग रहे, मारवाड़ी फैमिली है ना, और तो वो इसलिए फिर अकेले जाने का सुविधा भी नहीं था इतना दूर कॉलेज, तो क्या किए प्राइवेट में पढ़ाई की। अब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, क्या करें, प्राइवेट कितना पढ़ेंगे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाई डोंट आई टेक अ जॉब। ओके, सो आई गेव इंटरव्यूज इन मेनी स्कूल्स, लेकिन सभी स्कूल वालों ने कहा कि यू आर नॉट बीए, ग्रेजुएशन नहीं है आपका, बीएड नहीं, कुछ नहीं है, आई कैन नॉट टेक। फिर एक स्कूल वाले ने मेरे स्पीकिंग को देखते हुए और जो भी हमारे पढ़ाने का तरीका है, एक उन्होंने मेरा क्लास भी लिया बच्चों के साथ में, एंड दे वर सेटिस्फाइड और उन्होंने मुझे रख लिया फाइनली। यस, तो उसके बाद फिर वहां पर एक साल का मेरा ये चला, प्लस की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने प्राइवेट पढ़ते पढ़ते वो स्कूल में नौकरी की, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि नियति एक को चक्र चलाती है, तो वो भी नहीं था कि भाई जिसको इंसान दुख देता है ना उसको हर तरीके से देता है, इधर से भी दे रहा है उधर से भी दे रहा है। पहले अभाव में गुजरा, फिर ब्लाइंडनेस हो गई, ब्लाइंडनेस हुआ, जॉब लगी, पहली सैलरी 900 रुपए मिली सर, दैट वाज द फर्स्ट सैलरी ऑफ माय लाइफ। ओके, ये जो कि इंग्लिश मीडियम में मैंने पढ़ाया, तो आई वाज सो हैप्पी। लेकिन दसवें सेकेंड ईयर जब फाइनल एग्जाम हुआ, तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी जिनका पापा के ऊपर काफी दबदबा था, तो वो कहने लगी कि भाई आपके इनके शादी कर दो, क्योंकि मेरे जीते जी कर दो, तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं तो हाँ जी समझ आया। तब तक आंखों का स्क्विंट काफी हद तक अपने आप ही ठीक हो चुका था, एंड आई वाज लुकिंग यू नो कि चलो भाई पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर लड़की है, इसकी शादी कर दो और क्या चाहिए, है ना। हमारा
1: आंखों का क्या ठीक हो गया था, वापस बताएं आंखों का क्या ठीक हो गया था?
0: आंखों का जो तिरछापन है वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो गया था।
1: अच्छा, मतलब आपकी रोशनी वापस से ठीक होने लग गई थी?
0: नहीं, रोशनी नहीं हो रही थी, जो स्क्विंट था तिरछापन जो था पुतलियां
1: टेढ़ापन था,
0: वो सही हो रहा था। तो बस वो प्लस थ्री सेकेंड ईयर में फिर एंगेजमेंट कर दी गई, एंड आई वाज फोर्स्ड टू मैरी। ओके
1: ओके, तो आपकी एंगेजमेंट आपके जैसे व्यक्ति से हुई थी या सामान्य व्यक्ति से?
0: साइटेड, क्योंकि तब तक तो सर रेटिनाइज पिगमेंटोसा क्या होता है उसका आर नहीं पता था हमें।
1: आप इस स्थिति में नहीं रहे कि आप कुछ कह सकें, अपनी बात रख सकें परिवार?
0: बिल्कुल, तो इवन आई वॉज अनेबल टू, मैं लोगों को ये भी नहीं बता पाई कि मुझे, मैं बोल रही हूँ कि मुझे 20-30% दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी राइट। जैसे तैसे जितना भी दिख रहा था आई वॉज मतलब बीइंग मैरिड। ओके, तो 99 में हमारी शादी हो गई जून के समय में, इस वजह से जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो धरा करता रह गया, वो हम दे नहीं पाए। ठीक, तो ये चीजें रही। फिर उसके बाद सर लाइफ होनी चाहिए थी भाई कि आप सपनों की जिंदगी शुरू हो गई है, यही अरमान लेकर के है ना, हर कोई मैरिज करता
1: है, हर कोई यही सोचता है
0: कि चलो आप जो जितना दुख झेले हो गया, अब सुख दिन के दिन आए रे भैया, वो कहते हैं तो यहाँ भी मैं
1: बहुत तेरे भैया
0: जी। लेकिन कहते हैं ना कार्मिक अकाउंट से, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ये सब हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उसका फल होता है, तो मैं इन सब बातों को अभी समझती हूँ। उस समय तो हम लोग भगवान को, तकदीर को बड़ा दोष देते थे और कहते थे कि मैं ही क्यों विक्टिम हूँ, मतलब व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई बहन मेरे सब लोग फैमिली मेंबर एवरीवन इज हैप्पी, व्हाई आई एम नॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत आता था और बहुत मतलब शिकायत करते थे भगवान से। तो मैरिड लाइफ भी कोई सुखी नहीं रही, फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वॉज द विक्टिम ऑफ डाउरी, दहेज ये बहुत बड़ी समस्या रही। पहले तो जैसे होता है ना कि भाई लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, चलो शादी कर दो, है ना, हो गया। उसके बाद दहेज प्रताड़ना शुरू हो गई, ठीक है, वहां जाके पता चला कि द पर्सन इज आल्सो नॉट मतलब डिजर्विंग पर्सन नहीं था, थोड़ा एंटी सोशल क्रिमिनल।
1: जॉब वगैरह थी?
0: कुछ नहीं था सर, अपने फैमिली के टुकड़ों पर, हाँ अपने भाइयों के थे ना वो चल रहा था। तो खैर उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, देखिए इतना बस।
1: नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात
0: हाँ जी हाँ, क्योंकि अब वो बीत गई है तो
1: वो वैसे भी पर्सनल वो वैसे भी पर्सनल लाइफ है रही है तो कोई बात नहीं।
0: हाँ जी, तो फिर वो चल नहीं पाया, ठीक है। देन माय सन वाज बोर्न इन द ईयर 2000, यस, तो 2000 में उसका बर्थ था। तो उसके बाद फिर जिंदगी कुछ यूं गुजरी कि 6 महीने मायके में पैर रहा, 6 महीने ससुराल में, है ना। तो 2004 में जा करके मेरे पापा मम्मी ने जब मेरी आईज का ट्रीटमेंट कहीं करवाने का थोड़ा बहुत पैसे वैसे अरेंज किए और दिखाने के लिए किया, तो हम लोग को विशाखापट्टनम, है ना, यहाँ पर मैक्सी विजन और विशाखा आई हॉस्पिटल वगैरह, वहां पर हमको ले गए। तो यहाँ पर जो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ सर कि इतना ट्रेजिकल होता है कि सडन आपको ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल रहा है कि यू हैव अ डिजीज एंड दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, वो क्योर नहीं हो सकता।
1: आप एक ऐसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं जो ठीक नहीं हो सकता
0: कई सालों से, मतलब है ना पिछले 10-15 सालों से आप ये बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको पता ही नहीं। और डॉक्टर साहब जो थे विशाखा, मैं छोड़िए नाम लेना तो सही नहीं है, तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने फाइल बिल्कुल मतलब ऐसे फेंक दिया, मेडिकल फाइल एक्सरे जो रिपोर्ट आई थी जितनी सब ऐसे फाइल को मेरे तरफ इधर फेंक करके बोल रहे हैं कि यू को मतलब वो यहाँ कुछ नहीं हो सकता आपका, यू कैन गो। यस आई सेड टू हिम कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता बट आप पोलाइटली बोल सकते हैं इसको, है ना, थोड़ा सिंपथाइज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर तो नॉर्मली मतलब ऐसा करते नहीं है, न जाने क्या हुआ है।
0: बोले कि हाँ वो कहते नहीं यू कैन गो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब वेरी रूडली। यस फिर उसके बाद एक और आई हॉस्पिटल में उन डॉक्टर्स ने काफी कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो तुम्हारा ट्यूबुलर विजन है और अब तुम घर में ही रह सकती हो, यू शुड नॉट गो टू मतलब लाइक रोड पे मत जाना, अब रोड पे जाने की तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम सड़क खुद से सोचोगे मैं क्रॉस कर लूँ और मैं आराम से खाना पका लूँ या कुछ भी ड्राइविंग मैं कर लूँ, इस तरह का स्विमिंग इस तरह का काम तुमको नहीं करना, यू शुड स्टे एट होम, है ना। तो उन्होंने कुछ कुछ मेरे को गाइड किया कि आप इस तरह से अब आप घर पे रहो एंड यू कांट डू एनीथिंग लाइक, है ना। ओके फिर उन्होंने मेरे थोड़ा सा यू नो कंसोल करने के लिए भाई सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया कुछ मेडिसिन खाते रहो, अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, है ना, विजन जितना है शायद इतना रुक जाए, जो थोड़ा बहुत 10% विजन बचा है वो शायद रुक जाए, लेकिन जो 10-15% बचा था ना विजन सर, वो माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हुई कि वो उसी साल चला गया।
1: तो
0: I was in you know depression, पूरा होता है ना एक आदमी का पूरा डिप्रेशन में मैं चली गई कि अब क्या जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, एवरीवेयर इट इज डार्कनेस।
1: और उन्होंने बेटे की बेटे का लालन पालन भी साथ में चल रहा है
0: वो सब तो मैं हाँ वो सब तो देखिए सिंस आई एम अ क्विक लर्नर तो शायद एक पहले से एक काफी होता है ना कि भाई हम लोग सुनते हैं कि एक भगवान कुछ और देता है हम लोग को और शक्तियां दे देता है, तो उन शक्तियों की वजह से मैं सारे काम खुद करने लगी, खाना बनाना है कपड़े धोना है एवरीथिंग, मतलब बच्चे का लालन सब कुछ अपने आप चलता गया। यस और आई वॉज हैबिचुएटेड टू सर्वाइव विद ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस के साथ ही मैं जिंदगी को आसानी से जीने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। फिर भुवनेश्वर में मैंने 3 दिनों की ट्रेनिंग की, वहां पर भुवनेश्वर में 3 दिनों की ट्रेनिंग की, मेरे पापा मेरे को लेके गए, तो वहां पर जैसे व्हाइट केन चलाना थोड़ा सीखा, कंप्यूटर में जैसे आपको थोड़ा दिख रहा है तो उन लोग जूम करते थे स्क्रीन को और जॉज वगैरह के बारे में पता चला, सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर उसके बाद में वहीं से मेरे को सक्षम ट्रस्ट के बारे में भी पता चला जो कि दिल्ली में है, और आई एम सो थैंकफुल टू सक्षम ट्रस्ट कि उन्होंने मुझे काफी गाइड किया सक्षम ट्रस्ट वालों ने।
1: और ब्रेल लिपि भी सीखी मैडम
0: जी? मैंने ब्रेल भी ट्राई किया सर, एक हमारे नोन में मेरे एक दूर के अंकल है उनको भी यही आती है, तो मैंने उनसे थोड़ा ब्रेल भी बेसिक सीखा, और लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैं झूठ नहीं कहूंगी मैंने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया बिकॉज मैं फिर कंप्यूटर सीखने लगी अपने आप, है ना, कंप्यूटर मैंने लोन लिया सक्षम से और फॉर्चुनेटली उन लोगों ने लोन दिया मुझे और धीरे धीरे करके लैपटॉप एक बाय किया उसी लोन के पैसों से, देन कंप्यूटर में जो NVDA सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करके साइबर कैफे वालों से करवा लिया, फिर धीरे धीरे करके हम समझने लगे कंप्यूटर की चीजें। और क्योंकि मैं 2008 में मेरा डिवोर्स भी हो गया था और इट वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस केस भी मैंने फाइल किया था, तो उस तहत आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट हुआ और मैंने सन की कस्टडी और डिवोर्स ये दोनों चीजें मांगी थी जो मुझे मिल गई, थोड़े बहुत मेरे पापा ने जो पैसे दिए थे कुछ 2-3 लाख रुपए वो मुझे मिल गए, दैट्स इट। और उसके बाद लाइफ चलो कि भाई अब अपनी जिंदगी है ना, तो मतलब अकेले की जिंदगी, आपके कोई तलवार नहीं लटक रही है सर पर, तो ये चीज जब दूर हो गई ना तो हम थोड़ा शांति से जीवन जीने लगे। यस तो बस 2008 में मैंने एक कोचिंग शुरू की जो कि मेरी विनर्स एजुकेशन है कोटा में एक, तो उन सर से कॉन्टेक्ट किया, वहां से मैंने फ्रेंचाइजी बाय की, सर से ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, मतलब ऐसे क्योंकि जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन ही सीखा उनसे जो भी नोट्स वगैरह सब सर ने मुझे दिए, गाइड किया कैसे पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो मैं खुद भी मतलब खुद भी अपना रिसर्चर है कि खुद भी पढ़ रही है कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है, सक्षम वालों ने मुझे इतना बताया मैंने इतना सीखा, लाइक है ना उन्होंने चीटी बताया मैंने हाथ ही सीखा कहते हैं, है ना। तो खुद ही एक्सप्लोर कर कि कंप्यूटर में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है सब कुछ ऐसे। और मेरे पिताजी इस मामले में मुझे बहुत उन्होंने सहयोग किया, मतलब ही वॉज अ लाइक कह सकते हैं कि आज मैं कहूँ कि जो भी कुछ हूँ पिताजी की वजह से हूँ। वो मुझे किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, इंग्लिश की ग्रामर की किताबें पढ़ते थे, पूरी रेनन मार्टिन किताब उन्होंने मेरे लिए पढ़ी, और भी जितनी किताबें होती थी सब मुझे, बैठते थे पढ़ के पढ़ते रहते थे, मैं सुनते रहती थी। ही वॉज लाइक डूइंग दैट, तो मेरे को हर जगह पे ले जाना, जैसे उनके पास एक एक्टिवा थी तो हर जगह पे मुझे ले जाना, झारसुगुड़ा में जैसे इनवाइट करते थे कि कहीं पे आइए पोइट्री पढ़िए, कहीं पर कुछ के लिए बुला रहे हैं, तो हर एक इवेंट में मुझे ले जाना, हर एक फंक्शन में हाथ पकड़ के ले जाना। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। मेरे मैंने जो डोमेस्टिक वायलेंस केस दिया था, मुझे कोर्ट ले जाना, सब कुछ उन्होंने किया। तो आज वो नहीं है, बट वट एवर आई एम, मैं उनके लिए क्रेडिट देती हूँ पिताजी को।
1: आपके जीवन में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है ऐसा समझ में आ रहा है।
0: बड़ा रोल रहा है जी, पढ़ाई लिखाई में भी, पूरे कोचिंग की स्थापना में, उसके पूरे पैम्फलेट छपाना, बैनर सब जगह लगवाना, पूरी कोचिंग की पब्लिसिटी करना, सारा कुछ सब कुछ मेरे पिताजी ने किया। अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती।
1: हम समझ रहे हैं कि आप भावुक भी हो रहे हैं उनको याद करते हुए। निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत ये जो दौर था वो मतलब उनके सपोर्ट के बिना आप बिल्कुल नहीं निकाल पाते।
0: तो ही वाज अ बैकबोन टू मी एंड मेरे हीरो भी रहे हैं सच कहूं तो। तो बस पिताजी की सहायता से, सहयोग से, वो कहते थे यू नो, मतलब जैसे कोई उनको कहता था ना, सर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ कि बेटी आपके पास रह रही है, कितना बड़ा बात है आप लोग बेटी को रखे हैं, तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ, मेरी बेटी पैसे कमाती है, तो सच में मायने में कहा जाए ना तो बेटी हमको रखती है, हम बेटी को नहीं रखते। मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब वो कहते थे लोगों को कि बेटी हमको रखी है, हम बेटी को नहीं रखे हैं, ऐसे कहते थे। तो उन लोगों का मुंह बंद कर देते थे जो लोग ये कहते थे कि अरे ये ब्लाइंड है, इसको कहां, मतलब तुम लोग इसको बोझा ढो रहे हो, ऐसे कहते थे, है ना। ऐसे भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं कि ब्लाइंड पर्सन खाना नहीं खा सकता था, ब्लाइंड पर्सन पानी कैसे पीते हो तुम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर, अजीबो गरीब। मैं आपको बताऊं, हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड लोगों के प्रति दो रुख है। मैंने क्योंकि मैं साइटेड के बीच में ही रही हूँ, मैं कभी कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में रही नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ साइटेड का रुख पता है कि या तो नकारात्मक है, पूरा नकारात्मक है आपके प्रति, या फिर आपके प्रति बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि सहानुभूति वाला, कि मतलब एकदम सहानुभूति, अपने से लो देखेंगे कि या छूट टाइप है, है ना, सहानुभूति दिखा रहे हैं बस, कि हाँ दया दिखा रहे हैं, तरस खा रहे हैं, वैसा एक ये रुख है लोगों का। और दूसरा रुख है कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों ने तो मतलब बिल्कुल कोई काम के नहीं, यूजलेस पीपल है, इनका होना नहीं होना समाज में नहीं होते तो ज्यादा बेटर होता हमारी सोसाइटी, ऐसा भी लोगों का रुख है। यस, तो ये नेत्रहीनों के साथ सिर्फ नहीं है सर, अदर दृष्टि दिव्यांगों के साथ भी है, अदर दिव्यांग जो जन है उनके साथ भी है, है ना। लाइक मतलब वी कैन बी बैगर्स और वी कैन बी सिंगर्स, राइट। मैं कड़वे शब्दों में यही कहूंगी कि वो लोग यही समझते हैं सर।
1: ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
0: है ना। तो ये बात है। तो जब कोचिंग चलने लगी और बहुत नाम कमाया सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ शायद क्योंकि कोई मेरे बिहाफ में यहाँ बोलने वाला नहीं है, बट मैंने बहुत नाम कमाया। स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो मैंने स्थापना की, वन एंड ओनली बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑफ आवर सिटी रहा, और भगवान ने बहुत बहुत तरक्की दी, मोर देन यू नो 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया, और सब साइटेड, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को, मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, हाउसवाइफ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जॉब सीकर, अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग दी है मैंने लोगों को, प्रिंसिपल्स तक को पढ़ाया है स्कूल के, तो बहुत टीचर्स, पूरा स्टाफ पढ़ाया है, कि बहुत सारे हमारी जैसे झारसुगुड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि वेदांत, आदित्य बिरला, भूषण, ऐसे बहुत से हमारे तो इंडस्ट्रियल जो है उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो ट्रेनिंग के लिए भी मुझे बुलाया जाता था, तो उसमें भी मैं जाती थी, पिताजी लेके जाते थे, तो ये सब भी है। इसके अलावा उसके बाद टाइप किया, टाइप भी हुआ, कई लोगों ने अप्रोच किया अदर कोचिंग सेंटर्स ने, तो दो कोचिंग सेंटर से मेरा टाइप हुआ, विद्या गुरुकुल, है ना, एंड शिक्षा कोचिंग सेंटर, ऐसे अपना एक है, उन लोगों ने टाइप किया, इन सब में भी मैंने उनके यहाँ भी जा रखे, मैं सैटरडे संडे पढ़ाती थी, जैसे अपना मंडे टू फ्राइडे अपना कोचिंग चला रहे हैं और बाकी दिन सैटरडे संडे इनके यहाँ जा करके पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से भी ट्रेनिंग दी लोगों को। तो पूरा फुल बिजी, लाइफ वाज फुल बिजी, मतलब सिंस 9 o'clock
1: उस समय, मतलब आपने यही लक्ष्य बना लिया कि बस अब तो मुझे,
0: हाँ पूरा 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक, मतलब मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, इतनी बैचेस, मतलब 9 से 10 बैचेस में पढ़ाती थी सर, 1 घंटे की हमारी एक बैच होती थी। तो बहुत बहुत सक्सेस मिला कोचिंग बिजनेस में, और फिनेंशियली भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, और उसके बाद में बुक्स लिखना शुरू किया सर, बाकी टाइम पे फिर किताबें लिखना शुरू किया। तो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर मैंने 4 किताबें लिखी हैं और एक ग्रामर की बुक लिखी है, तो 2 मैंने कोर्स बुक लिखी सर और 2 लिखी वर्क बुक हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और ये हमारे जो विनर्स एजुकेशन के सर रहे डॉक्टर आनंद पियाहूजा, उनके गाइडेंस में मैंने लिखी, तो उन्होंने भी काफी इसमें करेक्शन मुझे बताए। तो ये जो 2 कोर्स बुक है और जिससे मैं पढ़ाती हूँ जिसके, और 2 हमारी वर्कबुक है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, तो ये चीजें हैं। और मैं आपको अच्छी बात एक और बताती हूँ सर, आप खुश हो जाएंगे सुन के। तो मैंने जितने भी डिजेबल स्टूडेंट्स हमारे रहे, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी हूँ शुरू से, ये मेरा
1: एक हाथ।
0: और कई लड़कियां आती थी जैसे बहुत पुअर बैकग्राउंड से, किसी के जैसे फादर नहीं है तो मामा क्या रह रही है नहीं है, तो उन लड़कियों को भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया है, जिसका कहते हैं ना उनका आशीर्वाद होता है, तो उस आशीर्वाद से हम इतना फले फूले, तो ये मैंने किया, कोशिश की। लेकिन चूंकि वो जो हमारा एरिया था ना, वहाँ पे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट था ही नहीं, तो क्या किया जाए, तो भाई हम कोशिश करते थे कि कहीं से कोई मतलब इस तरह के लोगों की हेल्प मिले, तो कुछ गरीब लड़कियों को भी जैसे पढ़ाया जो मिले सो मिले है इस तरह के, तो ये चीजें हमने की। उसके बाद इस तरह से सिलसिला चलता गया और किताबें लिखी, और चूंकि किताबें भी लिखी और कोचिंग भी पॉपुलर हो रही थी और उड़ीसा में काफी नाम हो गया था कि भाई ऐसे ऐसे एक ब्लाइंड लड़की है और पढ़ाती है और किताब भी लिख डाली है, तो एक अजूबा होता है सर कि सब देखने आते हैं। तो काफी इंटरव्यूज हुए उस दौरान, जैसे हमारे उड़ीसा में एक OTV है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा चैनल है, तो उसमें इंटरव्यू हुआ और उसको 4 लाख लोगों ने देखा था उस इंटरव्यू को, तो उस समय पे, और तो काफी मतलब बहुत बहुत फोन आते थे। और अच्छा इसमें सर मैं आपको एक बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा कई लोग ना शादी का प्रस्ताव रखते थे, अच्छा जी जी
1: आपने कहा होगा भाई ये गलती दोबारा नहीं करनी है।
0: नहीं नहीं सर, देखिए एक तो मारवाड़ी फैमिली और हमारा इस तरह का अपब्रिंगिंग नहीं है ना हमारे समाज में, हम जिस तरह के माहौल में,
1: और फिर क्या होता है ना कोमल जी, जब जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है तो फिर इन सब बातों के बारे में फिर सोचने का कोई मतलब भी नहीं
0: सोचता इंसान है ना, नहीं सोचता बस है ना, क्योंकि उस समय हमारे सर पे देखिए पहले फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधरे, वो सही हुई है ना, उसके बाद देखिए बेटे की जिम्मेदारी रही एज अ सिंगल पेरेंट, उसमें भी मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए है ना, और ईश्वर की दया से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से देखिए आज बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, 25 इयर्स का है और अपना पार्ट टाइम कुछ कुछ कर रहा है, अपने कंप्यूटर का भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है धीरे से करके, शॉप भी एक ओपन करेगा अभी और स्टार्टअप है उसका अभी, हाँ जी। तो अब जब वो मुझे कहता है कि मम्मी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, यस आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ नहीं, मैं जब तक मैं मेरी सांस है तब तक मैं काम करना है मुझे, तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहा था। भगवान की दया से देखिए पापा ने बेटे ने, इवन मेरी मदर के बारे में जरा बात करूंगी कि मेरी मदर शुरू से मतलब कोई काम नहीं घर का करना है, देखिए अगर हम घर का कुकिंग करने लगे सब करने लगे तो बड़ा फिर कुछ का काम नहीं कर सकते, तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि घर का कोई काम तुमको करना नहीं है, तुम अपना सेटल, तुम अपना काम करो, तुम अपना लिखो पढ़ो, तो अध्ययन अध्यापन लेखन ये तीनों चीजें मेरी मदर के सपोर्ट की वजह से चलता रहा, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते थे जी, तो ये बात हुई। लेकिन कहते हैं कि सब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती है, तो क्या हुआ कि 2017 में पिताजी को कैंसर हो गया,
1: अच्छा
0: ओरल कैंसर जी, तो ओरल कैंसर हो गया और ओरल कैंसर की वजह से फिर वो काफी सफर किए, और मेरे मदर फादर जैसे ट्रीटमेंट के लिए फिर बाहर रहे, भोपाल में रहे काफी समय तक, वहाँ इलाज चलते रहा, मैं यहाँ पे बेटे के साथ मैं अकेले रहती थी, अपना लाइफ इंडिपेंडेंट थोड़ा ठीक है, अपना काम भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। सर्जरी भी हुई पिताजी की, है ना, लेकिन बस ये समस्या हुई कि 2018 में फिर उनका देहांत हो गया। वो सफर नहीं, वो कीमोथेरेपी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सके। तो इन द ईयर 2018 वाज एक्सपायर्ड। सो दैट वाज अ ग्रेट लॉस टू आवर फैमिली। तो बहुत ग्रेट लॉस हुआ। और सर मेरी ऐसे लैब पे उन्होंने इसे रखा हुआ था व्हेन ही गॉट एक्सपायर्ड। इट वाज द लास्ट उनका था। एंड उनका मेरा बहुत हार्ट एक फुल कनेक्शन है ना, वो रहा। तो पिताजी के जाने के बाद काफी हम लोगों ने मदर को बहुत संभाला। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि देखिए, क्योंकि अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। तो मदर को संभाला, मदर संभल भी गई, वो भी समझी बातों को कि नहीं उसको लेकर के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है जीवन में। तो फिर उसके बाद में पिताजी की डेथ के बाद इन द ईयर 2022 में हमने शहर छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा पापा की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था भाई से, है ना। तो फिर उसके बाद में उसको सेल आउट करके हम लोगों का जो भी बंटवारा होता है दैट इज वो होके फिर उसके बाद में हम छत्तीसगढ़ आ गए। और यहाँ से फिर कहते हैं अभी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ। दैट इज तो ये
1: छत्तीसगढ़ में कौन से शहर में आप?
0: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के थोड़ा पास में सर, इट्स अ कस्बा टाइप एक जगह है, बिलाईगढ़ एक प्लेस है वहाँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी।
1: तो आपने छत्तीसगढ़ ही आने का कैसे सोचा?
0: हाँ, क्योंकि मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं और उन्होंने हमको सपोर्ट किया। एंड उन्होंने ही हमको यहाँ पर ला करके कि भाई अब मैं हूँ, है ना, एज अ फादर तुम्हारे यहाँ पर। फिर जमीन वगैरह
1: 2008 से लेके 2022 तक पूरा आपने ओडिशा में ही अपने आपको मतलब
0: बचपन से ही पूरा
1: सरवाइव भी किया, फ्लरिश भी किया, और सारे मतलब अच्छे बुरे दौर वहीं देखे आपने।
0: सब सब।
1: एक बात बताइए मैम, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि भाई ब्लाइंडनेस को लेकर के, यानी दृष्टि बाधित लोगों को लेकर के जानकारी का बहुत अभाव था और जागरूकता भी नहीं थी लोगों में
0: जी।
1: तो ये बात समझ में आती है और ऐसा है भी, लेकिन जब आपने कोचिंग शुरू की
0: जी,
1: तब लोगों के मन में नहीं आया कि एक ब्लाइंड टीचर हमें क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, हम कैसे इसके इनके पास जाएं पढ़ने के लिए, और फिर आपको इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे मिलने लगे?
0: जी जी जी, मैं वही बताती हूँ। सी देखिए, एक तो रेटिनाइज पिगमेंटोजा जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी आईज की बनावट वगैरह सब कुछ अच्छी है, तो नोबडी कैन जज बाय सीइंग यू कि आप ब्लाइंड है, पहली बात तो ये। तो हम अच्छे खासे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, और फिर प्रेजेंटेबल भी हैं। तो ये भी चीजें रही, है ना, जिसने एक प्लस एड ऑन किया।
1: यानी किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनको पढ़ाने वाला टीचर जो है वो शायद
0: ब्लाइंड है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन देखिए, क्योंकि चूंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ सब चीजों के प्रति, तो मैं हमेशा कोई भी पर्सन मेरे पास एडमिशन करता था तो मैं उसको पहले बताती थी, है ना, ताकि आप शिकायत ना करो कल को। ओके, और वो लोग वैसे भी देखिए सर, मेरी जो पब्लिसिटी हुई ना वो ओरल रही, माउथ टू माउथ रही, कि भाई एक ने किसी को बताया अच्छा पढ़ाती है इनके पास, और सबको पता था मैं ब्लाइंड, मैक्सिमम सबको पता था कि मैं ब्लाइंड, जो भी आता था। और जिसको दो चार इक्के दुक्के को नहीं पता होता था तो वो पता चल जाता था एक दूसरे से। और कई कई तो सर ऐसे भी थे कि 6 महीना पूरा कोर्स कर डाला, उनको पता नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ। एक एक ऐसा भी इंसिडेंट मेरे साथ रहा, ऐसे भी रहे मेरे साथ में, है ना। तो क्योंकि मैं आई कांटेक्ट भी करती हूँ, बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ, आवाज को रिस्पॉन्ड भी मैं बहुत
1: तरीके से। आपने रेंटल जो बिल्डिंग है वो रेंटेड ले रखी थी, अपना कुछ खुद का ही खरीद लिया था, कैसे कर रहे थे आप?
0: जी नहीं, पहले तो मेरे पिताजी का जो थोड़ा छोटा हाउस था, एक थोड़े अबंडेंट हाउस भी कह सकते हैं उसको, फिर तो वो बहुत काफी दुर्दशा हो गई उसकी, खराब हो गया हाउस, तो फिर रिपेयर कराने की स्थिति नहीं थी। तो फिर हमने रेंट पे हाउस लिया, वहीं पर एक कोचिंग सेटअप डाला, जैसे एक बड़ा सा
1: उसी पर ही करते रहे थ्रू आउट।
0: हाँ, बस एक हॉल जैसे था, तो उस पर कोचिंग सेटअप डाली, अंदर में अपने रूम्स वगैरह है, क्योंकि अब जाने आने की तो सर सुविधा नहीं है। देखिए, रोज कौन जाएगा, फिर उसको मेंटेन भी करो, स्टाफ भी रखो, ये सब मैं नहीं सक सकती थी। तो मैंने सोचा जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, तो घर पे ही एक हॉल में सेटअप डाला कोचिंग का, दैट वहीं पर डेस्क वगैरह बेंच वगैरह लगा के सेटअप कर लिया, और बस इस तरह से कोचिंग चलने लगी हमारी। और बाकी फिर जहाँ भी जाती थी पिताजी के साथ जाती थी, और वहाँ पे जो स्टाफ रहते थे वो सब लोग कोऑपरेट करते थे। तो
1: ये ओडिशा में कौन सा शहर बता रहे हैं आप? जादू
0: झारसुगुड़ा जी, झारसुगुड़ा सर, JHAR झारसुगुड़ा। हाँ, ये बिल्कुल राउरकेला के नजदीक है सर, और ये वेस्टर्न ओडिशा में आता है, और इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत फेमस है।
1: तो एक बात बताइए, जब आपकी कोचिंग चल निकली और जब कहना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आ गए
0: जी,
1: तो आपके हस्बैंड की साइड से लोगों ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे कभी या नेवर?
0: सर कोशिश किया था बट वी डिड नॉट, हम लोगों ने कभी पलट के नहीं देखा
1: ये, क्योंकि मेरे मन में एक बात आ रही थी कि शायद ऐसा हुआ हो कि मन में थोड़ा उनके भी आया हो कि यार चलो
0: वो थोड़ा सन का थोड़ा था सर, तो सन के प्रति थोड़ा रुझान रहा होगा तो, लेकिन सन ने फिर नहीं देखा कि जिसने मतलब हमको पहले नहीं अपनाया है ना, एक बार जो ठुकरा दे सर उसके तरफ पलट के देखने का कोई सेंस नहीं है, तो ये बात बेटे को पता है बहुत अच्छी तरह से जी।
1: बिल्कुल ठीक बात है, बहुत जबरदस्त मतलब संघर्षों से आपने आज एक तरह से मुझे लगता है कि कहना चाहिए ब्लाइंड जगत की नीतू मैम हैं आप, दिल्ली में है एक नीतू सिंह मैम है, इंग्लिश की कोच हैं शायद, उनका भी ऐसे ही कोचिंग सेंटर चलता है। तो दुनिया मतलब वही बात है कि आपके संघर्ष की कहानी मेन स्ट्रीम में मुझे लगता है जानी चाहिए, वो उनके बारे में लोग बातें करते हैं, उनकी कहानी आती है, लेकिन आपका संघर्ष किसी भी मायने में उनसे कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक कदम ज्यादा ही है। खैर सबका अपना अपना संघर्ष होता है,
0: अब इस
1: कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आपको सुनेंगे उन्हें पता चलेगा डेफिनेटली, और लोग इस बारे में आगे भी चर्चाएं करेंगे। और श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, कार्यक्रम है मन की आंखों से, और आज क्या कहना चाहिए, बहुत सारे आयाम हैं, अभी तो हमने इनके लेखन कार्य के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है, बात कर रहे हैं कोमल अग्रवाल मैडम से जो कि अपना कोचिंग सेंटर चला चुके हैं, लाइफ कोच रह चुके हैं, लेखिका तो वो हैं ही बहुत अच्छी, और दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने ये सब काम किए हैं, और वो भी तब जब समाज ने उनके संघर्ष को पहचाना नहीं, समझा नहीं, और कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया। खैर तो अब आपके बारे में कोमल मैम बात करते हैं कि लेखन कार्य की शुरुआत दरअसल कैसे हुई
0: जी। मैं सर तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखती हूँ, अभी आपने एक रुख फोकस ऑन इंग्लिश ट्रेनिंग और मेरे पर्सनल लाइफ से संबंधित सुना, अब मैं आपको सुनाती हूँ जो हार्ट के बहुत नजदीक रहा, बहुत नजदीक के दिल का रिश्ता है जिसे, तो वो है लेखन और कनेक्टिंग ड्रीम्स।
1: एक बात तो हमें ये समझ में आ रहा है मैडम, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि चूंकि आपने जिंदगी के इतने आयाम देखे हैं, आपकी लाइफ के इतने शेड्स हैं, तो कहीं ना कहीं लेखन के फील्ड में तो मतलब जाना लगता है कुदरत भी चाहती थी कि आप जाएं उस ओर तो
0: जी। और मेरे पिताजी भी शायर थे, वो भी लिखते थे कविता वगैरह और शायरी लिखते थे, तो मैं उनसे भी कहीं ना कहीं एक जीन आता है जो रहता है, तो वो भी रहा
1: जी। आप बताइए,
0: क्लास 10 में सर मेरी पहली जो कविता जिसकी है मुझे तलाश, ये संवेद शिखर एक अखबार में प्रकाशित हुई, जिसकी मेरे पिताजी जिसको बेचते थे हॉकर जैसे, मतलब यू नो जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना न्यूज़पेपर के, तो वो काम कर रहे थे उस समय पे, तो काफी अखबारों के वो मतलब सेलिंग करते थे और लड़कों को।
1: आपको याद हो तो मैम दो लाइनें हो जाए
0: जी, बिल्कुल सर होती है तो वो पहली कविता थी सर जिसकी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं सुनाती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो सोचती हूँ आखिर वह क्या है, सोचती हूँ आखिर वह क्या है जिसकी मुझे तलाश है, है वह मंजिल यही कहीं या पूरा आकाश है, सपनों का वह नीड़ कहाँ, कागज की वह नाव कहाँ, मेरे बचपन के वो साथी अब तक मन के पास हैं, मन मेरा बेचैन है, अधरों पर भी प्यास है, अस्तित्व खोजती मैं अपना, कहो किसी ने देखा क्या, मेरी मंजिल मेरा आकाश, जिसकी है मुझे तलाश, जिसकी है मुझे तलाश।
1: बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
0: तो ये सर प्रथम कविता जब पब्लिश हुई ना, तो मैं हवा में उड़ने लगी, अब मुझे लिखना आ गया है ना, काफी मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर जो यू नो ब्लाइंड लोग आप जानते हैं बहुत इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार होते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात भी नहीं करता है उनसे, इतना दोस्त नहीं कुछ नहीं, तो मेरी डायरी मेरी दोस्त बनी, सिर्फ डायरी में सिर्फ लिखना लिखना अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें, कहीं पढ़ रहे, पढ़ना और लिखना बहुत शौक रहा, और चूंकि मेरे ताऊजी की किताब की दुकान थी तो मैं वहां से किताबें लाती थी, बहुत राइटर्स को पढ़ी सर, एक से बढ़कर एक राइटर जिनका नाम कहां कहां सुनते थे, कोर्स की किताबों के साथ जनरल रीडिंग बहुत किया, रामधारी सिंह दिनकर, निराला,
1: जबकि आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी तो तब तब यह हाल है ना।
0: तब किताब ऐसे घुस घुस के पढ़ रहे हैं सर, इतना शौक है, मतलब आंखें खराब हो रही है तो हो रही है, लेकिन पढ़ना है।
1: तो मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि श्रोताओं देखिए पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं होता है।
0: जी
1: जी,
0: तो मैं किताब लाती उनसे है ना, और पढ़ के वापस एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से रख के कि किताब खराब नहीं होनी चाहिए, तो किताब ला करके वापस पढ़ करके वापस लौटा दी थी। ऐसे कर करके सर किताबें पढ़ती रही, तो ये एक बहुत एक अच्छी चीज रही। और उसके बाद पहला उपन्यास मैंने शुरू किया था जिसका नाम था खामोशी से आवाज तक, लेकिन वो जला दी गई थोड़ा सा है ना लॉस यहाँ। तो अब मेरे पास वो उपन्यास नहीं है जिसका मैंने आधा से भी ज्यादा उपन्यास लिख चुकी थी मैं, है ना। तो हाँ, तो वो कहते थे कागज काले करती है, तो है ना लिखने आई, मतलब पांच पांच छह छह डायरी ऐसे भरी हुई रहती थी, खाली लिख रहे हैं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ये काम चलता रहा। मतलब डेली रूटीन जो चल रहा है कि भाई खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं घर का, इसके अलावा जितना भी समय मिलता था ना वो पठन पाठन अध्यापन ये सब में स्टूडेंट्स को भी, जैसे कुछ बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं शाम को, इससे अपनी जीविका भी चला रहे हैं, ये सब चलता रहा सर। और रात रात भर पढ़ती थी। उसके बाद सर जब पढ़ने का आया कि भाई अब ब्लाइंड हो गए अब कैसे पढ़े, तो सक्षम प्रेस ने मुझे बहुत हेल्प किया सर। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने सैकड़ों किताबें वहां से सीडी में मंगाई, मैं उन लोग को बोलती थी मेरे को इतनी भेज दो, उन लोग मेरे को बोलते थे नहीं इतने अलाउड नहीं है, आप लिमिट में मंगवाइए। 10 रुपए सर एक का, एक सीडी का लेते थे। और मैं बहुत जनरल रीडिंग बहुत किया, चूंकि मुझे फिक्शन पढ़ने का बहुत शौक रहा और नॉन फिक्शन में बहुत कम पढ़ी हूँ मैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है। तो कल्पनावादी संसार होता है ना, उसमें बस उड़ रहे थे कि
1: उसमें बस की उड़ान, तो बस एक बार जब घुस गए तो निकलने का कोई मतलब नहीं।
0: तो फिक्शन बहुत पढ़ा, शिवानी को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, डॉक्टर सूर्य बाला सिन्हा, ये सब मेरी फेवरेट राइटर रही हैं, प्रेमचंद जी रहे है ना, विमल मित्र, तो इन सब लोगों को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। एक जैसे राइटर की पसंद आती तो उनके और मंगाती, और कोई बुक है क्या, उसको खोजती बैठ के। तो इस तरह से सक्षम ने काफी हेल्प की। एनएबी से भी मैंने किताबें मंगवाई जो जो यहाँ नहीं मिलती थी, उधर बुक शेयर का भी मेंबरशिप लिया और इस तरह से पढ़ते रहे। तो ये रहा। और 2020 में सर आ गया अपना कोरोना, तो अब रहा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग, ये एक बड़ा डिजास्टर लाइफ में आएगा कि भाई कोचिंग अब बंद हो गई, अब क्या किया जाए। तो आपको पता है मेरे बेटे ने मेरे को गूगल मीट वगैरह चलाना सिखाया और बोला मम्मी आप इसमें क्लास करो। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात रही। बोलते कोरोना लोगों के लिए समस्या लेके आया, बहुत समस्याएं लेके आया, लेकिन उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, और सिर्फ मैं वहां के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, इवन मेरे पास उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के और लोग भी आते थे, और दो दो महीना जैसे यू नो औरतें अपने मायके में रहती है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे पास क्लास करवाने के लिए दो दो महीना रहते थे और पढ़ते थे, लेकिन सब बाहर के लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो लोग पूछते थे कोई प्लेटफॉर्म है क्या पढ़ने का आपके पास, मेरे पास तो नहीं है भाई पढ़ने का, वीडियो ऑडियो दे दो बोलते थे, मैं बोली नहीं नहीं मैं वो नहीं दे पाऊंगी। तो कोरोना के समय में जब गूगल मीट से स्टार्ट किया पढ़ाना, तो बहुत लोग जुड़े जो लोग चाहते थे, और सब लोग मेरे को अप्रोच करते थे कि भाई हम कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्त भी, मेरी सहेलियां भी बोलती थी कि कोमल मुझे पढ़ा दे। तो सब मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर और लोग जुड़ते गए। फिर उसके बाद डिजिटल थोड़ा मार्केटिंग किया बेटे ने, और उसके बाद हमको कोविड के समय में भी इवन हमारे पड़ोसी तक हमसे ऑनलाइन पढ़ने लगे। तो जी, तो इस तरह की चीजें हुई। तो कोविड ने मुझे और स्टूडेंट्स दिलाए जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन में नहीं थे, बहुत बहुत किया क्लासेस। और इसी दौरान तब जो क्लब हाउस एक ऐप से जुड़ी मैं, और वहां पर हमने अपना एक क्लब स्थापित किया, उससे मैं स्टार्ट की कि भाई विजुअली चैलेंज्ड लोग सब एक जगह पे इकट्ठा होकर के अपने टैलेंट को कैसे शोकेस कर सकते हैं। तो क्लब हाउस से मैंने ये अभियान शुरू किया, और यहाँ से उसके बाद हम लोग देखे कि जैसे मेरे को लोग क्या बोलते थे कि देखो कि हम लोग वीडियो बना नहीं पाते, इसलिए हमारे यूट्यूब में चैनल पॉपुलराइज नहीं है, ये हुआ। तो मैं उस समय लिख भी रही थी, और पहली जो मैंने कहानी लिखी, पहली कहानी तो नहीं जो मतलब जिसको लोग बहुत पढ़े, कहानी तो बहुत सी लिखी क्योंकि मेरी काफी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई कहानियां। और मैं आपको बताऊं सर, 2002 में 3 में मैंने नवभारत में भी लिखा हुआ है, उसमें आर्टिकल आता था पर्सनालिटी ऑफ द वीक, उस समय मैंने वहां पे भी लिखा हुआ है। मैं महिला समिति की सेक्रेटरी थी जिस जगह पे मेरी शादी हुई थी वहां पर, तो वहां पर भी मैं काम कर रही थी लेखन का, और वहां पे सचिव का काम कर रही थी, चूंकि लेखन का ही काम है ये सब, तो मेरी बहुत सी इवन राजस्थान के भी कई भरतपुर से एक मैगजीन निकलती थी महावैश्य सम्मेलन, उसमें भी कविताएं कहानी पब्लिश हुआ करती थी छोटी छोटी, तो ये सारी चीज हुआ करती थी। तो उसके बाद में एक कहानी मैंने लिखी जिसका नाम था कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। तो ये विधवा पुनर्विवाह पर एक 10 पेज की कहानी थी। इसको मैंने सब ग्रुप में जब भेजा तो मुझे बहुत से फोन आए, बहुत लोग फोन करने लगे वीआई कम्युनिटी से कि आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, आप साइटेड हो क्या, क्योंकि आपने जो नायिका है उसकी साड़ी के फूलों का वर्णन किया है, उसके केश कैसे है वर्णन किया है, वो किस कलर की बिंदी लगाती है आप बताते हो, तो क्या आप साइटेड हो, है ना। और चूंकि मेरी फोटो भी जैसे कोई देख रहे हैं जो लोग, है ना, जो लो विजन वाले भी देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लाइंड है कि क्या है, तो फिर ये भी एक रीजन रहा कि सब पूछते थे नहीं नहीं आप साइटेड ही होगे जरूर, है ना। तो ये मिथ बना रहा काफी समय तक, तो लोगों को ये समझने में देर लगी कि मैं ब्लाइंड हूँ। ओके ये बात है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं मैं सच में ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं दिखता है। ओके तो ये रही, तो उस पे मेरे को कई लोगों ने बोला कि इस पे एक ड्रामा बनाना चाहिए, प्ले बनाना चाहिए, तो प्ले बनाना चाहिए, तो चलो प्ले बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड थे नहीं है, विकास शर्मा जी हैं, ये साइटेड है मुंबई से, और ये मेरे को मिले टीम विजन, एक मुंबई में एक संस्था है जो कि विजुअली इम्पैक्ट के लिए काम करती है, उसमें ये एंकर वगैरह का काम करते हैं और मेंबर है टीम के। तो मैंने इनके एक पोइट्री कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था ऑनलाइन कोविड के समय में, और मुझे इसमें इन्होंने अवार्ड किया था। तो अच्छा। वो जब ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने लगे तो उनके साथ में मेरी बातचीत होने लगी, तो मेरे को पता चला कि ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है, और मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं ब्लाइंड लोगों के साथ में, तो उनके साथ में हमारा एक कहते हैं ना एक कनेक्शन बरकरार रहा। तो ये कनेक्शन मेरे को काम आया कनेक्टिंग रिम्स की स्थापना करने के लिए।
1: जी
0: जी,
1: तो यानी अब आपने अपना खुद का एक तरह से एक कहना चाहिए कि सोशल वेंचर शुरू कर दिया है,
0: कनेक्टिंग वेंचर शुरू किया जिसका नाम कनेक्टिंग बींग्स दिया, और ये हमारी वीआई कम्युनिटी के लोगों और साइटेड लोगों के बीच का एक वीआई भी नहीं अदर दिव्यांगता भी इसमें है, सब लोग हैं, तो एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, एक पहल है जिसमें हम लोग हमारे जो वीआईज हैं, अदर डिजेबल पीपल हैं और साइटेड भी हैं, उन सभी के टैलेंट को शोकेस करने के लिए, उनके भीतरी गुणों, उनकी जो प्रतिभा है उसको सामने लाने के लिए एक प्रयास है। तो एक मंच हुआ, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पहले बना, उसके बाद हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें हमारे सभी जो भाई बहन हैं दृष्टिबाधित, मैक्सिमम दृष्टिबाधित हैं, तो इन सभी की किसी की कविता, किसी का भजन, किसी का गीत, किसी की कहानी, ये सब कुछ इसके अंदर आती है। तो हमने पहली ऑडियो सीरीज 19 एपिसोड की बनाई, कैन आई होल्ड योर हैंड, खूबसूरत एहसास। पहले मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, योगेश गोयल, ये आगरा से हैं, और इन्होंने मुझे एडिटिंग के लिए बहुत सहयोग किया और मुझे गोल्ड वेव की एडिटिंग सिखाई, तो मैं उनके प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये भी एक ब्लाइंड पर्सन है और एक्सेसिबिलिटी टेस्टर है, तो इन्होंने मुझे सिखाया, उसके बाद मैं खुद भी ट्यूटोरियल सबसे देख देख के सीख गई, तो एडिटिंग भी आ गई। तो लिख रहे हैं, हमारे सभी ब्लाइंड लोगों को जोड़ा सबसे फोन पे बात करके, व्हाट्सएप चैटिंग कर करके कि भाई आप आओ जूम पे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे कहानी, स्क्रिप्ट लिखी गई पूरी, और सब लोग बोलते थे कोमल नहीं हम लोग कभी डायलॉग नहीं बोले हैं। मैंने बोला इसीलिए आप लोग बोलो, क्योंकि अंदर का डिप्रेशन निकलेगा, हीन भावना निकलेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होगी। तो मैंने उन लोगों से काम करवाया जो लोग कभी एक लाइन नहीं बोले थे किसी प्लेटफॉर्म पर, तो सब लोग, हमने किसी पॉलिश्ड किसी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं किया संदीप सर, ये मैं आपको सबसे पहली बात बताती हूँ, 0% इन्वेस्टमेंट पे काम किया, किसी को एक रुपए नहीं दिए, ना म्यूजिक के लिए नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, खुद म्यूजिक बनाया, आयशाला से बनाए, फ्री ऐप से बनाए, है ना, आयशाला से किए, तानपुरा में चला रहे हैं और गाना सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी टीम में लोग जुड़ते गए। मैं इसमें नाम लेना चाहूंगी आपके जयपुर से श्री ओम वेनावरिया, जो बीएड कंप्लीट किए हैं और ये संपूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, ये हमारे चैनल से जुड़े, इन्होंने हमारे चैनल के लिए बहुत काम किया है और अभी भी कर रही है। तो ये लड़का मतलब बहुत अच्छा लिरिसिस्ट, पोएट, राइटर सब है, तो इन्होंने भी कनेक्टिंग ड्रीम्स के एज अ लाइक कोर मेंबर की तरह से, और सचिव भी कहते हैं, सचिव की भूमिका में भी ये हैं अभी, और विकास शर्मा जी को फाउंडर है और इन्होंने जो भी वीडियो एडिटिंग हमारे चैनल पे होती है, अपलोड का जो सिस्टम है, टेक्निकल जो भी इश्यूज होते हैं सारे यही डील करते हैं, और जो साउंड से रिलेटेड काम है, ऑडियो से रिलेटेड, वो सारा कुछ मैं करती हूँ और ओम भी नावरिया बेस में ऑडियो लैब से करते हैं, मैं गोल्ड वेव सेट करती हूँ। तो ये कनेक्टिंग टीम हमने बनाया, इसमें हमारे चार कोर मेंबर और है जिनका नाम क्रमशः सुरेश शर्मा, अभय गोयल, सुधांशु कुलश्रेष्ठ और रजनी गर्ग है। तो ये हमारे

0: दहेज एक कुप्रथा, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे कि दहेज क्यों बनाई, तो दहेज एक कुप्रथा, ये मैंने एक
1: बिल्कुल समझ गया मैं। वो वही वही कहा ना कि जो जिया है वही लिखा है।
0: तो विधवा पुनर्विवाह पर कहना ही हो जो हन बनाया, एक अनबुझी प्यास जो है वो समाज की दोहरी मानसिकता पर कुठाराघात करती हुई एक सशक्त कहानी है, जिसमें एक वुमेन की कहानी है कि एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का एक डिसीजन वो रहा उसमें। तो ये तीन हमने बनाई, और इसके अलावा हमने ब्लाइंड लोगों के ऊपर एक मूवी बनाई जिसका नाम है यस आई एम 40। सर आप देखते हैं कि हम लोग आवाजों से जज करते हैं ना कौन कितना एज का है,
1: जी
0: तो हमने इस पर एक बहुत ही लाइट हार्टेड एक मूवी बनाई है यस आई एम 40। आपको जरूर देखनी चाहिए और सभी को देखनी चाहिए, बहुत ही सुंदर। हमारे सभी ब्लाइंड आर्टिस्ट ने इसमें काम किया, 12 लोगों ने तकरीबन इसमें काम किया है, और बहुत सुंदर इसमें ब्लाइंड लोगों की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के कि वो लोग कितने एफिशिएंट है वो भी हमने दिखाया है इसमें, वो किस तरह से जॉर्ज को यूज करते हैं और जॉब में है, बैंक में एक जन जॉब कर रहा है, जो लड़की है वो एक और ऑफिस में है। तो ये हमने एक तरह से हम एक्साइटेड लोग सब हमारी जब देखते हैं इन ऑडियो सीरीज को सुनते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मतलब कर सकते हैं, तो हमने एक्साइटेड तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। हाँ ये हो
1: बहुत
0: सकता है कि
1: खूब
0: हम बहुत बहुत रीच नहीं है लेकिन इन फ्यूचर
1: हो
0: होगा,
1: जाएगी
0: आज
1: बिल्कुल।
0: कल
1: आज नहीं तो कल जो
0: आज
1: सोचा है वो
0: अगर
1: तो होना ही वाला है। जी हाँ
0: हम आज 4-5 हज़ार लोगों तक पहुंच पा रहे हैं तो हो सकता है कल ये संख्या में जीरो और लग जाए, तो ऐसा हो
1: बिल्कुल।
0: सकता है। हम पॉजिटिव कहते हैं कीप योर फेस टू द
1: एक के अनेक
0: सनशाइन।
1: जीरो लग जाएंगे,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: अनेक जीरो लग जाएंगे और अनेक हीरो मिल जाएंगे, अनेक हीरो बन जाएंगे
0: जी
1: आपकी इस मुहिम के माध्यम से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी तक कौन-कौन से नॉवेल्स और कहानियां और कविताएं आपने लिखी हैं या ड्रामास लिखे हैं, कुछ याद आ रहा हो? कितने मतलब टोटल, ऐसे
0: बिल्कुल
1: एक
0: मैम
1: संख्या में कभी
0: बिल्कुल
1: नोटिस हो? जी
0: जी हाँ, संख्या में अगर हम मैं बताऊं तो 3 ऑडियो सीरीज हमने बनाई जिसकी कहानी स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके बाद 3 हमने मूवी बनाई। इसके अलावा मेरी जो कहानियां हैं वो सर अभी तक अगर जो पब्लिश नहीं हुई है, मैं उनके बारे में बताऊं कि 50 से भी अधिक मैंने लिखा हुआ है कंटेंट, कहानियां कविताएं तो सर भरमार है, 100-200 भरमार है कविताएं, तो ऐसी है कि मतलब
1: और
0: करने
1: उपन्यास
0: का समय नहीं है। उपन्यास सर ऑफिशियली मैंने एक उपन्यास रिलीज किया है का नाम कहना ही हो जो और हैंड है, जो उपन्यास की शक्ल में भी है। इसके 3 सीजन है सर, 3 वॉल्यूम में है, तो पहला सीजन मेरे ही चैनल पर अपलोडेड है, मेरी आवाज में रिकॉर्डेड है, और 115 भाग हम इसके रिलीज कर चुके हैं, और ये उपन्यास हम अभिव्यंजना प्रकाशन के तहत हम लोग इसको पब्लिश करने जा रहे हैं। अगले साल तक में भी ये पब्लिश हो जाएगा, और मैं अभिव्यंजना प्रकाशन के बारे में थोड़ा सा आऊंगी,
1: एक
0: डॉक्टर किशोर कुमार दास पथिक का ये प्रकाशन है जी, तो
1: बहुत
0: वो
1: अच्छी
0: भी
1: बात है। एक
0: ब्लाइंड
1: मेरे मन में, अच्छा वो भी ब्लाइंड पर्सन है।
0: जी बिल्कुल टोटली ब्लाइंड है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो जाकिर हुसैन कॉलेज है उसमें सीनियर प्रोफेसर है
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब। तो कभी
0: जी,
1: अगर
0: इनका हमारे साथ टाई अप
1: अवसर
0: है कोलैबोरेशन
1: अवसर
0: करने
1: मिला
0: के
1: तो
0: लिए
1: उनके साथ भी हम मन की आंखों से
0: जी
1: कार्यक्रम जरूर करने की कोशिश करेंगे।
0: बिल्कुल। हाँ वो बहुत
1: और ये
0: प्रतिभावान
1: अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का ही है ना?
0: जी, अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का है, और सर ने हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के योग्य हमको समझा, और हमने उनका भावोन्मेष उन्होंने किताब लिखी है तो उसका लॉन्च भी था दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो उसके प्रोग्राम को मैंने ऑनलाइन पूरा ऑल इंडिया एंकरिंग किया है और पूरे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज भी किया, ये भी मैंने किया है, और गोष्ठी
1: बहुत
0: कुछ
1: खूब
0: काव्य गोष्ठियां हमने की है कनेक्टिव ड्रीम्स के बैनर में, और मुंबई के रेक्सार्ट एक साइटेड पोएट्स का प्लेटफॉर्म है तो उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है, और इसमें हमने डोर बनावट भावों की ये प्रोग्राम किया है, और विकास शर्मा डोर ये जो है ये इसमें है, और रक्षिता मंगलानी जी एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच है, तो इनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। तो ये सब चीजें कनेक्टिंग ड्रीम्स, हम लोग समय समय पर इवेंट कॉम्पिटिशन सेलिब्रेशन गेट टुगेदर छोटे मोटे ऑनलाइन, ऑफलाइन अभी तक हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं तो ये बात है, तो हम करते आ रहे हैं। तो कहानियां लिखने का सर ऐसा है कि कहानियां बहुत सी लिखी हैं, जिसमें रिसेंटली हमने अभी एक रिलीज किया जिसका नाम है राजदंड, रिकॉर्ड मैं ही करती हूँ, अपनी कहानियां लिखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, खुद साउंड एडिटिंग करती हूँ, वो नहीं था कोई अपना सा छतरी बदल गई, ये सारी कहानियां मेरी रिलीज हो चुकी है चैनल पर।
1: सारे काम मैडम लेखन के कंप्यूटर आने के बाद ही आपने किए या लेखन के कार्य के लिए आपने किसी को रखा हुआ था या आप खुद ही लिखते थे, कैसे करते थे? क्योंकि ब्रेल लिपि तो आपने
0: नहीं
1: बहुत ज्यादा सीखी नहीं।
0: नहीं नहीं नहीं सीखी, लेखन का काम जो भी हुआ सर कंप्यूटर के आने के बाद ही हुआ, जो भी
1: ओके okay.

0: ओके अच्छा, यानी हिंदी टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छे से आपने सीखा और उसी का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल भी किया।
1: तो आपका गूगल इनपुट टूल है सर, वो वाला ट्रेडिशनल हिंदी मुझे अभी भी परफेक्टली नहीं आती, सीख रही हूँ। ट्रेडिशनल हिंदी अभी भी पूरी अच्छी तरह से नहीं आती।
0: बहुत जबरदस्त आज इस कार्यक्रम की यात्रा रही मैम आपके साथ, और बात करते करते अब बिल्कुल अंत की ओर हैं हम लोग आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन आपके इस लेखन कार्य का, आपके इस सामाजिक समावेशन की जो मुहिम है इसका, और सबसे बड़ी बात आपका जो जुझारूपन है, इसका कभी अंत ना हो, हम यही आज दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा आज रेडियो मधुबन के साथ जुड़ करके। तो मैं मतलब आपकी बातों में, हर एक बात में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं कि अगर 10 प्रोग्राम भी करें तो कम पड़ जाएंगे आपके साथ। लेकिन अब चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, अब ज्यादा मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि चलते चलते अब अपनी जिंदगी से जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ जिया है, जो कुछ अनुभव लिया है, उसके आधार पर हमारे सभी सुनने वालों को, चूंकि रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो भी है, ऑनलाइन रेडियो भी है, 140 देशों में सुना जाता है, और मेन स्ट्रीम के साथ साथ दृष्टिबाधित समाज के भी बहुत लोग सुनते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में?
1: जी, मैं इसमें चार पंक्तियां सर सुनाती हूँ। अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, खुशियों की अभिलाषा में मुझको आंसू तरल मिले। मगर मैं रोई नहीं, मैं रोई नहीं जिंदगी की नाकामियों पर, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले। तो मैं रेडियो मधुबन के तमाम श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि अपनी समस्याओं से घबरा कर रोना नहीं है, हारना नहीं है, गिवअप नहीं करना है। आप उठिए, चलिए, क्योंकि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं चलाएगा। एक स्टेप आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा, और हम संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष सब साइटेड के जीवन में भी होता है, ऐसा नहीं है सर वीआईस के जीवन में होता है। तो मैं अपने सभी वीआई भाई बहनों से, दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अन्य अंग चल रहे हैं, तो आप उन पर भरोसा रखिए। और एक कविता की लाइन, एक गजल की लाइन है कि एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, इसे किसकी तलाश है जिंदगी, मेरा खोया सा जो सुकून है, क्या वो तेरे पास है जिंदगी। तो जिंदगी ऐसी परीक्षाएं लेती है, तो सुकून भी जिंदगी के पास है। आप जिंदगी से जुड़िए, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं या जिनके मन में सुसाइडल टेंडेंसी होती है, जैसे कि मेरे भी मन में रही और हमारे लगभग ब्लाइंड भाई बहनों के मन में रहती है, तो इनसे हट करके, जिंदगी से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई वरदान नहीं है, इसको जिए और बहुत डिग्निफाइड एक तरीके से जिए, यही आपको सब कुछ देगी। इसी के साथ निवाणी को विराम देती हूँ, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद कोमल मैम आपका कि आज समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें, अपने जिंदगी का पूरा अनुभव इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने श्रोताओं के सम्मुख रख दिया, तो निसंदेह बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। तो श्रोताओं, उम्मीद है आप सबको भी कार्यक्रम पसंद आया होगा। कोमल अग्रवाल मैडम के साथ आज की जो बातचीत रही, ये निश्चित रूप से आप सबको भी कुछ न कुछ सिखाएगी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और आप सब क्या करेंगे, रेडियो मधुबन सुनते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते रहेंगे। आपके पास भी कोई प्रतिभा है, किसी तरह की उपलब्धि है, तो आपका भी मन की आंखों से कार्यक्रम में इंतजार रहेगा। अब मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और कार्यक्रम के साथ, किसी और समय पर। एक बार फिर कोमल मैम धन्यवाद, बहुत बहुत
1: जी, बहुत शुक्रिया।

0: जी नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान आज के इस प्रोग्राम में राम प्रकाश जी हैं, यूएसए से हमारे साथ जुड़ गए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। आप विशेष रूप से प्रोफेशनली आप इंजीनियर हैं और काफी अलग अलग कंपनीज में एज ए कंसल्टिंग आपने काम किया है, न्यूयॉर्क में भी आपने काम किया है, तो इंटरनेशनल डायरेक्टर अभी है और साथ ही साथ 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, ये जो एक प्रोजेक्ट था ब्रह्मा कुमारीज का जिसमें आपने विशेष काम किया, और उसके साथ में 9/11 वाला सर्वे एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका 9/11 वाला जो अमेरिका का एक्सपीरियंस है वो व्हाइट हाउस वाला भी काफी अच्छा है, और बहुत सारी चीजें आपने ब्रह्म कुमारी से जुड़कर स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल होना जरूरी नहीं है लेकिन स्पिरिचुअलिटी को कितना प्रैक्टिस कर रहे हो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वो चीजें आपके द्वारा हम सीख रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके एक्सपीरियंस में आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग में समझ में आ जाता है। तो निश्चित तौर पे आज हम लोग जब बात करेंगे आपसे या कुछ क्वेश्चन आंसर होगा तो जिसमें आपके शेयरिंग्स जो है हम सभी को मोटिवेशन देगा। तो बहुत बहुत स्वागत है राम प्रकाश जी आपका आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। नमस्ते।
1: नमस्ते, थैंक यू।
0: और मैं चाहूंगा श्रीशा एक बहुत ही प्यारा संगीत के साथ राम प्रकाश जी का स्वागत करें आप।
2: जरूर, टुडे आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग जहां से मैंने रेडियो मधुबन में अपना ऑडिशन दिया था, वो सॉन्ग मैं फिर से सुनाना चाहती हूँ।
0: जी जी जी।

0: जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करे, ये कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ पे हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरी जान। थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शीशा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, मस्ती भरा गीत। तो आइए राम प्रकाश जी, कैसे हैं आप, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, वर्तमान में आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं?
2: गुड मॉर्निंग, यहाँ पर न्यूयॉर्क में गुड मॉर्निंग है, आप गुड इवनिंग है,
1: बिल्कुल
2: ईस्ट मीट्स वेस्ट है ना, तो कैसे हम सब चीज को दिन रात को एक कर सकते हैं। तो इस समय मैं न्यूयॉर्क में हूँ, हमारा जी, बहुत अच्छा स्थान है पीस विलेज, जो 300 एकड़ में रिट्रीट सेंटर बना हुआ है और बहुत बहुत ग्रीनरी है, बहुत बढ़िया यहाँ पर वातावरण है, तो मैं वहाँ बैठकर आप सभी का स्वागत करता हूँ और साथ में जो आपने मेरे को मौका दिया उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और मैं चाहूंगा राम प्रकाश जी, जैसे कि अभी आप शेयरिंग किया कि आप पीस विलेज में हैं, जो ब्रह्म कुमारीज का एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है, जहां पर मेडिटेशन भी करते हैं, रिट्रीट भी होता है और बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स भी होते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़े हो, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर थे, बहुत सारा काम करते हुए अपने लाइफ में व्यस्त थे, तो इस और आध्यात्मिकता की और भी खास ब्रह्म कुमारी की और कैसे आप पर जुड़ना हो, क्या ऐसा हुआ जो आप इस तरफ आ गए?
2: देखो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने में चेंज कर सकता हूँ, इफ आई कैन बिकम स्पिरिचुअल, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं बताऊं, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, ब्रह्मा कुमारी का नाम हमने सुना था लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता था। तो क्या था, एक बार हम कॉलेज में थर्ड ईयर में थे, मैंने इंजीनियरिंग की है ना, बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर, तो हम आपस में बात कर रहे थे, एक आर्टिकल आया था, जैसे वो कोई अमेरिका का था, उसमें लाइफ मैगजीन, उसमें उन्होंने कई प्रिडिक्शन की थी, कोई जीन डिक्सन नाम की कोई बहुत फिलोसफर थी, एस्ट्रोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने जैसे कैनेडी का मर्डर हुआ, ये चाइना वॉल का गिरा, ये कई कुछ, उनमें से एक प्रिडिक्शन थी कि ओवर द टर्न ऑफ द सेंचुरी, माना थोड़े वर्षों में भारत सबसे ज्यादा समृद्धशाली होगा। तो हम फ्रेंड्स आपस में हंसने लगे, हम कहते हैं भारत तो 100 साल पिछड़ा हुआ है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर हुआ क्या कि जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली और मैं अपने घर में बैठा था, एग्जाम का देकर आया था और मैं सिर्फ वेट कर रहा था, अचानक ब्रह्मा कुमारी का वहां हमारे शहर में आना हुआ और उन्होंने एग्जीबिशन किया, हमारे भुआ जिसमें थे, एग्जीबिशन के बाद उनको कोई स्थान ढूंढने की थी कि कोई जगह पर रह के वो सबको अपना ज्ञान सुना सके, तो हमारे घर में हमारे भुआ जी ने उनको बुलाया और मेरे को कहा, राम प्रकाश आप इनकी मदद करना, आप इनके होस्ट हो। तो मेरे को ब्रह्मा कुमारी इसका पसंद नहीं था बिल्कुल भी, तो क्या था, भुआ हमारी पीछे पड़ी रहती थी, बहुत ज्ञान सुनाती थी, तो मैं यंग थी, समय 21 वर्ष का ही था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने उनको कहा भी देखो मैं उनकी मदद तो करूंगा, घर में आए हैं, लेकिन उनको मैं ये कह देना कि मेरे को ज्ञान मत सुनाए, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जैसे हम थोड़े दिन उनके साथ रहे, हमने देखा कि बहनें बड़ी सामान्य रूप से रह रही हैं, हम पहले सोचते थे ये सन्यासियों की तरह होंगे, लेकिन नहीं, वो तो हर चीज में इंटरेस्टेड थे और हमको लगा थे अच्छे परिवार से हैं और बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे। लेकिन मैं उनको देखता था, ज्ञान सुनाते हैं, रात को बड़ा सिंपल खाना खाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना, वो मेरे को ना बड़ी अपील करती थी। मुझे पता है ये मुस्कुराहट अगर थोड़ी सी ना होती है ना, फेक होती है, वो थोड़ा सा में रहती है, लेकिन हम उनके साथ कंटिन्यूसली रहे तब लगा इनको कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी। तो क्या हुआ, मैंने अल्टीमेटली ज्ञान उनसे लेना शुरू कर दिया 2-3 वीक्स के बाद। तो उन्होंने कहा कि आपको मनुष्य से देवता बनने का है और सृष्टि पर स्वर्ग आने वाला है। तो मैं तो एकदम बौखला गया, मैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं मनुष्य से देवता बनने की। तो उस समय क्या था, मैं कॉलेज के समय में बिगड़ा हुआ था। अब मेरे को बुरा नहीं लगता है बताते हुए, मैं हम अग्रवाल परिवार से हैं, तो हमारे घर में पहले कोई प्याज वगैरह भी नहीं आता था। बाद में प्याज आना शुरू हुआ, उसके बाद और कुछ नहीं था, लेकिन हमने एग भी खाना शुरू किया, नॉन वेजिटेरियन बन गए, ड्रिंक करना शुरू कर दिया, स्मोक करना शुरू कर दिया, माना जो बुरे से बुरे काम थे ना हॉस्टल में होते हैं सब हमने करने शुरू कर दिए। तो जब उन्होंने कहा कि आप मनुष्य से देवता बन सकते हो, तो मेरे को हंसी आई। मैं कह मैं थोड़ा सा सुधर जाऊं, मेरे लिए तो वही बहुत है, ये देवता बनने की बात कर रहे हैं। पर हुआ क्या कि वो लेसन लेते लेते मैंने उनको जब ऐसा कहा ना, कहते हो सकता है लेकिन आप ना पूरा धारणाओं पर चलो। तो मैंने कहा क्या धारणाएं हैं? तो क्या हुआ, एक हफ्ते के बीच में मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिगरेट शराब सब कुछ छोड़ दिया। तो मेरे को अचानक लगा एक हफ्ते में सब कुछ हो गया। तो अगर एक हफ्ते में मैं इतना चेंज हो सकता हूँ, तो अगर मैं और एफर्ट करूँ तो और भी ज्यादा हो सकता हूँ। इंजीनियरिंग में हम क्या देखते होते हैं कि कोई चीज का मॉडल बनाते हैं, और मॉडल अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर उसका प्रोटोटाइप, माना थोड़ी सी प्रोसेस आपको समझ आ जाती है, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह का मेरे को लगा, और अचानक फिर मेरे को लगने लगा एक और चीज जो मेरे को ध्यान में आई, कोई इंजीनियर होने के नाते हम दो चीजें पर्टिकुलरली करते हैं। एक है हम चीज को ना सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारी ड्रॉइंग्स ये वो इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉमन आदमियों को समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम किसी को सुनाते हैं, समझाते हैं, सिंपल तरीके से बताते हैं, ये आपका बेडरूम है, ये 10x15 का है, ये बेडरूम आपका 12x18 का है। 12x18 कितना होता है? उनके घर में जाके हम बताएंगे, देखो ये कमरा देख रहे हो, ये 12x18 के करीब है, इतना बड़ा कमरा होगा। कहते हाँ अभी समझ आया। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया ना, तो मेरे को अंदर में बहुत होता था कि ये नॉलेज है ना, इसको भी सिंप्लीफाई करने का है। और दूसरा होता था, हम कहते एप्लीकेशन, कि हम कितना भी पढ़ाई कर लेते हैं, जैसे हमने कॉलेज में हम गए, पहले हमने पढ़ा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और मटेरियल, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो वहां हमको पढ़ाया गया अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स और मटेरियल। तो माना अप्लाई करना लाइफ में, तो एकदम मेरे को आने लगा कि ये ज्ञान और योग है, ये नॉलेज है, और दूसरी शक्ति है, योगा शक्ति है, माना एनर्जी जिसको हम कहते हैं। एक तरफ फिजिकल एनर्जी होती है, टाइम मनी स्पेस वगैरह, हमारी बॉडी की अपनी एनर्जी है, दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल एनर्जी, वो है प्यार, खुशी, शांति, आनंद। तो हमारे जीवन में जो स्पिरिचुअल एनर्जी इंट्रोड्यूस हो गई, तो इस स्पिरिचुअल एनर्जी को अप्लाई करना, एप्लीकेशन क्या है, वो है हमारे डे टू डे लाइफ में। हम कोई भी कर्म करते हैं उसके बीच में वो ऐड कर देते हैं, माना इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारे कर्मों की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मेरे को इस तरह का लगने लगा कि एप्लीकेशन क्या है स्पिरिचुअल एनर्जी की। तो मैं पहले अपने आप को सिविल इंजीनियर कहता था, अभी मैंने को कहना शुरू कर दिया स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग। पहले सिविल थे, अभी स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग हो गया। माना स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है हमारे डे टू डे लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारे कर्मों में काम आती है, स्पिरिचुअलिटी से हम कैसे ग्रो हो सकते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ को इस तरह चलाना शुरू किया, तो करते करते इतना मेरे को आगे आनंद आता था, अंडरस्टैंडिंग होती थी। तो तब मेरे को लगने लगा कि जैसे ये कहते हैं ना, मनुष्य से देवता बनना है, तो हम कई बार जब देवता शब्द बोलते हैं, हम सोचते पता नहीं आकाश में होते हैं, पता नहीं उनके भुजाएं कितनी होती हैं, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, रावण का 10 सिर दिखाते हैं, तो ये सारे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर मेरे को आइडिया आने लगा कि वास्तव में ये सारी सिंबॉलिक चीजें हैं, लेकिन अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें, देखो कई बार कोई मनुष्य अच्छा होता है ना, उसको कह देते ये बिल्कुल देवता जैसा है, कोई बहुत थोड़ा खराब करता है तुम बिल्कुल राक्षस की तरह हो, ऐसा बोल देते हैं ना। कई बार हम ये भी कहते हैं ये आप कैसे कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, ऐसा हम कितनी बोलते हैं लोगों को, ये सिंबॉलिक होती हैं। तो तब मेरे को लगा कि देवता माना जिनमें दिव्यता होती है, देवता माना जिसमें दिव्य गुण होते हैं। तो एग्जांपल है कि जैसे हम ट्रूथ को कहते हैं, सच्चाई है, वो कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, लेकिन सच्चाई कड़वी क्यों लगती है? क्योंकि हम उसको पत्थर की तरह मारते हैं, हम उसमें क्रोध डाल देते हैं, उसमें एरोगेंस आ जाता है, हम कोई सोच समझ के बात नहीं करेंगे, 10 लोगों के बीच में उनको बुरा साबित करेंगे, तो उससे क्या होता है, वो दुख देने वाली बन जाती सच्चाई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसको प्यार से समझाते हैं, ह्यूमिलिटी से बताते हैं, हमारे को फेथ है कि हमने अपना काम कर दिया, तो जब उनका समय आएगा वो उसको समझेंगे, तभी उसको फॉलो कर लेंगे। तो उस सच्चाई में प्यार, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, टॉलरेंस, इसमें फेथ आ गया, तो उससे कहते हैं वो सच्चाई प्योर बन जाती। पहले सच्चाई प्योर होती है, तो वो इम्प्योर क्वालिटी है, लेकिन बाद में वही प्योर बन जाती है जिसको हम डिवाइन कह देते हैं। तो हमारे में दिव्य गुण आ गए, तो हम देवता जैसे बन गए। तो मैंने इस तरह से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्टार्ट किया, और फिर मैं तकरीबन 3.5 वर्ष इंडिया में था, उसके बाद मैं अमेरिका में आया। मैंने ज्ञान लिया था 74 में और 77 में मैं अमेरिका आया, और उसके बाद 79 में हमारे मोहिनी दीदी, मोहिनी बहन, वो न्यूयॉर्क में आए थे, मैं उनके साथ मिल गया, तो वहां से फिर मेरा जर्नी कंटिन्यू रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे ब्रह्म कुमारी से आपका जुड़ना हुआ। बड़ा अच्छे आपने बताई कि कैसे आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पहले तो आप बिल्कुल अलग थे, और बाद में जब सामने से उनको देखा और उनके जीवन को, लाइफ को आपने एकदम नजदीक से देखा, आपके घर में ही वो लोग आए, वो रहने लगे, तो निश्चित तौर पर आपको उनके तौर तरीके, उनके बोलने का, वो सारी चीजें आपको नॉर्मली लगी और अच्छा लगा। और अच्छे खानदान से है और अच्छी चीजें कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ये देखकर आपको लगा कि समथिंग इज डिफरेंट, तो फिर आपने इसकी और कदम बढ़ाया और आगे बढ़ के आपने इन चीजों को सीखा। चलिए राम प्रकाश जी, बहुत ही अच्छी बात है, आपने सिविल के बजाय अभी स्पिरिचुअल बोलना शुरू कर दिया है। तो अब मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती है, क्राइसिस, तो क्राइसिस को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलना है, ये क्या तरीका है, क्या सिस्टम है, थोड़ा सा बताइए।
2: देखो मेरे को ना, मैं थोड़ा सा जैसे दुनिया के, जैसे दुनिया में हम क्राइसिस की बात करते हैं ना, मैंने क्या अपने जीवन में नोट किया, क्राइसिस कोई नहीं चाहता अपने जीवन में, पर आते हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल होते हैं, तो इसके लिए हम उनको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनसे डील कैसे करना है ना, वो समझ आ जाती है। जैसे फ्लू होता है, बीमारी आ जाती है, लेकिन बीमारी सबको नहीं लगती है, थोड़ों को लगती है, कारण कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनको नहीं फील होता है, उनको बीमारी नहीं लगती है, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है वैसे उनको लग जाता है। तो मैंने अपने जीवन में, क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए, आई बिलोंग टू द वेरी मॉडेस्ट फैमिली, एक समय हमारा बहुत बड़ा बिजनेस होता था, मैं 9th grade में था, हमारे सारे बिजनेस में बैंकक्रप्ट हो गए, हमारे घर में खाना भी नहीं होता था, तो हमने अपने जीवन बड़ा कष्ट से व्यतीत किया।

0: लेकिन मैंने उन जीवन में से गुजरते हुए जब अपने आप को देखा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ ना, तो मेरे को लगा वो जो जितने भी क्राइसिस मेरी लाइफ में आए थे ना, उसने मेरे को बंदा बना दिया। माना मेरे को ना बहुत उसको ना बाद में जाकर सीखने का मेरे को मिला कि देखो वो मुसीबतें आई थी तो उससे क्या। तो मेरे को एक तो ये लगा गरीबी आई, अच्छे अच्छे घर में होते एकदम गरीबी आ गई, फिर गरीबों की लाइफ कैसी होती है। तो मैंने एक चीज नोट किया कि आदमी गरीब कोई कितना भी हो, लेकिन उसको सबसे ज्यादा प्रिय होती है उसकी डिग्निटी। वो डिग्निटी के लिए मनुष्य अपनी जान भी दे देता है। तो हम
1: बिल्कुल
0: होता था किसी को पता ना चले कि हम किस बुरे समय में से गुजर रहे हैं, हमको मुस्कुराना हमने सीख लिया कि कैसे डिफिकल्टी के समय में भी मुस्कुराते हैं। और
1: जी
0: फिर
1: जी
0: हमारे अगर मैं हमारी बैंकरप्सी नहीं हुई होती, हो सकता है मैं बिगड़ जाता। तो कोई कहते थे ये 10th 11th ग्रेड तक पढ़ेगा क्योंकि बिगड़ गया है तो इसके बाद तो इसका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन लगा अरे अभी तो मेरे को डिपेंडेंट नहीं रहने का है, तो मेहनत करने लगा, पढ़ाई ज्यादा करने लगा, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गई। तो मेरे को उस समय एहसास हुआ कई बार कम होना ज्यादा से भी बेटर है, क्योंकि ज्यादा होता है तो हमारे को वैल्यू खत्म हो जाती।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और अपने लाइफ में फिर मैंने आगे क्या देखा, वास्तव में ना अभी मैं कह सकता हूं अगर जिंदगी में ग्रो करना है तो आप अपने आप से पूछ कर देखो आप जीव ग्रो कब हुए। जब आपके ऊपर कोई संकट आया, जब आपके ऊपर क्राइसिस आया था ना, उसी समय वो टाइम आप ग्रो हुए थे। बाकी समय लाइफ ना बड़ी इजी स्मूथ बोरिंग लाइफ होती है। कभी हम कभी मूवी में जाते हैं ना, देखो एंटरटेनमेंट भी है, हम कहते हैं ना हमारी लाइफ की वैल्यू। हम मूवी में भी जाते हैं पहले 5-7 मिनट में बड़ा नॉर्मल सी लाइफ चल रही है सभी की, फिर कहते हैं अच्छा मूवी कब स्टार्ट होगी, मूवी कब स्टार्ट होगी, फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की मौत हो गई, फिर सभी ना खड़े होकर बैठ जाते हाँ अभी अभी शुरू हुई है मूवी। तो इसका मतलब जिंदगी में लाइफ जो है ना हमारी, वो संकट क्राइसिस के आधार पर बनी हुई है, क्योंकि उसी समय हम ग्रो होते हैं, क्योंकि हम डिच में चले जाते हैं, है ना, चले खाई में चले जाते हैं, समझ नहीं आता कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरे से बात नहीं करता है ना, सब मेरे दोस्त चले गए। उस समय आप अपने आप को खाई में होते हो, लेकिन आपको खड़े होते हो वहां, अपने आप को सपोर्ट करना आ जाता है, उससे आप में ह्यूमिलिटी आती है, आपके चेहरे पर ना नेचुरल जो चीजें, क्योंकि जब हम ना किसी सक्सेस के मोड में होते हैं तो एरोगेंस भी आ जाता है, वो हमारे चेहरे पर भी दिखाई देता है, कई बार हमारे कनेक्शन भी कट जाते हैं उससे। लेकिन जब हम क्राइसिस में होते हैं हमारे में ह्यूमिलिटी आ जाती है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, और फिर हमारा जो ईगो होता है ना प्राइड, वो भी खत्म करके हम ना मदद लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो उससे क्या हो गया, हमारे चेहरे पर भी ना वो मासूमियत आ जाती है, क्योंकि कमजोर है ना। तो उससे मैंने देखा धीरे धीरे करके आप अपने आप को संभाल कर, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़कर, या अपना आत्मविश्वास इकट्ठा करके और बॉटम लाइन से शुरू करना शुरू करते हो ना, फिर आप खाई से निकल भी जाते हो ना, लेकिन जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था नीचे से ऊपर आने का, वो आपको और भी ऊंचा लेकर जाता है। तो आप देखेंगे लाइफ में ग्रोथ कब होती है। अभी देखो हम कोई एग्जाम के लिए तैयार होता है क्या, बहुत बड़ा क्राइसिस है ना, लेकिन वो थोड़े दिन हम रात दिन एक कर देते हैं, खाना भी नहीं सोचते, नींद का नहीं सोचते हैं, तो और जब हम पास हो जाते हैं तो देखो हमारी प्रमोशन हो गई ना। तो मेरे को बार बार इस चीज का लाइफ में, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव में कैसे लिया क्राइसिस को, क्राइसिस क्या चीज है, क्राइसिस कब आता है, जब कोई परिस्थिति आती है लेकिन आपके रिसोर्सेस, आपकी शक्ति या आपकी नॉलेज या कैपेबिलिटीज वो उसको मैच नहीं कर पाती, उससे ज्यादा होती है। माना मेरी सिचुएशन यहाँ पर है तो ये क्राइसिस हो गया, लेकिन अभी अनुभव हो गया क्राइसिस के समय हम ग्रो होते हैं, अपने आप को ग्रो ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर मेरे जीवन में क्राइसिस ना आए, लाइफ बोरिंग कहती। मैंने बहुत बार देखा है जिन लाइफ लोगों की लाइफ बड़ी इजी होती ना, कहते हैं आपका क्या ख्याल है, ओ सेम ओल्ड स्टोरी, सेम थिंग गोइंग ऑन, इतना बोरिंग सा चेहरा होता है कि नहीं है, जब सब चीज ठीक होती है। लेकिन इसका मतलब क्या, अगर मेरी लाइफ को ग्रो करना है, अगर मेरे जीवन में क्राइसिस नहीं भी है ना, मैं क्रिएट कर लूं क्राइसिस। आप हंसी करेंगे, ये क्या बात करते हो, क्राइसिस को क्रिएट करना, क्रिएट क्यों करेंगे, क्राइसिस का मतलब क्या है, जिसको पॉजिटिव क्राइसिस चीज बोल देते हैं वो है कि जितनी आपकी अबिलिटी है, जितनी आपके रिसोर्सेज है, उससे ऊंचा सोचो। जो आपकी लिमिट है ना, लिमिट से ऊंचा सोचेंगे ना तो वो देखा जाएगा क्राइसिस है, लेकिन वास्तव में वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे? फिर आपके जो अंदर की जो शक्तियां हैं, इनर रिसोर्सेज, वो उभर कर आते, और जब वो उभर कर आते हैं ना, कितनी चीजें आपको अपना आइडिया नहीं होता कि मेरे में ये स्ट्रेंथ है, लेकिन उस समय पता चलता रहे मेरे को आइडिया नहीं है कि कैसे सब कुछ मेरे से हो गया, मैंने तो कभी नहीं सोचा था मेरे में ये क्वालिटी है या मेरे में ये शक्ति है, पता नहीं। तब कहते हैं भगवान ने दिया होगा, तो हमारा भगवान में भी विश्वास बैठ जाता है, अपने पर भी विश्वास बैठ जाता है, तो हमारी ऐसे ग्रोथ होती है। तो लाइफ में अगर जीना है ना, मेरे को तो लगता है कि लाइफ में जो है जीवन जो है ना, क्योंकि बाकी है मेंटेन, मकान होता है ना, मेंटेन करते रहते हैं, आई हैव टू मेंटेन माय जॉब, आई हैव टू मेंटेन माय रिलेशनशिप, आई हैव टू मेंटेन माय यू नो फैमिली, तो वो मेंटेनेंस है। लेकिन जो हम आगे करते हैं ना, उसको हम कहते हैं कैपिटल इंप्रूवमेंट, माना अपनी लाइफ को ऊंचा करना। अगर जिंदगी जीना है ना, जिंदगी एग्जिस्ट करती है सिर्फ क्राइसिस के पीरियड में, अगर जीवन में मजा लेना है ना, क्राइसिस माना पॉजिटिव क्राइसिस में जीना सीख, तो ऐसा मेरे को ना ये क्राइसिस को मैंने अपॉर्चुनिटी के रूप में इस तरह लिया है। मैं ना एक छोटी सी एक सुनाता हूँ, छोटे होते थे 7वीं 8वीं क्लास में, हमने एक कार्टून देखा था, उसमें क्या देखा कि बच्चों की रेस लगी है, सब लोग भाग रहे हैं, एक लड़का बिल्कुल पीछे था एंड में, तो लगा पता नहीं ये रेस भी पूरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर बाद में फिनिश लाइन को दिखाया, उसमें देखा वो लड़का इतना तेज भाग रहा है, अब नंबर 1 आ गया, तो सोचा ये क्या हो गया, ये तो जादू हो गया, ये क्या कारण हुआ। तो तब बाद में मिडल का पोर्शन दिखाया, क्योंकि वो लास्ट में था, एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, तो कुत्ता पीछे पड़ा वो डर के मारे, उसमें कहां से शक्ति आई, वो इतना तेज भागा नंबर 1 आ गया। अभी देखो क्राइसिस आया, फियर आया, लेकिन फियर से क्या हो गया, उसकी सारी जो छुपी हुई शक्तियां थी ना वो काम में आ गई। तो आप अपने जीवन में ना ट्राई करके देख, चैलेंज लो अपने जीवन में कि मेरे को अपनी लिमिट से ऊपर रहकर सोचना है, जिसको हम कहते हैं ना मेरे ड्रीम। तो ड्रीम भी 1-2 ना हो, 5-7 ड्रीम रखो, एक खत्म हो गया दूसरे पर जंप कर जाओ, उसको खत्म हो गया तीसरे पर करो, तो लिव इन द ड्रीम लैंड। जब 3-4 खत्म होंगे पहला ड्रीम शायद खुल जाएगा। तो आप ना अपने जीवन में, मेरे को खासकर यंग लोगों से तो मेरे को बहुत होता है कि डरो नहीं आप, जो भी आपकी इमेजिनेशन है ना, कोई इमेजिनेशन रियलिटी के बिना नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं रियलिटी जरूर छिपी हुई है। तो कभी आपका जो थॉट आता है, जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपका ड्रीम है ना, बस करने लग जाओ, तो उस तरह आप ना क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। और आपको मालूम है ना अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, देखो मतलब कुछ है इसके बारे में कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं।
1: जी, राम प्रकाश जी, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया क्राइसिस कैसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बनते हैं, ये आपने बताया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्राइसिस आने के बाद ही व्यक्ति के जीवन में जो है एक पोटेंशियली आ जाता है कि उसे कुछ करना है, और वो करने के लिए जब जाता है तो वो पूरे जद्दोजहद मेहनत लगा के 200 नफजोर लगा और वो अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। क्राइसिस नहीं आएगा तो शायद अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलेंगे, जो आपने बताया बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके, थैंक यू सो मच। और आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। श्रीशा, मैं चाहूंगा कि एक और गीत आप सुनाइए राम प्रकाश जी के लिए।
2: जी।

0: प्यार की। शुक्रिया, नमस्ते।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया श्रीशांत, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। आइए आगे बढ़ते हैं। रामप्रकाश जी, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे हम लोग क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, और हर व्यक्ति के पास ये मौका आता है। ईश्वर जो है सभी को कुछ करने के लिए कुछ सिचुएशन ला के खड़ा कर देता है, और वो सिचुएशन को आप अगर पूरी तरह से न्याय करते हैं, उसे अच्छी तरह से संभाल लेते हैं, और अपने आप को साबित करने का मौका मिल जाता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। आपने बताया बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी ना समझकर उसे क्राइसिस के रूप में ले तो फिर और क्राइसिस बढ़ जाता है, टेंशन आता है, हम लोग उसको चेंज नहीं कर पाते, हम लोग वहीं पर घूमते रहते हैं उस पत्थर को लेकर। मतलब इतना बड़ा पत्थर है, आप आगे नहीं जा सकते, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वो पत्थर एक आपके लिए ब्रिज का काम भी कर सकता है, आपको मूव फॉरवर्ड भी कर सकता है, आपको हाई जंप देने का काम भी कर सकता है, आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे एडवेंचर आपके साथ जुड़ा हुआ है इफ यू थिंक अबाउट दैट। तो वो चीजें शायद कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं, तो वो चीजें आपने बड़ा अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, थैंक यू सो मच। तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि फियर, फियर की बात कर, तो फियर हमारे जीवन में जो आता है उसको हम लोग कैसे कम करें, फियर को क्लियर करके हम लोग उसको स्ट्रेंथ कैसे बनाएं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: मेरे को लगता है लाइफ में, देखो मैं जो फिर लड़के की भी स्टोरी सुनाई ना, वो फियर था ना, उसका फियर उसका स्ट्रेंथ में बदल गया। तो मैंने बहुत बार अपने जीवन में ये देखा है कि आप कोई कहे ना राम प्रकाश आपको कभी फियर नहीं होता है, मैं कहता हूं मेरे को हमेशा फियर रहता है कि पता नहीं लोग मेरे को पसंद करते कि नहीं करते, पता नहीं मैं लोगों की आशाओं को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं इसमें कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। पर हमने नोट क्या किया है, आप कभी जीवन में देखना, जहां फियर होता है ना वहीं करेज, दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं। अगर जीवन में फियर नहीं होगा ना, आपको करेज की भी जरूरत नहीं। अगर जीवन में अनसर्टेनिटी नहीं हो, आपको फेथ की भी जरूरत नहीं है। आज देखो लोग एडवेंचर करने जाते हैं, जैसे कहा ना एडवेंचर करते हैं, या कहीं ना कहीं पहाड़ी पर चढ़ते हैं, इतनी इतनी खतरनाक चीजें करते हैं, डर तो होता है कि नहीं, उनकी जान भी जा सकती है, हर्ट हो सकते हैं, लेकिन उनको जो वो एक्साइटमेंट होती ना कुछ नया जानने की, कुछ अकम्प्लिश करने की, वो जो अकम्प्लिश करने की आकांक्षा होती है उनका जो, या उनका जो एंथुजियाज्म होता है वो फियर से भी बढ़कर होता। तो जो आदमी अपने फियर में करेज लाके करना शुरू कर देता है, मैंने नोट किया कि कितनी बार मैंने नोट किया है कि कितनी बार हमारे जीवन में ना सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस आती हैं, और अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं, लेकिन मनुष्य डरते क्या है कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, मतलब गलत चीजें क्या हो सकती है ना, वो ही सोचते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि इसके बजाय कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो भी तो हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है, अरे इसकी भी मदद मिल सकती है, अरे मेरे को ये भी क्वालिटी है, तो माना आप पॉजिटिव बनकर, होपफुल बनकर, तो जब आप में करेज होता है, आप में होप आती है, और आपका चेहरा मुस्कुराता है। कितनी बार हमने देखा है कन्वेंशनल विजडम होती ना, आजकल कन्वेंशनल विजडम इज द विजडम ऑफ फियर। कभी आपने देखा होगा कि कहीं भी आपको ना कोई बहुत बड़ा काम करने का दिल होता है, फिर आप मीटिंग बुला लेते हो तो हिम्मत दिलाते हो, चलो भी हल्ला करो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो 15-20 मिनट कहते नहीं नहीं नहीं इसमें ये कैसे वो कैसे, अरे कर लेंगे कर लेंगे, तो सब में एक्साइटमेंट आ जाता है, कहते हाँ चलो चलो चलो, तो उनमें फिर एक सयाना बंदा बैठा होता आता है, वो सयाना बंदा क्या कहता है, भाई मैं ना आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, सबको उस पर विश्वास भी होता क्योंकि थोड़ा बुजुर्ग होता है, थोड़ा सियाना होता है, समझदार होता है, वो कहते हैं मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, पर ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो वो 20 लोग पता क्या कहेंगे, हाँ आप ठीक कहते हो, हमको सचमुच में ध्यान से चलना चाहिए, है ना, हमको ये नहीं करना चाहिए, वो 20 जनों का एंथुजियाज्म ना एकदम नीचे आ जाता। होता है क्या होता है हमारे लाइफ में, 20 जनों का अनुभव जो एंथुजियाज्म, एक बंदे की कन्वेंशनल विजडम कि ये गलत हो सकता है, वो सब ठंडा हो जाता है। तो मेरे को होता है कि लाइफ में ना कन्वेंशनल विजडम को छोड़ कर ना, क्योंकि हमारे में कन्वेंशनल विजडम है, हमारी जो फेलियर्स होती है ना हम उनको अपने सामने रख लेते हैं, तब भी मेरे को लाइफ में होता है अगर जिंदगी जीना है ना इम्पॉसिबल में जियो। कभी आप जब इम्पॉसिबल टास्क अपने हाथ में लेंगे ना, आपका चेहरा ना मुस्कुराएगा, चाहे हंसी में सही, अरे मे भी वो हेल्प कर देगा, अरे वहां से हेल्प मिल जाएगा, अरे हमने पहले भी तो किया था, तो माना आप मुस्कुराएंगे। जब जभी भी आप कोई बड़ा कोई चीज करेंगे, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी चीज करेंगे ना उसमें फियर आएगा, ये गलत ना हो जाए, कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अभी जो मैंने प्रोग्राम शुरू किया ना 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, कितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया होगा, कहते हैं आप पागल हो गए हो। माता है 7 बिलियन कितना होता है, 700 करोड़। 700 करोड़ अच्छे कर्म आप कैसे इकट्ठे करोगे। तो हमने कहा ना, लगा तो सही लेकिन हमने शुरू कर दिया, एक प्रोग्राम किया, दो किए, तीन किए, करते कराते कराते अभी हमने 2500 प्रोग्राम कर लिए मैंने, और जहां जहां जाके प्रोग्राम किए उन्होंने आगे प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर 25,000 प्रोग्राम इसके बारे में हो चुके हैं, 25,000 प्रोग्राम, और अभी भी मैं तो फिर निकलने वाला हूं। पर कहने का मतलब है, डरकर हम कब तक बैठे रहेंगे। तो अगर जिंदगी जीना है ना, वो करो जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था, वो करो जो आपके कभी स्वप्न में भी नहीं आया था। होता क्या है, हमारी आकांक्षाएं तो बड़ी बड़ी होती हैं, है ना, कहते वी वांट टू फ्लाई, हम ये उड़ना चाहते हैं, लेकिन जब ना डिसीजन लेने का मौका आता है ना तो हम ना कौन सा ग्राउंड रूट ले लेते हैं, माना ठीक है। तो 95% देखो मैं कोई कहता हूँ, If you are ready to fail, अगर आपको फेल होने से डर नहीं है ना, 95% चांसेस हैं आप फेल नहीं होंगे, लेकिन 5% आपको तैयार रहना पड़ेगा। पर कई बार क्या, तो क्योंकि ह्यूमिलिटी हो सकती है ना, मैं कि ह्यूमिलिटी कौन सी, आपको लोगों के आगे शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है, आपको लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ ठीक नहीं होगा, उसके लिए आप तैयार हो सकते हो। अगर हो सकते हो ना, 95% चांसेस हैं आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत बार अनुभव करके देखा है, और आप, मैं समझता हूं सबका ये अनुभव होगा कि जब जब आपने हिम्मत रखी ना, आपका काम हो गया। हाँ, हो सकता है 100% ना हो, हो सकता है 60-70% हो, लेकिन 60-70% भी जीरो से तो अच्छा है ना, कुछ तो आपकी प्राप्ति हुई ना, तो उसमें होता है। तो कहते हैं हम संतुष्ट हैं अपनी प्रेजेंट अकम्पलिशमेंट से, लेकिन हमारा एम हमेशा ऊंचा रहता है। तो फियर की बात है, देखो मैं आपको ना अपनी वो सुनाता हूँ, 9/11 का सुनाऊ मैं आपको रमेश भाई के वर्ल्ड
1: शॉर्ट।
2: हाँ, देखो मैं 64th फ्लोर पर था और प्लेन आकर टकराए ना, मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 110 मंजिला के थे, दो टावर थे, तो प्लेन आके टकराया, हम 64वीं मंजिल पर थे, हमको लगा अर्थक्वेक आया है, बिल्डिंग इधर गई इधर गई इधर गई, फिर खड़ी हो गई, लेकिन फिर हमने नीचे उतरना शुरू किया, क्योंकि जब खड़ी हो गई तो लगा भी अर्थक्वेक तो नहीं, छोटा मोटा कोई प्लेन टकराया होगा, हमने नीचे आना शुरू, इतने में दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को टकराया, तो तब हमको पता लगा कि छोटा मोटा प्लेन नहीं टकराया, ये तो कोई आतंकवादियों का काम है। उस समय लोगों को दहशत होने लगी। फिर क्या हुआ, दूसरा टावर बाद में टकराया था लेकिन गिरना पहले शुरू हो गया, तो तब लोगों के एकदम, मतलब कि दूसरा गिर गया ऑलरेडी, तो इतना बुरी तरह से हमारा टावर हिल रहा था, तब लोग चीखने चिल्लाने लगे। और फिर क्या हुआ, हमको उसके कारण से जो मलबा था ना दूसरे टावर का, उसके कारण से हमारी जो सीढ़ी थे जिसमें आ रहे थे वो ब्लॉक हो गई, तो फिर हमको दूसरी सीढ़ी में जाना पड़ा, और थोड़े समय के बाद उस सीढ़ी में भी बहुत तेजी से पानी आने लगा, क्योंकि पाइपलाइन वगैरह टूट गई। और तो फिर क्या हुआ, हम अपनी हैंड रेल को पकड़ के नीचे आ रहे हैं, तो फिर पता चला हमारी सीढ़ी वो नीचे से टूट गई, दूसरे वाले भी, तो हमको फिर तीसरी सीढ़ी में आने के लिए एकदम अंधेरे कॉरिडोर में से गुजरना पड़ा, पानी हमारे ऊपर गिर रहा है, पानी हमारे पांव के नीचे है, कपड़े भीगे हुए हैं, बिल्कुल अंधेरे में हम वॉक करते हुए बाहर निकले, और हमको निकले हुए सिर्फ 4-5 मिनट हुए थे, तो अचानक फील हुआ जमीन हिल रही है, पीछे मुड़ के देखा हमारा टावर भी गिरना शुरू हो गया। हम उस टावर से सिर्फ इतना दूर थे, अगर वो टावर हमारी तरफ गिरा होता हम उसके नीचे आ जाते, लेकिन हम भाग के दूर चले गए और टावर सीधा ऐसे नीचे आया था। तो पर क्या है, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगले दिन मेरे को न्यूज़पेपर टेलीविजन वगैरह से वो आ रहे थे इंटरव्यू, एक वो चीज पूछते थे, अब फियर की बात चल रही है ना, उन्होंने कहा कि हम 95 मिनट टावर के बीच में थे और 5 मिनट पहले निकले उसके गिरने से, तो इसका मतलब आई वॉज 5 मिनट्स अवे फ्रॉम डेथ, 1 घंटा 45 मिनट्स हम टावर से के अंदर थे। तो वो कहते थे अपना अनुभव सुनाओ जब आपको डर लगा हो कि आप बचेंगे नहीं, तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ वो 95 मिनट में 1 सेकंड भी मेरे को डर नहीं लगा था। तो मैं सोचता हूँ उसका क्या कारण होगा, ये तो नहीं है कि आई एम ए माचो काइंड ऑफ पर्सन, बड़ा स्ट्रांग हूँ, सुपरमैन हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लगता, मैं भी मैं ऑर्डिनरी आदमी हूँ, कभी तो हम तो किसी से नाराज तो क्या ना, हम किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, हमको पता हमारी हार होने वाली है। तो लेकिन कोई ने डर आया तो एक ही चीज मेरे को ख्याल में आई, क्योंकि मैं लोगों की मदद करने लग गया, तो लोगों की मदद करते हैं ना तो अपना डर मेरे को निकल गया। आपने अपने जीवन में देखा होगा, कभी भी आपको दुख तकलीफ हो रही होती है, डर होता है ना, आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ते हो जिसको आपसे भी ज्यादा दुख तकलीफ है, तो आपका एकदम ध्यान उनकी तरफ जाता है ना, आप उनको मदद करने लग जाते हो, तो आपने नोट किया होगा आपको अपना भी भय खत्म हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो क्या था भी मदद, आप क्या कर सकते हो, सब लोग नीचे आ रहे हैं, आप भी नीचे आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फर्क क्या था, बाकी लोग जल्दी जल्दी नीचे आ रहे हैं, लेकिन मेरे को था कि मैं लोगों की मदद करूं, मैं ज्ञान में चलता हूं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं पिछले 27 ईयर से, तो मैं वैसी थोड़े बनूंगा, तो मैं उनको हिम्मत बढ़ा रहा था। तो क्या होता था कि जब दूसरा टावर का जब शेकअप होता है ना, तो सबके ना बड़े वो चीखे निकल जाती है ना डर के मारे, तो जैसे कोई थोड़ी अभी आवाज होती ना, तो वहां लेडीज पीछे काम करती थी, उनकी चीख निकल जाती, तो मैं फिर चुपके से क्या करता, उनको कहता आप आगे आ जाओ, उनको मैं अपने पास ले आता, सामने ले आता था, और मैं उनको कहता हम सब इकट्ठे हैं, साथ चलेंगे, डोंट वरी, अभी देखो कोई बड़ी बात नहीं है ना, दो कदम आगे था, अभी दो कदम मैं पीछे हो गया, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने इतना मेरे को वो प्यार कर रहे थे, यहां तक भी कहा कि राम यू आर अवर एंजल, उन्होंने बोला ऐसो, तो मेरे को हंसी भी आई, मैं कह यहाँ एंजल बनने के लिए कितना कितना लोग वो पुरुषार्थ करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, यहाँ मैं दो कदम पीछे गया और मेरे को एंजल बना दिया, ये तो बहुत अच्छा डील है, दो कदम पीछे जाओ और एंजल बन जाओ। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि कई बार जब हम एंजल्स की बात करते हैं ना, बड़े बड़े एंजल्स होते हैं ना, नामी ग्रामी, उनकी हम बात करते हैं, लेकिन हम हैं साधारण लोग, तो क्या ये पॉसिबल है वो बड़े बड़े एंजल हैं, मैं छोटा सा एंजल बन जाता हूँ, आई कैन बिकम ए माइक्रो एंजल, आई कैन बिकम ए पार्टिकल एंजल। पर एंजल करते क्या है, जहां मुसीबत होती है आकर मदद करते हैं, कोई उनसे रिटर्न में कुछ नहीं लेते हैं, और इससे पहले लोगों को पता चलो वो फ्लाई कर जाते हैं, तो माना अपने हाथ में भी कुछ नहीं रखते हैं, तो क्या वो तो पॉसिबल हो सकता है कि हम कभी भी किसी को मुसीबत हो वहां जाके उनकी मदद करें, अपना नाम शाम के लिए नहीं करें, और इससे पहले कि वो आपको कोई गिफ्ट दें, क्योंकि अगर वो गिफ्ट देंगे, आप गिफ्ट ले लेंगे, फिर तो आप भारी हो जाएंगे, फिर उड़ेंगे कैसे। तो एंजल हल्के होते हैं, एंजल उड़ते रहते हैं, है ना, वो किसी से कुछ रिटर्न में नहीं लेते हैं, वो तो पॉसिबल हो सकता है। तब मेरे को लगा कि फियर यही हमारा करेज है, और फियर में ही हम देखो क्या से क्या बन सकते हैं। सिर्फ क्या है, जब कभी मुसीबत है ना, किसी ढूंढ ऐसे को ढूंढ लो जिसको आपसे भी ज्यादा तकलीफ है, उनकी आप मदद करेंगे ना, आपका फियर खत्म हो जाएगा। देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
1: जी जी, चलिए राम जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और दयाल जी जो है याद कर रहे हैं हमारे रेडियो स्टूडियो में पधारे मेरे सभी प्रिय मेहमानों को, मेरा प्यार भरा दिल से तहे दिल से सभी को नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू दयाल जी। और सुभाष जी ने लिखा है वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक एंड प्रोग्राम, बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माई लाइफ सर, राम प्रकाश जी एंड रमेश जी, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, और बड़े प्यार से आपने मैसेज किया। और दैया जी भी लिखते हैं ओम शांति आप सभी को, और हम सब शिव बाबा के संतान है, बहुत सुंदर विचार आपने एक्सप्लेन किया, एक्सपीरियंस शेयर किया करके लिखा है दैया का। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हम राम प्रकाश जी के कुछ चुनिंदा अनुभव और आप क्राइसिस और डर से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके बदले में हम लोग करेज और अपॉर्चुनिटीज को कैसे अपने लाइफ में देख सकते हैं, ये आपने सुना उनके अनुभव से। तो निश्चित तौर पर हमारे पास सिचुएशन आता है तो हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, ये देखने का नजरिया आपका बदलना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन आती है आपको अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए आपके लाइफ। दूसरा फियर भी है तो उसको अगर हम समझ लेते हैं और उससे ऊपर आ जाते हैं, करेज हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है और हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ के जीने लगते। तो जिंदा दिल यही है कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जो है, आखिरी में उन्होंने अपने 9/11 का जो एक्सपीरियंस शेयर किया, उसी बिल्डिंग में थे जिस बिल्डिंग से प्लेन टकरा गया था, और वहां से निकलते निकलते उन्होंने देखा कि लाइफ में बहुत बड़ी चीज उन्होंने एक्सपीरियंस किया। और जब उनको दूसरों को ऐसे मुश्किल के समय हेल्प करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें एंजल बनने का टाइटल मिल जाता है। ये आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा हमें। तो निश्चित तौर पे हम मुश्किल घड़ी में किसी को हेल्प करते हैं तो वो एंजल का ही काम होता है, क्योंकि खुद भी उसी सिचुएशन में है और तब मदद कर रहा है तो और ज्यादा उसका इम्प्रेशन, उसका अनुभव होता है। तो राम प्रकाश जी थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर आप हमारे सभी दर्शक मित्रों को दें।
2: मेरे को जैसे आज फियर का बात किया ना, फियर और करेज एक जगह मिलते हैं, क्राइसिस अपॉर्चुनिटी एक जगह मिलती है, अनसर्टेनिटी फेथ एक जगह मिलता है। तो वास्तव में जिंदगी में हमको लड़ना नहीं है, जिंदगी अपने आप को चेंज करने की बात होती है। तो क्या है, एक चीज जो मैंने अपने जीवन में देखी, अगर हम अच्छे हैं लोग मेरा एडवांटेज लेंगे। होता है ना सबको के मैं अच्छा हूँ लेकिन लोग मेरा एडवांटेज ले रहे हैं, मैं अच्छा हूँ लोग मेरे को यूज कर रहे हैं। तो मेरे को होता है कि मैसेज में कि लोग मेरा एडवांटेज किस लिए लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एडवांटेज है। लेकिन जब मैं दूसरों को देता हूँ मेरे को प्रकृति परमात्मा सब तरफ से मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरा है, जब हम कहते हैं ना हम अच्छे हैं लोग हमको यूज कर रहे हैं, सबको ऐसा फील होता है ना कि हमको लोग यूज किया जा रहा है। तो मैंने अपने जीवन में क्या देखा कि अगर लोग मेरे को यूज कर रहे हैं इसका मतलब मैं यूजफुल हूँ, तभी तो वो मेरे को यूज कर रहे हैं। अगर मैं मेरे को यूज नहीं करेंगे तो मैं यूजलेस हो जाऊंगा। तो क्या मेरे को यूजलेस बनना मंजूर है कि मैं इतना यूजफुल बनूं सारी दुनिया मेरे को यूज करे? तो जितना मेरे को यूज करेंगे उतना मैं वैल्यूएबल बनता जाऊंगा। देखो यूजफुल बंदे को हर कोई बुलाता है ना, हमारे पास आओ आओ आओ होता है ना, लेकिन कोई यूजलेस है उसको बुलाना चाहेंगे, वो कहते मैं आऊं, कहते नहीं नहीं भाई बाद में आना, टाइम नहीं है, आ भी गए तो माय गॉश आ गया है, कब जाएगा, होता है कि नहीं होता। मतलब जिंदगी में अगर आपको जिंदगी जीना, यूजफुल बन जाओ, जितना आपको लोग यूज करेंगे। देखो हम सूरज को यूज करते हैं ना, हवा को यूज करते हैं, पानी को यूज करते हैं, तो जितना आपको लोग यूज करेंगे उतना आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, आप भरपूर होते जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती जाए। तो यही मेरा सबको, वो यूज करना क्या है, अपने रिलेशनशिप में अभी ये कोविड भी आया, जितना आपको करना ना उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर, थोड़ा एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा आप करेंगे ना, ये आपकी ना दुनिया के प्रति कंट्रीब्यूशन है। एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा टॉलरेंस, एक्स्ट्रा एक्सेप्टेंस, माना किसी के दुख तकलीफ को जान लेना, थोड़ा सा आगे बढ़कर हेलो कर देना, है ना। तो कोई खिटपिट हो गई है तो खुद झुक के सॉरी बोल दो, थैंक यू बोल दो, पहले आप बोल दो और उनको क्रेडिट दे दो, तो आपका जीवन हमेशा सुखी बन जाएगा, आपको सारे डर निकल जाएंगे। क्योंकि डर होता है लोग मेरे को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप है ही लोगों को देने के लिए, मदद करने के लिए, हर कोई आपको प्यार करेगा, यू विल बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर। तो यही मेरा सबको ये संदेश है, डरो नहीं अच्छा बनने से, डरो नहीं यूज होने से, क्योंकि ये भगवान को हम यूज करते हैं, प्रकृति को हम यूज करते हैं, तो हम भी दाता बन जाएंगे ना, तो वो एक बड़े सिंपल तरीके में हम देवता बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं। प्रैक्टिकल में बड़े बड़े फरिश्ते नहीं जो उड़ने वाले हैं हवा में, लेकिन हमारा उमंग उत्साह का जो है ना, उमंग उत्साह खुशी, उसके पंख लेकर हम उड़ते हैं, हलते रहते हैं, है ना। कहते हैं फरिश्ते उड़ते रहते हैं, क्यों? क्योंकि ना वो किसी से लेते हैं, खाली हाथ होते हैं और बस खुशी खुशी में उड़ते रहते हैं। तो उड़ते रहो, मुस्कुराते रहो, लोग आपको यूज करते रहें, आप लोग आपका एडवांटेज लेते रहें, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली, जीवन आपका बड़ा सुखी बन जाए। ओम शांति।
1: ओम शांति। राम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मित्रों को आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं इनको मोटिवेशन मिल गया होगा लाइफ में आगे बढ़ने का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। और इसी के साथ राम प्रकाश जी एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको, थैंक यू सो मच। और श्रीशा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं एक गीत सुनाने के लिए, थैंक यू। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगले
2: आपका भी, रमेश भाई, श्रीशा बहन, बहुत बहुत थैंक यू फॉर हैविंग मी।
1: सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखे और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाए और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन।

0: नमस्ते दोस्तों। भाई छुट्टियों के दिन बड़े मजेदार और आरामदायक होते हैं, है ना। आजकल मीना और राजू की भी छुट्टियां चल रही हैं, तभी तो वो दोनों आराम से आंगन में बैठ के कहानी की किताब पढ़ रहे हैं।
1: राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों इस चोर को कारागार में डाल दो।
2: मीना, कारागार क्या होता है?
1: राजू, कारागार मतलब जेल।
3: कारागार मतलब जेल, सिपाही पास, चोर फेल।
4: मीना, मीना, शहर से कुछ लोग आए हैं फिल्म की शूटिंग करने।
2: फिल्म की शूटिंग?
4: हाँ, उनके पास एक बड़ा सा कैमरा, बहुत सारी लाइटें हैं।
1: अच्छा, तो फिर चलो।
0: मीना, राजू और दीपू भाग के बड़े मैदान में पहुँचे। वहाँ उन्हें मिले सरपंच जी। सरपंच जी उनकी बात सुन के बोले,
5: बच्चों, ये लोग फिल्म वाले नहीं हैं, ये एक एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्था के लोग हैं, जो हमारे गांव में एक फिल्म बनाएंगे शिक्षा के महत्व पर।
1: सच सरपंच जी?
5: हाँ मीना, और उसी फिल्म के लिए ये लोग हमारे गांव के कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे और उसे कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे।
4: लेकिन सरपंच जी, ये लोग बच्चों से क्या बातचीत करेंगे?
5: दीपू बेटा, ये लोग उन बच्चों के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं जो या तो कभी स्कूल गए ही नहीं, या फिर वो बच्चे जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल जाना छोड़ दिया है।
4: ओ, अब समझा।
1: सरपंच जी, क्या दीपू, राजू और मैं भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं?
5: हाँ हाँ मीना बेटी, आओ तुम्हें एनजीओ के कार्यकर्ता से मिलवाता हूँ।
0: सरपंच जी ने मीना, राजू और दीपू को एनजीओ कार्यकर्ता दिव्या जी से मिलवाया। दिव्या जी ने उन तीनों को बताया कि कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए कल उन्हें कैमरे के सामने खड़े होके कुछ लाइनें बोलनी होंगी।
6: बच्चों, तुम सब कैमरे के सामने ये बताना कि तुम्हें स्कूल जाना अच्छा क्यों लगता है, या फिर स्कूल जाके तुम क्या क्या सीखते हो, या फिर स्कूल से संबंधित कोई भी बात।
2: ठीक है दिव्या दीदी।
0: और अगले दिन
6: जब डायरेक्टर साहब जोर से एक्शन कहेंगे, तो तुम सब अपनी अपनी लाइंस बोलना शुरू कर देना, ठीक है?
1: जी दिव्या दीदी।
7: रोलिंग, एक्शन।
1: मेरा नाम मीना है, मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज स्कूल जाती हूँ और स्कूल जाके हर दिन कोई ना कोई नई चीज सीखती हूँ। धन्यवाद।
7: कट।
6: शाबाश मीना, बहुत अच्छा बोला तुमने।
1: जी धन्यवाद।
6: दीपू, अब तुम्हारी बारी। अपनी लाइंस ठीक से याद है ना?
4: हाँ याद है।
7: एक्शन।
4: मुझे स्कूल जाने में बहुत मजा आता है। मैं और मेरे सभी दोस्त स्कूल में पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, एक साथ मिलके खाना खाते हैं। स्कूल से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। धन्यवाद।
7: कट। दीपू, वेरी गुड।
4: धन्यवाद डायरेक्टर साहब।
8: अब मेरी बारी।
6: राजू, अभी तुम्हारी नहीं, प्रीति की बारी है।
1: प्रीति? लेकिन दिव्या दीदी, हमारे गांव में तो प्रीति नाम की कोई लड़की नहीं है।
6: मीना, प्रीति साथ वाले गांव से आई है। प्रीति, अब तुम्हारी बारी है।
9: जी।
7: एक्शन।
9: वो बच्चे सच में किस्मत वाले होते हैं जो स्कूल जाते हैं, क्योंकि स्कूल जाके ही उन्हें पढ़ना लिखना और जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, बहुत पीछे। इसीलिए हर एक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। धन्यवाद।
7: कट।
6: वेरी गुड प्रीति, तुम बहुत अच्छा बोली।
10: एक गड़बड़ हो गई।
6: क्या हुआ?
10: कैमरे में कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी, इसलिए प्रीति का इंटरव्यू ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया।
6: ओहो प्रीति, क्या तुम कल यहाँ आकर एक बार फिर से अपनी लाइंस बोल सकोगी?
9: ठीक है, मैं कल फिर आ जाऊंगी।
0: प्रीति वहाँ से थोड़ी दूर ही गई थी कि मीना ने उसे आवाज देके रोका।
1: प्रीति दीदी।
9: हाँ?
1: मेरा नाम मीना है, आपने अपनी लाइनें बहुत अच्छे से बोली।
9: धन्यवाद मीना।
1: प्रीति दीदी, मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा।
9: मैं साथ वाले गाँव में रहती हूँ मीना, मैं और मेरे माता पिता थोड़े दिन पहले ही वहाँ रहने आए हैं। मेरे पिताजी एक मजदूर हैं, काम के सिलसिले में उन्हें एक गांव से दूसरे गांव या शहर जाना पड़ता है।
1: ओह, इसका मतलब आप लोग कुछ दिनों बाद कहीं और चले जाओगे?
9: नहीं, क्योंकि पिताजी को इस बार गांव में ही एक अच्छा काम मिल गया है।
1: इसका मतलब अब आप हमारे स्कूल में पढ़ाई करेंगी?
9: पता नहीं मीना, चाहती तो मैं भी हूँ कि मैं।
10: प्रीति वापस आ जाओ, कैमरा ठीक हो गया है।
8: जी आती हूँ।
9: चलो मीना।
6: ये लो प्रीति।
9: ये क्या है?
6: मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम इस स्क्रिप्ट में लिखी लाइंस पढ़ो।
9: इसमें से पढ़कर?
6: हाँ प्रीति, तुम्हारे लिए तो ये जरा सी बात है, आखिर तुम इतना अच्छा जो बोलती हो। शाबाश।
7: एक्शन।
9: स्कूल का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। स्कूल सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि।
6: कट कट कट। क्या हुआ प्रीति, तुम ऐसे अटक अटक कर क्यों पढ़ रही हो? अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर इन लाइंस को बोलने का अभ्यास कर सकती हो।
9: नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा।
1: अरे प्रीति दीदी तो वापस जा रही हैं। दीपू राजू तुम यहीं रुको, मैं उनसे बात करके आती हूँ।
11: प्रीति दीदी, प्रीति दीदी, क्या हुआ प्रीति दीदी, आप वहाँ से वापस क्यों?
9: मीना मुझे ठीक से पढ़ना नहीं आता।
1: क्या?
9: हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे पिताजी को काम के सिलसिले में गांव-गांव शहर-शहर जाना पड़ता था।
1: हाँ।
9: बस उसी वजह से मैं नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाई। एक तो जगह मैंने स्कूल में दाखिला लिया था लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे वो स्कूल छोड़ने पड़े, पिताजी को काम करने दूसरे गाँव जो जाना था।
1: प्रीति दीदी आपने बताया था कि अब आप और आपका परिवार साथ वाले गांव में ही रहेंगे, तो आप मेरे स्कूल में दाखिला ले सकती हैं।
6: नहीं मीना, अब बहुत देर हो चुकी है।
1: क्या मतलब?
9: मैं सिर्फ दूसरी कक्षा तक ही स्कूल गई थी, तब मैं 7 साल की थी और अब मैं 14 साल की हूँ। अब स्कूल जाके तीसरी कक्षा में छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ूंगी तो मुझे शर्म आएगी।
1: प्रीति दीदी हमारी बहन जी कहती है कि वो बच्चे जिन्हें किसी कारणवश स्कूल छोड़ना पड़ता है या जो स्कूल नहीं जाते उन्हें पढ़ाने के लिए आयु के अनुसार विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध हैं।
6: मीना ठीक कह रही है प्रीति।
9: जी आप?
6: हाँ मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मीना सही कह रही है। देखो प्रीति, आजकल बहुत से स्कूलों में स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध हैं और तुम्हें इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए।
9: अच्छा, इन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में होता क्या है और मुझे इसका लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा?
6: इन कार्यक्रमों में सबसे पहले तुम्हारे जैसे बच्चों को दाखिल किया जाता है जो या तो स्कूल जाते ही नहीं या वो जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल जाना छोड़ दिया है।
9: फिर
6: उन बच्चों को एक विशेष तरीके से पढ़ाया लिखाया जाता है ताकि वो जल्दी से सब कुछ सीखकर अपनी उम्र के अनुसार उचित क्लास में पढ़ सकें।
9: सच?
6: हाँ प्रीति, एकदम सच। और सिर्फ यही नहीं, वो बच्चे स्कूल की बाकी गतिविधियों जैसे सुबह की सभा, पुस्तकालय, मध्याह्न भोजन, खेल कूद आदि में भी हिस्सा ले सकते हैं। इस तरह से तुम अपने उम्र के बच्चों के साथ खुल मिल भी जाओगी और जल्द ही उनके साथ कक्षा में पढ़ भी सकोगी।
9: आप दोनों का बहुत धन्यवाद। अगर मीना और आप मुझे ये सब ना बताते तो शायद मुझे कभी पता न चलता। मुझे तो लगा था कि अब मैं कभी स्कूल नहीं जा सकूंगी। मीना मैं आज ही अपने माता पिता को इस बारे में बताऊंगी कि वो मेरा दाखिला तुम्हारे स्कूल में करवा दें ताकि मैं विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाकर जल्दी ही उम्र अनुसार उचित कक्षा में बैठ सकूं।
6: ये हुई ना बात। शाबाश।
3: शाबाश। पढ़ लिख के फैलाओ शिक्षा का प्रकाश।
0: देखा दोस्तों, तभी तो मैं कहता हूँ कि मीना से मिलने के 2 फायदे हैं। एक तो मनोरंजन हो जाता है और दूसरा हर बार एक नई बात भी पता चलती है। सचमुच बहुत चतुर और चपल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता।
1: पढ़ने की कोई उम्र नहीं, मत सोचो हो गई देर।
3: स्कूल जाओ, जीवन में लाओ, हर दिन नई सवेर।
0: भाई वाह, क्या कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक गुदगुदाता मुस्कुराता सा।

0: शिक्षा मेरा अधिकार है।
1: गाना सुन के तो मजा आ गया, और अब कहाँ चलना है सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल सही कहा, अब हमें चलना है खेलने मीना की क्लास में।
2: बच्चों आज हम खेलेंगे नाम अनेक
3: अक्षर एक।
2: हाँ मैं एक अक्षर बोलूँगी और उस अक्षर से तुम मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु या जगह का नाम बताओगे, ठीक है?
3: जी।
2: तो आज का अक्षर है व। सबसे पहले बताओ व से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम।
4: विराट कोहली।
2: शाबाश रानो, और विराट कोहली कौन है?
3: क्रिकेट के खिलाड़ी।
2: हाँ चलो बच्चों अब व से किसी जानवर का नाम बताओ।
5: वानर यानी बंदर।
2: शाबाश कृष्णा, और बंदर का नाम लेते ही कौन सा फल याद आता है?
3: केला।
2: बिल्कुल सही। चलो बच्चों अब व से शुरू होने वाली कोई चीज।
6: वीणा।
2: शाबाश दीपू। चलो बच्चों अब व से किसी जगह का नाम बताओ।
3: वाराणसी।
2: हाँ, और वाराणसी शहर भारत के किस राज्य में स्थित है?
3: उत्तर प्रदेश में।
2: शाबाश, तो मजा आया बच्चों?
3: बहुत मजा आया।
1: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: दोस्तों मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूँगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: गोपीचंद। गोपीचंद मुंबई के उपनगर के एक स्टेशन पर अंधेरी जाने के लिए लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके पास एक व्यक्ति बैठा हुआ पेपर में क्रॉसवर्ड पसल भर रहा था। गोपीचंद उस व्यक्ति को देख रहे थे।
1: ओह, तो आपको भी क्रॉसवर्ड भरने का शौक है?
2: जी हाँ, बचपन से ही मुझे इसका बड़ा शौक है। ओह नो, बस कुछ ही बॉक्स रह गए और ये कम्बख्त पेन खराब हो गया।
1: भाई साहब, आप परेशान क्यों होते हो, ये लीजिए मेरा पेन।
2: नो थैंक्स, असल में लाल पेन के अलावा किसी और पेन से काम नहीं करता, मुझे लाल सही ही पसंद है।
1: ओके, अजीब बात है, खैर सभी के अपने अपने उसूल होते हैं।
0: कुछ देर बाद वे लोग उतर जाते हैं। एक दिन गोपीचंद खाना खा रहे थे कि तभी गोडबोले का फोन आता है।
3: गोपीजी, स्टेट मालिक मिस्टर ओबरॉय का किसी ने कत्ल कर दिया है, आप फौरन आइए।
0: गोपीचंद फौरन वहां पहुंचकर लाश के पास की सभी चीजों को ध्यान से देखते हैं और अपने काम की चीजों को बटोर लेते हैं। दूसरे दिन गोपीचंद को सिल्वर स्टेट से संबंध रखने वाले सभी व्यक्तियों से मिलाया गया। वहां वह व्यक्ति भी था जो उन्हें ट्रेन में मिला था। पता चलता है कि वह ओबरॉय साहब का सचिव था। उसे देखते ही गोपीचंद सारा माजरा समझ गए।
1: गोडबोले, गिरफ्तार कर लो इस शख्स को। देखो गोडबोले, यह अखबार मुझे वहां से मिला है जहां से ओबरॉय साहब की डेड बॉडी मिली थी, और इस अखबार की क्रॉसवर्ड भी भरी हुई है।
4: लेकिन सर, क्रॉसवर्ड और अखबार का कत्ल से क्या संबंध है?
1: संबंध है गोडबोले, खास बात यह है कि यह क्रॉसवर्ड लाल पेन से भरी गई है, और लाल पेन से क्रॉसवर्ड भरने का शौक इन्हीं सज्जन को है। जरूर किसी रंजिश को लेकर इन महोदय ने ओबरॉय साहब का खून किया होगा, और गलती से ये अपने क्रॉसवर्ड्स भरा हुआ पेपर यही छोड़ गए।
2: वाह साहब, क्या फिल्मी कहानी है भाई। ये तो कोई इत्तेफाक भी हो सकता है कि ये क्रॉसवर्ड किसी और ने भरी हो, शायद खुद मिस्टर ओबरॉय ने।
1: जनाब, ये जरूर हो सकता है, लेकिन खास बात ये है कि ये अखबार वही है जिस पर आप क्रॉसवर्ड भर रहे थे। देखिए, पेन को पेपर पर रगड़ने के निशान और इस क्रॉसवर्ड के कुछ खंड छूटे हुए भी हैं, जिन्हें आप पेन की खराबी के कारण भर नहीं पाए थे। अब सब कुछ सच सच बता दीजिए।
2: मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने ही पैसों के लालच में उनका खून किया है। मुझ पर बहुत कर्ज था, मैं क्या करता, मैं मजबूर था।
0: तो इस तरह गोपीचंद अपनी ऑब्जर्वेशन से केस को सॉल्व कर देते हैं, और मुजरिम को एहसास होता है कि चुराए हुए पैसे उसके काम नहीं आए, बल्कि वो सजा का हकदार बन गया।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

0: इस प्रोग्राम में पेश खदमत है एक नज्म। उन्वान है मुलम्मा की अंगूठी, शायर हैं इस्माइल मेरठी। इस नज्म को पहले तहत में पेश किया जा रहा है, आवाज है मोहतरमा सादिया रहमान की।
1: चांदी की अंगूठी पे जो सोने का चढ़ा झोल, ओछी थी लगी बोलने इतरा के बड़ा बोल। ऐ देखने वालो तुम्हें इंसाफ से कहना, चांदी की अंगूठी भी है कुछ गहनों में गहना। चांदी की अंगूठी के ना मैं साथ रहूंगी, वो और है मैं और ये जिल्लत ना सहूंगी। मैं कौम की ऊंची हूं बड़ा मेरा घराना, वो जात की घटिया है नहीं उसका ठिकाना। मेरी सी कहां चाशनी मेरा सा कहां रंग, वो मोल में और तोल में मेरे नहीं पासंग। मेरी सी चमक उसमें ना मेरी सी दमक है, चांदी है कि है रंग मुझे इसमें भी शक है। ये सुनते ही चांदी की अंगूठी भी गई जल, अल्लाह रे मुलम्मे की अंगूठी तेरे छलबल। सोने के मुलम्मे पे ना इतरा मेरी प्यारी, दो दिन में भड़क इसकी उतर जाएगी सारी। कुछ देर हकीकत को छुपाया भी तो फिर क्या, झूठों ने जो सच्चों को चिढ़ाया भी तो फिर क्या। मत भूल कभी असल को अपनी अरी अहमक, जब ताव दिया जाएगा हो जाएगा मुफक। सच्चे की तो इज्जत ही बढ़ेगी जो करें जांच, मशहूर मसल है कि नहीं सांच को कुछ आंच। खोटे को खरा बन के निखरना नहीं अच्छा, छोटे को बड़ा बन के उभरना नहीं अच्छा।
0: और अब ये नज्म तरन्नुम के साथ पेश की जा रही है। गुलुकार हैं संतोष कुमार, अनुजा बिसारिया और सिमरत छाबड़ा। इस नज्म को मौसीकी से आरास्ता किया है संतोष कुमार और उनके साथियों ने।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंस इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।

0: आकार जो बेटी को दे पहचान माता पिता।
1: पता भी है, मैंने एक फिल्म देखी, उसमें ना इंसान गायब हो जाता है और वो कुछ भी करने लगता है।
2: अच्छा वाह यार, हमको भी ऐसे पावर्स मिले तो कितना मजा आएगा।
1: हाँ
3: मैं तो पता है मूवी में बिना टिकट ले सिनेमा हॉल में चला जाऊंगा।
4: अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है भाई, कौन बिना टिकट लिए कहाँ जा रहा है?
3: दीदी मैं अगर गायब हो जाऊंगा ना तो सिनेमा हॉल में चला जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा।
4: ओ यहाँ पे कौन कौन गायब होने वाले? शिवानी भी गायब हो रही है क्या?
1: हाँ।
3: चारों ही गायब हो जाएंगे।
4: ये आइडिया कहाँ से आया भाई गायब होने का?
1: फिल्म से।
4: ओ तो एक काम करते हैं बच्चों, फिल्मों में तो हमने देखा है या फिर बुक में पढ़ा है कोई गायब हो जाता है, लेकिन अगर असल में आप लोगों को ये सुपर पावर मिल जाए कि आप कभी भी गायब हो सकते हो तो क्या करोगे? चलो आज उस बारे में बात करते हैं, ठीक है? और कौन कौन बात करने वाला है आज?
2: मैं, मेरा नाम रोशन और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
3: मैं हूँ आयुष और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
1: मैं हूँ शिवानी और मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ।
5: मैं हूँ अमन और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ।
4: ओके तो आज वैसे तो सबसे छोटी यहाँ पे शिवानी है ना? है ना। तो क्या शिवानी सबसे पहले बताए कि उसको गायब होने का मन भी है या नहीं? पहले आप सब लोग ये बताओ किस किस को गायब होना है और किस किस को बिल्कुल नहीं होना है।
1: मुझे होना है।
4: बाप रे, सबको गायब होना है?
1: हाँ। और फिर वापस भी आना है।
4: अच्छा वापस भी आना है?
1: हाँ।
4: वापस आना जरूरी है?
3: बहुत जरूरी है।
4: क्यों, अगर हमेशा गायब रहे तो
5: फिर नहीं पाएगा?
4: हाँ क्या नहीं होगा?
1: फिर ज्यादा मजा नहीं आएगी। अगर हम लोग के साथ कोई और भी गायब हो तो फिर मजा आएगी।
4: अच्छा अच्छा, मतलब आपके दोस्त अगर साथ में गायब हो तो हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं?
3: नहीं, मैं भी नहीं हो सकता
4: हमेशा के लिए गायब।
2: क्योंकि ड्रेस तो गायब नहीं होगा।
3: अच्छा, ड्रेस भी होगा। अरे नहीं, पावर होगी, हमने जो पहना होगा ना उसके साथ ऐसे तो कोई भी पहचान लेगा, ऐसा थोड़ी।
4: अच्छा अच्छा, चलो अगर ड्रेस भी गायब हो जाए तो हमेशा के लिए होना?
3: नहीं, इंटरव्यू देने आऊंगा दीदी तो बोलेंगे कौन है ये भूत कहीं का,
5: भगा देंगे।
4: ओके तो कभी कभी गायब हो सकते हैं, जब मर्जी गायब हो जाए, जब मर्जी वापस आ जाए। सबको ऐसे करना है। ओके लेकिन गायब होना क्यों है वो तो बताओ।
3: मजा करने के लिए।
4: क्या मजा करना है? क्या क्या करोगे? अच्छा गायब अगर होने की सुपर पावर मिल गई तो क्या करोगे आयुष, क्या करोगे बताओ?
3: जैसे दीदी वाटर पार्क में जाना है तो वहाँ पे भी टिकट लगता है, बिना टिकट के अंदर चला जाऊंगा। मूवी देखनी है तो भी बिना टिकट के, कुछ भी करना है जो पैसों से होता है फ्री में चला जाऊंगा ना, गायब हो गए।
1: कोई जान ही नहीं पाएगा।
4: और शिवानी क्या करेगी गायब होके? क्यों गायब होना है शिवानी को?
1: मुझे अच्छा लगेगा गायब होने में।
4: क्या करोगे?
1: मैं कुछ भी कर लूंगी।
4: क्या कुछ भी करोगे?
1: जैसे कि अगर मुझे पैसे में चॉकलेट खरीदनी तो मैं पैसे नहीं दूंगी, चॉकलेट ले लूंगी।
3: चोरी करेगी।
4: ओके आप देखो भाई, आपको भी तो बिना टिकट के जाना था ना।
3: मैं भी चोरी कर रहा हूँ, बहुत महंगी वाली।
5: ओके मैं ना सबको डराती गायब होके, क्योंकि गायब हूँ मुझे कोई देख तो सकता नहीं है। ठीक है, मैं ना अगर गायब हो जाती तो अपने फ्रेंड्स को डराती जो मुझे परेशान करते हैं।
4: अच्छा और कैसे डराते, क्या करते?
5: जैसे मेरी क्लास में कोई पढ़ा रहा है, मैम पढ़ा रही है, और अचानक मार्कर उठ के अपने मन से चलने लगे और जिसका नाम लिखा है उसको डर लगेगा ही ना कि कैसे लिख गया मेरा नाम।
4: ओ बाप रे।
5: या फिर ऐसे उसका नाम को काटूंगी या फिर ऐसे कुछ भी बोर्ड पे बनाऊंगी।
4: अच्छा मुझे लगता है ये किसी ना किसी भूत वाली फिल्म में हुआ है। है ना।
1: लेकिन गायब होने से एक नुकसान भी होगा।
4: क्या?
1: हम लोग के ऊपर चल के चला गया तो।
4: अच्छा नुकसान के बारे में हम पहले बात करेंगे, शिवानी एक बार पूछ लेते हैं बाकी लोग करने क्या वाले गायब हो के। है ना,
2: अगर मैं गायब हो गया तो मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। मैं जाऊंगा सीधा फ्लाइट में बैठ के पूरी दुनिया।
3: हाँ ये आइडिया भी अच्छा है, बिना टिकट के।
4: लेकिन फ्लाइट में तो सीट होती है, अब सीट पे तो एक ही जना
3: नीचे बैठ जाएंगे ना दीदी, इसमें क्या
5: घूमते रहेंगे फ्लाइट में,
2: या तो शिप्स में चले जाऊंगा।
4: ओके अच्छा, मतलब घूमना है, मस्ती करनी है और डराना भी है।
3: दीदी ऐसा भी होना चाहिए कि हम जब चाहे इस तरीके का गायब होए कि हमारे अंदर से हर चीज आर पार हो जाए, और हम चाहे ऐसा गायब होए कि हम किसी चीज को पकड़ पाए।
5: अच्छा तो नहीं हो सकता, अगर हमारी आर पार हो जाएगी फिर हम किसी चीज को पकड़।
3: वही तो कह रहा हूँ, इसलिए हमारी मर्जी के ऊपर, मतलब जैसे अभी हमें भाई भीड़ में गायब होना तो गायब होकर चलते रहेंगे, कोई मजा आए बहुत मजा आएगा। और जब हमें किसी को डराना है या कुछ करना है, कुछ पकड़ना है गायब के अंदर अंदर, तो हम ऐसा कर लेंगे गायब रहें लेकिन कुछ पकड़ पाए। ये दोनों पावर होनी चाहिए, ठीक है?
4: अच्छा मतलब अगर चाय का कप पी रहे हैं तो कौन पकड़े वो पालू नहीं।
3: पकड़ पाए उसको,
5: तो सच में डर जाएगा।
4: ओके अच्छा,
2: और जो हम पी रहे हैं वो भी तो इनविजिबल होना है, क्या पता वो टी ऐसे।
3: नहीं नहीं वो इनविजिबल नहीं होगा, हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज जाएगी ना,
4: एक एक करके
3: हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज जाएगी ना वो इनविजिबल हो जाएगी।
5: हम पी रहे हैं क्योंकि वो नविता में हुआ था।
4: अच्छा
5: दिख रहा था।
4: हाँ। अच्छा मतलब जो वो खाएंगे वो दिख रहा हो, मतलब पेट में अगर एप्पल खाया तो एप्पल दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे हो।
3: नहीं मेरे अंदर ऐसी पावर नहीं होगी, मेरे अंदर दिखेगा ही नहीं,
4: नहीं दिखेगा,
3: मुंह के अंदर जाती गायब।
4: ओके मतलब आयुष के अंदर जो गया वो सब गायब हो चुका है। अच्छा ये तो रियल में हो जाता है गायब।
3: इनविजिबल होंगे तब।
4: ओके अच्छा अच्छा, अब शिवानी जो बोल रही थी कि क्या नुकसान हो सकता है क्या गायब होके,
1: जैसे अगर हम लोग कहीं पे हम लोग को शेर को देखने जाना है इनविजिबल होके, हम लोग चले गए उसके पास, उसने हम लोग को सूंघ के काट लिया तो
3: नहीं, शेर भी डर जाएगा, कोई है नहीं और ये क्या है। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि मैंने कहा ना आर पार हो सके हर चीज, पता ही नहीं चलेगा इसलिए किसी को।
4: अच्छा लेकिन अगर आर पार नहीं हो सकते मान लो और सिर्फ गायब हो तो क्या करोगे ऐसी सिचुएशन?
3: तो ऐसी सिचुएशन में तो क्या है, वो तो इधर उधर घूम जाएंगे, उसको थोड़ी कौन सा दिख रहे हैं हम,
1: भीड़ में
2: पड़ो तो स्मेल तो कर सकते।
3: स्मेल और क्या करेगा
2: अगर उसको, मतलब कोई भी ऐसे स्पेक्स पहन लो जिसमें से हम हमारे बॉडी के हीट दिख जाए तो।
4: ओके मतलब अभी शेर को स्पेक्स पहनाने पड़ेंगे।
2: नहीं कोई भी ऐसे स्पेक्स पहन लिया तो सबको दिख ही जाएगा ये इधर है।
4: अच्छा हाँ हाँ
3: मैं वो

0: रोड क्रॉस करूंगा।
1: हमें तो दिख रहा है ना,
0: नहीं वो बात भी
2: नहीं,
0: है,
2: नहीं होती। दूसरों को भी विजिबल है तब जाएगा आयुष।
0: विजिबल है और मैं इनविजिबल तभी होगा जब मेरी जरूरत होगी, जैसे कि कहीं जाना है अंदर, ऐसा ऐसा
2: ऐसा। अच्छा लेकिन अगर गायब होने का कोई नुकसान आप लोगों को लगता है, मान लो आप लोग गायब हो तो क्या नुकसान हो जाएगा उससे?
1: अगर हमें गायब होते किसी ने देख लिया, जैसे हम अपनी मर्जी से गायब होंगे तो फिर अगर हमें किसी ने देखा गायब होते तो
2: ओके ये नुकसान है।
1: हाँ देखा तो फिर वो जान जाएगा ना गायब है।
2: ओके
0: मेरे को बिल्कुल नुकसान नहीं लगता, क्योंकि देखो मैं पहली बात तो एकदम छुपी हुई वाली जगह पे जाऊंगा, और दूसरी बात ये ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए गायब हो रहा है, जब जाए वापस आ सकते हैं, इसलिए कोई नुकसान नहीं,
2: इसलिए कोई नुकसान
0: बिल्कुल भी नहीं है।
3: ओके तो लगता कोई नुकसान हो सकता है, तुम्हारे ड्रेस तो दिखेंगे ही।
0: अरे मना बोल दी ना,
3: अगर स्पेशल सूट दे दे तुमको पहना है तो फिर सही है,
1: ग्लासेस स्पेशल
3: ऐसे कोई
2: तो फिर कोई नुकसान नहीं है।
3: हाँ फिर नहीं है, अगर ड्रेस दिख रहा हो तो
0: ऑब्वियसली नुकसान है, वो थोड़ी होता है ऐसा।
2: अच्छा
0: है।
2: लेकिन अगर मम्मी पापा ढूंढेंगे फिर आप लोग तो गए,
0: विजिबल हो जाऊंगा ना दीदी।
3: हाँ,
0: बोल तो रहा
3: हूं। है
2: लेकिन आप कहीं गए हो गए और आपको मालूम नहीं मम्मी ढूंढ रही है, और मम्मी को तो दिखोगे भी नहीं आप।
0: मैं तो मम्मी को बता के जाऊंगा ना, मतलब
2: कि मैं गायब
0: नहीं, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जाके गायब हो जाऊंगा, फिर घर पे आने से पहले विजिबल होकर अंदर आ जाऊंगा।
2: ओके मतलब गायब होने का कोई नुकसान नहीं है। तो और फिर आप सब लोगों की बातें सुन लोगे, तो आपके बारे में कोई बात कर रहा होगा और सुन लोगे तो
0: फिर बाद में विजिबल होके जाऊंगा, क्या बोल रहा था।
1: हाँ ये तो है।
2: अच्छा लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे कभी कभी हमें बुरा लगता है तो हम भी किसी के बारे में कुछ तो बोल देते हैं दोस्तों के बारे में, अगर वो सुन ले तो गायब होके।
1: हाँ ये तो है।
0: तो अगर वो बुरा होगा तभी तो हम उसे बुरा बोलेंगे।
2: अच्छा
0: हमें कोई बुरा बोलेंगे ना तो हम उसे कुछ कहेंगे नहीं, हम देखेंगे हमारे अंदर वो है या नहीं है, फिर उसे सुधारेंगे।
1: हाँ ये भी हो सकता
0: है ना।
2: और अगर आप लोग गायब होके मतलब सुन लेंगे सब कुछ, फिर रिजल्ट भी पता कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे।
1: हाँ ये भी है।
0: मैं तो पता नहीं दिया, अच्छा आया बहुत ही अच्छा दिमाग में, वहाँ पे जाऊंगा उस ऑफिस के अंदर जहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, पहले ही जाके उठा लूंगा और पूरा।
1: लेकिन इस तरह तो फिर चीटिंग हो गई ना।
0: तो चीटिंग हो गई तो क्या
1: चीटिंग
0: है,
1: चीटिंग
0: है। चीटिंग। चीटिंग ऐसे तो फिर वो भी चीटिंग हुई ना कि मैं एरोप्लेन के अंदर चला गया, वाटर पार्क के अंदर चला गया, लेकिन करनी तो
1: यानी गायब होने से
2: करनी तो पड़ती है,
1: करनी तो पड़ती
0: है। फायदा हो ना दीदी,
3: क्या फायदा।
0: अच्छा 100 में से 100 नहीं लाऊंगा क्या ना, शक हो जाएगा, 98 लाऊंगा, खुद ही एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा।
2: तो इनविजिबल होने के और भी फायदे भी हो सकते हैं, आप किसी की हेल्प भी तो कर सकते हैं।
1: भगवान बन के किसी की हेल्प कर सकते हैं,
2: भगवान बनने की जरूरत नहीं,
4: जैसे कि जो लोग अंधे होंगे उनकी मदद कर सकते हैं।
2: क्या कर सकते हो बताओ, मदद। अगर किसी की पूरी दुनिया में कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, गायब होके किसी की मदद करनी है, क्या करोगे और किसकी मदद करोगे और क्यों करोगे?
1: मैं ना अगर गायब होगी
2: किसी की भी,
1: मैं गायब होगी ना तो बैंक से सारे पैसे जो भी है थोड़े बहुत लूट उठ के बच्चों में बांट दूंगी जो गरीब होते हैं।
0: ये तो
1: नहीं।
2: ओके कोई बात नहीं, उसकी चॉइस। आप लोग क्या करोगे बताओ, किसी की मदद करनी होगी पूरी दुनिया में किसी की भी, क्या करोगे?
3: इंडियन आर्मी में जाऊंगा और मैं पाकिस्तान में देख के आऊंगा कहाँ से बम गिरने वाला है, बता दूंगा, सेफ रहेंगे हम।
1: हाँ ये भी है।
2: ओके और आयुष,
0: मैं तो देखो दीदी जैसे कि आपको पता है मेरे हाथ में जो चीज होगी वो भी इनविजिबल हो सकती है, तो मैं गन ले लूंगा वो भी इनविजिबल हो जाएगी और एकदम उनके वहां चला जाऊंगा, आगे नहीं खड़ा रहूंगा।
2: कहाँ जाओगे?
0: उनकी बॉर्डर में आर पार हो जाऊंगा, और गोली भी मेरे आर पार जा सकती है, और हम सबको पट से हेडशॉट देते रहूंगा।
1: जी हमने पकड़ा है तो गोली तो हमारे आर पार नहीं जाएगी ना।
0: हाँ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी,
1: नहीं जाएगी।
0: सुनो ना, तो ऐसे मारता रहूंगा सबको, सारी सेना मर जाएगी हमारे इंडिया भाई।
2: अच्छा अब ये बताओ कि गायब होके आपने बहुत सब चीजें तो करी ली, लेकिन अगर ये गायब होने का टाइम लिमिटेड है, आपको बोला जाए कि 24 घंटे आपको दिए जाते हैं और आप गायब हो, हाँ उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन एक पूरे दिन आप लोग गायब, तो क्या करोगे?
0: तो मैं दीदी
1: बस इधर उधर घूमती रहूंगी
2: एक एक करके।
0: ठीक है पहले किसी और, कोई और बताओ।
2: रोशन बताएगा।
3: हाँ तो मैं पहले जाऊंगा बैंक में, सारे पैसे लूट के घर पे रख लूंगा।
2: अच्छा
3: ताकि थोड़ा बाद में काम आ जाए।
0: गुड आइडिया यार।
2: ओके ओके और कौन क्या करने वाला है? सिर्फ 24 घंटे हाँ?
1: हाँ
2: फिर नहीं मिलेगा।
1: मैं इधर उधर घूमूंगी जहाँ जहाँ मैं नहीं गई, जैसे मैं अभी इसे नहीं जा सकती पर गायब होके जा सकती हूँ।
2: कहाँ?
1: जैसे हाँ मुझे चिड़ियाघर जाना बहुत अच्छा लगता है।
2: तो चिड़ियाघर तो आप बिना गायब हुए भी जा सकते हो।
0: तो कुछ ऐसा करो ना जो गायब हुए का फायदा हो।
1: ठीक है तो मैं बड़े बड़े झूलों में बैठ सकती हूँ गायब
0: हुए।
1: और अलग अलग जगह जाके कुछ भी खा सकती
4: हूँ। भूल भुलैया में भी जा सकती
1: हूँ। हाँ भूल भुलैया में भी जा सकती हूँ।
2: ओके भूल भुलैया में जा सकते हो
1: शायद।
2: भूल भुलैया कहाँ पे है?
1: क्या पता कहाँ पे है।
2: अच्छा भूल भुलैया में चले तो जाओगे, लौटने का समय आएगा तब तो विजिबल हो जाओगे,
0: टाइम लग जाएगा,
2: फिर क्या करोगे?
1: हाँ ये भी है। तो नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, बोल रही
2: हूं। तो फिर क्या करोगे 24 घंटे में और सोच

0: डराऊंगी और कुछ लोगों को डराऊंगी, डराऊंगी जरूर, लेकिन
1: डराना जरूर है. अच्छा, और शिवानी क्या करेगी, सिर्फ 24 आवर्स मिलेंगे तो. अभी शिवानी सोचिए, तब तक हम आयुष को पूछ लेते हैं.
2: दीदी जैसे कि मुझे पता है अगले 12 घंटे के बाद वो टाइम शुरू हो जाएगा 24 घंटे का, तो मैं उस दिन बहुत सोऊंगा जब मैं विजिबल हूँ. ठीक है, अब मैं क्योंकि 24 घंटे पूरा जागना चाहता हूँ. ठीक है, अब 9 बज चुके हैं, 9 बजे मुझे इनविजिबल, 9 बजे मैं इनविजिबल हो गया. 9 बजे से पहले मैंने मम्मी को बता दिया, मम्मी मैं जा रहा हूँ ऐसे ऐसे. ठीक है, इनविजिबल हो गया, सबसे पहले तो वही काम करना है. बहुत खर्चा करते हैं इंडिया वाले उस पे, उसको मारने के लिए, तो पहले जाके उसको मार के आऊंगा.
1: मतलब जो दुश्मन देश है, या दुश्मन जो भी है भारत के, जो गलत काम करते हैं.
2: और कोई पढ़ लूंगा किसी, थोड़े विजिबल भी हो सकते हैं ना 24 घंटे के अंदर.
1: नहीं, 24 घंटे पूरा गायब हो.
2: चलो कोई बात नहीं, उससे पहले ही पता कर लूंगा कि और कौन कौन बुरे हैं, ऐसे न्यूज में पता करके उनको खत्म कर दूंगा. उसके बाद वही जोकर मूवी लग रही है क्या रोशन?
3: शायद लग रहा है.
2: हाँ, वो देखने जाऊंगा, वो देखने जाऊंगा सिनेमा हॉल में.
0: आइडिया अच्छा है, सिनेमा हॉल में कोई मूवी भूत वाली देख सकते हैं.
2: 3 घंटे तो यहाँ पे चले गए, बाद में अच्छी अच्छी जगह घूमूंगा. फ्लाइट में बैठना है, फ्लाइट में भी चला जाऊंगा बिना टिकट के, मस्त.
0: टाइम लगेगा ना जी,
1: फिर लौटते टाइम अगर
2: मैं छोटी वाली फ्लाइट में जाऊंगा जो यहाँ से दिल्ली जाती है, 3 घंटे में चली जाती है. सब फटाफट निपटाऊंगा ना काम. फटाफट जैसे कहीं जाना भी तो क्या, मैं टेम्पो में बैठ जाऊंगा, खाली होगा उसको कौन सा पता रहेगा, ऐसा करना मेरे को. सब सब कुछ फ्री में सफर करूंगा.
0: लेकिन टेम्पो वाला खाली चलाएगा तो नहीं?
3: हाँ, कोई देर
2: अगर कोई साइड में बैठा होगा मैं पीछे बैठ जाऊंगा ऐसा.
1: ओके ठीक है,
2: और आर पार भी तो हो सकते हैं सब. इतने मजे करूंगा, इतने मजे करूंगा, बहुत सारी चीजें ऐसे ही करना.
1: मतलब बहुत लोगों को मारना भी है और बहुत सारे मजे भी करने हैं.
0: लेकिन एक दिन में
1: लेकिन पकड़ने वाले आ गए तो
2: कैसे पकड़ेंगे दीदी, कैसे पकड़ेंगे इसको, उनको क्या पता किसने चुरा.
0: लेकिन
1: लेकिन अगर मालूम पड़ गया तो
2: बट हाउ, कैसे,
1: आजकल तो कुछ भी हो सकता है.
0: हाँ, घर में कुछ भी ढूंढ सकते हैं किसी के घर में.
3: कुछ आइडिया बनाएंगे,
1: कुछ आइडिया बनाएंगे. अच्छा,
0: छुपाने का.
1: शिवानी क्या करने वाली है?
4: मैं तो जाऊंगी सुपरमार्केट, उधर से सब कुछ चुरा लूंगी.
1: सुपरमार्केट से?
4: हाँ, डॉल के सारे सामान.
1: डॉल के सारे सामान चाहिए शिवानी को.
4: सबसे पहले वो वाली डॉल चुराऊंगी जिसके सब कुछ मुड़ जाते हैं, हाथ पैर,
1: मतलब
2: हमारी घूम जाता
4: सारी चीजें.
1: अच्छा, और शिवानी तो खुद एक डॉल की तरह है. फिर दो दो डॉल हो जाएंगी एक घर में. दो तो ऐसे ऑलरेडी हैं.
2: तीन हो
1: जाएंगी. अच्छा, चाहिए आप लोग 24 आवर्स में गायब होने वाले तो बता दिए. अच्छा, अब ये बताओ, अगर आपको अपनी कंट्री के लिए कुछ करना होता, जैसे आपने देश के लिए तो बताया कि क्या क्या करना है.
2: तो किया मैंने अपनी.
3: ओके, मैंने भी किया.
1: और आप लोगों ने
0: कंट्री के लिए
1: क्या करोगे?
2: और कुछ भी करने का मौका मिले, वाह, तो करूंगा करूंगा.
1: सोचो
0: अगर पाकिस्तान हमारी कंट्री के लिए जैसे प्लान कर रहा होगा कि हमें से कुछ ना कुछ करना है, तो मैं वो सीक्रेट्स जान के अपनी कंट्री वालों को बता दूंगी.
1: ओह माय गॉड, आप लोग सभी सीक्रेट्स बताने वाले लग रहे हैं. अच्छा, ये बताओ, अगर आपको किसी और को गायब करने का मौका मिले तो किसको गायब करो?
2: खुद नहीं हो सकते, दूसरे को करना.
0: तो मैं
2: तो अपने दोस्तों को करूँ.
3: मैं भी
1: को. हाँ, एक को मौका मिल रहा है करने को, किसको करोगे गायब?
2: ये देश की सेवा के लिए करना है. नहीं,
1: जो आपको मर्जी हो.
2: अच्छा, तो मैं अपने दोस्त को मौका दूंगा. मैंने कहा भाई तुम मुझे कर.
3: मैं क्या करूंगा?
2: उसको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे करना, और कुछ अपने फायदे के लिए चीज कि मेरे लिए पैसे ले आना, मेरे लिए खाने का ले आना. ऐसे तो मुझे ला के देता रहेगा, मैं खाता रहूंगा, वो उसके भी मजे. और ये भी कह दूंगा कि जाके उसको मार के आ, सब कुछ उसको बता दूंगा.
1: अच्छा, जो आप करने वाले थे सारा उसको असाइन कर दोगे?
2: यस, और अपने मजे भी. यस, और उसके मजे भी. यस,
4: हम लोग उसके साथ हो सकते हैं इनविजिबल.
1: नहीं नहीं, आपको बस किसी और को करना है.
3: मैं तो सोचूंगा कि इंडिया में सबसे ताकतवर कौन है, उसको बनाऊंगा, उसको मैं पाकिस्तान में छोड़ दूंगा.
0: हाँ, ये
1: अच्छा, उसको गायब करके दे दोगे.
0: हम लोग रोबोट को भी गायब कर सकते हैं ना, अपने हिसाब से वो करके, मतलब कंट्रोल करके.
3: अगर हो तो रोबोट
0: शायद. अच्छा, और कोई पावरफुल रोबोट हो तो.
3: हाँ, 2.0 बनेंगे.
1: बाप रे. ओके, तो मतलब आप लोग गायब होके बहुत सारी चीजें करने वाले हो. चलो, लेकिन अगर रियल में गायब होने का मौका तो नहीं मिलेगा, तो ये सब चीजें जो आपको करनी है, क्या बिना गायब हुए हो सकती हैं?
0: शायद
2: नहीं, मेरे वाली तो नहीं हो सकती, कैसे मारूंगा, वो एंट्री नहीं करने देंगे मेरे को, बॉर्डर से मार डालेंगे
4: मेरी वाली भी।
1: नहीं तो उसके लिए आप मिलिट्री में जा सकते हो, आप
0: बन सकते हो,
3: सब तो कर सकते, बन सकते, मेहनत लगेगा।
0: हाँ बहुत मेहनत लगेगी,
2: सिर्फ उस काम के लिए इतनी मेहनत, और वो अगर विजिबल हो जाता दीदी सोचो, सिर्फ जाना है और मार के आ जाना है।
1: हाँ लेकिन अगर असल में करना है, इतना मन है आपका करने का, फिर असल में कर सकते हो।
2: इतना मेरा, मैं दीदी मेरे को पक्का पता है, इतना मैं उसके लिए तैयार होऊंगा ना, वो 100% मर जाएगा इतना। एक तो उसकी एज हो रही है, दूसरी बात वो बहुत ही अपने इंडिया इंडिया वाले भी बहुत अच्छे हैं, अभी देखना सर्जिकल स्ट्राइक 2 कर रहा है, तो देखना कितने सारे बॉम्ब फेंकेंगे, वो मर जाएगा जल्दी।
1: तो मतलब आयुष तो मिलिट्री में जाने वाला है।
2: हाँ नेवी में जाने वाला,
1: नेवी में जाने वाला है।
2: पानी के अंदर से जाके शार्क को लेके आऊंगा, वेल को लेके आऊंगा, इसको दांत दिखाने।
1: ओके और रोशन क्या करने वाला है अपने इनविजिबल सपनों को सच में पूरा करने के लिए?
2: पैसे तो चुराएगा,
3: पैसे कमा लूंगा बड़ा होके।
1: पैसे कमा लेगा, मेहनत कर लेगा वो।
2: हाँ। अच्छी बात है।
0: और शिवानी भी डॉल्स के लिए पैसे कमा सकती है।
1: शिवानी, वो शिवानी बताएगी क्या करना है उसको।
4: हाँ मैं भी पैसे कमाऊंगी पढ़ लिख के, फिर अच्छी सी जॉब करूंगी, फिर मैं एक अच्छा सा घर खरीदूंगी, उस घर में पूरी गुड़िया सजाऊंगी।
1: अच्छा
0: उसमें एनाबेले भी ऐड करना हाँ,
1: ताकि रात को डर लगे।
4: नहीं
0: मुझे वो डॉल बहुत पसंद है, एनाबेले।
4: हाँ जो असली है वो
0: नहीं, जो पिक्चर में थी वो।
1: ओके और अमन क्या करेगी फिर अपने इनविजिबल सपनों को सच करने के लिए?
0: इनविजिबल सपनों को सच करने के लिए मैं भी मेहनत करूंगी।
2: नहीं नहीं असली में डरा देगी जाके भू पर।
0: अरे हाँ।
2: या मेकअप करके चली जाएगी।
0: नहीं नहीं नहीं मैं ना जाऊंगी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ करूंगी जैसे मैम नहीं देखेंगी मुझे, मैं बोर्ड पे लिख दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा बस।
4: या तो फ्यूचर में ऐसा कोई डिवाइस बनाना जिससे तुम गायब हो जाओ।
0: हाँ कुछ ना कुछ,
1: साइंटिस्ट बन जाएगी अमन।
0: हाँ दी साइंटिस्ट।
2: तो मेरे को भी गायब कर दियो।
0: हाँ मैं सबको गायब कर दूंगी,
4: एक ड्रॉप सब पे डालेंगे।
2: मान लो दूसरा मास्टरमाइंड पैदा हो गया तो उसको सख्त से जाके मार के आ जाऊंगा।
0: हाँ ये भी है।
1: ओके ओके ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोगों के बड़े सारे सपने, अब उनको सच में सच करना है तो बहुत सारी मेहनत लगेगी उसमें, है ना
4: दीदी? ये ना एक ऐसा केमिकल बनाएगी हम लोग पे, एक एक बूंद छिड़के के हम लोग गायब हो जाएंगे।
1: मिस्टर इंडिया,
0: जिसको भी मजा आएगी गायब होने में।
1: मिस्टर इंडिया,
3: बस क्या करना है, बॉडी के अंदर से लाइट पास होना और कुछ नहीं।
1: अच्छा आप लोगों को लगता है साइंटिफिकली ये संभव है?
0: शायद से, केमिकल से शायद हो सकता है शायद,
3: पर उतना हाई फाई ड्रग
4: फिर भी दिखाया था,
0: इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा।
2: एक बात बता दीदी, एक चाइना ने तो वो बना दिया है, वो एक कपड़ा टाइप है। आप दीदी उसको ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओगे ना तो आप दिखे हुए नहीं, आपके पीछे की सारी चीजें दिख रही होंगी।
1: ओके
2: और आप नहीं दिखोगे। उसको मैं ड्रेस में बदल दूंगा और उसको पहन लूंगा, एकदम अच्छे से कवर कर दूंगा, हम देख सकते हैं दूसरों को लेकिन हम नहीं। तो
1: ये कहाँ पढ़ा आपने?
2: ये मैंने देखा अपनी आंखों से दीदी।
1: कहाँ देखा?
2: वीडियो में
3: देखा, पर सच नहीं हो सकता।
2: रियल वीडियो थी, वो आदमी आता है ऐसे करता है फिर गायब, और फिर वो ऐसे भी दिखाता है साइड में करके, देखो
0: हो सकता है।
1: लेकिन सब वीडियोस जो आते हैं वो रियल नहीं होते, आप लोग को मालूम है ना।
2: आज गूगल करके देखता हूँ बस।
1: कल क्या बात हुई थी, जब हम फैक्ट्स चेक करने होते हैं हमें, तो या तो हम किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाते हैं, या अगर इंटरनेशनल है तो नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी या कोई ऐसी चैनल की या न्यूज की वेबसाइट या गवर्नमेंट की वेबसाइट, तब हम उसे कह सकते हैं रियल है, है ना। और दो तीन जगह से क्रॉस चेक करना चाहिए हमेशा। कई जगह चीजें रियल नहीं होती, बस रियल लगती हैं। एडिटिंग आप जानते हो, फिल्मों में भूत कैसे दिखाया जाता है।
4: हाँ, एडिटिंग करते हैं, मेकअप करते हैं,
1: और कुछ सीन कट करते हैं। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप सब गायब हो सकते हो।
4: दीदी पता है उसमें ना ज्यादा साउंड से ज्यादा डर लगता है, फिल्म देखते हैं उसके सीन से नहीं लगता इतना, नहीं
1: साउंड एकदम डरावनी वाली आती है। करेक्ट। तो इसलिए बच्चों, आप फिल्मों में एक्टिंग करनी है आपको ऐसे वाली में, तो आप तो सब गायब हो सकते हो।
2: दीदी मैं सच में ऐसा कपड़ा बना दूंगा, ऐसी ड्रेस,
0: केमिकल्स,
3: बस एक ड्रेस होना चाहिए जिसके अंदर से लाइट पास हो सके, मतलब बस वो इनविजिबल हो गया, आपका शैडो नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं।
1: चलो ठीक है, हम वेट करेंगे आप लोग के साइंटिस्ट बन के इस एक्सपेरिमेंट करने का। तब तक फिलहाल अपने दोस्तों को भी इस बात पे सोचने के लिए छोड़ देते हैं कि अगर वो गायब हो जाएंगे तो क्या करेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, आप लोग सोचते रहिए और हम लोग जाते हैं, कहाँ जाएंगे?
2: गायब होते
0: हैं।
1: नहीं, दूसरे आइडियाज को ढूंढने के लिए। ठीक है,
0: दूसरे आइडियाज को ढूंढने के,
1: ताकि हम नए बात पे फिर बात कर सके। ओके बाय बाय बच्चों।
4: बाय बाय दीदी।

0: नमस्कार, मैं हूँ साधना सरगम। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चंदा रे चंदा रे, कभी तो जमीन पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे।
2: रिक्शा रिक्शा,
3: कहाँ जाना है माँ जी?
2: रेलवे स्टेशन। कितना लोगे?
3: 200 रुपया।
2: क्या बात कर रहे हो भैया, मैं तो हमेशा 120 में जाती हूँ यहाँ से।
3: इतना कम नहीं होता? अब बोहनी का टाइम है माँ जी, चलना है तो चलिए, वरना जाने दो मुझे। सुबह सुबह बुढ़िया दिमाग खा रही।
2: क्या बोला, जोर से बोलो।
3: 150 लूंगा, उससे कम नहीं होगा।
2: मैं तो हमेशा 120 में जाती हूँ। और रिक्शा आते रहते कितने?
4: माता जी आलू गैस पर रखे है, एक सीटी हो गई है, एक दो और होने दो।
2: दीदी इस रिक्शा में मत जाना, ये रेलवे स्टेशन तक का ही 150 मांग रहा है, दूसरी रिक्शा मिलेगी ना।
3: अरे दीदी आप हो, आइए आइए, आपसे ज्यादा नहीं लूंगा, आइए ना, 120 में ही चलेंगे।
4: चलो चलती हूँ मैं, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना।

0: भैया माताजी से तो 150 मांग रहे थे और मुझसे 120 क्यों?
1: दीदी आपको क्या झूठ बोले, महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है हृदय में।
0: भैया आप रिक्शा चालकों की एक कम्युनिटी है, आपका किराया किलोमीटर के हिसाब से फिक्स होता है, आपका मीटर क्यों नहीं चलता?
1: कौन मीटर चलाता है अब, सच कहूँ तो आज के जमाने में सच बोलकर कोई अमीर नहीं बना, जो चल रहा है वही करना पड़ता है, नहीं तो भूखे मर जाएं।
0: अगर दुनिया झूठ बोलती है तो क्या आप भी वही करें?
1: क्या बताऊं दीदी, आजकल सच्चाई से काम नहीं चलता, अगर मैं सही रेट बोलूं फिर भी कहेंगे भैया थोड़ा तो कम करो।
0: तो आप पहले से ज्यादा रेट बोलते हो?
1: हाँ हाँ, पहले ज्यादा बोल देता हूँ, फिर जो बार्गेनिंग करता है उसे सही रेट बता देता हूँ, ग्राहक खुश हो जाता है और मुझे भी नुकसान नहीं होता।
0: लेकिन भैया यही तो शुरुआत है उस आदत की जो पूरे समाज को बिगाड़ती है।
1: अब हम जैसे लोग अगर सच भी बोलें तो लोग हमारी मेहनत की कद्र नहीं करते, इतनी धूप में इतने खराब रास्तों पर दिन भर सवारी ढोते रहते हैं, हालत खराब हो जाती है पूरी।
0: भैया सोचिए, जब आप ज्यादा रेट बताते हो तो आप ही ग्राहक को बार्गेनिंग करने की छूट दे रहे हो, क्यों ना शुरू से ही फिक्स रेट बताएं?
1: बोलना आसान है दीदी, पर जीना बड़ा मुश्किल है। लोग बड़े बड़े दुकानों में मॉल में कोई मोल भाव नहीं करते, पर हम गरीबों से हर बार मोल भाव करते हैं।
0: आप दिन भर इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हो, लेकिन अगर थोड़ी सी ज्यादा कमाई के चक्कर में जो 30-40 रुपए ज्यादा लोगे, वही पैसा शायद अगले हफ्ते आपकी गाड़ी पंक्चर करवा देगा या घर में कोई ऐसी जरूरत खड़ी कर देगा कि वो 30 की जगह 300 चले जाएंगे। क्योंकि छोटा मोटा झूठ बोलकर पैसा तो आ सकता है, लेकिन पुण्य नहीं आता, और जो धन दुआओं के बिना आता है वो चैन और सुख कभी नहीं लाता।
1: आपने तो सोचने पे मजबूर कर दिया।
0: हर ग्राहक के साथ एक कर्म जुड़ता है, आप चाहो तो रोज 2 रुपए कम ले जाओ, लेकिन 2 सच्ची दुआएं साथ ले जाओ, वही दुआएं आपके बच्चों की रक्षा करेगी और घर में शांति लाएगी।
1: ये आदत तो बहुत पुरानी है, अचानक कैसे बदले?
0: जब आपकी नीयत साफ, भाषा विनम्र और आत्मविश्वास पक्का होगा तो लोग आपको विश्वास से देखेंगे। फिक्स रेट बोलिए, प्रेम से बोलिए और डटे रहिए। हर बड़ी आदत एक छोटे से संकल्प से बदलती है।
1: आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, काश हर कोई ऐसा सोच पाता। कभी कभी तो कोई सवारी गुस्से से बात करती है, बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता है, एकदम चिढ़ जाता हूँ।
0: हाँ तो आप भी सेंटर आ जाया करो, आप जैसे कई लोग सेंटर पर आते हैं, आप सेंटर के सामने से ही कई बार आते जाते होंगे।
1: हाँ आना तो चाहते हैं, लेकिन दिन भर भागदौड़ करता रहता हूँ, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतने सारे खर्चे बढ़ गए हैं।
0: जी भैया, लेकिन धन तो टिकता ही नहीं, ये सोच और खर्च बढ़ा देता है। इससे अच्छा कहो मैं धनवान हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं।
1: कर्म अच्छे हों वह तो समझ में आ गया, लेकिन आप बुरा नहीं मानना, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ बोलने से धन अगर आ जाता

0: तो लोग काम धंधा छोड़कर बस यही जाप करते।
1: कई लोग हमेशा यही गलती करते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं टिकता, और यही गलत सोच उन्हें और गरीब बना देती है। हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है, हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे।
0: ओ, अब मैं समझा, आपकी बात बिल्कुल सच है। मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले ही छोटा सा ही धंधा चालू किया था, लेकिन उसे जब भी पूछो कैसा चल रहा है तो बोलता था भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और देखते ही देखते उसने बहुत तरक्की कर ली। सोच का असर तो होता है।
1: देखा, लाइव प्रूफ। भैया एक मिनट, कॉल आ रहा है।
2: हेलो दीदी, अब
1: अरे भैया क्या हुआ, आप ठीक तो है? आप तो पिछले दिनों तबीयत खराब बता रहे थे, अब कैसे हो? जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, रोहन के पापा बोले थे आपके ठीक होते ही वो भी आपके साथ सेंटर आएंगे कोर्स करने।
2: दीदी दरअसल मैं उन्हीं की बात करने के लिए कॉल कर रहा था।
1: क्या हुआ भैया, क्या बात है?
3: पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे।
1: क्या?
0: हे भगवान।
1: शायद इसलिए भगवान कहता है कभी भी कुछ भी हो सकता है।
2: हाँ दीदी, सच में मुझे आज रोहन का कॉल आया, जब उसने ये बताया तो सच में मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
3: दो दिन पहले ही तो वो मिलने आए थे, और कल ही उनका कॉल भी आया था। बोल रहे थे जल्दी से ठीक हो जाओ, हम दोनों साथ में सेंटर जाएंगे।
1: मैं अभी जाती हूँ उनके घर मिलने।
2: अभी रोहन की माँ से कोई बात नहीं कर सकता, डॉक्टर ने मना किया है, उनको बड़ा धक्का लगा है।
1: अच्छा ठीक है भैया, जब आप वहाँ जाओ तो रोहन से मेरी फोन पर बात करा देना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ।
2: हाँ दीदी जरूर, मैं रोहन से बात करवाऊंगा।
1: देखा भैया, सुना आपने?
0: हाँ सुना मैंने, जानता हूँ मैं उनको, बड़ा भला आदमी था, लेकिन देखो ना, धन शोहरत सब यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता।
1: साथ जाते हैं सिर्फ हमारे कर्म, इसलिए बस अच्छे कर्म करो, और सिर्फ धन के लिए नहीं जियो, कुछ दुआएं भी कमा लो, यही आत्मा के साथ जाता है।
0: हाँ दीदी सच कहा आपने, आज से मैं सच के रास्ते पर चलूंगा, और सिर्फ धन के लिए नहीं दुआएं भी कमाऊंगा।
4: आज जमाना बदलने का समय है, बदलाव की शुरुआत अपने आप से करें। मोल भाव की मानसिकता तब तक रहेगी जब तक हम खुद को सच्चाई पर नहीं टिकाते, इसलिए आज से संकल्प लें, ना तो बेईमानी करेंगे, ना झूठा रेट बोलेंगे, और ना किसी की मजबूरी का फायदा उठाएंगे। सच्चाई से कमाएं, सच्चाई से जिएं, यही है असली रिचनेस, यही है असली जीत। झूठ से कमाया धन मन का सुख खा जाता है, लेकिन सच्चाई से कमाया हुआ धन दुआओं और आत्मसम्मान के साथ आता है।

0: हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: TIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 14वां पाठ, जब धरती कांपी, पृष्ठ संख्या 131। एक बुरा सपना। ओह, क्या हुआ? ओह, बचाओ बचाओ, जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें, पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग। मैं जोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आंख खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जाग गईं। वे भागी आईं और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह, यह तो सपना था, 6 साल पहले। असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो जमीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जज्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे, बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। पृष्ठ 132। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना, सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगीं। मेरी टांग भी टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती रहती थी। माँ रोती तो मैं भी रोती। पूरा गांव ही दुखी और परेशान था। हमारे गांव के सरपंच मोटा बापू के घर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया। कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बापू के घर पर सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहीं। इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर भूकंप आ गया तो। चर्चा करो और लिखो। क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है? ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की, उनकी सूची बनाओ। पृष्ठ 133। फिर पहुंची मदद। कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और दवाइयां भी देते थे। हम में से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं। खूब छीना झपटी होती थी इन चीजों के लिए। कपड़े मिलते पर कितने अजीब से, ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे। शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने हमें घरों के खास डिजाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा, पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही ना लगे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे। संस्था के सुझाए डिजाइन के अनुसार यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए, मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की, चूने से दीवारों की पुताई की, घास फूस की छतें बनाई। पृष्ठ 134। फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। चर्चा करो। जसमा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए। ये कौन लोग होंगे? इन लोगों ने किस प्रकार की मदद की होगी? जसमा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके के अनुसार फिर से खड़ा किया। घरों को अब कैसे मजबूत बनाया? सोचो, अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी खतरा होगा? तुम कहाँ रहोगे? ऐसे समय में तुम अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए क्या करोगे? लिखो, अपने घर की तुलना जसमा के घर से करो। दोनों घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई चीजों की सूची कॉपी में बनाओ। जैसे, जसमा का घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है आदि। क्या क्या करें? संस्था के लोगों ने जसमा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। पृष्ठ 135। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल आओ। अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसलकर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने तक इंतजार करो। चित्र में देखो भूकंप आने पर क्या करोगे। चित्र में एक लड़का है जो एक मेज के नीचे बैठा है और उसने दोनों हाथों से मेज के पैर पकड़ रखे हैं। आओ इसी तरह तुम भी करो अभ्यास। करना है क्या? जब हो भूकंप का आभास। क्या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है कि भूकंप जैसी मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? भूकंप के समय किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाने को क्यों कहा गया है? किसने की मदद? भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। अहमदाबाद, 26 जनवरी 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। इनमें लगभग एक दर्जन बहुमंजिले इमारत थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। पृष्ठ 136। लिखो, टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मरे भी। अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता? क्या अंतर होता? ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे, तब लोगों को किस किस तरह की राहत की जरूरत पड़ी होगी? ऐसे में किन किन की मदद की जरूरत पड़ती होगी और किस काम के लिए? कॉपी में तालिका बनाकर लिखो। किन किन की मदद की जरूरत पड़ी? जैसे, कुत्ता। काम में मदद, उसने क्या काम में मदद की? सूंघ कर जानना कि लोग कहाँ दबे हैं। इसी तरह आप भी तालिका बनाएं। चर्चा करो। क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो? ऐसा कब कब देखा है? लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं? अगर तुम्हारा घर अपने इलाके में अकेला घर होता, यानी तुम्हारे आसपास कोई न रहता, तो कैसा होता? जैसे तुम किसके साथ खेलते? क्या अकेले डर लगता? सभी त्योहार और ख़ास मौके किसके साथ मिलकर मनाते? इत्यादि। लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनमें जान और माल का भारी नुकसान होता है। कई लोग बेघर हो जाते हैं। पिछले कुछ एक महीनों के अखबारों से दुनिया में आए भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि के बारे में समाचार इकट्ठे करो। उन्हें कॉपी में चिपकाओ। पृष्ठ 137। तुम्हारी समाचार रिपोर्ट। तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करो जिसमें इन बातों का जिक्र हो: संकट का कारण, तारीख और समय, किस किस तरह के नुकसान हुए, जान माल रोजगार का नुकसान, कौन कौन लोग मदद के लिए आए और जिम्मेदारी ली, कौन कौन से सरकारी दफ्तर तथा अन्य संस्थाएं। क्या तुम्हारे इलाके में सभी लोगों ने भूखमरी, सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया है? ऐसे समय में खाने पीने की भारी कमी हो जाती है। अखबार से देश विदेश की ऐसी खबरें ढूंढो और उन पर रिपोर्ट तैयार करो। किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इनसे संपर्क करने के लिए तुम इनके फ़ोन नंबर तथा पूरा पता कॉपी में लिखो। इस सूची में कुछ और नाम भी जोड़ो। सूची इस प्रकार हो: पता और फ़ोन नंबर। जैसे दमकल केंद्र, पता, फ़ोन नंबर। नज़दीकी अस्पताल, पता, फ़ोन नंबर। एम्बुलेंस, पता, फ़ोन नंबर। पुलिस थाना, पता, फ़ोन नंबर। पृष्ठ 138। पहचानो संकट के समय को। इन शब्दों की मदद से रिपोर्ट तैयार करो: बाढ़, नदी का पानी, घायल लोग, खाने के पैकेट, राहत कार्य, कैंपों में रहना, लोगों के शव, जानवरों के बहते शरीर, डूबे घर, आकाश से निरीक्षण, दुखी लोग, गंदे पानी से बीमारियां, बेघर लोग, सामूहिक भोजन, फंसे लोग। हम क्या समझे? बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियां आती होंगी? चित्र देखो। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक महिला बाहर बच्चों को पढ़ा रही

की है। बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं बताओ, और लिखो बाढ़ के बाद भी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में और क्या क्या करना पड़ा होगा। जब धरती कांपी, अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 14वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए 6 अगस्त की कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। और आज के एम चंडी, इनका जन्मदिन है। गुरुदयाल ढिल्लो, इनका भी जन्मदिन है। और इसके साथ ही राजेंद्र सिंह, इनका भी जन्मदिन है। और इसके साथ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आर के धवन, यस के पुट्टकट, रोबिन बैनर्जी, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, सूरज भान, भूपेश गुप्ता, सुषमा स्वराज, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज कुछ खास लोगों की बातें आपसे शेयर करूंगा। और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो के बारे में अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। और इसके पहले आइए आपको सीधे ले चलता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत। और गीत के पहले आपके लिए एक सुंदर सुविचार। जी हाँ, सुविचार हमारे जीवन को समृद्ध करता है और विचार हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो आशा करूँगा कि आप सभी भी इन सारी चीज़ों को देख कर, जैसे कि आप देखते हैं, विचार हमारे सुंदर हो जाते हैं तो जीवन सुंदर बनता है। तो आनंद वह नहीं है जहाँ धन मिले, आनंद तो वह है जहाँ मन मिले। तो है ना कमाल का विचार। आइए इसके साथ ही एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके नाम। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: भाई रुको, भाई रुको, ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, वो एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, वो जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। वो ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए गुरुदयाल सिंह ढिल्लो के बारे में बात करते हैं। भारत के ये पांचवें लोकसभा अध्यक्ष थे, जीएस ढिल्लो नाम से प्रसिद्ध हैं। गुरुदयाल सिंह ढिल्लो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्हें कानून से लेकर लोक प्रियता हासिल है और पत्रकारिता तथा शिक्षा और खेलकूद से लेकर संविधानिक अध्ययन में भी रुचि रखते थे। सिद्धांतों से समझौता करना उन्हें पसंद नहीं था। उनके लिए सांसद लोकतंत्र का मंदिर था और इसीलिए सभा और इसकी परंपराओं तथा पार्टियों के प्रति उनके मन में अत्यंत सम्मान था। उन्होंने सभा की मान स्थिति को पल भर में भापने की अद्भुत क्षमता रखते थे। उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक हुआ करता था। इन्हीं गुणों के कारण वे अध्यक्ष पद के गुरुत्वर दायित्व का निर्वहन गौरवशाली तरीके से किया करते थे। अंतर संसदीय संघ की अंतर संसदीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में ढिल्लो का चुनाव न केवल उनके लिए बल्कि भारत की पूरी जनता तथा मानवीय सांसद भारतीय सांसद के लिए भी बहुत सम्मान की बात थी। आइए इनके बारे में और बातें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूँगा कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा जो है मूल्य बहुत काम करते हैं। अगर मूल्य है तो आपका जीवन अनमोल हो जाता है। अगर मूल्य नहीं है आपके अंदर, किसी भी तरह का गुण आपके अंदर नहीं है, तो वो आपको धीरे धीरे करके खोखला कर देता है। इसलिए मूल्यवान व्यक्ति ही जीवन में समृद्धि को पाता है, जीवन में ऊंचाई को पाता है और समाज का प्यार भी पाता है। हमें समाज से लेना देना ना हो, लेकिन अगर समाज से हम सम्मानित हो, ये इसके लिए भी आपको मूल्य चाहिए। आपके अंदर सम्मान देना और लेने की बात अगर आप हमेशा रखते हैं और हर व्यक्ति को एक भारतीय मानकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके साथ मीठा ही दो बोल बोल लेते हैं, तो ये भी अपने आप में कमाल का काम कर जाता है। डॉक्टर गुरुदयाल जी के साथ भी इस तरह की काफ़ी बातें हुई हैं जिसके बारे में हम लोग सुनेंगे, और मूल्य के कारण वो हमेशा समृद्ध रहे और आगे बढ़ते रहे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर यहाँ सफर इस कार्यक्रम को। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और मैंने जैसे कहा कि ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम सभी एक दूसरे के प्रति इतना सम्मानित रहे, इतना प्यार दे कि जीवन जो है खुशियों से भरपूर हो जाए। तो आइए, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो का जन्म आज ही के दिन 6 अगस्त 1915 को हुआ था और एक ऐसे मेधावी छात्र थे। इनकी शिक्षा दीक्षा खालसा कॉलेज अमृतसर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुआ और 1937 से लेकर 45 तक की अवधि के दौरान ढिल्लो ने वकालत की और एक सफल वकील के रूप में ख्याति अर्जित की। उनकी वकालत खूब चलती थी, इसके बावजूद वे अपनी देशभक्ति की भावना और अपने देशवासियों के प्रति चिंता को दबा नहीं सके। शीघ्र ही वे आज़ाद संघर्ष तथा किसान आंदोलन में पूरी तरह कूद पड़े, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश शासकों का कोपजन होना पड़ा और आज़ाद जी के लिए संघर्ष से संबंधित गतिविधियों के लिए उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा और लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उन्हें वकालत ही छोड़ दी और फिर पत्रकारिता को अपना ध्येय मानकर उसमें काम किया और फिर धीरे धीरे राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय हुए और पंजाब विधानसभा में अलग अलग पदों पर काम करते हुए लोकसभा अध्यक्ष बने और अध्यक्ष पद से फिर बाद में उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया। 1 दिसंबर 1975 को अध्यक्ष पद से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसी दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में नौवा और परिवहन मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण भी की और 1977 तक इस पद पर आसीन रहे और 1980 में योजना आयोग के सदस्य बने और 80 से 82 के दौरान कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त हैसियत से कार्य किया और फिर उसके बाद एक अनुभवी राजनायक साबित हुए और उन्होंने भारत कनाडा संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री बने, फिर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय होकर आखिरी के समय में काफी सम्मान पाए वो और 79 के आसपास में अंतर संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मरण उपरांत अंतर संसदीय संघ पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया। एक्चुअली में डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो का देवासन 23 मार्च 1992 को नई दिल्ली में हो गया। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो, मस्कराते रहो।

उठो जागो अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का। ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का। ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है। किस्मत

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ ममता जी उपस्थित हैं। आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी खुद के भी गीत बनाते हैं और गाते भी हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे श्रोताओं को आज सुनाइए आप।
2: जी हाँ,

ममता जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है और अच्छा लगा हमारे सभी श्रोताओं को भी, और मुझे लगता है कि हमारे सुरेश जी जोटाना वाले उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि ऐसा गीत भी सुनने को मिला। और हमारे कुपराम जी, भूपत सिंह जी और दयाराम जी सभी लोग जो हैं अच्छा फील कर रहे हैं, और रमेश जी राधनपुर वाले ने भी याद किया है बड़े प्यार से, और हमारे सभी जितने भी भाई बहने हैं उन लोगों ने भी आपको सुना तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ सफ़र। इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, शाम का समय है और सुंदर गीतों के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें भी आप सुन रहे हैं। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। अब चलिए बात करते हैं वाटरमैन के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जल के लिए काम किया और भारत के बहुत ही पॉपुलर पर्यावरण कार्यकर्ता है। जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पॉपुलर हैं और जैसे कि राजस्थान है उसमें अलवर जिला शुरू से एक सूखा इलाका माना जाता है जहाँ पानी का दुर्लभ वस्तु मानी जाती है और उस दौर में पानी के जलाशय बनाकर उस जगह पर वर्षों का पानी इकट्ठा कर वर्षा जो बारिश की पानी है उसे इकट्ठा करके उन्हें सुरक्षित रखना एक पारंपरिक तरीका था जिससे पानी की मुश्किलों को दूर किया जा सकता था। इन जलाशयों को जोहड़ कहा जाता था। विकास के दौर में खदानों और पहाड़ियों के तलहटी के जंगलों की कटाई के काम में इन जहाड़ों को लगभग ख़त्म कर दिया था। पुरुष ज़्यादातर शहर भाग गए और इलाका पानी के गंभीर संकट में आ गया। राजेंद्र सिंह ने इस संकट की स्थिति को बुनियादी तौर पर समझकर उसे दूर करने की ठानी और तरुण भारत संघ की स्थापना की जिसमें स्वयंसेवी युवकों ने फिर से परम्परागत जोहाड़ों की वापसी की जिससे पानी की समस्या काफ़ी हद तक हल हो पाई। राजेंद्र सिंह ने इस काम के लिए उन्हें इसमें काफ़ी काम किया और इस काम के लिए उन्हें 2001 में रेमन मैगसे पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आइए इनके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। 6 अगस्त 1959 को इनका जन्म आज ही के दिन बागपत जिले के डौला नामक गाँव में हुआ। इनके पिता एक किसान थे और उसके पास 1 एकड़ की ज़मीन थी, खेती की व्यवस्था थी जहां वो गन्ना धान तथा गेहूं आदि फसलें उगाते थे। राजेंद्र का बचपन वही पशुओं के साथ खेलते कूदने में बीता था और फिर शिक्षा पूरी करने के बाद राजनीति में इन्होंने अपना एमए की परीक्षा पूरी की और फिर इस तरह से सरकारी नौकरी करने लगे और फिर सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद राजनीति का सफ़र जब मजबूत हुआ तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। नेशनल सर्विस वॉल्टियर फॉर एजुकेशन बनाकर जयपुर भेज दिया गया जहां इन्हें राजस्थान के दौसा ज़िले में प्रौढ़ शिक्षा का प्रोजेक्ट दिया गया था और फिर इस तरह से विवाह कर दिया गया इनका बीच में ही और मीना उनकी पत्नी बनकर उनके साथ आ गई और राजेंद्र जी को ये काम रास नहीं आया और राजस्थान की स्थिति को वह धीरे धीरे परेशान भी हो रहे थे और पानी का संकट उन्हें चुनौती दे रहा था। और 81 में जब उनका विवाह पूरा हो गया, बस 1.5 वर्ष ही हुआ था, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और घर का सारा जो सामान है वो बेचा। कुल 23,000 रुपए की पूंजी लेकर अपने कार्यक्षेत्र में उतर गए। ठान लिया कि वो पानी की समस्या कुछ हल निकालेंगे। 8,000 रुपए बैंक में डालकर शेष पैसे उन्होंने हाथ में इस काम के लिए लिया था और फिर इससे तरुण भारत संघ की स्थापना हो गई और फिर इस नाम से संस्था बनाई। जिस एक दरअसल यह संस्था 1978 में जयपुर यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई थी लेकिन सो गई थी। राजेंद्र सिंह ने उसी को जिंदा किया और अपने लिए बनाकर काम किया। टीवीएस उनकी संस्था हो गई और तरुण संघ का अभियान शुरू करने के लिए 2 अक्टूबर 1985 को राजेंद्र जी ने अलवर जिले के किशोरपुर गांव में आ गए जहाँ कस्बे थाना गाजी से 20 किलोमीटर की दूर था। किशोरपुर में तरुण भारत संघ ने ठिकाना तो बना है लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था कि कैसे काम शुरू किया जाए और फिर इस तरह से पहाड़ी की तलहटी के किनारे 55 किलोमीटर के क्षेत्र खोजा और पाया कि वो काफ़ी है इनके लिए और फिर दोहरे संघर्ष जो है कार्य करते समय शुरू हो गए कि कैसे वो खदान को बनाएं और इंजीनियर्स को कहाँ से लाएं। कार्य में धीरे धीरे काम करते करते मुश्किलों का सामना करते, कुआं खोदने के लिए इंजीनियर नहीं चाहिए केवल हौसले की ज़रूरत होती है और फिर वो गांव वालों को इसके लिए मोटिवेट करके उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया और 6 मार्च 1987 को मानोटा कोयला जोड़ा का काम शुरू हुआ और अपने गांव वालों ने देखा कि जोड़ा में पानी आ गया है, इस काम के साथ साथ दूसरे नए जोड़े के लिए भी जगह खोजना शुरू हो गया और इस तरह से उनको सफलता मिली और आखिरी में राजेंद्र जी को वाटरमैन के रूप में सम्मानित किया गया। तो ये थी कुछ खास बातें सूखे जैसे राजस्थान में सूखा इलाके को जल से संपन्न कर देना, ये जादू का काम राजेंद्र जी ने करके दिखाया। तो मेरा मतलब ये है कि भाई यहाँ पर हमको ये सीखने को मिलता है, आदमी अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, है ना। सूखा हो, पानी वाला इलाका हो, तो दोनों जगह वो जो है अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, अपने अनुकूल बना सकता है, बस सोच की जरूरत है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: ओम शांति, मैं हूं ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। और आज फिर से हमारे साथ प्रशांत शिरोडे सर जुड़े हुए हैं। जैसे कि कल हमने एक सवाल उनसे पूछा था कि कैसे हम लोग जो है इतिहास का उपयोग कर सकते हैं, वैसे ही आज एक सवाल और है। स्वराज्य में हर संकट के समय इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज की संकट से उभरने में कैसे मदद मिली?
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी।
2: आपने मुझे रेडियो मधुबन में बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।
1: जी जी।
2: अभी जो आपने सवाल किया है कि इतिहास किस प्रकार मनुष्य की मदद करता है
1: जी,
2: हर एक संकट के समय किस प्रकार वो हमारी सहायता के लिए दौड़ता है। कल मैंने कुछ बातें इसी संदर्भ में कही थी और इससे जुड़ा हमारा ये सवाल है। कई सारे उदाहरण सर इतिहास में दिए जा सकते हैं कि जिसका उपयोग इतिहास में ऐसी घटनाएं होती है कि जिसका अनुभव हमें उसके पहले वाली घटनाओं से मिल जाता है,
1: कैसा तालुक करना पड़ता है।
2: जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की काल कोठड़ी में थे, तो उस समय उन्होंने जो बात सोची मन में, जो विचार उनके मन में आया कि उनकी माँ ने, छत्रपति शिवाजी माँ की जी की माँ जो है जिजाऊ, इन्होंने उन्हें बचपन में कई सारी रामायण महाभारत की कथाएं सुनाई थी। और देखो, आज हम इतिहास को एक नजरअंदाज करते जाते हैं, लेकिन जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो पता चलता है कि आज की हमारी कई सारी समस्याओं के जो उत्तर है, जड़ है, वो इतिहास में मिल जाती है। उसी समय महाराज जी को याद आया कि नहीं, ऐसा इतिहास में हुआ है, यह मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। जो महाभारत का एक प्रसंग उनके सामने उस समय आ जाता है, जहाँ पर महाभारत में उसके संदर्भ में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। जैसे कि पांडवों को लाक्षाग्रह में जलाकर मार देने का प्लान जो दुर्योधन ने बनाया था, उसमें से पांडव किस प्रकार अपने आप को बचाकर सुरक्षित रूप से बाहर निकलते हैं, यह महाभारत में बिल्कुल ठीक ढंग से बताया गया है। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज किस प्रकार औरंगजेब की काल कोठड़ी से बाहर निकले, इसके बारे में सोचेंगे तो कई सारी बातें हमें हमारे सामने आ जाती है। इतिहास इसके ऊपर अलग अलग अंदाज से अध्ययन करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इतिहास को अभी तक यह पता नहीं चला है सर कि महाराज औरंगजेब की काल कोठड़ी से कैसे बाहर निकले। जो हम लोग सुनते हैं कि जैसे कि वहां पर जो मिठाई के जो पिटारे थे, बक्से थे जिसके द्वारा बाहर निकले, यह एक कुछ हद तक कह सकते हम कि सही नहीं है, या फिर इसमें कोई ऐसा इतिहास संशोधन की दृष्टि से कोई ऐसा प्रॉपर रुझान मिला हुआ नहीं है, प्रॉपर मार्ग ऐसा कहीं पर मिलता नहीं है कि यही मार्ग सही है, ऐसा कोई ये नहीं है। बस अपनी कई सारे इतिहासकारों ने कई सारी कल्पनाएं रखी, इस प्रकार की एक कल्पना मात्र है, यह हम कह सकते हैं। इसके अलावा भी और कई प्रकार हो सकते हैं जिसके द्वारा महाराज बाहर निकले, ऐसी कल्पनाएं बाकी कई सारे इतिहासकारों ने भी रखी है सर, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि महाराज किस प्रकार उस काल कोठड़ी से निकल कैसे बाहर निकले, यह तो बात है, उसके साथ ही महाराज महाराष्ट्र में कैसे पहुंचे, इसके बारे में भी कई सारे इतिहासकारों में मतभिन्नता है कह सकते हैं हम। अभी ये उदाहरण मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, जैसे कि हमारा सवाल है कि इतिहास को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसलिए तो महाराज किस प्रकार बाहर निकले यह आज हमें निश्चित तौर पर मालूम नहीं है, इतिहास इसके पन्ने ढूंढ रहा है, जांच रहा है। लेकिन दो बातें इतिहास को मालूम है सर। पहली बात यह है कि जिस समय वहां पर पहरा देने वाले जो मुगल सैनिक थे, ये जब अपने सरदार को बताते हैं और सरदार औरंगजेब को जाकर बताता है उनका बादशाह, जिसे आलमगीर कहा जाता था, उसको जाकर बताया जाता है उस दिन की उस दिन के बारे में इतिहास में मामला दर्ज है। वह उस दिन की दोन इतिहास में मिलती है कि जिस दिन औरंगजेब को पता चला महाराज काल कुठड़े में नहीं है, उसके बाद उन्होंने महाराज जी को ढूंढने के लिए कई सारे प्रयास किए। दूसरा जो मुद्दा है कि वो कैसे महाराष्ट्र में पहुंचे, किस रास्ते से, कहाँ पर रुके, कहाँ पर उन्होंने खाना खाया, इसके बारे में भी इतिहास को कोई ठीक मालूमात नहीं है। दूसरा जो हमें अनुभव मिलता है, दूसरी जो बात वहां पर पता चलती है कि जिस समय महाराज राजगढ़ पर एक साधु के वेश में अपने मास के सामने खड़े होते हैं, मां से वहां पर मिलना चाहते हैं जिजाऊ से, और जब जिजाऊ बाहर आती है तो जिजाऊ स्वयं भी पहली दफा तो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। इस प्रकार वेश बदल कर वे महाराष्ट्र में पहुंचे हैं, इसका अनुभव वहां पर हमें मिलता है। अभी इस घटना से इतिहास से क्या तात्पर्य है, तो महाभारत के लाक्षाग्रह यानी कि लाक्षाग्रह का प्रसंग और महाराज के औरंगजेब की कालाग्रह से छुटका, इन दोनों में समानताएं कौन सी है, कौन सी बातें समान है, इसके अगर इसके ऊपर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो हमें पता चलता है कि इतिहास हमें वर्तमान समय की समस्याओं को सुलझाने में बिल्कुल कारगर भूमिका अदा करता हुआ दिखाई देता है। मैं फिलहाल वर्तमान कालखंड का और एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी जो कोविड का हमने बिल्कुल कड़ी मेहनत से सामना किया, पता नहीं चल रहा था कितने लोग बचेंगे, हम बच भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि उस समय मरने वालों की तादाद हर दिन जो अखबार में आती थी मन को सुन्न कर देती थी, लोग बहुत डरे हुए थे। ऐसे में भी हमने इतिहास का सहारा लिया, हमने क्या किया, इतिहास में इस प्रकार की बीमारियां पहले कब कब आई उसका आधार लिया, उस समय मनुष्य ने उसका सामना किस प्रकार किया, किस प्रकार उसके ऊपर हम हावी हुए, कौन सी हमने जो जो, जो जो क्या कह सकते हैं बचने के उपाय उस समय हमने इस्तेमाल किए, वो सारे उपाय हमने इस दफा भी इस्तेमाल किए थे। कहने का तात्पर्य यह है सर कि कोविड में हमने इतिहास का सहारा लेकर कोविड के ऊपर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार आज भी हम हमारे सामने अगर कोई भी समस्या हो तो उसके ऊपर इतिहास का सहारा लेकर उसे उसके ऊपर हम विजय प्राप्त
3: कर सकते हैं। जी,
2: केवल महाराष्ट्र के लिए है या फिर कोविड के लिए ऐसी बात नहीं है,
3: ऐसा नहीं, हर समस्या का समाधान
2: के लिए यह सारी बातें है। यही बात मैं आपको इस आपके इस मुलाकात द्वारा रेडियो बताना चाहूंगा और मुझे आपने ये बहुत बड़ा मौका दिया, इसके लिए मैं फिर से आपका, आपके चैनल का और चैनल के सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूँ।
3: जी,
2: धन्यवाद सर।
3: प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तो बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

चाहा मैं बोलू एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी।

प्रीत में बोलो एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

खा कहीं ठोकर, कोई

कौन है वो चित्रकार जिसने नभ को रंग दिया। इस खूबसूरत गीत के साथ मैं मोना वापस आ गई हूँ, क्योंकि आप उड़ान के साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप सुन रहे हैं उड़ान। मैं हूँ आपके दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आई हूँ और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ अनोखी बातें, जिसमें होंगी गीत, कहानियाँ और प्यारी सी कविता भी। पूछा जाएगा आप दोस्तों से सवाल, जिसका जवाब देंगे आप 9414151415 पर। आप सुन रहे हैं उड़ान, रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

दुहे तो वो चित्रकार है। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप सुन रहे उड़ान। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। तो चलिए शुरू करते एक सुंदर सी कविता के साथ। थी सुंदर मंद सुगंध पावन कलरव पंछी का छाया था, थी सुंदर मंद सुगंध पावन कलरव पंछी का छाया था, मदहोश हुए तरु डोल उठे जब मास असाड़ का आया था। वह मेरु सुमेरु था पुष्प नक्षत्र जब खुद पुष्प नक्षत्र जब खुद को अकेला पाया था, तब भाव विहल विरही यक्ष ने संदेश मेघ से पठवाया था। जाओ मेघा कहना प्रिय से, नित नयन अश्रु से भरता हूँ, फिर भी कुबेर की नगरी में तुमसे मिलने से डरता हूँ। मैं प्रीत की आस लिए फिर भी जीता हूँ, यहाँ न मरता हूँ न प्यार कलंकित अपना हो, बस इसी बात से तो डरता हूँ। चमके चपाल घन बरस उठे चहुं दिशा हरियाली छाई है, पपीहा बोल कोयल फूंकी, पपीहा बोल कोयल फूंकी, कोयल कूंकी, जब याद तुम्हारी आई है। उसने हृदयों से सुख छीने ना, प्रीत हमारी भाई है। यादें अंगारे बन दहकी निष्ठुर पावस ऋतु आई है, मेघदूत है मेघदूत है। चलिए दोस्तों, आज का सवाल आप दोस्तों के लिए है। वो कौन से ऑथर है या राइटर है, या सिंपल भाषा में कहें किन्होंने मेघदूत की रचना की? ए वाल्मीकि जी ने, बी बाना भट्ट ने, या फिर सी कालिदास ने? सही जवाब सिर्फ एक है। देना आप 9414151415 पर। आप सुन रहे हैं उड़ान, रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, जहां डाल

0: जहाँ डाल डाल पर सोना उगले, इस कविता को, इस गीत को हम आप तक पहुंचा रहे थे और एक खूबसूरत जर्नी भी पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। बात है महाकवि कालिदास की, जी हाँ, और इसके साथ साथ जुड़ी सवाल की भी। वो कौन से ऑथर है या लेखक है या किनके द्वारा काव्य मेघदूत की रचना हुई? ए वाल्मीकि जी ने मेघदूत की रचना की थी, या फिर बी बाना भट्ट जी ने, या फिर सी कालिदास ने? झटपट जवाब दे दीजिए 9414151 पर दीजिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: ओए रुक,
2: रुक।
3: हाँ कहिए।
1: ओ जी, कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
3: है तो ये देखिए।
1: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओ छोटू, फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
4: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वेल दोस्तों, वेलकम बैक. रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़े हैं उड़ान के साथ. नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: मैं रामाभि वासना कंपा से बोल रहा हूँ.
0: जी शुक्रिया कॉल करने के लिए. रेडियो मधुबन के साथ आप जुड़े हैं और उड़ान कार्यक्रम सुन रहे हैं.
1: आप अभी कौन सा कार्यक्रम चल रहा है?
0: उड़ान कार्यक्रम चल रहा है सर.
1: उड़ान भाइयों.
0: जी जी जी. और एक सवाल है आज का, क्या आप जवाब देना चाहेंगे?
1: कौन सा सवाल है?
0: सवाल है कि मेघदूत के रचयिता कौन थे? ए वाल्मीकि जी, बी बाना भट्ट जी, या फिर सी कालिदास जी? मेघदूत के रचयिता कौन थे?
1: ठीक है, मैं सोच के बता दूं आपको.
0: जी शुक्रिया, आप जरूर कॉल कीजिएगा. थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए. मेरे दोस्तों, हमारे एक श्रोता कॉल जरूर किए लेकिन उनको इस सवाल का जवाब अभी भी सोच कर देना होगा. कोई बात नहीं, लेकिन एक छोटी सी कहानी आप सबके सामने पहुंचाना चाहते हैं. राजा विक्रमादित्य के दरबार में बहुत सारे उनके 9 रत्न थे. एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपना प्रश्न पूछा कालिदास जी से. महात्मा, आप इतने बड़े विद्वान हैं लेकिन आपका शरीर आपकी बुद्धि के अनुसार सुंदर नहीं है, इसका कारण क्या है? कालिदास उस समय चुप रहे और बातों को टाल दिया. कुछ दिन बाद महाराज ने अपने सेवक से भोजन के लिए पानी मांगा. सेवक कालिदास के निर्देश अनुसार 2 कलाकारों में पानी ले आया, माने 2 बर्तनों में. एक घटक साधारण मिट्टी का था और दूसरा अब बहुमूल्य धातु का. महाराज ने इस प्रकार पानी पीते बात कहकर आश्चर्य जो व्यक्त की कि कालिदास ने उनसे 2 अतिथियों को पानी पीने के लिए कहा है. महाराज ने ऐसा क्यों कहा? कुछ समय बाद कालिदास ने महाराज से पूछा, महाराज इन 2 यात्रियों में से किस कलाकार का पानी आप ज्यादा ठंडा महसूस कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, अवश्य मिट्टी के पात्र का. महाराज ने सरलता से जवाब दिया. कालिदास ने कहा, राजन जिस पानी की शीतलता वाले अभिनेता की सुंदरता पर अवलोकन नहीं किया, वही बुद्धि की शरीर की सुंदरता पर निर्भरता नहीं करता. बिल्कुल, बुद्धि जो है शरीर शारीरिक खूबसूरती के आधार पर नहीं होती है. इंसान की बुद्धि उसके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर जरूर होती है. आगे बढ़ते हैं आप, क्योंकि जुड़े हैं उड़ान के साथ. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो. एक छोटी सी कहानी आप तक पेश करते, पर उससे पहले ये गीत जरूर सुन लीजिए क्योंकि उड़ान है. बाजू

0: जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में एक बार पुनः आज का सवाल दोहराते हैं। वो मेघदूत के रचयिता कौन थे? ए वाल्मीकि जी, बी बाना भट्ट जी, सी कालिदास। सही जवाब जरूर देना आप 9414151415 पर। चलाकी नहीं ईमानदारी की जरूरत है। आज की ये छोटी सी कहानी अब आपके लिए है।
1: हाँ, समझ चुका हूँ कि गड़बड़ तो बहुत है।
2: जी महाराज, और सिर्फ एक जगह पर नहीं है, बहुत सी जगहों पर गड़बड़ है।
1: पर कुछ तो करना पड़ेगा ना।
2: क्या आपने कोई उपाय सोचा है महाराज?
1: सोच रहा था कि एक ईमानदार हिसाब रक्षक को काम पे रखा तो कैसा रहेगा, जो सही तरीके से सारा हिसाब रखेगा।
2: बहुत अच्छा सोचा है महाराज, लेकिन हिसाब रक्षक मिल जाए तब भी वो ईमानदार है, वो कैसे समझ पाएंगे आप?
1: अगर वो भी मुझे ही सोचना पड़ेगा तो तुम यहाँ पर किस लिए खड़े हो मंत्री? इसका उपाय तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा।
2: जी ठीक है महाराज। अब मैं क्या करूँ? ईमानदार इंसान ढूंढ कर निकालना है, कोई आसान काम थोड़ी ही है। मिल गया। कल सुबह सभा में जाकर महाराज को बताना पड़ेगा। प्रणाम महाराज।
1: बोलो मंत्री।
2: आपके कहे अनुसार ईमानदार हिसाब रक्षक को ढूंढ निकालने का उपाय मैंने सोच लिया है।
1: वाह चमत्कार, बताओ क्या सोचा है तुमने?
2: मुझे माफ कीजिए महाराज, वो मैं आपको इस वक्त बता नहीं सकता।
1: ठीक है, तुम पर भरोसा करता हूँ मंत्री, पर अब करना क्या है?
2: अगर आप अनुमति दें तो राज्य में इस नियुक्ति की घोषणा शुरू कर दी जाएगी।
1: ठीक है फिर, अनुमति है।
2: धन्यवाद महाराज, धन्यवाद।
3: क्यों भाई, आज तेरी बिक्री कैसी हुई?
4: सारे कद्दू बिक गए हैं भैया, आज बाजार में अच्छे ग्राहक थे। आपकी बिक्री कैसी हुई?
3: मेरा सारा माल नहीं बिका है, लेकिन ये तय है कि तूने आज जितना कमाया है मैंने भी ठीक उतना ही कमाया है।
4: मतलब वो कैसे?
3: अरे मेरे बेवकूफ भाई, आज बाजार में मैं अकेले ही कद्दू लेकर बैठा था, इसीलिए आज मैंने ज्यादा कीमत पर बेचा है, समझा?
4: ये क्या, लेकिन ये तो अन्याय है भैया।
3: दत्त, हर वक्त इतना ज्यादा न्याय देखने से काम नहीं चलता, कभी कभी मौके का सदुपयोग भी करना चाहिए।
5: सुनिए, महाराज ने राज्य कोषागार में हिसाब रखने के लिए एक ईमानदार हिसाब रक्षक नियुक्त करने का ऐलान किया है। जो कोई भी इस काम के लिए इच्छा रखते हैं, वो सारे लोग आवेदन कर सकते हैं।
4: फिर तो काफी लोग आवेदन करेंगे, महाराज कैसे समझेंगे कि कौन ईमानदार है?
5: सर्वश्रेष्ठ 10 आवेदनकारियों को महाराज पहले चुनेंगे, उसके बाद उन 10 लोगों में से एक को महाराज खुद मौखिक परीक्षा के जरिए चुनेंगे।
3: बहुत अच्छे, ये तो अच्छी बात है।
4: कुछ समझे भैया?
3: हाँ चल, हम भी आवेदन करते हैं, यही तो मौका है किस्मत बदलने का।
2: प्रणाम महाराज।
1: क्या बात है मंत्री, कैसी चल रही है आवेदन की प्रक्रिया? ईमानदार हिसाब रक्षक मिला?
2: प्रक्रिया बस खत्म होने ही वाली है महाराज, सर्वश्रेष्ठ 10 लोगों को चुन लिया गया है, कल उनके घर पर खबर भेजी जाएगी।
1: 10 लोग? पर मैंने तो तुम्हें एक ही को चुनने के लिए कहा था।
2: जानता हूँ महाराज, मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर के असली ईमानदार इंसान को आप खुद ही ढूंढें।
1: क्या मैं? तो क्या उस दिन तुमने ये उपाय निकाला था मंत्री, वो भी इतना सोचकर?
2: नहीं, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए महाराज।
1: हाँ बोलो।
2: वो 10 लोग जब आपके सामने आएंगे, तब आप उन लोगों को नाच कर दिखाने का आदेश दीजिएगा, फिर मिल जाएगा आपको।
1: क्या नाचने के लिए बोलूं? उसके साथ हिसाब रखने का क्या संबंध है?
2: आप बस एक बार बोलकर तो देखिए।
1: ठीक है।

0: ये क्या है भैया?
1: आलू की बोरी हरी भाई के गोदाम में रखने की जगह नहीं है तो कुछ दिन रखने के लिए दी है।
0: ओह अच्छा।
1: सुन भाई, जरा जा जल्दी से हमारे घर की सब्जी की टोकरी लेकर आ जा।
0: लेकिन आप उसका क्या करेंगे?
1: और क्या करूँगा, थोड़े से आलू निकाल कर रख लूँगा।
0: नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए।
1: तो क्या हुआ, थोड़े से आलू निकाल लूँगा तो कुछ नहीं होगा, उसे समझ नहीं आएगा।
0: लेकिन उन्होंने इतना भरोसा करके रखने दिया है।
1: ओह अनिल, मैंने तुझसे कहा है ना, मौके का फायदा उठाना गलत नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई और होता तो यही करता।
2: अरे सुनो, घर पर कोई है?
1: जी कहिए, मैं कालू हूँ और ये मेरा भाई अनिल। बोलिए।
2: ठीक है, कल सुबह तुम दोनों राज दरबार में आ जाना हिसाब रक्षक नियुक्ति के लिए। महाराज खुद तुम्हारी मौखिक परीक्षा लेंगे।
0: अच्छा ठीक है, जरूर आएंगे, धन्यवाद। वैसे परीक्षा में वो क्या पूछने वाले हैं भैया?
1: पता नहीं, जाने से पता चलेगा। मुझे लगता है कि जरूर हिसाब के बारे में कुछ पूछने वाले हैं।
0: तो फिर हम आज थोड़ी तैयारी कर लेते हैं।

0: रुक जाइए।
1: क्या बात है मंत्री जी?
0: महाराज से मिलने से पहले आप सबको उनके एक आदेश का पालन करना पड़ेगा।
2: कैसा आदेश?
0: ये देखिए, ये दरवाजा दिख रहा है आप सबको। इस दरवाजे से सीधा अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद राज्यसभा का एक दरवाजा दिखाई देगा, वहीं पर महाराज इंतजार कर रहे हैं।
1: ओ अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं। चल अनिल।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, एक साथ नहीं जा सकते, एक एक करके जाना पड़ेगा।
2: ये क्या, लेकिन ऐसा क्यों?
0: सिर्फ एक हिसाब रक्षक चुनने वाले हैं, इसलिए यहाँ खड़े सारे लोग एक दूसरे के प्रतियोगी हैं।
1: ठीक है भाई, तू रुक जा, पहले मैं जाता हूँ।
2: ठीक है भैया।

0: आज के परीक्षा के माध्यम से अंतिम चरण में जो परिणाम आएगा उसी के आधार पर मैं अपने राज्य के हिसाब रक्षक को चुनूंगा। आप सब तैयार हो ना?
1: जी महाराज।
0: ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप सबको थोड़ा नाच कर दिखाना होगा।
2: क्या, नाच कर?
0: हाँ, नाच कर। अरे सब लोग ऐसे खड़े क्यों हो? ये मेरा आदेश है।
3: महाराज ने जो कहा है आप लोग कृपया उनके आदेश का पालन कीजिए।
2: परीक्षा में हिसाब से संबंधित सवाल पूछकर देखिए कि हम लोग जवाब दे पाते हैं या नहीं।
0: तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे आदेश देने के बाद भी कोई नाच कर नहीं दिखा रहा, तो फिर अभी बड़ी सजा के लिए तैयार हो जाओ। बाकियों को क्या हुआ, ऐसे खड़े क्यों हो? ये क्या, ये तो राजकोष की मोहरे हैं। ये कहाँ से आई?
3: रुक जाओ, तुम सब नाचना बंद करो। महाराज, आपके लिए ईमानदार हिसाब रक्षक मिल गया।
0: ये क्या, कौन है, कैसे मिला?
3: देखिए, वो लड़का अनिल जिसने सबसे पहले नाचना शुरू किया था वही ईमानदार इंसान है, क्योंकि उसके पास से एक भी मोहर नहीं मिली।
0: अच्छा ठीक है, तो फिर कल से राज्य के हिसाब रक्षक के रूप में मैं तुम्हें नियुक्त करता हूँ।
4: धन्यवाद महाराज।
0: और बाकियों को चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाएगा। ठीक है, सारी मोहरे वापस कर दो और अभी यहाँ से निकल जाओ। ये सब तो ठीक है मंत्री, लेकिन सोने की मोहरे आखिर आई कहाँ से?
3: महाराज, यही मेरा वो वाला उपाय था। आवेदनकारियों को एक अंधेरे कमरे में से चलकर मैंने यहाँ आने के लिए कहा था।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
3: उस कमरे में सोने के मोहर का कलश रखा हुआ था, ये देखने के लिए कि आवेदनकारी ईमानदार है या नहीं। जो इंसान लालच की जाल में ना फंसकर उसे अनदेखा करके सीधा वहाँ से निकल कर आ जाएगा, वही एक उपयुक्त ईमानदार इंसान होगा।
0: अति उत्तम, अति उत्तम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सच में तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं, इसीलिए तुमने उन सबको नचाने के लिए कहा था।
3: धन्यवाद महाराज। हाँ, जो लोग मोहरे चोरी करके छिपा कर रखेंगे वो लोग पकड़े जाने के डर से कोई भी नाच कर नहीं दिखाना चाहेंगे, और अगर नाचेंगे तब भी मोहर तो गिर ही जाएगी। मतलब इसे कहते हैं पानी में मगरमच्छ और पेड़ पर शेर जैसी हालत।
0: बहुत अच्छे मंत्री, बहुत अच्छे, बिल्कुल हिसाब से नाच। अभी यहाँ पर जितनी मोहरे रख कर गए हैं वो सब पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हें देता हूँ।
3: आपकी जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: देखा ना भैया, आप हमेशा कहते थे ना कि मौका मिले तो हमेशा उसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन हर जगह वो काम नहीं करता।
2: हाँ भाई, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। ईमानदारी से मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। कल से मैं भी मेहनत करके ही पैसे कमाऊंगा, कम समय में फायदा ढूंढने के पीछे और नहीं भागूंगा।
4: बिल्कुल सही, मेहनत ही सफलता की चाबी है।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: कैसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
2: थी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया,

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह दीजिए प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
2: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
1: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
2: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: वेल दोस्तों, समय इशारा कर रहा है आप सभी से जाते जाते गुड बाय कहूँ, लेकिन जाने से पहले आज के सवाल का जवाब जरूर दूँ। मेघदूत के रचयिता कौन थे? ए वाल्मीकि जी, बी बाना भट्ट या सी कालिदास? सही जवाब रूहानी बता दो कौन क्या है?
1: ऑप्शन सी कालिदास।
0: जी हाँ दोस्तों, कालिदास सही जवाब है। आप दोस्तों से उम्मीद यही करती हूँ कि कल जरूर मिलेंगे। किस समय?
1: ठीक शाम 6 बजे।
0: तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे गुड बाय। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो
0: और ये गीत एंजॉय करो। सी ए टी कैट, कैट माने
1: बिल्ली,
2: कैट माने चूहा।

0: GOAT goat, goat माने बकरी, LION lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: Hey, made, made.

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी हरो गांव हरो अंचल। सही में अपना गांव और अपना अंचल नाम जब सुनते हैं, जिस गांव और अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, उस गांव को हम कभी नहीं भूल पाते जहाँ भी रहे, लेकिन अपनापन आता है क्योंकि उसमें पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे। वो खेत खलियान, वो दोस्ती यारी, वो पढ़ाई और सभी का जो प्यार, बचपन का दिन याद आता है गांव का नाम सुनते। कहते हैं गांव जिस स्वर्ग जैसे, हेवन जैसे लगता है, अपना बेटे अपना जन्म स्थान स्वर्ग जैसे लगता है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, ढाणी ढाणी जाते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी वर्गों से हम परिचित कराते हैं और उनका गतिविधि को सब तक पहुँचाने के लिए एक मंच, एक स्टेज देता है रेडियो मधुबन। इस मंच का माध्यम से अपना जो फायदा, जो भी गतिविधि, चाहे समस्या हो चाहे समाधान हो, समाधान स्वरूप बनते, कभी कभी समस्या स्वरूप भी बन जाते हैं। तो इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, हमें बहुत खुशी होता है क्योंकि सभी का बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो समुदाय के लिए, सामुदायिक द्वारा और समुदाय के हित में प्रस्तुत करते हैं। तो आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज रेडियो मधुबन गाँव वासियों के साथ और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए गाँव वासियों को, खासकर किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा, बिल्कुल जो लाभ देते हैं उसका तहत आज आपके पास रूबरू कराएंगे स्पेशलिस्ट जो कि कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय लेंगे और आज हमारा इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे। बखूब में बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा। मैं तो कहूँगा ध्यान से हमारा किसान मित्र सुने और उससे बहुत कुछ फायदा मिलेगा। तो पहले उनका परिचय लेंगे, उनका सक्सेस स्टोरी, यहाँ तक कैसे पहुँचे और उनका पोस्ट क्या है और क्या करते हैं, कितने दिन से, और इसका श्रेय किसको देना चाहते, किसका बदलो यहाँ पर पहुँचे। कृषि विभाग से जो महान अनुभवी एक्सपर्ट हैं, तो उन कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, उनको स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से, सभी अधिकारियों की तरफ से आपका परिचय।
1: थैंक यू सर। सर मेरा नाम राकेश कुमार गरासिया है और मैं पिनवाड़ा तहसील के आमली गांव का रहने वाला हूं और मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो पिनवाड़ा से ही हुई है, जो 12th तक, और उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर में BSc करने के लिए, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JET एग्ज़ाम होता है, उसके माध्यम से है जो अपने BSc में अपने एडमिशन होता है। तो वो उस टाइम जब मैं 12th में था जब तक मुझे पता नहीं था कि ऐसे कोई, 11th में था जब पता नहीं था कि कोई जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट भी कुछ होता है। तो गांवों में ऐसे खेलते खेलते थे तो उन्होंने बताया कि भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लो 10th पास करने के बाद। तो वो ले ली, भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अच्छा है, खेती में इंटरेस्ट है, घर पर भी खेती करते हैं, तो मैंने ले ली। फिर 11th पढ़ ली और फिर कहा कि भाई आप BSc करोगे तो उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन आपसे आपका नहीं होगा। तो फिर मैंने 11th में थोड़ा जेट के बारे में पता किया और 12th में थोड़ी बहुत तैयारी करी और फिर मैं उदयपुर जो है मेरा सेंटर आया था जेट का और वहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरे ऑल राजस्थान में ST कैटेगरी में 9th रैंक मेरे को हासिल हुई थी उस टाइम और मेरे को राजस्थान की टॉप मोस्ट कॉलेज, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेरे को अलॉट हुई थी और मेरी जो BSc है वो राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर से हुई है। और उसके उपरांत मेरे फादर टीचर थे जो फिर 2013 में निधन हो गया था उनका 13 में, तो उसके बाद 2014 में उनकी जगह में अनुकंपा नियुक्ति में पंचायत समिति पिंडवाड़ा में LDC के पद पे, मतलब अनुकंपा नियुक्ति में लगा था। और उसके बाद भी मैं निरंतर पढ़ाई चालू ही थी मेरी, BSc तो कंप्लीट हो चुकी थी मेरी, तो रेगुलर स्टडी चालू ही थी। उसके बाद मैंने सहायक कृषि अधिकारी 2015 वाला एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं एग्ज़ाम फाइट भी गया था, इंटरव्यू में कुछ नंबर से रह गया था लेकिन उसमें नहीं हुआ है। उसके बाद जस्ट कृषि विभाग की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 आई थी, उसमें मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद मेरा चयन हो गया। जो चयन होने के बाद मेरे को जो है आबरोड पंचायत समिति का जो आवल क्षेत्र है वहाँ पे मेरे को जो है कृषि पर्यवेक्षक पद के रूप में मेरे को जो है यहाँ पे पोस्टिंग मिली है।
0: कौन सा ईयर में पोस्टिंग, पहला पोस्टिंग
1: सर 2014 से लेके 20 तक में है जो पंचायत समिति में रहा और 2020 में मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे कृषि विभाग में और अभी भी सर निरंतर मैं आगे उच्च पद के लिए तैयारी जारी है सर मेरी।
0: तो राकेश सर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस तरह मेहनत करके पढ़ाई और लगन आपने कहा आदिवासी जो गरासिया जाति से आप उभर कर आए हैं, ये कम बात नहीं है, क्योंकि आपका समाज के लिए आप एक उदाहरण एग्जाम्पल बने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते हैं और उन लोग का जो आर्थिक स्तंभ बहुत कम होने के नाते पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते, और बच्चों का भले आर्थिक रहेगा तब भी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि संघ दोष में उनका जो रीति रिवाज संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो कम समय में शादी कर देना और ड्रॉप आउट हो जाना, ये इसका मुख्य कारण होता है जिसका चलते बच्चे आगे नहीं आ पाए। कोई कोई बच्चे इससे आ निकले, इस तरह कुछ बच्चे अभी होशियार होकर निकल रहे हैं, लेकिन ये अंचल के लिए और खासकर आपका जो समाज गरासिया समाज के लिए प्रेरणा भाई आप बने, एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसे आपका जो ज्वलंत एग्जाम्पल है, इससे हमारा जो श्रोता मित्र खासकर यूथ जो पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे ऐसे सोच रहे हैं, तो आपका जो प्रेरणा दे सक्सेस स्टोरी का जो आप बताए इससे जरूर फायदा ले, ये हमारा भावना है। सर जैसे आप पढ़ाई का समय में कितने घंटा मेहनत करते थे और क्या प्रिपरेशन करते हैं और आपका फोकस क्या रहता है, वो चीज के बारे में थोड़ा बताएं
1: सर,
0: इससे जो बच्चे आना चाहेंगे उनको भी प्रेरणा मिले।
1: सर सर ये पढ़ाई के मामले में सर देखा जाए तो अधिकतर जो ट्राइबल क्षेत्र के जो लोग होते हैं बच्चे होते हैं वो यूँ सोचते हैं कि हमें सर समय नहीं मिलता या हमें फैसिलिटी नहीं मिलती है, एक्चुअल में ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है, सही बात तो है वो पढ़ते ही नहीं है, अगर अपने पास किताब है भले एक किताब भी हो तो उसको ढंग से अगर पढ़ा जाए ना तो आराम से पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के लिए क्या है कि हमारे समाज में क्या लड़के ज़्यादा पढ़ते नहीं है और वो बस यूँ जब कोई एग्ज़ाम होता है उसके 15-20 दिन पहले शुरुआत करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे अपन को टारगेट लेके चलना पड़ेगा, साल भर 6 महीने का टारगेट, उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपन को एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे को इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो मैं सर क्या करता था कि बिल्कुल एकांत जगह गाय चराने चला जाता था, गाय चराने जाता था वहाँ बिल्कुल जंगल में एकांत जैसा था, किताब लेके जाता था, जिस दिन छुट्टी होती यूँ तो फिर बढ़िया आराम से पढ़ता था, शांति से छुट्टी होती थी उस दिन। और ऑफिस वर्क में 2014 के बीच ऑफिस वर्क में दिन में तो पढ़ाई सर नहीं हो पाती थी, रात के टाइम में 2-3 घंटे सर निकाल लेता था, 2-3 घंटे कभी कभी 4-5 घंटे, कभी कभी पूरी नाइट भी निकाल लेता था, शुक्रवार का दिन होता था, शनिवार को छुट्टी होती थी तो फिर वो पूरा नाइट उसमें जी जाता था सर।
0: ये हो गया मेहनत और जिसका चलता है जी सर। ठीक सर, तो हाँ जी, तो जैसे आपने बताया अपने समाज को देखेंगे और आप जो अनुभव किए हैं और उस तरह सिचुएशन से उस तरह जो क्लाइमेट है उस तरह जो परिस्थिति आता है उस परिस्थिति से आप निकल कर अपना स्वास्थ्य स्थिति को बजाय रखें और कैसे हम पढ़ाई करें और कहाँ पर करेंगे और जिससे हमारा फायदा होगा वो चीज़ को देखें। उस संघ में नहीं गए, संघ दोष में जाने से खराब हो जाते हैं, लेकिन आपको संघ भी अच्छा मिला और एकांत प्रिय भी होते थे और पढ़ाई को लगन से करते थे, दृढ़ता ले लीजिए, ये ठान लीजिए मुझे कुछ करना है और सरकार देने के लिए तैयार है लेकिन हम नहीं ले पा रहे, ये तो हमारा गलती है। इतना सुविधा है SC ST के लिए, रिजर्वेशन का कोटा, उनका छात्रवृत्ति, पढ़ाई में बहुत सुविधा मिलता है, फिर भी हम उसका फायदा जो नहीं ले पाएंगे तो हमारा ही कमी कहेंगे। तो इस कार्यक्रम को जिसे आपने सजाया और अपना सक्सेस स्टोरी किस तरह पहुँचा, क्या मेहनत किया, क्या उतार चढ़ाव आया, जैसे आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना आज AA कौन सा पोस्ट में है
1: सर? मैं भी कृषि पर्यवेक्षक हूँ लेकिन अतिरिक्त चार्ज मेरे को AA का दे रखा है मूंगथला का
0: जी,
1: लेकिन कृषि पर्यवेक्षक हूँ मैं
0: जी जी। और कृषि पर्यवेक्षक में आप रह रहे हैं और फिर भी इतना मान सम्मान नहीं देखते, अपना कर्म को भगवान को जो मानते हैं और इष्ट को मानते आप चलते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो सर ये जो आज इस मंच का माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का बात क्या करेंगे सोच रहे, तो उनके लिए आपका क्या की मैसेज होगा, क्या आपको जैसे आपने बताया मैं ऐसे करता था और ऐसे पाया है, तो जो बच्चे सुन रहे हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उनके लिए आपका क्या की मैसेज होगा वो स्टूडेंट के लिए?
1: सर मेरा की मैसेज यही होगा कि किसी भी सब्जेक्ट से आप हो भले, लेकिन आपको टारगेट तो बनाना ही पड़ेगा, किसी भी एग्जाम को फाइट करना है तो 5-6 महीने की तैयारी तो कम से कम चाहिए, भले छोटे से छोटे जॉब हो 5-6 महीने की तैयारी चाहिए, उससे ज़्यादा अपन कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, तो दिन का कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 घंटे तो निकालने चाहिए, 4-5 घंटे तो आपको तैयारी करनी होगी, तब जाके आजकल कंपटीशन हर जगह टाइट हो गया है, TSP क्षेत्र में भी कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि 2018 में ये और TSP क्षेत्र में दूसरे गाँव भी जुड़े हैं तो अब और TSP में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए उनको कम से कम 5-6 घंटे तो डेली स्टडी करनी जरूरी है और 5-6 महीने का टारगेट जरूरी है
0: सर। इसके लिए आर्थिक संबल कुछ बैकग्राउंड में उसको सपोर्टिंग करता है, आर्थिक जिसका परिस्थिति बहुत कम है क्या वो अचीव कर सकता है?
1: बिल्कुल सर, वो भी कर सकता है अगर चाहे तो कर सकता है, क्योंकि इसमें किताबें तो हर किसी के पास आजकल मिल जाती है, ज़्यादा महंगी कोई आती है नहीं किताबें, और एक दो किताबें खरीद लेता है तो भी दो तीन किताबों से वो फाइट कर सकता है। अब जैसे छोटे लेवल की तैयारी करनी है तो जैसे अब NCERT की पुस्तकें हैं, जैसे 6ठी से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें, ये छोटे एग्जाम में सीधे इसमें से क्वेश्चन आता है, ये इन किताबों खरीदने जाने की जरूरत ही नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में आप लाइब्रेरी है वहाँ से आप जहाँ पढ़े हैं वहाँ से टीचर से रिक्वेस्ट करके उनकी अच्छी तरह पूरा एक एक लाइन लाइन मतलब पढ़नी जरूरी है, तब जाके वो उसका बेसिक तैयार होता है। क्योंकि जब पहले अपन पढ़ते थे 6ठी 7वीं जब इतना नॉलेज नहीं था, बस ऐसे ही पास हो गए और चलो, अब वो चीज़ें बहुत काम की है, वो चीज़ें इतनी काम की है, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं, 6ठी से लेकर 12वीं तक की पुस्तकों में से हर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं, मुझे तो मालूम नहीं था लेकिन आप अच्छा ये बता दिए। और मैं सबसे ज्यादा मैं भी खुद NCERT की बुक पढ़ता हूँ, 6ठी से लेकर 12वीं तक की भी पढ़ता हूँ, बाकी हाँ उससे आता है, बाकी कोचिंग वोचिंग तो ठीक है नॉलेज के लिए कि कैसे क्या कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, बाकी वो पुस्तकें अगर आप पढ़ते हो आप तो उससे मतलब बहुत अच्छा आपका बैकअप तैयार हो जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए, मतलब आपको तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी।
0: तो सभी हमारा जो टैलेंट बच्चे जो सुन रहे हैं और जो क्या करेंगे आगे के लिए, उनका फ्यूचर क्या है कौन गाइड करेगा, लेकिन रेडियो मधुबन गाइड करने के लिए इस तरह एक्सपर्ट को रखते हैं और अनुभवी को रखते हैं जिसका फायदा लेना चाहिए इस मंच के माध्यम से। जो भी श्रोता सुन रहे और अभिभावक सुन रहे होंगे, माता पिता भी सुन रहे होंगे, बच्चे तो सुन रहे लेकिन अभिभावक सुनने के बाद उनके बच्चों को ऐसे तैयारी करिए, उनको ऐसे सपोर्टिंग करिए तो उनको समझाइए, क्योंकि माता पिता समझदार होते हैं, अभिभावक समझदार होते हैं, तो उनका बच्चों को उनका जो छोटे छोटे जो उनका डिपेंड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको थोड़ा सलाह देकर छाता मैसेज उन तक पहुँचाएंगे तो जरूर लग जाएगा किसी न किसी रूप में, लेकिन ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे, ट्राई करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं फल मिलेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर को इस तरह कार्यक्रम में अपने सक्सेस स्टोरी के साथ किस तरह मेहनत करते थे और किस तरह मेहनत करने के सक्सेसफुल टीम मैसेज के माध्यम से।
1: ये सर एक और मैं बताना चाहूँगा, जैसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए जैसे जो स्टूडेंट अगर 11वीं 12वीं में है अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं 10th के बाद में, तो उनको क्या है सर 5,000 रुपये मिलते हैं प्रति वर्ष के, अरे 11वीं एंड 12वीं के लिए 5,000 रुपये, अगर वो ग्रेजुएशन करता है तो उसको 12,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे।
0: अच्छा बात सर, इसके ऊपर डिटेल्स बताए, क्योंकि हम तो जितने स्कूल कॉलेज में हॉस्टल में जाते हैं
1: बिल्कुल,
0: तो बच्चों को ये एक अच्छा पॉइंट मिलेगा उनको लेने के लिए एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और बच्चे कृषि में हर में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई एडमिन बड़ा भी ऑफिसर भी होगा तो उनका जो बागवानी करते गार्डनिंग करते वो कृषि से रिलेटेड है, और बच्चों को एक अच्छा मौका मिलेगा, एक रास्ता आगे के लिए फ्यूचर के लिए काम आएगा। तो 11वीं में
1: सर जैसे अपन एडमिशन ले लेते हैं एग्रीकल्चर में, एडमिशन ले लिया उसके बाद या संबंधित क्षेत्र में अपने जो भी कृषि पर्यवेक्षक है या सहायक कृषि अधिकारी है उससे आप जाके मिल लो, वो फॉर्म भर देगा और वो फॉर्म भर के जैसे ही जिला स्तर पर सबमिट के बाद उसके जो है स्कॉलरशिप जो है शुरू हो जाएगी स्कॉलरशिप, ये है कृषि विभाग में उसको एक बार एडमिशन लेने में कृषि विभाग से संपर्क करना पड़ेगा सर।
0: सर उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट जमा करना,
1: डॉक्यूमेंट तो सर कुछ नहीं है, जैसे स्टडी कर रहा है तो उसने जैसे 11वीं पास कर लिया, 11th जैसे पास कर लिया तो उसके बाद 11th किस मिलेगी,
0: 10th पास कर लिया,
1: हाँ 10th तो पास हो गया, 11th में एडमिशन ले लिया, 11th पास हो गया तो 11th की मिलेगी।
0: अच्छा पास होने के बाद 11th,
1: हाँ हाँ हाँ ओके सर। तो उसके लिए सर 11th का
0: 11th पास होने के बाद सबमिट करेगा,
1: हाँ जैसे सबमिट करेगा भी,
0: इसका पहले एग्रीकल्चर वहाँ पर क्या सब्जेक्ट होता है
1: एग्रीकल्चर में सर,
0: 11th क्या बताना पड़ेगा,
1: जैसे 10th तो सबके कॉमन होता है
0: जी जी,
1: और 11th में सब्जेक्ट जैसे साइंस मैथमेटिक्स होता है
0: जी जी,
1: साइंस बायोलॉजी होता है, और एग्रीकल्चर भी साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस यहाँ पूरे सिरोही जिले में, सिरोही में है, भिंडवाड़ा है, अबू रोड में नहीं है सर, इसलिए यहाँ के क्षेत्र को के लोगों को अभी जानकारी नहीं है, अगर यहाँ अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मिल जाए तो लोगों को जानकारी भी हो जाए यहाँ।
0: तो आपका ऊपर अधिकार है पहुँचाइए बाकी रेडियो के माध्यम से, हमारा एसडीएम साहब भी सुन रहे हैं, तो ये
1: नहीं अभी सर एग्रीकल्चर में हो सकता है नेक्स्ट आबू रोड का नंबर आ जाए, वैसे आबू रोड बड़ी सिटी के रूप में सिरे से बड़ा माना जाता है वैसे आबू रोड, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ये अभी साल से शायद सरकार ये इसमें कृषि विभाग में चालू कर दे स्कूलिंग,
0: तो 12th में भी ले सकता है,
1: हाँ 11th से
0: शुरू कभी
1: 11th 12th, और 12th के बाद में BSc के लिए अपन जैसे अदर सब्जेक्ट में डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें सर BSc में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JET एग्जाम देना पड़ता है, हाँ उसके माध्यम से वो स्टेट लेवल का है। अगर अपन को ये चाहते हैं कि अपन नहीं, अपन तो भारत में कहीं भी कर सकते हैं, तो उसके लिए ICAR होता है एग्जाम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो एग्जाम देना पड़ता था। अपन ऑल इंडिया में कहीं भी कॉलेज वो मिलती है, वो भी ग्रेजुएशन है, उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो अलग ही है।
0: जैसे साइंस और आर्ट्स कॉमर्स होता है,
1: हाँ, तो वैसे साइंस एग्रीकल्चर भी होता है,
0: साइंस एग्रीकल्चर होता है, पहला बार हम सुन रहे हैं आपसे। ये भी बहुत
1: सब्जेक्ट दोनों कॉमन ही है, साइंस में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री, और तीसरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर होता है, बाकी जो बायोलॉजी और ये केमिस्ट्री दोनों सेम होते हैं।
0: सर क्या साइंस जहाँ पर है, जैसे मावल में है, दबर स्कूल में है, गंगा आवासीय स्कूल में साइंस है, तो साइंस एग्रीकल्चर होना चाहिए।
1: हाँ, साइंस एग्रीकल्चर,
0: मैथ फिजिक्स ऐसे नहीं,
1: हाँ
0: एग्रीकल्चर होना।
1: हाँ, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दोनों सेम ही होते हैं, मैथमेटिक्स में फिजिक्स होता है, बायोलॉजी में फिजिक्स होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर होता है, बाकी दोनों सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों सेम होती है।
0: तो श्रोता मित्र, जो भी हमारा अभिभावक जो शिक्षा विभाग में और जो प्रशासन में जो सुन रहे हैं, जरूर इस हाईलाइट करें, और हम रोड पंचायत में हो जैसे
2: बहुत धन्यवाद देते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से एक सक्सेस स्टोरी और एक प्रेरणादायी देते हैं जैसे दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे राकेश सर अपना कार्यक्रम को सजा रहे हैं, आज कृषि ऊपर में हम बात कर रहे हैं। कृषि विभाग को ग्राम पंचायत बहादुरपुरा से आज हम लोग बात कर रहे हैं पंचायत ऑफिस में। सारा खासकर हमारा सभी किसान भाइयों के लिए और उनका तरफ से आपको स्वागत करते हैं। पुनः किसान देश का रीढ़ है, जैसे शिक्षक, कृषक और सैनिक, तीन पिलर जैसे लगता है भारत का बदलत में चले हुए हैं। और जितना राजस्व भी कृषि से ज्यादा आता है और रक्षा करने में तो सैनिक ही है और शिक्षक हमारा अवेयरनेस हमको इतना जागरूक कराते हैं जिसका बदलत हम सर्विस मिलता है, होशियार बनते हैं। तो इस सभी को तो नमन करना चाहिए। और जो अन्नदाता कहते किसान भाइयों, खासकर भाइयों, तो आज उनके लिए आप देवदूत होकर आए हैं। तो आपके पास जितना भी स्टॉक है या जितना भी जानकारी है रेडियो का मंच के माध्यम से सबको लुटाइए और स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोजेक्ट जो कि अति सहज सहूलियत से उनको फायदा मिले। खासकर भाई का जो गारे से समाज के लोग हित में प्राप्त हुए, क्या करने से उनका आर्थिक संबल और बढ़ेगा, दोगुना ने चार गुना बढ़ेगा उनका प्रोडक्शन। तो सरकार क्या मदद करते हैं, क्या सब्सिडी देते हैं, कब देते हैं, किस तरह देते हैं और कहां पर देते हैं, किसको देते हैं?
1: सभी किसान भाइयों का नमस्ते। मैं कृषि विभाग के बारे में योजनाओं की जानकारी दूंगा। इसमें सबसे पहले कृषि विभाग की मुख्य जानकारी है, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना में अलग अलग है, जैसे पाइपलाइन हो गया, फुव्वारा हो गया, रेन गन हो गया, खेत तलाई हो गया, जलौज हो गया, सब में अलग अलग सभी की क्राइटेरिया हैं और सब में अलग अलग सब्सिडी मिलती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन स्कीम है, उसके अंतर्गत किसानों को 50% सब्सिडी मिलती है। पाइपलाइन 50 पाइप लेने होते हैं और 50 पाइप पे 50% लगभग 15,000 अधिकतम उनको जो है राशि मिलती है। और पाइपलाइन लगाना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो ट्राइबल एरिया या पाकर क्षेत्र में आजकल अपन देखे होंगे तो कुआं बहुत दूर होता है, कुएं से पानी लेके जाते हैं, बोरवेल से पानी लेके जाते हैं, तो क्या है वो नालियां बना रख, तो नालियों से खेत तक पानी पहुंचने में जैसे किसी का 1 किलोमीटर हो, किसी उससे कम हो, 300-400-500 मीटर तक हो, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते तो आधा पानी तो जमीन में वैसे चला जाता है, पहुंच नहीं पाता, पानी वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए जो है पाइपलाइन सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से रहेगी और है भी। उसके लिए पाइपलाइन जोड़ता सीधा खेत में पानी जो स्रोत है वहाँ से सीधा पानी फसल तक आसानी से पहुँच सकता है।
0: 100% मिलेगा,
1: हाँ 100% जितना पानी है, ज़्यादा पानी है तो वो आराम से सीधा मिलेगा, आपका पानी वेस्ट कहीं नहीं होगा। 20-20 फीट के जो पाइप होते हैं और वो आपस में जुड़ते हैं, आराम से उसको जोड़ भी सकते हैं और कोई भी दो किसान भी हो तो भी, 1-2 किसान होंगे तो भी उसको जोड़, छोटा बच्चा भी कर सकता है ये, मतलब आराम से आसानी से कर सकता है। यूँ नहीं तो वो बिल बनाते हैं उसमें कहीं फूट जाता है, फिर वापस जोड़ता है, फिर वापस किसान खेत में देखता है कि यार पानी आ नहीं रहा है, फिर देखता है वापस चला जाता है कि यार पानी यहाँ फूट गया है, वापस जोड़ता है, फिर वापस खेत में भागता है, तो उसको समस्या ये समान हो जाती है इससे। और दूसरा है फव्वारा यंत्र। फव्वारा में सर क्या होता है कि खेत के अंदर 6 फव्वारे लगाते हैं, मतलब 6-7 फव्वारे अलग अलग अपने से लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है सर कि पानी का बचत
0: होता है,
1: हाँ बचत होता है। फव्वारे में सर ये है सब्सिडी इसके अंतर्गत है, अपने लागत का 55% जो है वो सब्सिडी इसमें मिलती है फव्वारा संयंत्र में। और इसका जो आवेदन है वो भी ऑनलाइन ही होता है, किसान राज किसान साथी पोर्टल से है जो इसका ऑनलाइन आवेदन होता है। और उसके लिए सर जन आधार कार्ड आवश्यक है, जन आधार कार्ड अगर नहीं बना है तो आवेदन नहीं कर सकता है, और जन आधार कार्ड बना हुआ है तो उसके लिए आवेदन कर सकता है। और जितनी भी स्कीम है उसके लिए राज किसान साथी पोर्टल से ही आवेदन होगा और जन आधार कार्ड ही चाहिए, और जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी। और इसके लिए आप ई मित्र पे जाएंगे, जन आधार कार्ड से अपन आवेदन करेंगे। मान लो सिंचाई पाइपलाइन का आपको आवेदन करना है तो आप जन आधार कार्ड लेके गए और आपका जो भी खेत है उसकी जमाबंदी और नक्शा जो होता है खेत का, पटवारी जो है निकाल के देता है उनको, और आजकल ऑनलाइन भी होता है तो ऑनलाइन निकाल के पटवारी से प्रमाणित करवा के और ई मित्र पे लेके जाओ। ये दो चीज़ मुख्य है, और तीसरा आधार कार्ड। तो जन आधार पे ऑनलाइन करके डॉक्यूमेंट चढ़ाने होते हैं और जैसे ही वो आवेदन हो जाता है तो वो आवेदन हमारे जिला कार्यालय है एग्रीकल्चर का वहाँ चला जाता है,
0: सिरू।
1: हाँ सिरू चला जाता है, और वहाँ से वो आवेदन हमारे पास ऑनलाइन ही अपने आईडी पे आता है। तो जैसे आईडी पे आता है तो हम उस
0: जिसको लाभ मिलता है,
1: हाँ किसान को संपर्क करते हैं, भैया आपको कहाँ चाहिए, तो हम वहाँ जाके प्री वेरिफिकेशन करते हैं
0: जी।
1: प्री वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद वापस ऑनलाइन ही उसकी फोटो वोटो खींचते हैं, जियो टैग करते हैं और वापस भेज देते हैं, सिरोही चला जाता है। और वहाँ से उसकी स्वीकृति जारी होती है, प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है, और प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है तो हमारे मोबाइल में आ जाता है, हमारे पास वो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति की कॉपी आ जाती है। उसके बाद हम किसान से संपर्क करते हैं कि आप जो भी पाइपलाइन है, वारा है, जो भी है आप लेके आ जाओ और आप खुद खरीदो, क्योंकि उसको खुद ही खरीदना होता है, सब्सिडी तो बाद में जमा होती है,
0: अरे
1: सामान पहले लाना पड़ता है इसमें, ये है। तो सामान वामान लेके आ जाओ और बिल ला के हमें सुपुर्द बता दो, तो वापस हम दोबारा उसके खेत पे जाते, चेक करते भाई इसने फुवारे लगाए हैं कि नहीं लगाए, पाइप लगाई है कि नहीं लगाई है, फिर हम जाके और बिल विल चेक करते और फिर वापस उसका जो भौतिक सत्यापन ऑनलाइन ही ऐप के माध्यम से करते हैं, राज किसान साथी पोर्टल से। और उसके बाद वो जैसे आवेदन हम कर लेते हैं कम्प्लीट और सत्यापन कर लेते हैं, उसके बाद वो वापस जिला कार्यालय में चला जाता है और उसके लगभग महीने भर के अंदर अंदर लगभग वो है उसका भुगतान, लगभग वो पेमेंट जमा हो जाता है खाते में सीधे।
0: बहुत अच्छा बात बताया और ये प्रोसेस बताया, लेकिन जैसे आपने बताया सब पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तो इतना पैसा लोग के पास रहता नहीं है, जैसे कम से कम तो 5-6 हज़ार मिनिमम तो सब करने के लिए तो चाहिए, तो बाद में तो सरकार देगा 50%, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में इतना जो खरीदने के लिए जो संभव होना चाहिए उनको मिलेगा, जिसके गरीब लोग को कैसे फायदा मिलेगा कहाँ
1: सर? ये ST SC अदर जनरल सभी में सर ये अपन को इसमें एग्रीकल्चर में यही है, आपको सामान तो पहले खरीदना ही है, पहले ही आपको लाभ किसी में पैसा वगैरह नहीं मिलेगा।
0: तो मान लीजिए पैसा पहले मिल जाएगा तो क्या दिक्कत होगा सर?
1: पैसे मिल पहले मिलते हैं तो सर क्या है कि जो ट्राइबल एरिया के जो किसान है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं शायद, मेरे हिसाब से पहले शायद गवर्नमेंट पहले पैसा देती थी इसलिए उसका क्या है लोग दुरुपयोग करते हैं, तो दुरुपयोग करते हैं तो उसको वास्तव में वो जो गवर्नमेंट जो चाहती है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है,
0: तो नेग्लेक्ट करेगा,
1: हाँ हाँ
0: साल करेगा, दूसरा टाइम में
1: इन्वेस्ट कर लेगा या फिर वो
0: आदमी
1: दारू पी
0: हाँ कर सकता है।
1: और इसमें क्या है जो वास्तविक जिसको चाहिए
0: वो करेगा,
1: वो करेगा और उसको फिर पैसा भी पूरा पूरा मिलेगा, एक भी रुपया कहीं जाता नहीं, सीधे सब्सिडी से उसके खाते में, किसी को मतलब बिचौलियों के चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं, सीधे उसके खाते में पैसे जमा होंगे और उसको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है।
0: ये खास राज है क्योंकि इससे जो जेन्युइन है, जो लाभार्थी है, जो करने के इच्छुक है उनको ये फायदा मिलेगा, जिसका इच्छा नहीं है इसको जबरदस्त दे देंगे पैसा, वो पैसा को दूसरा जगह में वो इन्वेस्टमेंट करने लगेगा, जिसका चलते नुकसान भी होगा और सरकार का जो मंशा है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस तरह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सर जो पाइप का जो सिस्टम मुझे बताया, बस हमारे किसान भाई को बताया, वो क्या सेफ्टी रहता है ना चोरी वगैरह, जैसे हम पाइप लगा दिए जैसे अपने पाइप का सिस्टम है, पानी जो 1 किलोमीटर लेना है वहाँ से मोटर से, लेकिन पाइप को हम जो रखने हो चाहे हमको उसको सेफ्टी का चोरी भी हो जाता है खेत में जो रख देंगे,
1: बिल्कुल
0: तो फिर उसका तो दिक्कत होगा
1: सर। इसमें पाइप एक तो आता है वो बाहर ओपन लगा सकते हैं 20-20 फीट के, और एक ग्राउंड वाला भी आता है, वो अगर किसान चाहे तो उसको ग्राउंड के अंदर लगा दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई चोरी भी नहीं कर सकता उसका, वो लंबा रोल आता है, रोल भी लगा सकता है। और भाई मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो वो सिंगल पाइप 20-20 फीट के है उसको लगा सकता है, जैसे कहीं 300 मीटर पानी ले 300 मीटर का पाइप लेके आ गया वो और उसके भाई 200 तक ही पहुँचाना है तो उसमें क्या 200 तक ही पहुँचानी, तो फिर वो क्या पूरी 300 मीटर पाइप डाल दी और उसको 200 मीटर तक पानी पिलाना वापस, तो वापस वहाँ से पानी इधर लाना पड़ेगा पाइप से। और इसमें कहा जहाँ तक जितना पाइप लेके जाना है वहाँ तक अपन पाइप जोड़ सकते हैं, ये इसमें एक फायदा है सर।
0: जैसे हम करंट लेते तो अंडरलाइन करना अंडरग्राउंड करना और ऊपर लेना में तो दिक्कत होती है, बाढ़ आता है तूफान आता है तो गिर जाता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन अंडरलाइन करते तो सेफ्टी रहता है। लेकिन जो किसान मित्र जो इस तरह परमानेंट का खेती है और उनको करना ही लाभ मिल रहा है तो एक टाइम वन टाइम इन्वेस्ट कर लीजिएगा, अंडरग्राउंड कर लेंगे तो सेफ्टी का बात,
1: वो फिर चोरी का टेंशन नहीं है, फिर
0: पाइप को इधर उधर करने का जरूरत नहीं, चोरी हो सकता है लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, खोदाई करके लेना इतना लोग को इतना पैसा, आजकल तो चोरी बहुत कम हो गया, पहले होशियार हो गए थे, पहले कुछ पैसा नहीं था, आजकल तो 2 घंटा कमाई करेंगे कहाँ भी 200-300 रुपये मिल जाता है, पैसा के लालच में कोई चोरी नहीं, पहले था ऐसी चोरी करने के, लेकिन आज सबका समाधान उन्हें सरकार भी दे रहा है, भोजन भी दे रहा है, रहने की व्यवस्था सब कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छा बात बताए। ये था कृषि संबंधित हमारे किसान भाइयों के लॉटरी कहेंगे कि उनका खाद्य खोलेगा जब सब्सिडी सरकार तरफ से जो मिल रहा है उसका सही जानकारी होना अति आवश्यकता है, और इसका उसका बात नहीं सुन के गलत अफवाह से नहीं सुनते, सरकार का जो दिशा निर्देश कृषि अधिकारी से संपर्क करें और उसका एक पोर्टल जैसे सर ने बताया
1: राज किसान साथी पोर्टल,
0: राज किसान साथी पोर्टल में जाकर अपना जानकारी जिस चीज़ में हमको पूछाई वो चीज़ रहता है। आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आपका बच्चे आज तो पढ़े लिखे ही है, क्योंकि आपका जमाने में इतना पढ़ाई नहीं था लेकिन आज बच्चे तो फोन एंड्रॉइड फोन में सब चीज़ अवेलेबल है, तो बड़ा फोन में आप कर सकते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबनी।

इतना ध्यान, इतना ध्यान धरेगा कौन, माँ धरती जितना इतना प्यार करेगा कौन।

हरदम याद, हरदम याद करेगा कौन, माँ करती जितना इतना प्यार करेगा कौन, माँ करती है जितना इतना प्यार करेगा कौन। दूर देश जब कोई जोए

0: वापस आ जाए, माए कहे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा वापस आ जाए, हरदम प्यार हरदम प्यार करेगा कौन, माँ करती जितना इतना प्यार करेगा कौन, माँ करती है जितना इतना प्यार करेगा कौन।
1: मैं हूँ वजाहत हबीबुल्ला और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं राकेश सर हमारा साथ जुड़े हुए हैं और सभी को अपना अनुभव आधार से जो भी सुविधा है जो डोर टू डोर जाकर बताते थे, लेकिन आज रेडियो मंच का माध्यम से सभी किसानों दे रहे हैं, जो भी जहां पर भी सुन रहे हैं कैसे लेना है, कहां पर लेना है, किस तरह लेना है, कौन एंटाइटल, सब चीज़ बता रहे हैं। एक एक प्रोजेक्ट का बारे में, एक एक योजना का बारे में बता रहे हैं। जैसे इसका पहले हम सुन रहे थे पाइपलाइन और फुहारा का बारे में।
2: बिल्कुल पाइपलाइन है।
1: हाँ, तो अभी कौन सा बारे में सुन रहे हैं?
2: अभी में एक कांटेदार तार बनती है, होती है, उसमें भी एग्रीकल्चर जो है सब्सिडी देती है, उसके लिए मैं आप जानकारी दे रहा हूँ। इसमें सर कृषि विभाग से जो तार बंदी लगाते हैं उसमें तीन हेक्टर मतलब 12 बीघा जो जमीन है कम से कम चाहिए, और तीन किसानों का समूह होना चाहिए, और जिनके खेत पास में है, और जमीन अगर तीन हेक्टर मतलब 12 बीघा, हाँ तीनों का मिलाकर 12 बीघा होनी चाहिए, और आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। न्यूनतम इतनी हो सकती है, अधिकतम हो सकती कितनी भी, और तीन किसान न्यूनतम चाहिए ग्रुप में, और 7-8 किसान भी हो सकते हैं। कहीं जैसे कि जमीन कम पड़ रही है, 3 किसानों की नहीं हो रही 12 बीघा, तो 10 किसान भी हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं आपस में। हाँ, तो इसमें सर अधिकतम 40,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, 40,000 रुपये तक सब्सिडी मिलती है इसमें सर, और अधिकतम 400 मीटर तक की सब्सिडी मिलेगी। किसी भाई के जैसे मान लो 600 मीटर हो गया तो उसको 400 मीटर तक की सब्सिडी मिलेगी, 400 मीटर के ऊपर जो है वो खुद वहन करेगा। और इसमें भी सर ये है कि आवेदन ऑनलाइन करके और फिर तारबंदी का कार्य प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है, और उसके बाद तारबंदी का कार्य भी पूरा अपन को ही करना है, किसान को ही सारा करना है। करने के बाद जो बिल वगैरह है वो सारा ला के हमें देगा, तो हम उसका जो है वहाँ पे आगे करेंगे, तो उसकी सब्सिडी वो पूरी उसके खाते
1: में। ये बहुत अच्छा योजना है, और खेत को सुरक्षा रखने के लिए।
2: सुरक्षा रखने आजकल सर जो सुअर इतने सर हो गए हैं जो मक्का एक दिन में सारी मक्का खराब कर देते पूरा खेत, इसलिए ये तारबंदी होने से सर बहुत फायदा मिलेगा किसानों को। ये
1: जैसे हम कपड़ा पहनते हैं अपना शरीर को ढकने के लिए, सेफ्टी के लिए, धूली मिट्टी नहीं लगे, हेलमेट लगा देते हैं, तो खेत को भी हेलमेट लगा
2: बिल्कुल जरूरी है।
1: चार तरफ बाउंड्री लगाना जरूरी है, क्योंकि उससे किसान तरह आराम से नींद से सो पाए, नहीं तो नींद नहीं होगा,
2: नींद नहीं होगा
1: तो मन तो उधर ही है, स्वास्थ्य खराब होगा, तो स्वास्थ्य रखने के लिए डॉक्टर पैसा क्यों दे, खेत में लगा, सरकार उसका भी फायदा दे रहे, करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर जैसे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे आपने बताया 3-4 प्रोजेक्ट बनाए, जो भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, पाइप हो चाहे फुहारा हो चाहे कांटा जो लेने के लिए, इसके लिए क्या कोई भी सामान को अपने हिसाब से लेंगे ना आप, उसको थोड़ा वो मटेरियल को थोड़ा स्टडी करते हैं, इस चीज मेटेरियल लगाओ, आप सजेशन देते हैं, कोई भी मटेरियल जो खुद घर को लाता है उसमें आप क्या सजेशन देते हैं?
2: सर उसमें ये होता है कि ये प्रमाणित जो राजस्थान से जो ISI मार्क से जो भी है, अच्छा। राजस्थान गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड है
1: उसको
2: वही चीजें आप लाओगे तो ही सब्सिडी मिलेगी।
1: ओके,
2: ये है।
1: हाँ।
2: इसमें अगर वो राजस्थान गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं, लोकल उससे नहीं लेना है, लोकल से आप नहीं ले सकते हो, और बाकी किसी से भी ले लो, लेकिन उसमें राजस्थान गवर्नमेंट जो चीजें वो अप्रूव्ड होनी चाहिए उसमें, राजस्थान गवर्नमेंट। हाँ, उसमें जो पहले से सारी लिस्टें आ रखी होती है कि पाइप में कौन कौन सी जो कंपनीज हैं जिसमें ISI मार्क और कंपनी जो है राजस्थान गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है,
1: तो किसान को कैसे पता चलेगा सर ये मटेरियल क्या है? मैंने जो आपने बताया तो ठीक है, आप जानते हैं, लेकिन किसान भाइयों को कैसे अवगत होगा?
2: किसान भाइयों को सर इसलिए अवगत हो जाएगा क्योंकि सर यहाँ जैसे डीलर है, यहाँ आब रोड में है, मंडा रहे हैं क्षेत्र में, वो काम करते हैं फील्ड में, वो सब जो किसान भी लगभग उनको जानते हैं। तो क्या है कि वो वहाँ से वो सामान खरीद सकते हैं, यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे आबू रोड में फैसिलिटी अवेलेबल है, तीन चार डीलर्स हैं उनके पास से आप जो प्रमाणित सामान है वो आप खरीद सकते हैं।
1: तो सभी किशन भाई ध्यान से सुने, कभी सामान लेते हैं तो लीजिए, लेकिन उसका जो उचित जो मूल्यांकन तो उसको थोड़ा परखे, नहीं समझ में आता है तो एक बार कृषि अधिकारी भी रहता है अपना ग्राम पंचायत में, कोई ना कुछ कृषि विभाग से पता करिए और ISI लिखा होना चाहिए, तो पता चला ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट द्वारा, तो आप उसमें सब्सिडी मिल सकता है। नहीं तो आपने लोकल मेड में कोई आपने खुद बनाया उसमें लगा देंगे तो सब्सिडी मिलेगा नहीं। जैसे कोई भी बिल लेते कोई सामान खाते वो बिल भी पक्का बिल
2: पक्का,
1: क्योंकि उसको TIN
2: टीन नंबर वाला बिल वो मिल
1: तब जाकर अप्रूव्ड होगा, नहीं तो अप्रूव नहीं होगा। लोकल
2: बिल
1: मान्यता नहीं, तो लीजिए सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कंजूस मत करिए पैसा का चक्कर में, थोड़ा ऐसे नहीं करने का, जो सिस्टमेटिक है उसको, नहीं तो आप अपना सलाह लेकर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या आप बताना चाहेंगे?
2: दूसरा सर ये है कि अपने यहाँ क्षेत्र में जैसे अपन बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर ये कहता है कि ब्लड टेस्ट करवाओ, तब देख के बताता है कि इसमें क्या क्या ये बीमारी है। अब सॉइल में कोई बीमारी होगी, मृदा में कोई बीमारी होगी, खेत के अंदर, तो अपन को थोड़ी ऐसे पता होगा इसमें क्या बीमारी है। तो उसके लिए भूमि का मृदा सॉइल टेस्ट करवाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक बहुत जरूरी है, क्योंकि
1: कोई भी सॉइल,
2: हाँ सॉइल खेत में खेती करते हैं उसकी टेस्ट कराना अति आवश्यक है। अपन को क्या पता इसमें किस चीज़ की कमी है, कौन से खाद अपन डाल रहे हैं, हो सकता है उस खाद डाल रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं अपन डाल रहे हो, और जो चीज़ डालनी है उसको अपन डाल ही नहीं रहे हैं, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। इसलिए सॉइल टेस्ट कराना अति आवश्यक है, और सॉइल टेस्ट करवाने के लिए अपने संबंधित जो क्षेत्र का जो कृषि पर्यवेक्षक है उसको बुलाएं, और वो आपका जो है सॉइल टेस्ट मृदा से ले लेगा, सैंपल ले लेगा। और आप भी अगर किसान भाई अगर जानकार हैं तो आप भी ले सकते हैं, किसान के खेत के चारों कोनों से
1: दिशा से,
2: हाँ जैसे ये खेत है 5 जगहों से मिट्टी लेनी है, 1 फीट अंदर खोद के और मिट्टी लेनी है अंदर से चारों कोनों में और एक बीच में से मिट्टी लेके, और उनको मिक्स करके अच्छी तरह से
1: सबको मिक्स,
2: हाँ आधे आधे किलो मिट्टी लेके 5 भाग से, और फिर उनको मिक्स करके उसमें से है जो पाप भर मिट्टी आधे किलो मिट्टी है वो लेके, और फिर उसको जो कृषि विभाग में जमा करा दो, और उसके जो शुल्क है वो सिर्फ मात्र 5 रुपये है।
1: अच्छा अच्छा
2: 5 रुपये उसकी जो शुल्क है, और 5 रुपये में पूरी मिट्टी की पूरी जाँच होके आ जाती है 15-20 दिन में।
1: सुविधा आबू रोड में है?
2: आबू रोड में सर ये सुविधा नहीं है, लेकिन वो हमारे पास जैसे सैंपल आता तो हम जिला में वहाँ लैब बनी हुई है सिरोही, वहाँ जाके हम टेस्ट करवा लेते हैं और उसकी रिपोर्ट हम किसानों को देते हैं। अभी हमारे जो कृषि विभाग के जितने भी कृषि पर्यवेक्षक है उन्होंने 50-50 सॉइल सैंपल लिए थे, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, आज भी हम लेके आए हैं कार्ड, और उसमें पूरा दे रखा है कि कितना क्या क्या देना है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि अपने किसान भाई देते हैं, ज़्यादा देते हैं, उनको पता नहीं रहता, ऐसे यूरिया है DAP है वगैरह वो डालते रहते हैं, लेकिन उसमें खेत में ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे यहाँ की जो मिट्टी है उसमें थोड़ी सारी अपने जिप्सम की कमी है, मोस्टली जिप्सम की कमी है, तो जिप्सम अगर लेते हैं किस तो सोसाइटी से लेते हैं तो उसमें भी 50% आपको अनुदान पे जिप्सम मिल जाएगा, तो वो जिप्सम को आप लेके और मिला के मिट्टी मिला के आप उसका जुताई कर देते हैं तो वो फसल के प्रोडक्शन के लिए अच्छा रहेगा। और जिप्सम है, जिप्सम अगर उसमें जिंक सल्फेट है और फेरस सल्फेट है, ये दोनों भी अभी हम अनुदान पे दे रहे हैं, 50% अनुदान पे हम दे रहे हैं, तो उससे क्या है सर ये जैसे ऑयल क्रॉप से सरसों वगैरह है तो ये जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट डालने से इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी बढ़ती है। और यहाँ इस फील्ड में जैसे है जो जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट की कमी है, तो ये अगर किसान अगर सॉइल टेस्ट करा लें तो उसका पता चल जाए तो आगे इस संबंध में उन किसानों को लाभ हो सकता है,
1: बहुत कुछ बचत भी हो सकता है, इनका खेत भी बचत कर सकते हैं, और इनका जो प्रोडक्शन जो होता है उत्पादन को भी बचा सकते हैं, और हमारा वेस्टेज नहीं जाएगा।
2: नहीं नहीं सर वेस्टेज नहीं,
1: और हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे हम कोई भी टेस्ट सामने बताए, कोई भी ऑपरेशन करने का पहले आपका ब्लड टेस्ट पूरा सब यूरिन टेस्ट हम टेस्ट करते हैं, इसके बाद मेडिसिन देते तो काम में आता है क्या आवश्यकता है, तो खेत को भी क्या आवश्यकता है वो चीज़ हम जब जाँच करेंगे पहले पहले शुरू में जब करेंगे तो उनको लगेगा भाई ये प्रोसेस है, फिर उसको पकड़ो तो टाइम जाता है, लेकिन एक बार आपका खेत का पूरा पता चल जाएगा तो आपको उसी हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमको सिर दर्द होता है, बीपी होता है, तब शुगर होता है, तब चीनी का थोड़ा कंट्रोल करेंगे ना, जब टेस्ट ही नहीं करेंगे कैसे चलेगा। और उसी तरह खेत को भी अपना पहले टेस्ट कराइए, भले समय लगे, लेकिन जैसे आप टेस्ट कराने के लिए खेत को जाना पड़ेगा, 5 जगह से मिट्टी लेना पड़ेगा, फिर उसे खरीदे खेत को उनको बताना पड़ेगा, छह चीजें जो प्रोसेस सर, उसमें थोड़ा पैसा वगैरह कुछ हेर फेर होता है का, जो जिसको हम बुलाएंगे वो क्या फीस लेते हैं ना, फ्री में जाते हैं?
2: नहीं सर, फ्री में है, निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, अगर बुला ले या खुद मिट्टी लेके आ जाए तो और भी बेस्ट है
1: जी।
2: और जैसे हम क्षेत्र में खुद मिट्टी लेके आ जाते हैं किसान, एक बार बता देते हैं, समझा देते हैं कि भाई ऐसे आप मिट्टी ले लेना, और वो खुद की मिट्टी लेके आ जाता है, उससे सिर्फ 5 रुपए की रसीद लेंगे हम बस।
1: लेकिन किसान भाई लोग बोलता रहे हमको बहुत चक्कर लगाना पड़ता, 2 बार गए किसान नहीं थे।
2: हाँ सर, ये पहले था, लेकिन अभी क्या हम जैसे सब जगह पोस्टिंग हो चुकी है, पहले यहाँ पूरे आबू रोड क्षेत्र में 2 सुपरवाइजर थे, 15 पोस्टे हैं और सुपरवाइजर 2 थे, और वो पूरा 15 पोस्टों का काम संभालते थे, तो वो हो नहीं पाता था। अब हर जगह मतलब 10 पोस्ट तो ऑलरेडी भर चुकी है और 5 पोस्ट ही खाली है, तो अब हर जगह दिक्कत नहीं होगी आप किसान भाइयों को, जो है कृषि परिवहन समय पे हर जगह मिल जाएगा और आपका काम भी आसानी से।
1: इतना सुविधा है सरकार दे रही है और इतना पैसा तनखा आपका पीछे, इतना लोग जो अपॉइंटमेंट किया है, कितना तनखा जा रहा है
2: जी,
1: और उसका फायदा लेना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आप जब नहीं लेंगे उसको काम नहीं दे रहे हैं, तो मुझे तनखा सरकार का जो राजकीय पैसा जो जा रहा है वो वेस्टेज जा रहा है।
2: सही है सर,
1: तो उनको काम दीजिए और उनको भी खुशी होगा।
2: सही है,
1: और वो पैसा भी अदम भी होगा।
2: सही है,
1: और नहीं तो बट बट करेंगे तो मन भी इधर इधर होगा, भ्रष्टाचार में जाएगा।
2: सही है,
1: तो इसलिए हमारा किसान भाई को नम्र निवेदन है, सर से जितना फायदा लेना हो पहले जाइए, बार बार जाइए, एक बार गए कुछ उनका भी कुछ प्रॉब्लम होता होगा, मैंने कहा ऑफिशियल ड्यूटी हो जैसे सर आज यहाँ पर, तो मान जा अपना ऑफिस में कोई ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं ना
2: सर। हमारे ऑफिस के बाहर हमारे सबके नंबर लगा रखे हैं हमने, अगर कोई भी हम अगर फील्ड में भी जाते हैं, हमारा वैसे फील्ड का ही काम होता है पूरे दिन, अगर ऑफिस में नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ जाके ऑफिस के बाहर नंबर से एक बार कांटेक्ट कर लें, हो सकता है आपके आसपास ही कहीं हो, फील्ड में हो, तो नंबर भी लिखे हुए
1: हर सेक्टर में, जैसे आपका सेक्टर कितने ग्राम पंचायत को लेकर आप सर?
2: सर मेरे जैसे मूलथला डब्ल्यू में तो जैसे 9 पंचायतें आती है,
1: 9 ग्राम पंचायत,
2: 9 ग्राम पंचायत सिर्फ मैं सुपरवाइजर का काम करता हूँ, पूरे सभी मेरे अंदर 4 सुपरवाइजर है, 4, और खुद ही मैं सुपरवाइजर हूँ, तो मेरे खुद के आवल और चनार 2 ग्राम पंचायतों का काम मैं खुद देखता हूँ। इसके अलावा ओरिया है, बहादुरपुरा है, चंडेला है, मूंगथला है, क्यारिया है, दामसरा है, ये इनका सुपरविजन मैं करता हूँ। ये
1: एरिया को पूरा हरा भरा करने का दायित्व आप लिए, कप्तान गिरद करते हैं, जितने किसान को खुश रखते हैं, क्योंकि किसान जब खुश रहेगा देश खुश रहेगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल, किसान
1: और आप उसका कमान आपका हाथ में, और जो आप एक आदिवासी समाज में बिलोंग करते हैं, आदिवासी लोगों को समझाने अपना भाषा में सहज भी होता होगा, इस तरह बहुत कम मिलता है सर कैंडिडेट।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ सर इस फील्ड में समस्या भी होती है, जैसे अधिकतर जो हमारे साथी लोग हैं वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं समझ पाते
1: जी,
2: जो किसानों को मोटिवेट करने में थोड़ी समस्या आती है, और किसान भी क्या है कि जल्दी बाहर के किसी लोग भी एकदम भरोसा नहीं करते, और मेरे यहाँ होने से क्या होता है कि जैसे मैं लोकल लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ तो उनको मेरी खुद की भाषा में बात करता हूँ आदिवासी भाषा में, तो उनको जल्दी समझ में भी आ जाता है और वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये है सर,
1: सही बात, इतना दायित्व लेकर फिर भी आप खुश रहते हैं और सबको देने के लिए आपको खुशी मिलता होगा कहीं सेवा में।
2: कृषि सर, कृषि विभाग में देने देने का ही है, इसमें सब दे, लेकिन किसान को मोटिवेट होके हमारे संपर्क करना बहुत अति आवश्यक है। हम भी हर जगह हमारी किसान गोष्ठी होती है, अभी हाल फिलहाल में मूंगथला में किसान गोष्ठी हुई थी, 100 किसानों की हुई थी, हम हर जगह जहाँ भी गोष्ठी करते हैं किसानों को जानकारी देते रहते हैं, महिलाओं की अलग गोष्ठी होती है, पुरुषों की अलग गोष्ठी होती है, पूरी स्कीम की है लगभग, हम वहाँ जानकारी देते रहते हैं, और इस क्षेत्र से अब धीरे धीरे थोड़े किसान जागरूक हो रहे हैं और स्कीम में आवेदन भी कर रहे हैं और लाभ भी ले रहे हैं।
1: और एक तो यूथ जैसे यंग आपको अभी पोस्टिंग बहुत कम दिन हुआ रहा, यूथ खून में देने के लिए भावना, बूढ़ा तो है हुआ नहीं
2: जी जी जी,
1: लेकिन कोई जिससे सीनियर हो जाते हैं तो उनका देखा उसको इतना आता नहीं करने के, लेकिन आपका जो खून उमंग उसका साइज में देखने को मिलता है, तो इसका फायदा अंतर्वासी ले, खासकर अपना जो सेक्टर बताए, इतने सेक्टर का जो आप कार्यकर्ता है, आप कप्तान चलाते हैं, तो इतना गांव पंचायत आपका पास है, तो खासकर यहाँ का समस्या क्या आती है और उसको आप कैसे निवारण करते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन पहले स्कीम के बारे में कितने स्कीम है और बाकी रहा लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: जीवन देता है मधुबन।
1: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। राकेश सर इस कार्यक्रम को सुंदर में बखूबी से सजा रहे हैं और किसान भाइयों के लिए जितना देना चाहते हैं वो उससे ज़्यादा देने के लिए तत्पर है, तो उनको पुनः स्वागत करते हैं सर। और कौन सा स्कीम है?
3: और सर एक सबसे बड़ा स्कीम है खेती में काम आने वाले कृषि यंत्र हो गए, जैसे रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, थ्रेसर हो गया, ये सारे जो है कृषि यंत्र है उन पे भी है जो सब्सिडी मिलती है। इसके अंतर्गत कृषि यंत्र में सर है जो एक तो ट्रैक्टर, पानी का टैंकर और एक साथ ट्रॉली है, ये इनमें सर सब्सिडी नहीं मिलती है।
2: अच्छा,
3: इनमें सब्सिडी तो नहीं मिलती है, बाकी जितने भी उपकरण हैं उनमें सब में सब्सिडी मिलती है आपको। और जिसमें STSC को है और लघु सीमांत किसान है उनको 50% और जनरल को है 40% है, जो उसका टोटल कॉस्ट का है वो इतना है जो सब्सिडी मिलती है।
2: सर इसमें ग्रामवासियों की तरफ से और खासकर किसान भाइयों की तरफ से जैसे आपने सब्सिडी बताई इंस्ट्रूमेंट लेने में, जो कृषि उपकरण ट्रैक्टर वगैरह छोड़ के और बाकी जो चीज़, और क्या रह गया जो इसमें आप सब्सिडी देते हैं?
3: इसमें सर देखो, इसमें है डिस्क प्लाव है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, ट्रैक्टर ऑपरेटर रीपर है, रिज फेरो प्लांटर है, मल्टी क्रॉप प्लांटर है, चीजल प्लाव है, इतने सारे सर ये उपकरण हैं जिसमें ये जो सब्सिडी अवेलेबल है।
2: कितना परसेंट उसमें सब्सिडी मिलता है?
3: वो ST और SC के लिए 50 और अदर के लिए 40% टोटल कॉस्ट का है। और उसमें थोड़ा SP का डिफरेंस पड़ता है तो ज़्यादा फर्क नहीं आता, HP का पड़ता है तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 40-50 तो है ही है, ये इतनी सब्सिडी तो मिलती है।
2: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी इसका फायदा भी ले।

0: पशुपालन विभाग से है, लेकिन इसमें सर ये मेरे ध्यान में जहाँ तक इन पशुओं के भी बीमा होता है, तो बीमा होता है तो बीमा तो हर इंसान भी करवाता है, तो पशुओं का भी करवाना चाहिए। तो पशुओं का बीमा करवा अगर ऐसी दुर्घटना बाय चांस हो जाती है तो उससे सबसे पहले पशुपालन विभाग से संपर्क करके और उसके बारे में उनको बताना आवश्यक है।
1: चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, और कौन सा स्कीम सर? जो
0: सर ये स्कीम तो लगभग पूरी हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ ऐसे इंटेंसिव स्कीम है, जैसे छोटी छोटी स्कीम है, वैसे मिनी किट वितरण से
1: जी,
0: जो इसमें क्या है गवर्नमेंट मिनी किट वितरण करती है किसानों को 10% टोकन राशि रुपये लेके, और अभी सरसों के जैसे मिनी किट आए हुए हैं तो उसमें हम 2 किलो सरसों है वो 13 रुपये में हम 13 रुपये टोकन राशि लेके केवल महिला कृषकों के नाम से हम उनको देते हैं
1: जी।
0: ये है मिनी किट। और दूसरा सर ये है अपने प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, स्प्रे वगैरह होते हैं सर, जो दवाई छाटने के होते हैं ना सर स्प्रे, उनमें भी सर सब्सिडी मिलती है। तो बैटरी ऑपरेटर जो है प्लांट इक्विपमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, उसमें 1500 रुपये तक सब्सिडी है। आज हम खुद लेके भी आए हैं, किसान के लिए बोला है, इसमें अपन को पहले 3000 रुपये भरने पड़ेंगे और 1500 रुपये वापस सब्सिडी के रूप में खाते में जमा होंगे। और एक दूसरा होता है जो केवल हाथ से चलाते हैं दवाई छाटने वाला, उसमें 750 रुपये तक सब्सिडी मिलती है।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएं और किसानों का हित के लिए हम सब तत्पर हैं, और रेडियो मधुबन एक मंच देता है जिस मंच का माध्यम से किसान का समस्या सुनते भी है, और आज समस्या को समाधान करने के लिए रेडियो मधुबन का मंच का माध्यम से राकेश सर ने पूरा डिटेल जितना उनका पास है, सरकार का जो गाइडलाइन है दिशा निर्देश को लेकर जो सब्सिडी से लेकर सब चीज़ रखें, बहुत अच्छा लगा इस तरह कार्यक्रम में सुंदर रूप में सजाने के लिए। राकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और समय मिलेगा तो कभी पुनः उनसे मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे, और किसान भाइयों के लिए जितना जानकारी समय प्रति समय आपके पास पहुंचता रहेगा, ये हमारा सुभावना है। सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे?
0: किसानों के लिए कहना चाहता हूं कि आप कृषि विभाग में जितनी मैंने स्कीम्स बताई है और आगे भी कैंप हैं उनमें आप अगर ये सुनते हो तो हर जगह आपको आवेदन तो एक बार करना ही है, हर स्कीम में भले लो या मत लो, लेकिन आवेदन करोगे तो आपको जानकारी भी मिलेगी और उसके बारे में उससे जो फ़ायदे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होगी। धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे लिए पहला अवसर है कि मेरी जो बात है, जो मतलब मैं सोच रहा था पहले कि कहीं मेरी बात भी ऐसे मैंने YouTube पे ऐसे डालूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ रेडियो मधुबन को कि जो मेरी बात है किसानों तक पहुँचाएंगे आप। धन्यवाद सर।
1: हाँ तो ट्रायल सर था, हमेशा आपका साथ हम रहेंगे, और जितना आप डोर टू डोर देते थे, लेकिन कभी भी मौका मिलेगा तो आपसे संपर्क करके उनका हित में, किसानों का हित में जरूर संपर्क रखेंगे
0: जी।
1: जिसका चलते हमारा किसानों को जल्दी फायदा मिले, और जो भी समस्या है कभी कभी लाइव में अभी आप आ सकते हैं, जिसका चलते डायरेक्ट आप किसान से बात कर सकते हैं, जिसका चलते आपको भी लगेगा चलो आज मेरा जो मंशा जो सपना था आज हमारा कास्कर भाइयों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो बहुत खुशी लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तरह कार्यक्रम में सजाने के लिए।
0: थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद सर।
1: तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। हमारा श्रोता मित्र खासकर कास्कर भाई लोग इसका जरूर फायदा लें, कोई भी समझ में दिक्कत होता है तो नज़दीक आपका लोकल जो कृषि अधिकारी है बा कृषि पर्यवेक्षक है तो उनसे संपर्क करके इसका जानकारी लीजिए जरूर। प्रशासन आपका साथ है, कृषि विभाग आपका साथ है, और रेडियो मधुबन आपका साथ है। सभी को नाम का साथ सुनने वाले सुनाने वाले को धन्यवाद, आभार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बाजू

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: बनाते रहूं।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। कितना खूबसूरत है ना दोस्तों, अगर हमें ये फॉर्मूला पता चल जाए हमारे जीवन को कैसे जीना है, और ये भी पता चल जाए कि हम जो जीवन जी रहे हैं इसी को जीना कहते हैं, फिर जिंदगी में क्या मुड़ के देखना है दोस्तों। ऐसे कुछ फॉर्मूलाज के साथ आज हमारे साथ है आदरणीय राजयोगिनी उर्मिला दीदी जी। उर्मिला दीदी जी ब्रह्म कुमारी मुख्यालय में एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है। जैसे हम राजयोग की बातचीत कर रहे हैं, एक साधना तपस्या के द्वारा अपनी जीवन को निखारने का जो साधन है वो राजयोग मेडिटेशन है। पिछले 4 दशकों से आप इस राजयोग की अभ्यास कर रहे हैं और उससे उन्होंने अपने जीवन में जो परिवर्तन को देखा है या अपनी जीवन को जीने की कला को उन्होंने सीखा है आज हमारे साथ शेयर करेंगे। कार्यक्रम जीना इसी का नाम है। दोस्तों हम स्वागत करते हैं आदरणीय उर्मिला दीदी जी को आज के इस कार्यक्रम में रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। नमस्ते दीदी जी।
1: नमस्ते जी।
0: दीदी हम सबसे पहले संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो लौकिक जीवन है, आपने कहाँ पे जन्म लिया, आपका लौकिक परिवार और कहाँ पर थे, आपने क्या पढ़ाई किया, ये सारी चीजें।
1: ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ। उस समय उस गांव की आबादी जहां तक मेरा ख्याल है 2000 भी बड़ी मुश्किल से रही होगी। एक प्राइमरी स्कूल था, बस गाड़ी किसी के यहाँ होती नहीं थी। अगर गांव में भूले भटके गाड़ी आ भी जाती थी तो बच्चे झूम जाते थे। ये गांव मेरे दादाजी का गांव था और इसमें केवल मेरा जन्म हुआ था। इससे पहले मेरे माता पिता असम में तिनसुकिया में रहते थे और हम 4 भाई बहनों में से मैं सबसे छोटी हूँ। तो बड़े 3 भाई बहनों का जन्म वहीं बाहर हुआ। मुझे लेने ही वो इस गांव में आए थे। तिनसुकिया में पानी में थोड़ा सा पेट्रोलियम का अंश है, उसके कारण पिताजी को शारीरिक तकलीफ हुई तो वो एक गाँव के स्वच्छ वातावरण के हिसाब से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। मेरा जब जन्म हुआ तो मुझे हमारे आंगन में एक चांदी का सिक्का मिला था खेलते हुए। कहते हैं बच्चे को चांदी का सिक्का मिले तो वो बहुत भाग्यशाली होता है। तो माता पिता ने मुझे उसी भाव से देखना शुरू किया कि ये घर में लक्ष्मी आई है। मेरे जन्म से पहले मेरी माँ ने 9 महीने अटूट भक्ति की थी कि मेरे घर में कोई अवतार जन्मे, कोई देवी जन्मे, कोई देवता जन्मे। और जब मैं जन्मी तो घर का माहौल बदला, पिताजी की आमदनी बढ़ी और भी बहुत सारे शुभ संकेत घर के लोगों को मिलने लगे। तो मुझे उसी प्रकार की ट्रीटमेंट मिली कि ये सबसे अधिक भाग्यशाली बच्चा है। सबसे छोटी थी, बहुत अधिक प्यार मिला, अनलिमिटेड प्यार मिला, अनएक्सपेक्टेड प्रेम मिला और वो प्रेम सबसे अधिक हमारे पिताजी की तरफ से मिला। आप यूँ समझिए कि वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रहते थे। खाना पीना सोना, बाहर जाते थे तो भी मुझ छोटी सी को साथ ले जाते थे और अगर मेरे बिना जाते थे तो उन्हें मेरी याद बहुत आती। तो इतने अधिक प्रेम के कारण आप यूँ समझिए कि घर की मैं लीडर बन गई।
0: जी, लाडली।
1: लाडली, मेरे मुँह से जो शब्द निकल जाए वो पूरा होगा ही होगा हर हाल में।
0: अच्छा।
1: और बड़े भाई बहन मुझे कुछ भी नहीं कहते, वो भी मेरी आज्ञा का पालन करते। तो एक कन्या को जब आप इस तरह से पालेंगे तो उसमें कन्या वाले संस्कार तो रहेंगे नहीं। मतलब किसी की बात मानना, किसी के अंडर चलना, वो जो लीडरशिप का संस्कार था। माँ को भी मैं बहुत प्रिय थी, काम को कभी छुआ नहीं। काम क्या चीज होती है, अगर कभी मुझे एक छोटा सा काम करते हमारे पिताजी ने देख लिया तो वो दौड़े आते थे, मेरी बेटी से काम क्यों करवा रहे हो।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो कभी जिंदगी में घर का काम नहीं किया। मुझे थाली हाथ में मिलती थी, झूठी थाली मेरी उठा ली जाती थी, कपड़े धुल के मिलते थे।
0: तो ऐसे में कभी आपकी भाई बहनों के बीच नोकझोंक या कुछ होता था दीदी?
1: भाई बहनों के बीच अगर नोकझोंक हो भी गई तो पिताजी को रिपोर्ट जाती थी। मैं ही बताती थी कि आज इसने मेरी गेंद ले ली।
0: अच्छा।
1: और फिर पिताजी आते थे पूरा धर्मराज का रूप धारण करके कि मेरी बेटी के हाथ से गेंद किसने ली।
0: जी।
1: इसके पीछे बहन जी मुझे थोड़ी सी बैकग्राउंड ये समझ में आती है कि हमारे पिताजी का अपनी बहनों से बहुत प्रेम और उनकी एक बहन की अनटाइमली डेथ हुई
0: जी।
1: उसका उनको शौक लगा तो उनके मन में ये था कि मैं अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से पालू। मेरी जो बड़ी बहन है वो भी ज्ञान में है
0: जी,
1: लेकिन उसके साथ उनका इतना छोटे बच्चे के साथ थोड़ा अधिक होता है ना
0: जी,
1: तो वो थोड़ी चुप और शर्मीली टाइप थी और मैं उसके बिल्कुल ओपोजिट थी कि अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसकी पिटाई कर दो
0: जी
1: और उसकी शिकायत कर दो और हल्ला मचा दो, इस प्रकार की नेचर की थी
0: जी।
1: तो इस तरह से मेरा बचपन बीता, लेकिन मैं पढ़ाई में इतनी अधिक ब्रिलियंट थी कि मेरा टीचर बोर्ड पे कुछ लिखे उससे पहले मैं उस सेंटेंस को पूरा कर देती थी।
0: अच्छा।
1: तो टीचर घर में आके जब मेरे पिताजी को ये बात बताते थे बहुत पहली क्लास में, तो मेरे पिताजी का ना जिसको कहते हैं छाती फूल जाती थी और वो मुझे कभी बेटी नहीं मानते थे, बेटा मानते थे। एक बार हमारे स्कूल में एक इंस्पेक्शन वाला आया प्राइमरी स्कूल में
0: जी,
1: तो उसने कहा कोई हिंदी की बुक पढ़ के सुनाए, तो मैंने पहली क्लास में हिंदी की बुक ऐसी पढ़ी थी जैसे सुपर फास्ट ट्रेन चल रही
0: जी।
1: तो उसने हैरान होकर के देखा, छोटा सा गांव और छोटा सा प्राइमरी स्कूल और उसमें एक ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा। फिर मेरे टीचर क्या करते थे कि पांचवी क्लास में अगर किसी बच्चे को हिंदी नहीं पढ़ने आती तो मुझे पहली क्लास से उठा के पांचवी में ले जाते थे, अब यहाँ तुम पढ़ तो इनको शर्म आएगी
0: जी।
1: तो मुझे वहाँ भी मॉनिटर की तरह से पांचवी क्लास में डील किया जाता था। तो जो मेरे भाई के फ्रेंड्स थे या बाकी जो बच्चे थे उनकी भी मैं लीडर बन गई क्योंकि टीचर इतना मुझे आगे रखते बढ़ाते थे। हाँ, तो डर क्या होता है, झुकना किसी के आगे क्या होता है, वो मैंने जीवन में उस समय कभी सीखा ही नहीं। हर बात में गीत गाना है कि डांस करना है कि कोई और भी दौड़ लगानी है कि पहाड़ पे चढ़ना है या किसी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो मैं सबसे आगे मिलती थी। घर में मुझे कोई काम नहीं था,
0: रोक टोक भी नहीं,
1: कोई काम रोक टोक भी नहीं, सबको रोक टोक थी, भाइयों को बहनों को, मुझे रोक के कोई तो मैं मानती नहीं थी। हमारे पिताजी ऐसे रोकते थे मैं हाथों के नीचे से निकल के भाग जाती थी।
0: So, दीदी इतनी लाड़ प्यार और पढ़ाई में अव्वल रहना ये सभी चीजों के बीच में आप धार्मिक भी थे?
1: हाँ,
0: या परिवार भी धार्मिक थे?
1: अब मैं आपको ये भी बात बताती हूँ, मेरी माँ जो थी ना वो अव्वल दर्जे की भक्त थी। मतलब मंगलवार को व्रत करना है, घर की धुलाई करनी है, भगवान को भोग लगाना है, कोई झूठे हाथ ना लगा दे उसका बहुत ध्यान रखना है और सिवाय भगवान के घर में कोई बात नहीं करनी। पढ़ाई की बात तो करनी है, इसके अलावा संसार की बात, पड़ोसी की बात, इधर की बात, उधर की बात, सहेलियों की बात, वो नहीं करनी है। मंगलवार को मेरी फ्रेंड्स को वो बुलाती थी और भक्ति के हम भजन गाते थे हमारे आंगन में बैठ के, फिर माँ उनको प्रसाद देती थी। और रोज शाम को नियम था जब तक माँ भक्ति की कहानी ना सुनाए तब तक मैं तो खास सोती नहीं।
0: अच्छा, आपको भी रुचि थी?
1: बहुत ज्यादा रुचि थी मुझे, वो वाली कहानी सुना दो, वो वाली कहानी सुना दो, वो वाली कहानी सुना दो। फिर वो रिपीट होती रहती थी, ध्रुव की आज सुनाई, प्रहलाद की सुनाई, रुक्मणी ने कैसे भगवान का वरण किया वो सुनाई, सीता स्वयंवर कैसे हुआ वो सुनाई, और फिर वो रिपीट हो जाती थी। लेकिन सुननी जरूर है। और मैं किताबें पढ़ने की इतनी शौकीन थी क्योंकि हमारी शॉप थी, मेरे पिताजी शॉप की।
0: तो इतनी सारी जब भक्ति की कहानियां सुनना और भक्ति में इतना विश्वास रखने वाले, अध्यात्म की ओर कैसे मुड़े हैं, संस्था के परिचय में कैसे?
1: हाँ, वो भी मेरी जो गुरु है वो मेरी माँ ही है। 76 में हमारे घर में हमारी माँ की एक बहन आई, मैं 6th क्लास में थी उस समय। तो जो मेरी माँ की बहन थी उसकी भी थोड़ी सी स्टोरी सुना दूं। वो केवल 5 क्लास पढ़ी थी, मेरी माँ तो एक भी क्लास नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो घर में रह करके हिंदी पढ़ना सीखी थी। जो मेरी नानी का परिवार था वो टू मच धार्मिक था, सारे तीर्थ करना, तीर्थों पे बड़े बड़े सोने चांदी के छत्र चढ़ाना, ब्राह्मणों को दान देना वगैरह वगैरह, मंदिर बनवाना उनकी थी। तो हमारी मौसी जो थी उसकी शादी हुई एक MBBS डॉक्टर के साथ असम में, फैमिली तो वहीं पे था ना। अब मौसी भी धार्मिक संस्कारों के, घूंघट निकाले, ज्यादा बोले नहीं, और MBBS डॉक्टर जो था उसको चाहिए थी मॉडर्न पत्नी। तो इनके संस्कार आपस में बिल्कुल नहीं मिले। एक बेटा हुआ और उसके बाद वो लंदन चला, कुछ नहीं बताया। इधर ये लोग इंतजार करते रहे, और वो जमाना ऐसा था कि लोग तलाक वलाक नहीं लेते थे, केस वेस नहीं करते थे। 37 में मेरी माँ का जन्म है, तो ये 50 के अराउंड की बात होगी, 55 के भी भारत आजाद हुआ था, ये सब कुछ भी नहीं होता था। तो बस मौसी पियर चली गई और मामा के साथ रहने लगी, और जो हमारा भाई था मतलब मौसी का बेटा था, उसको पिलानी में स्कूल में उसी ने डाल दिया हॉस्टल में, और लंदन से सीधा उसका खर्चा वहां।
0: अच्छा।
1: मौसी से उसकी नहीं बनती थी, पर उस बच्चे की पूरी पालना वो करता।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो मौसी ठीक है, आराम से रह रही थी, नो प्रॉब्लम। पर इसी बीच क्या हुआ कि साकार बाबा 69 में गए ना, तो आप यूं समझिए उससे 2-3 साल पहले कलकत्ता की बहन थी जो बाद में तिनसुकिया की टीचर बनी, क्या नाम था उनका, सत्या बहन, सत्या बहन बाबा से मिलने आई थी,
0: ब्रह्मा बाबा से,
1: और वो गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाती थी, तो बाबा उसको गोलगप्पे वाली बच्ची बोलते, तो वो बाबा के पास गोलगप्पे बना करके लेके गई। तो बाबा ने कहा बच्ची मुझे आप जैसी एक दर्जन माताएं चाहिए। वो मैरिड थी, दो बेटियां थी, फिर भी इतनी समर्पित बुद्धि थी दोनों पति पत्नी, बेटियों ने तो शायद बाद में शादी की होगी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो बाबा की बात को गांठ बांध ली, वो गई कलकत्ता, और वहां टिबरेवाल धर्मशाला में उन्होंने प्रदर्शनी लगाई, और उसमें मेरी नानी आई।
0: अच्छा।
1: नानी मतलब माँ की बुआ, सगी नानी तो तिनसुकिया में थी
0: जी,
1: ये माँ की बुआ, और माँ की बुआ का बेटा छोटा सा 5th या 6th क्लास में, रमेश उसका नाम था, स्कूल से आते हुए उसने टिबरेवाल धर्मशाला में वो प्रदर्शनी के चित्र देखे, घर गया और माँ का पल्ला खींचा कि तेरे को इतनी अच्छी चीज दिखा के लाता हूँ, चल चल। तो नानी गई, नानी भी बहुत भक्ति करती थी, टू मच भक्ति थी इनके घरों में। तो नानी जैसे ही प्रदर्शनी देखी, नानी ज्ञान में आ गए, अब ये माँ बेटा दोनों ज्ञान में, और बाकी पूरा परिवार एंटी, मतलब नाना और इसका बड़ा बेटा और इसकी बेटी, पूरे एंटी। अब ये स्टूडेंट बने दादी निर्मल शांता, और मेरी जो नानी थी जबरदस्त भाषण करती थी और ज्ञान के ऐसे पॉइंट सुनाती थी, तो दादी निर्मल शांता ने उसका नाम रखा था वकील। रुक्मणी बहन हमारे पूरे फैमिली को जान
0: जी।
1: तो उसके मन में एक विचार आया, बाबा कहते थे ना ज्ञान सुनाओ, ज्ञान सुनाए बिना नाश्ता नहीं करो, तो नौकर को ज्ञान सुना दिया, छिप छिप के बहुत दान करती थी, बर्तन उठा के दे दिए, कपड़े उठा के दे दिए, सोना उठा के दे, ऐसे बहुत दान करती थी छिप छिप के। तो उसने सोचा कि मेरे भाई की बेटी घर में खाली बैठी, पति विदेश में है, बेटा हॉस्टल में, उसको कोई काम थोड़े, उसको बुला ले। तो मौसी को कलकत्ता बुलाया, उसको ज्ञान सिखाया, और निर्मल शांता दादी के पास उसको समर्पित करा।
0: अच्छा।
1: 70 के आसपास बाबा के जाने के बाद वो वहां सेंटर पे रहने लगे, गुवाहाटी की शीला बहन ये सब लोग उनको जानते थे, उनके साथ ही रही है। तो बाद में उसका नाम था निर्मला बहन, बाद में क्या हुआ कि उसको थोड़ी सी हाथों में खुजली हुई वहां रहते रहे, तो डॉक्टरों ने कहा कि कलकत्ता की हवा अच्छी नहीं है, पोल्यूशन है, तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ पोल्यूशन ना। तो उसको मेरी माँ याद आई, क्योंकि हम लोग भी तिनसुकिया छोड़ के गाँव में रह रहे, तो वो मेरी माँ के पास आ और अपने साथ 2 मुरली लेके आए, और यहाँ मेरी माँ तो भक्ति में पागल थी, तो उसने मेरी माँ को कहा बहन तू तो भक्ति करती रह जाएगी, भगवान तो धरती पे आ गया। मेरी माँ ने कहा कहाँ आ गया, बोले माउंट आबू में। तो कैसे आता है, बोली देखो दिल्ली में उसका रथ रहता है और वो रथ माउंट आबू जाता है, और उसमें भगवान उतर के आता है और उसके मुख से ना ये मुरली बोलता है, ये देखिए मुरली। तो वो मुरली मेरी माँ को दिखाई, मेरी माँ ने मुरली पढ़ी, मेरी माँ को एकदम फिट बैठ कर कि यही है। और वो एक हफ्ता रही, पूरी ट्रीटमेंट कराई, और ट्रीटमेंट तो क्या कराई, बस सुबह घूमने जाती थी मेरी उंगली पकड़ के, और मुझे पूरे रास्ते सुनाती थी देख भगवान ना ऊपर रहता है, वो ज्योति बिंदु है और वो सफेद सफेद, तो तुम अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाकर के उसको देखो। 76 में उसने मुझे ये बात सुनाई थी सड़क पे चल, वो सड़क भी मुझे याद है और ये बात भी मुझे याद है,
0: कोलकाता में
1: ना ना हमारे पास आ गई थी ना वो
0: जी,
1: हरियाणा में। तो 6-7 दिन रह के वो तो चली गई, और हमारी माता जी को तो कारून का खजाना मिल गया, 2 मुरली मिल गई। तो उस जमाने की जो मुरली थी ना वो बड़े साइज की होती थी, और कागज आज जैसा बढ़िया नहीं होता, थोड़ा पीला पीला होता, बार बार खोलो बार बार बंद करो तो वो बीच में से क्रैक हो जाती थी,
0: तो प्रिंट निकल जाता।
1: हाँ, 2 पन्ने हो जाते थे ऐसे। तो 2 मुरलियां, एक दिन एक पढ़ती है, दूसरे दिन दूसरी पढ़ती है, सुबह उठती है 4 बजे, बाल खोल लेती है, नहाती है, और जब मुरली पढ़ती है तो चेहरे पे ऐसी रौनक आ जाती है जैसे धनी कारून का खजाना या सतयुग की बादशाही मिल गई है। और हम बच्चे उसी कमरे में होते थे, माँ के दाएं बाएं। हम रजाई में से मुंह निकाल के देखते, माँ का मुंह देख कितना मुस्कुरा। एक कागज के टुकड़े में ऐसा क्या है? फिर वो जब रख देती थी मुरली को, तो हम दिन में ऐसे देखते थे, ये माँ की मुरली है, हाथ मत लगाना, गंदे हाथ मत लगाना। वो दूर से फिर ऐसे बोलती थी तो फिर हम लोग चौकन्ने हो जाते थे
0: जी।
1: तो माँ ने एक साल दो मुरली पढ़ी और एक साल बाद वो फिर आई तो साप्ताहिक पाठ्यक्रम ले आई। और मेरी माँ को अब तो आप समझो कि दुनिया की दौलत मिल गई। उसने साप्ताहिक पाठ्यक्रम को फटाफट याद कर लिया और याद करके वो कोर्स कराने लगी लोग। मतलब हमारे घर में कोई भी आए, शॉप होने के कारण पूरा विलेज एक ही शॉप थी वो।
0: फिर आपको कब निश्चय बैठ गया कि ये परमात्मा का ज्ञान
1: ये है? उसको देख देख के ही तो उसी के तो चरित्र सुना रही हूँ
0: जी।
1: मेरी गुरु वो, मेरी मार्गदर्शक वो, मुझे जीवन में त्याग सिखाने वाली और मेरे जीवन में मुझे वैराग्य सिखाने वाली। ये ज्ञान उसने मुझे दिया नहीं, मैंने उसको देखा। जो चीज देखी जाती है वो फिट बैठती है। वो ज्ञान कभी कभार सुनाती थी तो हम सुनते थोड़े थे, वो तो हम भाग जाते थे, हमको पढ़ना है, हमको खेलना है, हमारे फ्रेंड्स आए हैं। लेकिन उसको देखा कि इसका जीवन बदल गया। मतलब खुशी इतनी, नहीं तो पहले तनाव तो होता है ना, चार बच्चों को स्कूल भेजो, हम चारों ही स्कूल जाने वाले सुबह सुबह। अच्छा गांव में फैसिलिटीज भी कम होती हैं, आप समझ सकते हो
0: जी।
1: तो एक तो खुशी, दूसरा उसको एक बीमारी थी जिसके कारण वो इस गांव से एक शहर में जाती थी और पुड़िया लेके आती थी वैद्य जी। तो जब इस ज्ञान में आ गई, बीच बीच में कपड़े धोएगी, बीच में उठ के जाके मेडिटेशन करी। बाबा कहता है बीच में बाबा को याद करो, फिर काम करो, फिर आके कपड़े धोएगी, बर्तन मांजेगी, बीच में बाबा को याद करेगी, फिर बर्तन मांजेगी। तो हम उसको देखते थे तो उसकी पुड़िया बंद हो गई।
0: अच्छा,
1: बिल्कुल सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी तो सीढ़ी चढ़ने लगी, दौड़ नहीं सकती थी वो दौड़ने लगी, वजन नहीं उठा सकती थी वो वजन उठाने लगी, किसी के आगे बोल नहीं सकती थी तो वो भाषण करने लगी, मुरली पढ़ के अंग्रेजी बोलने लगी। और लोग हमारे घर आते थे तो कहते थे, सेठानी तो तू दोबारा जवान हो गई, मतलब हेल्थ अच्छी हो गई, चेहरे पे रौनक आ गई। तो हम कहते थे, माता जी आपकी बीमारी कहाँ गई? कहते थे शिव बाबा ले गए। अब शिव बाबा तो दिखता नहीं, कौन ले गया, कुछ भी तो नहीं दिखता इस ज्ञान में। फिर ज्ञानामृत की मेंबर बनी तो हम लोग ज्ञानामृत पढ़ते थे, जगदीश भाई का आर्टिकल पढ़ते थे, तो हमको एक एक दिखाती थी, ब्रह्मा कुमारी ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, रावण का चित्र दिखाती थी वगैरह वगैरह सब। तो आप समझ लीजिए 76 से लेकर के और 78 तक थोड़ा गुप्त मामला रहा। फिर वो माउंट आबू आई, वही लेके आई उसे माउंट आबू, बाबा से मिली, माउंट आबू आई, फिर तो नशा आसमान में चढ़ गया, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। और किसी को अब काम नहीं कहती थी, पहले हम बच्चों को कहती थी पर अब खुद करती थी सारे काम, तो ये भी एक परिवर्तन। फिर मैंने 5th क्लास में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको टॉप किया, मुझे 108 रुपया छात्रवृत्ति मिली। और अब आप समझ लो, अब तो मेरा दर्जा बहुत ऊंचा हो गया, तो पूरे गांव में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आसपास के लोग भी जानने लगे थे। तो मेरी माँ के मन में एक विचार आया, और मुरली में बाबा कन्याओं की बहुत महिमा करता है, अगर मेरी ये बेटी ज्ञान में चल पड़ी तो ये बाबा की बहुत सेवा कर। तो पर ये चले कैसे, क्योंकि वो ज्ञान सुनाती थी हम सुनते नहीं, और कोई कोई उससे सवाल पूछते थे तो वो बेचारी हमारे, मान लो हमने डार्विन की थ्योरी पूछ ली उससे, आप सोचो स्कूल हमारी माँ क्या जवाब देगी। तो उसने एक तरकीब निकाली, मैं स्कूल जाती थी तो बेटा मेरी दृष्टि लेके जा, पेपर अच्छा होगा, मैं उसकी दृष्टि लेती थी, उसकी आंखें बदली बदली दिखती थी मुझे, सारे रास्ते उसकी आंखें ही दिखती। हमारे लिए तो हमारी माँ ही रोल मॉडल थी, क्योंकि आसपास सेंटर ही नहीं था, 60 किलोमीटर पे एक सेंटर था जहाँ हमारी माँ मुरली लेने जाती थी, चार बसें बदल तो वही और कोई ब्रह्मा कुमारी हमारे गांव में आ जाए वो तो होना ही नहीं था, और हम तो अभी वहीं पढ़ रहे थे, आसपास ही शहर में हम भी नहीं गए, तो हमारी माँ ही हमारे लिए रोल मॉडल थी। तो उसने तरीका अपनाया, दो तीन तरीके अपनाए मुझे, मेरे ऊपर जो उसने मेहनत की है शायद मैं कई जन्मों तक भी उसका ऋण ना उतार पाऊँ, इतनी मेहनत की है उसने मेरे ऊपर। उसने रात दिन एक कर दी कि मेरी, क्योंकि जो मेरी बड़ी बहन थी वो बोलती नहीं थी बाप के आगे तो बिल्कुल नहीं, उसने कहा इसको ब्रह्मा कुमारी बनाऊंगी, ये बाप के आगे बोलेगी नहीं, वो शादी के लिए बोलेगा, उसने बोलेगी, और अगर इसको बना दिया तो ये बाप के कान खींच लेगी। मैं उसकी गोद में बैठ के उसके कान खींच लेती थी, बाल खींच लेती थी, सब काम कर लेती थी जो मार पिटाई बाप की, और वो चुपचाप सहन कर लेता था, बच्चा होता है ना। घोड़ा बन जाता था, मैं उसके ऊपर बैठ जाती थी, ये चीज ला के दो, मुझे दुकान में ला के खड़ा कर देता था, जिस कपड़े को हाथ लगाएगी ना वही से, तो वो दुकान वाले भी उनके दोस्त होते थे। अब छोटे बच्चे को क्या पता घूमते घूमते साड़ी को हाथ लगा दी, नहीं बेटा दोबारा राउंड लगा, फिर कहीं जाके शर्ट को हाथ लगाया तो वही शर्ट सिलवा दी। हम पिताजी ऐसे काम करते। तो माँ ने देखा कि अगर ये ज्ञान में चल पड़ी तो इसको कोई रोकने वाला नहीं। हमारे पिताजी ज्ञान के बिल्कुल ओपोजिट, मतलब माँ अगर रात है तो बाप दिन है, और माँ दिन है तो बाप रात। माँ भक्ति करती है, ज्ञान में आ गई, भोली भाली है, और बाप तेज तर्रार है, पॉलिटिक्स वाला आदमी है, लोगों के बीच बैठता है, उसको अपने बच्चे अच्छे बनाने हैं, पढ़ाने हैं, दुनिया में नाम चाहिए उसको, ओपोजिट संस्कार। तो बाप माँ को कहता है कि देखो तुम ज्ञान में चली सो चली, मेरे बच्चों को ज्ञान मत सिखाना, और माँ को मेरे ऊपर टेंशन है। दोनों बड़े भाई हैं, वो तो माँ का इतना नहीं, बाप के साथ बिजनेस में धंधे में है, मैं ही हूँ ना फ्री पल्ला पकड़ के घूमने वाली। तो माँ ने एक तरीका तो ये अपनाया कि वो जब यहाँ बाबा से मिलने आई 78 में, मैं 14 साल, तो उसने बाबा को बोला, बाबा मेरी एक बेटी पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, भाषण बहुत अच्छा करती है, किसी से डरती नहीं है, मैं उसे आपको अर्पित करके जा रही। तो बाबा हाथ में हाथ लेके मिलते, और मेरी जो मौसी थी ना उससे ज्यादा मेरी माँ से बात करते थे, क्योंकि माँ की लगन बड़ी जबरदस्त। उसने अपनी बीमारी ठीक कर ली, स्वभाव बदल लिया, बहुत उसमें परिवर्तन आया, योग योग रात दिन योग, रात को बैठे देखो योगी कर रहा है। तो बाबा के हाथ में हाथ लेके बाबा को बोल दी, बाबा तो मुस्कुराते हैं, और वहां जाके मुझे कहती है कि मैं आपका दान। मैंने कहा कहाँ दान करके आई? बोला भगवान। हमने कहा भगवान धरती पे है क्या जो माँ भगवान को दान करके आई? हमारी माँ भोली भाली है, तो पता नहीं कोई होगा उसको माँ ने कह दिया होगा। हमने कहा माता जी आजकल बच्चे माँ बाप की बात मानते नहीं है, मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। बोली मैं जिसको कह के आई हूँ ना वो बड़ा पावरफुल है, कुछ छोड़ेगा नहीं, लेके ही जाएगा, कौन है कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं। फिर 8th क्लास में बहन जी मैंने हरियाणा टॉप किया, और हरियाणा की मुख्यमंत्री ने मुझे इनाम दिया, और फिर मदर टेरेसा को उसी समय नोबेल पुरस्कार मिला। अखबार में हमने पढ़ा, तो मैंने घर में चर्चा की कि मैं मदर टेरेसा की संस्था में जाऊं, मुझे बच्चों की, बीमारों की, गरीबों की सेवा करनी है। और हमारे पिताजी को ये बात तो जब मैं होश संभाला तब से कहती थी कि जो शादी करते हैं वो महामूर्ख होते वो कहता था बेटा मैंने मूर्खता की, तू मत तो मेरा सपोर्ट।
0: बहुत खूब दीदी, लेकिन अभी वक्त कहता है कि हमें यहाँ पे रुकना होगा। दोस्तों कहानी बहुत रोचक होता जा रहा है, तीन अलग दिशाओं में जाते हुए ये कहानी कहाँ मोड़ लेती है, और आखिर कौन जीतता है, क्या वो परमात्मा को दिया हुआ वचन साबित होता है? तो चलिए अगली कड़ी में हम सुनेंगे आगे की कहानी को। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। जीना इसी का नाम है कार्यक्रम में, इसी समय पर हम फिर मिलेंगे।

0: का। अब ये बात तो कोई घर वालों से पूछे क्योंकि ये एक दूसरे का हाल बेहाल करते ही रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं राठौड़ परिवार की आम सुबह में। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर।
1: अरे इस घर में कोई चाय पिलाएगा या नहीं?
2: आई मासा।
1: अरे चाय मुझे पिलानी है, मेरी साड़ी को नहीं राजकुमारी।
2: हाँ ये लीजिए, एकदम दमदार चाय है।
3: अरे बेटा ऐसा क्या डाल दिया है चाय में?
4: दादी मुझे लगता है कल दमदार डिटर्जेंट पाउडर का एड आ रहा था, कहीं वही तो नहीं डाल दिया मम्मी ने।
5: हे राम।
2: चल शैतान स्कूल के लिए तैयार हो जाके।
4: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
1: शांति, ओ शांति, अरे कोई इसके म्यूजिक को शांत कराओ।
6: शांति शांति।
7: अरे शांति क्यों नाम रखा आपने इसका? मैं तो जा रही हूँ बच्चों का टिफिन बनाने, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे राजकुमारी।
2: अरे चलो उठो बच्चों, स्कूल का टाइम हो गया।
4: नहीं मम्मी थोड़ा और सोना है।
8: 10 मिनट और बस।
2: अरे चलो 8 बज गए, स्कूल बस आने वाली है।
4: अरे 8 बज गए? क्या मम्मी 6 ही तो बजे है।
2: नहा लेना दोनों, सिर्फ बाल्टी और मग हिलाकर बाहर मत आ जाना।
4: ये मम्मी की पुरानी ट्रिक है उठाने की, और हम फिर से बन गए इसके शिकार।
9: हे भगवान ये सब क्या हो रहा है दुनिया में? देखो अपने घर से चोरी करके भाग गया बेटा।
7: अरे हमें तो पता ही है, ये लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ये सब आजकल के चोचले हैं। पढ़ लिख कर दिमाग खराब होता जाता है, फिर ये सब काम करती हैं।
10: कोई भाभी को बताओ कि बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
11: इनको मैं बताती हूँ।
10: अरे दीदी आप रहने दो, आप फेमिनिज्म का झंडा सुबह सुबह बुलंद मत करो।
11: ऐसे कैसे? रुक जरा भाभी जी, खबर ध्यान से तो सुन लीजिए। बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
7: हाँ वही बोल रहे हैं, मतलब आप तो किसी लड़की ने ही करवाया होगा है। छोड़ो हमारे लाडले को स्कूल बस लेने आती होगी, हमको जाना है।
12: अरे भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं? कौन भागा सोसाइटी में जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
13: लो जी खबर पूरी पड़ी भी नहीं और आ गए हमारी पड़ोसी माधुरी जी। इनके कानों में कोई एंटीना लगा है क्या जो खबर को सीधा कैच करता है?
0: आप दिन को रात कह देंगे तो चलेगा, आप प्लेन को रेलवे स्टेशन पर उड़ने को कहेंगे वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने राठौड़ परिवार की सुबह को शांत कह दिया। सुनिए सुनिए सुनिए अब माधुरी माहेश्वरी जी आगे कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने वाली हैं।
12: भाभी जी आपको तो पता ही है, माधुरी मुंह खोले तो हमेशा मीठा ही बोले, लेकिन ये किसके भागने की बातें हो रही है? पड़ोस वाले शशि की क्या? मुझे तो न उस पर पहले से ही शक था, देखा न कैसे मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती है।
7: अरे नहीं नहीं नहीं माधुरी जी, वो बस खबर छपी है।
14: आपको खबर की क्या जरूरत माधुरी जी, आप तो खुद चलता फिरता न्यूज़पेपर है।
12: हैं? क्या जी?
14: नहीं नहीं मतलब आपसे क्या छिप सकता है, आपको तो सब पता रहता है ना।
11: हाँ कभी कभी तो जो नहीं हुआ वो भी।
15: फ्यूचर प्रेडिक्शन, वाह वाह माधुरी जी आप तो टैलेंटेड हो।
0: अब इस फैमिली में किसके कौन से टैलेंट हैं ये तो आपको जल्दी पता चल जाएंगे, क्योंकि कुछ टैलेंट सामने नजर आते हैं तो कुछ छिपे हुए होते हैं। वैसे छिपे हुए से याद आया, कोई है घर में जो आज बुरी तरह से फंसने वाला है। आइए आपको लिए चलते हैं वहां, जहां कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट।
16: ये वाला ऑर्डर कर लेती हूँ।
17: वाओ ये तो कितना अमेजिंग है, मेरी सिल्वर ड्रेस पर
15: कितना अच्छा लगेगा। ये भी अभी ऑर्डर कर लेती हूँ।
1: ये देखो इस लड़की को, इधर फोन में लगी हुई है। बेटा शांति, तू अब बच्ची नहीं है कि मैं बार बार तुझे समझाती रहूं।
14: अरे छोड़ो ना माँ, क्यों बेचारी को सुबह सुबह डांट रही हो?
1: अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को, खांस रहा है, देखो कोई पानी लाओ।
13: ला रही हूँ मासा।
14: अरे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे।
11: वैसे तो औरतों की आवाज को हमेशा दबाया जाता है, आज भैया की आवाज चली गई।
17: अरे मैंने तो सुबह ही कहा था सीधे हाथ से पानी लेना, हो गया ना सब उल्टा काम।
9: तुम भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। क्या हुआ वीरेंद्र को? डॉक्टर को दिखाते हैं चलो।
0: सुना आपने, यहाँ बात बात पर बात बढ़ तो जाती है, लेकिन चुप्पी पर कैसे बातें बनती हैं, ये देखना होगा। डॉक्टर तो गले का इलाज करेगा, लेकिन अब वीरेंद्र सिंह राठौड़ की आवाज गई तो घर में क्या क्या होगा, आइए सुनते हैं।
9: देखो डॉक्टर ने कहा है वीरेंद्र की आवाज को 2-3 दिन लगेंगे ठीक से वापस आने पे, उसको बस दवाई टाइम से देते रहना है, ठीक है ना?
13: जी मैं समय पे खिला दूंगी। ये सुबह की, ये शाम की, इतनी बापरी सारी गोल गोल गोलियां हैं, इसमें तो मैं ही गोल गोल घूम जाऊंगी।
17: कुछ कहा राजकुमारी?
13: नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी जी।
14: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ,
17: प, अरे ये कह रहा है ऊपर।
16: अरे नहीं नहीं नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं, कुछ ढूंढ रहा होगा, कुछ ऊपर होगा वही ढूंढ रहा होगा।
3: अरे उसको बैठना है।
17: ओ,
13: हा? लेकिन उसे पपीता कहाँ से होता है? अरे कोई और फल चाहिए क्या?
16: पैर में दर्द है क्या?
13: अरे पानी मांग रहे हो, पानी लेकर आओ।
18: अरे पापा से कुछ कहना होगा।
13: अरे पिताजी कहाँ गए?
3: अरे वो मुझे बुला रहा है, क्या बात कर रहे हो? पापा पापा बोल रहा है।
13: पापा गाने वो लेटेस्ट गाना तो नहीं गा रहे? पापा पापा पापा वाला।
3: पापा कहते हैं।
13: हाँ आवाज चली गई और गाने का मन कर रहा है, बताओ।
11: अरे भैया के पैर के ऊपर आपने अपना पैर रख दिया है माधुरी जी।
12: अरे रे माफ करना भाई साहब, माफ करना मुझे, मैं है ना अब चलती हूँ अपने घर। चल माधुरी, नहीं तो तेरी ही न्यूज बन जाएगी।
0: बेचारे वीरेंद्र जी अपने पांव का पा ही बोल पाए। क्या लगता है आपको, इनकी पत्नी मतलब राजकुमारी जी क्या सही दवा देंगी? इनकी आवाज जाने पर और कितने कारनामे होंगे, ये तो अब भगवान ही जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपके लिए होंगे ठहाके ही ठहाके। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
11: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौर परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। हमें सभी से मिलजुल कर और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, न जाने कब बुलावा आ जाए, इसलिए सभी से प्यार से रहना है। और जी हाँ, आपको बहुत ही सुंदर टिप्स देने वाली हूँ कि इस पर बहुत ही सुंदर गहने के ऊपर ही है, लेकिन कौन से गहने को हम आज चमकाएंगे वो आप आशियाना सुनेंगे तो जान जाएंगे। और जी हाँ, आज खुशनुमा जीवन की बात करने वाले हैं और आज बनाएंगे चोरा फली। प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रुके ओ भाई साहब, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, बस सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात। आज आपको बहुत ही सुंदर विचार देने वाली हूँ। वैसे तो आपको सुना चुकी हूँ कि भाई हमें सभी से मिलजुल करके प्रेम से रहना चाहिए, न जाने कब हमारा बुलावा आ जाए और इस दुनिया को छोड़ करके हमें जाना पड़े। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी कि एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। इसी दौरान उनका एक शिष्य जो स्वभाव से क्रोधी था उनके समक्ष था। शिष्य बोला, गुरुजी आप अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं, न तो आप किसी पर क्रोध करते हो न ही किसी को भला बुरा कहते हैं, कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे रहस्य के बारे में अवश्य जानता हूँ। शिष्य विस्मय से भर गया और बोला, वे क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तो गुरुजी बोले, तुम एक हफ्ते में ही मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले, कोई और कहता तो शिष्य को ये बात बुरी और मजाक लगती, लेकिन स्वयं संत तुकाराम जी के मुख से निकली बात को कोई कैसे भला टाल सकता है, काट सकता था। तो शिष्य उदास हो गया और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और अपने स्वभाव से उलट किसी पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, क्रोध नहीं करता। वह अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में बिताने लगा। वह उनके पास भी जाने लगा और प्रेम पूर्वक मिलने लगा। जिनको पहले वो नफरत करता था, दूरी बनाए रखता था, जिनसे उसने कभी अभद्रता भी की थी या गलत व्यवहार भी किया था, वो उनसे माफी मांगता, हंसता बोलता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को हफ्ता पूरा होने को आया। इस पर शिष्य ने सोचा, चलो एक बार आखिरी बार गुरुजी के दर्शन करके आशीर्वाद ले लेना चाहिए। अब समय आ पहुंचा है इस दुनिया को छोड़कर के जाने का। वे गुरु के समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। इसके बाद गुरुजी बोले, ये बताओ कि तुम्हारे पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? शिष्य बोला, नहीं नहीं, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे, तो मैं भला कैसे सबसे नाराज हो सकता हूँ। मैं सबसे प्रेम से मिला, इतना ही नहीं मैंने जिन लोगों का दिल दुखाया था उनसे भी क्षमा मांगी। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, हाँ बस यही तो मेरे लिए ये तो मेरा कहना था भाई, तुम्हारे तुम कहते हो ना कि मेरा व्यवहार अच्छा कैसे है, तो यही रहस्य है कि मैं सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहता हूँ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ, और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम जी ने उसे जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि हमें भी सभी से मिलजुल कर एवं प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। वास्तव में हमारे पास 7 दिन ही तो बचे हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 8वां दिन तो बना ही नहीं। आज से परिवर्तन शुरू करें, और अगर पेंसिल बनकर किसी की खुशियां न लिख सको तो रबर बनकर के किसी का दुख तो मिटा सकते हो ना। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर हम सभी गौर करेंगे। और आइए सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर टिप्स। मैंने आपको कहा कि गहने हैं, बर्तन है, आप चमका सकते हैं चांदी के, ठीक है। भाई दीपावली के काम चल रहे हैं तो ऐसे तो नहीं कि हम सिर्फ तांबा पीतल स्टील के बर्तन ही साफ करेंगे। हमारे मंदिर में मूर्तियां होती है चांदी की, घर में कुछ बर्तन भी होते हैं, ज्वेलरी भी होती है, उनको भी चमकाना पड़ता है ना। तो बहुत ही सुंदर आपको मैं टिप्स दे रही हूँ ताकि आप सोनी के यहाँ जा कर के नहीं चमकाए, अपने घर पर ही चमकाए। बहुत सारी बहनें क्या करती है, जैसे पायल काले पड़ जाते हैं, बिछिया काली पड़ जाती है या बर्तन काले पड़ जाते हैं, तो सोनी की दुकान पर जा कर के उनसे साफ करवाते हैं, इससे चांदी घिस जाती है। पता है आपको, आप करवा करके देखिएगा। बहुत सारी बहनों का फ़ोन आता है, हमारे पायल पतले हो गए, हमारे बर्तन पतले हो गए। तो भाई होंगे ना, थोड़ी बहुत चांदी तो निकाल ही देते होंगे, पतले पड़ जाते हैं इसका मतलब तो चांदी निकल जाती है। तो ऐसा क्यों करना है, अपने घर पर ही हम चमका सकते हैं ताकि हमारे बर्तन न तो पतले पड़े, न हमारे पायल पतले पड़े, ना ही घिसे, नए के नए पायल घिस जाते हैं और हमको क्या लगता है अरे वाह जैसे कि आज ही खरीदे हो, ऐसे हो जाता है। तो क्यों ना हम घर पर ही ये सब कुछ आजमाएं। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप अपने चांदी के बर्तनों और गहनों को चमकदार बनाना चाहते हैं तो उन्हें हेयर कंडीशनर से भी साफ कर सकते हो, ठीक है। हेयर कंडीशनर से भी आप अपने चांदी के बर्तनों और गहनों को साफ कर सकते हो। अगर ये टिप्स नहीं आजमाना चाहते तो दूसरी भी आपको बता रही हूँ कि टूथपेस्ट, सिर्फ इससे दांत ही साफ नहीं होते हैं, इससे फीके पड़ चुके चांदी के बर्तन भी आप चमका सकते हैं। ब्रश से अच्छी तरह घिस सकते हैं, नहीं तो ग्रीन कलर का बर्तन मांजने का जो स्क्रब आता है उससे भी आप अच्छी तरह घिस करके टूथपेस्ट लगा दीजिए और उस कुच्चे से आप अच्छी तरह घिसिए, एकदम चमक उठेंगे। फिर धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह, न तो हमारे बर्तन न हमारे गहने घिसे हैं और जैसे कि आज ही खरीदे हो, ऐसे चमकदार बन जाते हैं। अगर ये भी टिप्स नहीं आजमाना चाहते हो तो मैं और भी सुना रही हूँ आपको। नींबू और सोडा कैसे आप यूज़ करेंगे, अगर देखिए चांदी के बर्तन हो चाहे गहने हो, ठीक है, इसको चमकाने के लिए आप कुछ घंटों के लिए इन्हें नींबू और सोडा के घोल में छोड़ दीजिए, ठीक है, और इसके बाद आप बाहर ला करके अच्छी तरह इसको पोंछ लीजिए तो चांदी के बर्तन चमक उठेंगे। नींबू और सोडा का घोल बना दीजिए, घोल बना करके इसमें बर्तनों को थोड़ी देर, गहने हो चाहे बर्तन हो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें ही इस घोल में। उसके बाद आपको भले धुलाई कर लीजिए, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए, भले पहले थोड़ा सा रगड़िए स्वच्छ कपड़े से, फिर धुलाई करके फिर से पोंछ लीजिए, तो देखिए गहने हमारे चमक उठेंगे। और लास्ट आपको नुस्खा दे रही हूँ कि आप चाहे तो, हम घर में देखिए सर्फ तो यूज़ करते ही हैं, अलग अलग प्रकार के डिटर्जेंट होते हैं, कोई सा भी आप ले लीजिए और इस पानी में इसको डाल करके गर्म करिए, फिर चांदी के बर्तन या गहने इसमें डुबो करके रख दीजिए। कुछ देर डुबो के रखना है, उसके बाद निकाल करके ब्रश से हल्का हल्का रगड़िए, उसके बाद साफ पानी से धो करके पोंछ लीजिए तो भी चांदी के बर्तन हो या गहने हो साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे अच्छे हैं, आप चाहे तो आजमा सकते हो। और भाई ऐसे तो नहीं कि भाई चांदी के बर्तन के लिए हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो हम घर पर ही इस तरह साफ कर सकते हैं, न सोनी के यहाँ जाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्यों हम बैठे बिठाए अपनी चांदी को घिसवाएं। तो ये टिप्स तो आपको दी है। अब मैं आपको बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साधु संत और योगी हैं तब के और हम सभी हैं अब के, साधु संत और योगी ये है तब के और हम सभी है अब के, कैसे? हफ्ते इस प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए पुनः सुनते एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: आज का विषय है कहीं पे निगाहे कहीं पे इशारा, कहीं पे इशारा कहीं पे निगाहे, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। आज हम चलिए इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं, कैसे बेटियों को समझाते थे पहले और कैसे बहुएं समझ जाती थी। आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। नंबर हमारे है 9414151415। हेलो
2: हेलो, जय माता दी, जय श्री हरि।
1: जी जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
2: आपका भी आशियाना प्रोग्राम के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: यदि आप बोलते हो कि जब सुबह का समय खास होता है तो उषा आती है आपके पास।
1: अच्छा,
2: तो वैसे भी सुबह का समय फिर खास हो जाता है।
1: अच्छा, धन्यवाद।
2: और खास में फिर पास तो हो ही जाता है ना
1: जी।
2: और बस हमारे सभी सुनने चाहने वाले मेरे अजीत मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपको भी
1: जी।
2: और टॉपिक तो आप बहुत ही सुंदर लेके आए हो। सबसे पहले तो आपको एक धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने सुविचार भी बहुत ही सुंदर कहा।
1: थैंक यू।
2: क्योंकि किसी के साथ मिलजुल के रहना, क्योंकि ये जिंदगी छोटी है इसलिए
1: जी।
2: तो बहुत ही सुंदर, आपको जितना धन्यवाद बोले जितना कम है। और
1: अरे नहीं, जो हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है।
2: बिल्कुल। और अभी का खुशनुमा जीवन की बात है जो आपने कल के प्रश्न के ऊपर लेके आए हो
1: जी,
2: तो बहुत ही सुंदर है। देखिए, पहले के जमाने में तो चलो बहुओं को दाज भी बोलते थे तो चलता था
1: जी,
2: बेटों के सामने भी बोलते थे तो चलता था, मगर आज के जमाने में मतलब 100 में से 10% तो अभी भी बहू मतलब सिंपल साधारण है। मतलब वो अपने कभी सास ससुर को कुछ मतलब सामने जवाब भी नहीं देंगे
1: जी,
2: मगर 90% कुछ महिलाएं ऐसी है कि आप उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने एक गाना भी बनाया था ना कि आजा आजा सासू माँ दुल्हन मेरे हाथों में।
1: जी जी जी।
2: तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आजकल की बहुओं को आप डायरेक्ट नहीं समझा सकते, नहीं तो घर में हंगामा शुरू हो जाएगा
1: जी।
2: और हंगामा शुरू हो गया ना तो बेटे आजकल क्या है, बेटे भी है ना शादी के बाद बहुओं पत्नियों की ज्यादा सुनते हैं
1: जी जी जी,
2: क्योंकि वो रोटी हाथ में लेती है ना तभी पत्नी की बात चालू हो जाती है
1: जी जी जी जी,
2: क्योंकि उनको भी पता है कि ये खाना खाते खाते तो कहीं नहीं जाएंगे, बात पूरी सुनेंगे
1: जी।
2: तो मतलब बेटियों इस ये कलयुग है, और कलयुग में अगर आप बेटियों को समझाएंगे ना कि बेटा आपको भी ससुराल जाना है, ससुराल में ऐसे रहना है, खर्चे ज्यादा नहीं करने हैं, ऐसे सबका कहना मानना है, वैसे करना है, तो वो इशारा शायद बहुए समझ सकती है
1: जी।
2: और घर का माहौल भी खराब नहीं होगा
1: जी,
2: और मतलब सब ठीक भी हो सकता है
1: जी।
2: वो कहते हैं ना कि देखिए वो जो बुद्धिमान होता है उसको इशारा ही काफी है।
1: बहुत सुंदर।
2: और मूर्ख होते हैं ना उनको तो फिर आप कितना मतलब कहते हैं ना कि वो उनके सामने ढोल पीटने से कोई मतलब नहीं है
1: जी जी। बहुत
2: ग्राम में ढोल पीटोगे तो भी उनके कोई असर नहीं पड़ेगा
1: जी। सुरेश भाई बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है।
2: आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू
1: जी। तो आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है, जरूर आप जवाब दीजिएगा कि साधु संत और योगी है तब के और हम सभी है अब के, कैसे? तो जवाब जरूर दीजिएगा। और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है कि बेटी को समझाते हैं और बहुएं समझ जाती है, तो इस विषय पर भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के विषय में आप जुड़ सकते हो, आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। सुरेश भाई ने कहा है कि देखिए पहले बेटियों को समझाया जाता था और बहुएं समझ जाती थी, और बिल्कुल सही है। आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं, आज भी अगर घर में बेटियां हैं और बहू भी है और बहू कुछ गलत कर रही है तो हमेशा माँ अपनी बेटी को ही कहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि बेटियों को तो माताएं बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा और संस्कार देते हैं। फिर तो वो कहते हैं ना कि कुछ अपने भी संस्कार होते हैं जो अपने ससुराल में जाकर के वो प्रकट करते हैं, बाकी माता पिता अच्छी शिक्षा संस्कार ही देकर के विदा करते हैं। हेलो
3: हेलो
1: जी। हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
3: बस मैं भी आज थोड़ी गड़बड़ हो गई है।
1: क्या हुआ?
3: सच में थोड़ा हो गया है तो जुड़ा हूँ घर पे।
1: क्या हुआ, बुखार आ गया? क्या हुआ?
3: नहीं, कब्जियत थोड़ा हो गया है थोड़ा पेट में गड़बड़ हो गई है।
1: जी जी जी जी जी जी
3: तो घर पे ही हूँ, रेडियो सुन रहा हूँ
1: जी।
3: बहुत विषय भी आज का बहुत अच्छा है, और कल का भी जो बात थी वो आप बता रहे हैं, तो मैं मेरी बात बताऊ
1: जी
3: कि भाई अभी अभी हमारे एक बहू है बड़े बेटे की, तो मैं तो घर पे नहीं था लेकिन मेरे घर से थोड़ा बोल गई डायरेक्टली
1: जी,
3: भाई बाहर पास में भजन मंडली है तो आप जल्दी जल्दी सब हम काम निपटा दे, लोग आएंगे तो बाहर का जो कपड़े धोने का काम है ऐसा वैसा
1: जी
3: कर दे, तो वो तो बोलने लगे मोबाइल पे बात बाद में बात करना ऐसा मेरे घर से बोल
1: जी।
3: तो वो बोली कि भाई उसने तो बहुत मचा दिए,
1: हंगामा खड़ा कर दिया
3: कि आप छुपा छुपा के घर में वस्तु ये रखते हो ऐसा है वैसा है, फ्रिज में दूध रखते हो तो छुपा के रखते हो, तो भाई फिर मैंने समझाया कि देखो ये बोली है तो सही बोली है, और फ्रिज में दूध रखते हैं तो कोई ताला फ्रिज को तो ताला तो नहीं लगाते
1: जी जी,
3: आपको ये इसका है इसका है अलग अलग रखते हैं लेकिन आपको उसमें से लेना है तुझे
1: जी।
3: मैंने थोड़ा ये कर दिया, फिर मेरी बेटी आई तो बेटी ने भी ऐसा, मैंने बेटी को बोला जो आप आज का विषय है वो बोला कि आप तू कैसे ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए तेरे को, तेरे ससुर और सास ने ऐसा मुझे खोल करके बताया था तो तू ऐसा करते ऐसा करते, नहीं डायरेक्टली मैंने
1: जी जी
3: थोड़ी बात मेरी बेटी को की तो ये बहू भी है पास थी तो उसको समझ में आ गया ये सब बातें
1: जी,
3: तो ऐसा थोड़ा ये जरूरी है डायरेक्टली शुभ बात
1: जी जी। बहुत सुंदर, देखिए आपका तो प्रैक्टिकल अनुभव है।
3: प्रैक्टिकल अभी अभी हुआ था
1: जी जी, होता है घर में चार जने होंगे तो वो कहते हैं चार बर्तन भी आपस में टकराते हैं, तो चार जने होंगे तो उनके विचार अलग अलग होंगे जी,
3: लेकिन हमें बड़ों कैसे लेना है इसको सुलट में कैसे ये करना है वो एक करना पड़ेगा तुरंत वरना तो ये हो जाएगा। कल तो मैं समझ में नहीं आया था ये आपने बात बताई थी लेकिन आज तो मैं
1: जी जी
3: जो हुआ जो बताया
1: जी जी। बहुत सुंदर, आज के प्रश्न का जवाब देंगे?
3: जवाब तो थोड़ा विचार करके ऑफलाइन में।
1: ठीक है ठीक है, आभार आपका, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है कि भाई देखिए बेटियों को समझाएंगे तो बहुएं समझेगी, बाकी डायरेक्ट आप कहेंगे तो फिर तो तुत्तू मैं बढ़ेगी, इसलिए प्यार से बेटियों को ही समझाना है। वो भी कहते हैं कि शादी के बाद नहीं, शादी होने वाली होती है या कुंवारी होती है तब बेटियों को समझाते हैं, शादी के बाद तो उसके भी ससुराल का माहौल कैसा होता है, तो माता पिता अक्सर पूछते हैं कि अच्छा बेटा कैसे हैं, सभी कैसे हैं, क्या है। फिर भी अगर अपनी बेटी कुछ कहने लगे कि सास ऐसी है वैसी है तो उसको शांत रखना है और बोलना है देखो जैसे भी है अब उन्हीं के साथ रहना है और कोई बात नहीं, वो ऐसे तो आप ऐसे रहिए, प्यार से रहिए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर इस तरह की शिक्षा हम देते हैं और हमारी बहुएं सुनती हैं तो उनके मन पर भी प्रभाव पड़ता है। और भी अधिक हम आपसे सुनेंगे, परंतु पहले सुनेंगे गीत। आज के प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा, इस विषय में अपनी राय भी व्यक्त करिएगा। नंबर हमारे है 94 14 15 14 15। और आइए सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: बेटी शान है घर की, बहू मान है घर की।

0: है। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है
1: हाँ
0: आपका रेडियो मधुबन
1: नमस्कार।
0: में।
1: टीके सक्सेना बोल रहा हूँ। मैं अभी बात कर रही थी, वो कट गया था।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में।
1: मैंने पहली बार जो मिला रहा हूँ, दूसरी बार मिला रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही
0: नहीं नहीं
1: है।
0: हिचकिचाइए मत, देखिए रेडियो मधुबन पूरा एक परिवार है, आप बिंदास होकर के
1: ना
0: बात करिएगा।
1: नहीं, वो तो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे
0: जी
1: यहाँ नरोरा में कभी कभी आता है नेट से, कभी कभी चला जाता है। अभी 3-4 दिन तो बिल्कुल नहीं आया।
0: जी जी जी जी अच्छा
1: आज मैं घर पे हूँ तो मिल रहा है, लेकिन बाहर नहीं मिलता है ऐसे।
0: अच्छा घर पर अच्छी
1: आप
0: तरह आवाज
1: बताओ।
0: आती है?
1: हाँ, आवाज सही आती है घर पर।
0: अरे वाह क्या बात है,
1: हाँ,
0: बाहर
1: तो
0: नहीं
1: मुझे बहुत
0: आती।
1: अच्छा प्रोग्राम लगता है आपका।
0: जी थैंक यू।
1: और ये पहले शुक्रवार को आता था, अब चेंज कर दिया है प्रोग्राम
0: नहीं
1: आशियाना वाला।
0: नहीं तो सोम से शनिवार तक रोज आता है।
1: अच्छा, तो मैंने
0: जी
1: पहले 1 साल पहले सुना था, तो वो शुक्रवार में या शनिवार को ऐसा आता था ही।
0: नहीं नहीं ये सोम से शनिवार तक रोज रहता है, एक रविवार के सिवाय।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं अब आगे से भाग लूंगा इसमें।
0: जी जी जरूर। तो आइए, आप रेडियो मधुबन सुनते हैं तो इसके द्वारा आपके जीवन में कुछ बदलाव आए?
1: हाँ जी, बिल्कुल आया है। अपने को विचार को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कमी है उनको दूर कर रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: अभी अभी आपका प्रवचन आ रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: जी तो आप क्या कहेंगे, आज के प्रश्न का जवाब देंगे?
1: आज तो मेरे समझ में नहीं आया था, तो इसलिए देख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा सुन के तो
0: कोई बात नहीं, विषय तो
1: बताऊँ।
0: बहुत अच्छा है कि भाई बेटी को समझाओ तो बहू अपने आप समझ जाएगी, आप क्या कहेंगे?
1: हाँ, तो इसमें तो ये है कि अपने बच्चों को पहले समझाओ। जब अब ये तो बहू तो दूसरे घर से आती हैं, तो वो जो है हम अपने बच्चों को समझाएंगे तो वो भी समझेगी।
0: जी
1: हाँ नहीं, तो भी अपने बच्चों को समझाएंगे जब ही, तो दूसरा बच्चा समझेगा। अब हम उन्हें डायरेक्ट डांटेंगे तो उन्हें तो बुरा लगेगा कि
0: जी
1: अपने बच्चों की तो बताते नहीं है, हमारी बताते हैं।
0: जी
1: और मिलजुल कर रहेंगे तो और ही अच्छा है, दुख
0: जी
1: सुख में सब साथ रहे तो और अच्छी बात है।
0: मिलजुल कर रहना है, इसीलिए कहते हैं कि कुछ गलतियां छोटे करते हैं तो बड़ों को समझाना पड़ता है, परंतु
1: हाँ बिल्कुल।
0: डायरेक्ट नहीं समझा सकते। क्यों
1: है जी।
0: डायरेक्ट नहीं समझा सकते? आज का समय चेंज हो चुका
1: हाँ
0: है, डायरेक्ट समझाएंगे तो कोई सुनना पसंद नहीं करेंगे। कारण क्या इसके पीछे? एक तरफ बहुएं कहती है कि हमें भी बेटी की तरह रखो, तो फिर बेटियों को तो हम डांट भी देते ना गलती पर, फिर बहुओं को डायरेक्ट क्यों नहीं डांट सकते?
1: नहीं, अपना बच्चा समझेंगे तो उन्हें भी डांट सकते हैं, उनसे प्यार भी करेंगे तो उनके डांटने का भी अधिकार है,
0: जी
1: उनकी
0: बिल्कुल
1: बात हम मानेंगे तो उनको भी समझा सकते हैं और समझना चाहिए उनको भी।
0: जी
1: और जब भी परिवार चलता है, जब सब एक दूसरे का ख्याल रखें।
0: जी बिल्कुल बहुत सुंदर।
1: हाँ, और जब हम अब बहू को बेटी मानेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा
0: जी
1: ना।
0: बहू को बेटी माने और बेटी सास को माँ माने,
1: जब
0: तब
1: माँ
0: रिश्तों में
1: माने।
0: मधुरता
1: हाँ,
0: रहेगी।
1: जब ही मदद कर रहेगी।
0: जी
1: और अभी तक तो हमारे 5 साल हो गए, बहू आई है, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गलती होती है तो समझा देते हैं, वो समझ जाती
0: बहुत अच्छी बात है। वो
1: है।
0: कहते हैं कि जो भाग्यशाली होते हैं उनके ऐसी
1: हाँ
0: बहुएं
1: जी,
0: आती है, और
1: हाँ
0: अक्सर आती
1: बिल्कुल।
0: है, ऐसा नहीं है कि सभी खराब है। देखिए सिक्के के दो पहलू है ना।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: जी
1: और बहू भी हमारी बहुत अच्छी है, और जैसा कहते हैं मान लेती है कहना। और 2-4 मिनट तो सभी नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर मिल जाते हैं आपस में।
0: जी जी वो तो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा तू तू मैं थोड़ी हो जाती है, लेकिन
1: हाँ,
0: मन मुटाव नहीं होना चाहिए।
1: नहीं होना चाहिए। हम
0: जी
1: उसे समझा देते हैं, बेटा कोई गलती हो जाती है तो थोड़ा सा उस समय नहीं कहते हैं, थोड़ा बाद में उसको समझा देते हैं तो उसकी समझ में आ जाती है।
0: जी जी यही
1: और
0: तो
1: ऐसे ही मिलजुल कर सबको रहना चाहिए, ऐसे ही समाज में रहना चाहिए। किसी से गलती हो गई तो उस समय ना कहे, थोड़ी देर में कहो
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसकी समझ में आ जाती
0: जी बिल्कुल,
1: है।
0: बहुत
1: हाँ
0: सुंदर बात आपने कही है।
1: जी।
0: और आभार आपका
1: और,
0: जी बोलिए बोलिए जी, कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: नहीं कुछ नहीं, यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं जोड़ना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: अभी मौका मिलेगा कल फिर बात करूंगा मैं।
0: जरूर, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में और आशाना कार्यक्रम में। ठीक है, परिवार को भी जोड़ सकते हैं, बहन जी को भी जोड़ सकते हैं, बहू को भी जोड़ सकते हो।
1: हाँ बिल्कुल, मैं कराऊंगा। अभी पहले मैंने कि मैं थोड़ा सा बात करूं, फिर आप अपनी मिसेज से कहूंगा, बहू से कहूंगा।
0: जी जी, अंताक्षरी कार्यक्रम रहता है शनिवार के दिन, तो उस दिन कुछ न कुछ थीम रहती है, भले देशभक्ति गीत, भले पुराने पिक्चर्स के गीत, आध्यात्मिक गीत, अलग अलग थीम रखते हैं, तो उस थीम पर भी भाग ले सकते हैं, बहन जी है, आपके बहू है, आप स्वयं।
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते। तो बहुत ही सुंदर विषय है कि देखिए, इसका हम चर्चा करें उतनी कम है, लेकिन समय के अनुसार चलना हमारा जरूरी है। तो कहने का भाव यही है कि डायरेक्ट बहुओं को मत कहिएगा, डायरेक्ट कहने से कभी कभी नाराज हो जाते हैं वो। आप देखिए, घर में रहते हैं हम सभी, तो एक दूसरे के नेचर से भली भांति परिचित रहते हैं, है ना, कि इसको डायरेक्ट कह सकते या नहीं। कभी कभी क्या है कि डायरेक्ट कहने पर लेने के देने पड़ जाते हैं। हेलो,
2: हाँ दीदी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो?
2: जी दीदी थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि
0: कोई बात नहीं
2: बात कर रही थी।
0: कोई बात,
2: बात
0: नहीं
2: कर रही थी भाई साहब की, तो मैंने सोचा चलो बात करी हो जाए तो बात कर लो।
0: जी जी जी,
2: तो बस अच्छे दीदी बहुत खुशी हो रही है, अच्छी बातें चल रही है। बहू बेटी की कल की जो बात हुई थी वो भी आज बहुत स्पष्ट होने वाली है, बात सही है
0: जी।
2: और बताया कि दीदी की बहू को हम नहीं बोल सकते, बेटी को बोल सकते, लेकिन कई कई बहू ऐसी होती है दीदी कि खुद हम बोलेंगे तो भी समझ जाती है
0: जी।
2: तो वो क्या है कि मैं समझाऊँ कि वहाँ से इससे पिताजी से घर से जो बात होती है
0: जी,
2: कि भाई हम वहाँ जाके अच्छे रहेंगे, सब कुछ वहाँ ससुराल में हम अच्छी तरह से रहेंगे, किसी से ऐसा मत बोले, किसी को गलत लगे, किसी को ऐसा वो काम करेंगे अच्छी तरह से, तो जो वही बात उसके दिमाग में रह जाती है, तो ससुराल में आके कहना तो नहीं पड़ता है, लेकिन हम कुछ बोलेंगे तो वो आराम से सुन लेगी और कर देगी, वो भी सही है
0: जी।
2: तो बोलने की जरूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि वहां से जो संस्कार लेके बेटी बहु बनकर आती है तो कुछ कहना नहीं पड़ता। कहीं कहीं कहीं कहीं कर जगह पे ऐसा करके जो है, मैं है बहू ऐसी, कुछ कहना ही नहीं पड़ता, खुद आराम से काम कर लेती है, किसी के बोलते नहीं, झगड़ा भी नहीं करती है और परिवार में भी अच्छी तरह से रहती है
0: जी जी।
2: लेकिन
0: बहुत
2: हम बेटियों को सलाह देना जरूरी है कि हम बेटियों को कुछ बोल डायरेक्ट नहीं बोले, लेकिन बेटियों से कुछ कहते हम बहुत समझ आती है, समझ तो जो समझे वाले समझ आती है, लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं बहु ऐसी आती है तो उनका समझ लेती है
0: जी, जी,
2: तो मेरे
0: जी,
2: मुझे बोल रहा है फिर बेटी को कहता, लेकिन मेरे
0: जी बिल्कुल ऐसा होता है जी जी जी
2: ऐसा होता है। तो बस ये तो माँ बाप के संस्कार पर रहता है दीदी, माँ बाप का संस्कार अच्छा होता है तो बहू है बेटी चाहे,
0: माँ बाप के संस्कार भी और कुछ क्या अपने भी पुराने संस्कार रहते हैं स्वयं के भी
2: जी,
0: क्योंकि माँ हमेशा तो, माँ अगर अच्छी शिक्षा देती है लेकिन ससुराल में जाकर तो नहीं देखती ना कि बेटी क्या कर रही है।
2: नहीं सही बात है, कोई माँ बाप ऐसा नहीं कि बेटी को संस्कार अच्छे ही देते हैं, बुरा तो कोई देते नहीं, लेकिन फिर भी ससुराल में आकर थोड़ा सा चेंज हो जाता है,
0: ऐसा
2: चेंज ना हो और बेटी की तरह ही घर में रहे बहू जैसे बेटी जैसे, वही सही रहेगा। ठीक है दीदी, जो आपने प्रश्न पूछा वो तो समझ में नहीं आ रहा है।
0: साधु संत और योगियों को कहते हैं तब के और हम सभी हैं अब के, कैसे?
2: वो तो सही है क्योंकि पहले जमाने से वो चल रहा है योगी जोगी और संत
0: जी।
2: वो तो सही है दीदी, कहे संत से ही हमारी शुरुआत हुई है, संत से ही हमको संस्कार मिले हैं, इसलिए साधु संत पहले के यार और हम अब के हैं, तो हम साधु संतों से संस्कार लेंगे, बात करें अच्छी सुनेंगे, तो अब ऐसी बात है मुझसे जो ज्यादा पता नहीं चलता तो यही कहूँगा।
0: कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कोशिश की आपने जी।
2: तो साधु संत का मानिए और वो पहले के जमाने है कि उसको बहुत पता है, और हम तो आपके हैं, हमको तो कुछ पता नहीं, संस्कार हमारे में अभी तक कम है, तो जिसकी शिक्षा पर चलिए, मैं तो ऐसा कहता हूँ
0: जी जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आभार आपका सुरेश भाई, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। और वो कहते हैं कि बात चल रही थी बेटी को समझाओ और बहू समझ जाए, लेकिन आजकल थोड़ा समय भी बदला है। आजकल भले आप बेटियों को शिक्षा दो तो भी क्या कहेगी, ओ देखो मुझे सुनाने के लिए अपनी बेटी को समझा रहे हैं। जैसे कि सुरेश भाई ने कहा, ऐसा भी हो रहा है। हर प्रकार के इंसान है समाज में, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं हैं या सभी बुरे हैं, अच्छे भी है और इस तरह के भी है। कल ही एक बहन का फोन आया, इसलिए मैंने इसी विषय को ले लिया। उनका यही फोन आया कि बहुत दुखी है वो, उनके बहू कुछ भी काम नहीं करती, अपने ही कमरे में बैठी रहती है, खाना भी सास बनाएगी तब नीचे आकर के खाया और वापस ऊपर। दीपावली के दिन चल रहे हैं, साफ सफाई में कोई हेल्प नहीं, अकेले सास कर रही है। अब सास भी क्या करेगी, तीन मंजिल का घर है, हमारे आबू के अंचल की ही बात है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन तीन मंजिल का घर है, लेकिन बहू को कम से कम 5-6 साल हो गए शादी हुए, घर पर आए हुए, लेकिन 5-6 साल हो गए परंतु कोई भी कार्य में हेल्प नहीं करना, माने भोजन भी बना करके नहीं देना, कुछ भी नहीं। हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, कुपाराम जी कैसे हो आप?
3: कार्यक्रम सुन के और काम भी करते
0: जी जी, अच्छी बात है।
3: इस विषय के बारे में ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा बोलता हूँ
0: जी।
3: घर पुना बिन काम नहीं और घर सुधारे काम नहीं
0: जी।
3: बुआ को भी वो ससुराल भी अपना घर लगना चाहिए
0: जी,
3: और वो चाहे तो उसको स्वर्ग भी बना सकती है और चाहे तो उसको नरक भी बना सकती है।
0: बिल्कुल,
3: ये मेरा तो है
0: जी, बहुत सुंदर बात
3: है। ठीक है, आदमी को तो कमाने का उसका धंधा होता है, वो धंधा करके लाके देता है, घर में कैसे चलना है, किस प्रकार से चलाना है, वो तो घर का काम है
0: जी जी जी।
3: और संतों का वो प्रश्न तो मुझे लगता है कि संत तो क्या है, बार बार वो इसी योनियों में आते रहते हैं
0: जी,
3: और उनके तो वो संस्कार चलते रहते हैं जी। और हम अब के हिसाब से के क्या पता कितने जन्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिला होगा।
0: अच्छा,
3: हम अब के और संत तो वो तो जन्म जन्मांतर से भगवान उनको तो भेजते रहते कि भाई जाओ सृष्टि में अच्छा काम करो, सृष्टि को सुधारो।
0: अच्छा चलिए, बहुत अच्छी कोशिश की, आभार आपका कुपाराम जी। तो बहुत ही देखिए, सभी ने अपने अपने हिसाब से प्रश्न के जवाब बहुत अच्छे दिए हैं। और बात चल रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि उनका फोन आया, 5-6 साल हो गए, लेकिन उनकी बहू इकलौता बेटा है, इकलौती बहू है, अच्छा समाज है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि वो काम नहीं करती है तो रिश्ता तोड़ देवे, फिर भी वो तालमेल बिठा के चल रही है कि चलो किसी भी तरह हमारे प्यार को ये समझे, लेकिन अभी कोई महसूसता नहीं, घर में

या तो आप इस घर में रहो तो हमसे बातचीत करो, हम आपको बेटी की तरह रखते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि आप चाहो तो हम आपकी दूसरी शादी करवा सकते हैं, क्योंकि 5-6 साल ही हुए हैं शादी हुए, लेकिन वो न घर छोड़ने के लिए तैयार है न ही प्यार से रहने के लिए तैयार है। तो बेचारे सास और ससुर किसको कहे, वो कहते कि हम बात बाहर नहीं करते, नहीं तो समाज में बातें हो जाएगी। और कहते ना कि भाई बहू को बिचारी समझ करके सास ससुर पर ही आरोप लगाएंगे, लेकिन ऐसा उनके घर में हो रहा है। उनके पियर वालों, बहू के पियर वालों को भी कहा, लेकिन वो भी कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं आपके घर के आप जानो, हमको नहीं कहना है, हमारी बेटी अच्छी है। और वो बेटी, मतलब वो बहू बिल्कुल काम नहीं करती है और न ही नीचे आती है, अपने ही कमरे में रहती है। जब खाना बनता है देखता है कि खाना बन गया तो खाने के लिए आ जाती फिर से ऊपर। अब आप क्या कहेंगे? तो समाज में हर प्रकार के मतलब इंसान है, हर प्रकार के लोग हैं। उनकी बेटी से भी जब वो ससुराल से आती है तो बहू बात नहीं करती है। तो बहुत जगह पर तो ऐसा है कि बेटियों को समझाते बहू समझ जाती है, और बहुत सारी जगह पर भले कितने भी सास ससुर उसके आगे पीछे घूमे, भले प्यार देवे बेटी की तरह रखे, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं रहती है। तो मैं अपनी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि देखिए तकलीफ है तो आप मुँह से बोलिए कि मुझे ये तकलीफ है, नहीं तो फिर इस तरह आप रूठे रहेंगे तो घर हमारा बिगड़ेगा, घर जुड़ेगा नहीं टूट जाएगा। चाहे भले बहू टिकी रहेगी तो सास ससुर कितनी बार वो कहते हैं कि हमारी इच्छा होती है हम घर छोड़ के चले जाए, लेकिन लोग यही कहेंगे कि देखो बहू के छोड़ करके अकेली छोड़ करके चले गए। अब घर में क्या हो रहा है लोगों को नहीं पता, इसलिए प्यार से रहिए और जो भी कुछ आपको कहना है कह लीजिए, झगड़ा करना हो तो कर लीजिए, एक बार फिर से सुनिए कि हमारे सास ससुर हमें क्या कहना चाहते हैं और हम उनको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बाकी तो बातचीत तो करो उतनी कम है, समय इशारा कर रहा है, इसलिए चलिए सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: मैं हूं वजाहत हबीबुल्ला और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो भाई, कुछ दिनों से आपको गुजराती आइटम सिखा रही हूँ। सुवारी आपने सीखी, मठिया आपने सीखा, आज आपको सिखाएंगे चोराफली। भाई, ये ऐसा नहीं कि गुजरात में बनता है और दूसरे स्टेट में नहीं बनता है। आजकल तो हर स्टेट की चीज़ें हर कहीं बन जाती हैं, क्योंकि हर स्टेट के लोग हर जगह पर रहते हैं। गुजरात में जैसे बाहर के लोग रहते हैं, दक्षिण के लोग रहते हैं, तो उधर के इडली डोसा भी बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, चटनियाँ वगैरह। और यहाँ के लोग भी बाहर रहते हैं, तो वो एक दूसरे का कल्चर तो सीखने में आ ही जाता है ना, और वही मज़ा आता है हिल मिलकर रहने में और बनाने में। तो चोरा फली के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ, लेकिन आज का प्रश्न बहुत सुंदर है कि साधु संत और योगी है तब के और हम सभी है अब के, कैसे? प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। और आइए अब चोरा फली आपको सिखाती हूँ। सामग्री ले लीजिएगा, जैसे आप 1 किलो लोट लेना है आपको, तो आप 700 ग्राम लीजिएगा बेसन, 300 ग्राम लेना है उड़द की दाल का आटा, ठीक है? फिर आप लीजिए स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक, और थोड़ा सा आपको लेना है खाने का मीठा सोडा, आवश्यकता के अनुसार तेल लेना है, ठीक है? और मसाला बुरकाने के लिए आप लीजिए लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, और अगर चाट मसाला पसंद करते हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो भाई ये कहते हैं कि समय के साथ चेंज आया है, अभी की नई पीढ़ी चाट मसाला भी ऐड करती है, पहले नहीं करते थे, पहले लाल मिर्च पाउडर और काला नमक मिक्स करते थे, ठीक है? तो बस सामग्री यही है कि बेसन 1 किलो का अगर मठिया बना रहे हैं तो आप ले लीजिए 700 ग्राम बेसन और 300 ग्राम उड़द की दाल का आटा। फिर आप स्वाद के अनुसार नमक लीजिए, और तेल आवश्यकता के अनुसार लेना है, बेकिंग सोडा लेना है थोड़ा सा, और मसाला भुरकाने के लिए लीजिएगा लाल मिर्च पाउडर और काला नमक। अगर आपको ज़्यादा पसंद है चाट मसाला तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको साथ ही साथ बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। भाई, इसमें भी मेहनत है, जैसे मठिया बनाए ना, मठिया में कितनी मेहनत है, ऐसे ही चोरा फली बनाने में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप क्या करेंगे, बेसन का और बेसन और उड़द की दाल का आटे को छान लीजिए, मिक्स कर दीजिए, और इसमें खाने का मीठा सोडा डाल दीजिए, ठीक है? और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। फिर थोड़े से पानी में आप नमक गर्म करिए, भले आप नमक सेक करके डाल दीजिए डायरेक्ट ही, वो आप पर छोड़ा है कि आप कैसे क्या करते हैं। अगर नमक डायरेक्ट डालना चाहते हैं आटे में, तो फिर आप थोड़े से तवे पर सेक दीजिए, ठीक है? और पानी को गर्म कर दीजिए, और इसमें आप 1 चम्मच तेल डाल दीजिए। बहुत जने डालते, बहुत जने नहीं डालते, अब आपकी इच्छा हो तो डालिए, बाकी 1 छोटा चम्मच तेल डालिए, ठीक है? और फिर वो नवसेक के पानी से इस आटे को अच्छी तरह बांध दीजिए, गूंद दीजिए, अच्छी तरह इसको गूंदना है, फिट रखना है, और अच्छी तरह गूंद करके फिर इसको आप आधे घंटे के लिए गीले कपड़े से ढक करके रख दो। आधे घंटे के बाद फिर से इसको एक मेक करिए अच्छी तरह, और फिर इसको भी मूसल से, हमान दस्ता जो होता है ना लोखन वाला, उससे आप कूटिए। जैसे मैंने आपको तरीका बताया ना मठिया का, कैसे, बस यही तरीका है चोरा फली बनाने का भी। इसमें भी बनाने में बड़ी मेहनत है। आप चाहे तो प्लास्टिक के कट्टे के बीच में रख करके पैरों से आपको चल सकते हैं, और आप चाहे तो हमान दस्ते के मूसल से कूट सकते हैं। अब वो आप पर छोड़ा है, ठीक है? अच्छी तरह इसको कूट पीट करके जब इसमें अच्छी लोच आ जाए तो फिर आप लीजिए, और फिर इसको भी तुंबना है, ठीक है? मतलब इसका थोड़ा थोड़ा लुआ लेकर के दोनों हाथों से इसको खींचिए, फिर से ये लुआ बनाइए, फिर से खींचिए, फिर से लुआ बनाइए, फिर से खींचिए, ठीक है? जब अच्छी मेहनत करने के बाद आपको लग रहा है कि अब इसमें लोच अच्छी आ गई है और अब ये टूट नहीं रहा खींचने पर, बाकी तो क्या लोच नहीं आती ना, तो हम जैसे खींचेंगे वैसे फट फट फट फट टूट जाएगा, लेकिन जब लोच अच्छी आती है तो हम खींचते हैं तो फिर वो टूटता नहीं है, पतले पतले तार की तरह चिपका रहता है, तो पता चल जाता है कि अब हमारा चोरा फली का आटा परफेक्ट हो गया है। उसके बाद आप अच्छी तरह इसको एक मैक करके वही मठिये के बनाए ना बेल, ऐसे ही इसके भी बेल बना दीजिए बेलन की तरह लंबी लंबी चकले पर रख करके, और फिर धागे से इसके लुए काट दीजिए, जो भी आप साइज पसंद करते हो उस अनुसार आप लुए काट लीजिए, और फिर थोड़े से वही प्रोसेस है जो मठिया का है, बस इसमें मटेरियल थोड़ा सा अलग तरीके से डालने का है, उसमें थोड़ा सा अलग है। तो आप थोड़ा से तेल में आटा या फिर थोड़ा सा आटा रखिए और आटे में थोड़ा तेल मिला करके एक मेक करके ये सारे लुए उसमें डाल दीजिए अच्छी तरह, सभी पर लग जाना चाहिए, ठीक है, सभी लुओं पर ये तेल वाला आटा लग जाना चाहिए ताकि बेलने में आसानी रहेगी, बाकी इसका कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि बेलने के लिए हम पहले से ही इतना आप तेल और आटा लीजिए कि इसमें ये सारे लुए अच्छी तरह चुपड़ जाए, उसके बाद आप बेलिए, और बेल करके आपको अगर कटर है तो कटर, नहीं तो चाकू से आप लंबे लंबे काटिए, ठीक है। पर कैसे काटना है, गोल गोल आपने बना दी साइज, जो भी रोटी की साइज है चाहे पूरी की साइज है, जो साइज आप पसंद करते हो बेल दी आपने, बेलने के बाद अब आप बीच में से थोड़ा सा काटिए, आपको एक उंगली किस साइज का आपको रखना है, फिर तो आप चाहे तो चौड़े पसंद हो तो चौड़े रखिए, सकड़े पसंद हो तो सकड़े रखिए, जो भी साइज पसंद है रखिए, लंबे लंबे काटना है लेकिन साइड में से किनारे नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो बड़ी मेहनत पड़ जाती है तलने में, इसलिए रोटी की तरह ही रहना चाहिए, बस बीच में से काटिएगा, किनारे रहने दीजिए, जब आप तलेंगे फिर निकालेंगे तो वैसे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप पहले तो बेल बेल करके रख दीजिए, जब तलते हो ना उसी समय काटिए, तो बस बेल करके आपने वही थप्पी लगानी है, थोड़े थोड़े से सुखाने हैं, ज़्यादा नहीं, और फिर इसको आप जब ये सारे बन जाए तो फिर आप रखिए कढ़ाई में, तेल डालिए गैस पर रखिए और तल दीजिए, तल करके आप अच्छी तरह मतलब दोनों तरफ से तले, लेकिन बहुत ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। और तलने के बाद आप निकाल दीजिए, फिर एक कटोरी में या एक प्लेट में लाल मिर्च पाउडर और काला नमक मिक्स कर दीजिए, चाट मसाला पसंद है तो उसको भी मिक्स कर दीजिए, और जब आप निकाल दो इनको तो फिर सभी के ऊपर ये नमक मिर्च बुरका दो, ठीक है, ऊपर से डालना है अंदर नहीं डालना, अंदर तो स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ही डालना है, ऊपर से आप ये मसाला डालिए और फिर खाइए, फिर मुझे फ़ोन करिए कि कितना स्वादिष्ट लगता है, चोराफली कितनी स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए चोराफली तैयार है, देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली और थाली में आप चोराफली रखिए, सब्जी चपाती जो भी बनाई है रखिए, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास पर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा चोराफली का। साथ ही साथ एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: बहू
1: बहू
0: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं। बहुत ही सुंदर विचार था कि भाई सभी से हिल मिल कर के प्रेम से रहना चाहिए, न जाने कब बुलावा आ जाए। ठीक है, तो ये इस बात को ज़रूर गांठ बांध देनी है कि हमको सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। फिर आपको टिप्स भी बहुत अच्छी दी है कि कैसे आप चांदी के बर्तन और अपने गहनों को चमकाएंगे। भाई दीपावली के काम चल रहे हैं, साफ़ सफाई ज़रूर करिएगा, पर इन सभी की भी साफ़ सफाई की आपको टिप्स दी है, तो आजमा करके साफ़ कर सकते हो। खुशनुमा जीवन की बहुत ही अच्छी बातें हुई है कि भाई बहू मतलब बेटियों को समझाएंगे तो बहू है समझ जाएगी, जो समझदार होती है वो समझ जाती है, फिर तो आप सभी जानते हो। और बहुत ही सुंदर आपको चोरा फली बनाना सिखाए, तो आपने सीख लिया ना? सीख लिया है, बनाओ तो ज़रूर हमें भी खिलाना। चलिए वो तो मजाक थी। और आज का प्रश्न था कि साधु संत और योगी थे तब के और हम हैं अब के। सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, इन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की, अच्छा जवाब दिया उन्होंने भी। और मतलब इनका जवाब था कि साधु संत सभी को ध्यान में रख करके, भूत भविष्य वर्तमान को सोच करके चलते और हम अभी को सोच करके चलते हैं। बहुत अच्छा जवाब है। और सुरन कुमार जी सक्सेना यूपी नारोल से आप जुड़े हैं, आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की, विषय को अच्छा स्पष्ट किया आपने। फिर कंचन भाई, आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया। सुरेश भाई झोटाना से, आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की प्रश्न का जवाब देने की। और कुपाराम जी कोजरा से, आपने भी विषय को स्पष्ट किया है। तो पहले तो मैं आप सभी के लिए ताली बजवाना चाहूँगी कि भाई आपने बहुत अच्छी कोशिश की और इस विषय में भी आप जुड़े और अपनी राय व्यक्त की। और आज का प्रश्न यही है कि साधु संत योगी है तब के, कैसे? देखिए साधु संत योगी बहुत तपस्या कर चुके हैं, बहुत तपस्या कर चुके हैं, तो उनको सब सीधा मिल रहा है, बना बनाया मिल रहा है ना? और उनके द्वारा समाज को, देश को दुआएं मिल रही है, इसलिए कहते हैं कि साधु संत योगी है तब के और हम सभी है अब के। जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तपस्या करें, कुछ भक्ति करें, कुछ योग साधना करें, अभी हम चल रहे हैं, इसलिए अब के और वो है तब के। ठीक है, और अब मैं आपको चंद पंक्तियां सुनाना चाहूँगी बेटी और बहू पर। आप लोग लेंगे इन पंक्तियों का आनंद, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, जरूर आप ध्यान दीजिएगा और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। आंगन अपना छोड़ घर किसी और के जा रही हूँ, आंगन अपना छोड़ घर किसी और के जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी अब बहू बनने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी अब बहू बनने जा रही हूँ, पिता की शान से पति का मान बनने जा रही हूँ, पिता की शान से पति का मान बनने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ, अपना वजूद भुलाकर पहचान नई बनने जा रही हूँ, अपना वजूद भुलाकर पहचान नई बनने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ, बेफिक्रियां भूल के जिम्मेदारियां उठाने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ, बचपन यहाँ छोड़ संजीदगी से रिश्ते निभा रही हूँ, बचपन यही छोड़ संजीदगी से रिश्ते निभा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ, मैं अब तक बेटी थी, अब बहू बनने जा रही हूँ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम जागृति में आप सभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो रहे हैं। दोस्तों, हम जब मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारी मन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसका जो प्रारूप है वो हमारे जीवन शैली में दिखता है। वो कैसे है, क्या है, इसीलिए हमें हमारी मनोरोग विशेषज्ञ है या मानसिक रोग विशेषज्ञ है, इन सभी से चर्चा करने की और समझने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हमने पिछली कड़ी में अनिद्रा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली और ये भी सीखा कि हमें नींद करना कैसे है, स्लीप हाइजीन कैसे करना होता है और वो प्रिपरेशंस करना कितना आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे जो ओवर स्लीपिंग है, यानी कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सो जाते हैं या फिर जब एक बार हम सोते हैं तो फिर उठने का कोई समय नहीं रहता है, कभी भी उठते हैं और उस कारण से हमारी बहुत दिनचर्या डिस्टर्ब होती है। घर वाले बोलते रहते हैं बहुत टाइम हो गया, अभी उठो उठो, दोपहर हो गया है, दिन चढ़ रहा है, बट देन हमारा मन नहीं करता है कि हम उठें और थोड़ा सो जाएं। लेकिन क्या वाकई में वो नींद हमारे लिए फ़ायदेमंद है? क्या हम वाकई में वो नींद से रिलैक्सेशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर हम कुछ और चीज़ों को हमारे जीवन में इन्वाइट कर रहे हैं? तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारियाँ लेंगे और हमें अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमारे साथ है हर्षिता जी और डॉक्टर वीरेंद्र जी। आप दोनों हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप दोनों एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो एक साइकियाट्रिस्ट हैं। आप दोनों को जागृति इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है
2: जी। नमस्कार।
1: नमस्ते सर। नमस्ते हर्षिता जी।
3: तो
1: सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि स्लीप हाइजीन जिस तरीके से आपने पिछली बार हमें अवेयर किया है हमारे श्रोताओं को, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कई बार हम रात को लेट हो गया इसीलिए सुबह कभी भी उठेंगे, 12 एक बजे 2 बजे तक भी सोते रहते हैं, या फिर शाम को अगर जल्दी भी सो जाते हैं तो भी हम दिन में लेट उठते हैं। तो जैसे पिछली बार ये कहा गया कि 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन जब देर रात में सोए हैं, पूरा हफ्ता बहुत हार्ड वर्क रहा है या हॉलीडेज हैं इसलिए हम ओवर स्लीपिंग कर लें, या फिर कोई काम नहीं है इसलिए हम सो जा रहे हैं, किताब पकड़ लिया नींद आ गई सो गए हैं, फिर इस तरीके की जो स्लीप की कोई साइकिल नहीं है या फिर टाइम नहीं है और जब मर्जी सो रहे और जब सोते हैं तो उठने का कोई ठिकाना नहीं है, इस तरीके की जो स्लीप साइकिल रहती है वो क्या ये सही है और इसके कारण भी हमारे जीवन में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करते हैं?
2: पिछली बार जब हमने बात करी थी नींद नहीं आने या निद्रा के ऊपर में, उस समय मैंने कुछ बातें आपको अगर याद हो तो बताई थी कि नींद 7 से 8 घंटे की नॉर्मल है। कुछ लोग होते हैं जिनको उससे कम नींद आती है और कुछ लोग होते हैं जिनको उससे ना ज़्यादा नींद आती है, उनको हम लॉन्ग स्लीपर्स या शॉर्ट स्लीपर्स भी बोलते हैं। तो कुछ लोगों के लिए 10 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है और कुछ लोगों के लिए 5-4-5 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है। बट अभी जब हम नींद के बाकी डिसऑर्डर्स या बाकी बीमारियों की बात करते हैं निद्रा के अलावा, तो इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां नींद से जुड़ी हुई आती हैं। उसमें जो सबसे कॉमन जिसके भी हम बात कर रहे हैं, ओवर स्लीपिंग जिसको हम एक कॉमन भाषा में बोलते हैं, हम डॉक्टरी भाषा में उसको हाइपरसोमनियाज और पैरासोमनियाज बोलते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत एक्सेसिवली ज़्यादा आ रही है, मनुष्य जो है वो 10 घंटे से बहुत ज़्यादा 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे सो रहे हैं, तो उनके जगने का समय बहुत कम रह गया है। एक तो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हुआ कि जब आपकी स्लीप साइकिल का पैटर्न पूरा गड़बड़ हो गया, मतलब जब आप सुबह के 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं और उसके बाद सीधा शाम को 4-5-6 बजे उठते हैं, या अक्सर जो पार्टी करते हैं लोग वो बहुत बार ऐसा करते हैं, यानी जिनके लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं कि उनकी नाइट लाइफ ही बहुत ज़्यादा है और डे लाइफ उनकी बहुत कम हो गई है, कुछ उस तरह के लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सो तो ज़्यादा रहे हैं या सो तो नॉर्मल रहे हैं, बट जब वो उठते हैं तो उसके बाद वो दिन में भी सोए सोए से महसूस करते हैं खुद को, मतलब खुद को उतना एनर्जेटिक महसूस नहीं करते। रात को तो ठीक से सो गए हैं, पर जब सुबह उठ के कहीं भी बैठे हैं थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बैठे तो आँख की झपकी लग गई, कहीं भी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव चल रही है पीछे गाड़ी में बैठे तो नींद आ गई, मूवी चल रही है कुछ भी कर रहे हैं तो बैठे बैठे जिनको नींद आ जाती है, काम पे बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए भी, तो उस तरह नींद की बीमारी, नींद बीमारी। तो इनको हम बारी बारी से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिसमें मैं बात करना चाहेंगे वो हाइपरसोमिया या अधिक नींद आना जिसको बोलते हैं। देखिए अधिक नींद आने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, और हमें सबसे पहले अधिक नींद आने के कारण ढूंढने पड़ेंगे कि कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है। डायबिटीज के लोगों को बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत ज्यादा नींद आती है, जिनको डायबिटीज या शुगर अनकंट्रोल होती है उनकी नींद की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत देर तक सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, और ये मतलब विशेष साइकिल है। आप वो ज्यादा देर तक सो रहे हैं उसकी वजह से उनकी शुगर और बढ़ रही है, उनकी शुगर और बढ़ रही है उसकी वजह से वो और ज्यादा देर तक, उसके अलावा कोई अन्य बीमारी तो नहीं है उनको शुगर के अलावा कोई और मेडिकल इलनेस जिसमें नींद उनको ज्यादा आ रही है, या वो किसी तरह की दवाई का सेवन तो नहीं कर रहे जिसमें उनको नींद ज्यादा आ रही है। बहुत सारे खांसी के सिरप जो हमारे होते हैं उनके अंदर में ऐसी दवाइयां होती हैं जिससे कि ना चाहते हुए भी नींद आती है, या कफ कोल्ड लगा, कुछ लोग एलर्जी की दवाई बहुत रेगुलर लेते हैं, सिट्रिजिन की दवाई, बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो महीनों महीनों सालों सालों खाते ही जा रहे हैं उस दवा के बिना उनका काम ही नहीं चल रहा, तो उन लोगों में भी नींद ज्यादा आने की समस्या हो जाती है, क्योंकि ये सब दवाइयां हमारे उन एरियाज में काम करती हैं जो नींद को इंड्यूस करते हैं, जो नींद को प्रोलॉन्ग करते हैं, तो उन केसेस को हम लोग हाइपरसोमनिया बोलते हैं। तो हाइपरसोमनिया केसेस के अंदर हमें सबसे पहले उसका कारण ढूंढना पड़ता है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे केसेस है कि सिर्फ नींद ही ज्यादा आ रही है और कोई मेडिकल इलनेस नहीं है उनको, और भी कोई या कोई दवाई भी नहीं ले रहे, तो ऐसे केसेस को हमें अलग ढंग से ट्रीट करना होता है। तो जिन केसेस में जो मेडिकल इलनेस है जिनको कोई जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर कोई दवाई ले रहे हैं, तो पहले हमें उसको देखना है, शुगर को कंट्रोल करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, उनकी उस दवाई को टेपर डाउन करके कम करके बंद करना है ताकि उनकी नींद ठीक हो। पर जो लोगों को नेचुरली ये हाइपरसोमनिक हो रखे हैं, जिनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, उन केसेस के अंदर में हम कोशिश करते हैं कि उनकी स्लीप को रेगुलेट किया जाए। उनकी स्लीप को रेगुलेट करने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है, जनरली हम उनको अचानक से कि आप वो 10 बजे सोते हैं और फिर सुबह 11 12 बजे उठते हैं तो उनकी नींद जो है वो 16 17 घंटे की हो रही है, तो हम अगर उनको अचानक से बोलेंगे कि आपको कल से सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है तो वो उनसे नहीं हो पाएगा, वो एक दिन हो पाएगा दूसरे दिन नहीं हो पाएगा। तो उस केसेस में हम जो करते हैं, हम उनको ग्रेजुअली टेपर डाउन करते हैं, स्लीप को ग्रेजुअली कम करते हैं, कि जैसे अभी आपके उठने का समय अगर अभी 12 बजे आप रेगुलर उठ रहे हैं रात को 10 बजे सोने के बाद, तो उसको कोशिश करें कि पहले उसको 11 पे करें, फिर उसको 10 पे शिफ्ट करें, फिर उसको 9 पे शिफ्ट करें, ऐसे करते करते हर हफ्ते एक एक घंटा कम करते जाएं और अगले एक डेढ़ से दो महीने के अंदर में अपनी नींद को 10 से लेकर सुबह 6:30 बजे तक ले आए, तो उस कंडीशन में आपकी 8 घंटे की नींद पूरी होगी। जब आप ग्रेजुअली कम करेंगे तो आपके शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप बहुत समय से बहुत देर तक सो रहे हैं तो आपके शरीर को उस प्रकार की नींद की आदत पड़ जाती है, तो अगर ग्रेजुअली बदलेंगे तो वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी, बहुत समय तक रहेगी और वो पूरी तरह ठीक हो पाएगी।
1: जी सर, जिस तरीके से आपने कहा कि कई बार हमारी जो फिजिकल हेल्थ है या बीपी शुगर या इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उस कारण से भी हमारी नींद के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और हमारी जो लाइफस्टाइल है जैसे आपने कहा कि चाहे वो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं या फिर नाइट पार्टीज कर रहे हैं उस कारण से, बट देन इसमें हम ये जानना चाहते हैं जब ओवर स्लीपिंग होता है क्या वाकई में वो इंसान नींद कर रहा होता है, या जो वो डीप स्लीप या फिर साउंड स्लीप जिसे हम कहते हैं, या फिर वो सिर्फ सोया हुआ है लेकिन वो गहरी नींद नहीं है जो बॉडी को हील कर रहा है, या फिर जो स्लीप साइकिल जो बॉडी को रेस्ट देने के लिए होता है।
2: इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि नींद की प्रकार, नींद में दो तरह की नींद होती है, REM स्लीप और REM, मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमारी आंखों की पुतलियां हिलती रहती हैं, उस समय वो हिल रही है, वो नींद हमारी रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप होती है, और बहुत सा सीनों में नींद का ऐसा होगा जब हमारी आंख की पुतलियां नहीं हिल रही होती, उसको हम NREM स्लीप बोलते हैं। तो इसमें जो NREM स्लीप होती है उसको हम जनरल अधिकतर गहरी नींद या फिर डीप स्लीप बोलते हैं। उसके भी आगे पार्ट्स होते हैं NREM 1, NREM 2, NREM 3, NREM 4, कि आप कितना गहरी नींद के अंदर में जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम जैसे ही हम सोने तो हमारी एनआरईएम स्लीप सबसे पहले एक्टिवेट हो जाती है और उसके 45 मिनट बाद पहली आरईएम स्लीप की बाउट आती है। हमारे जो सारे स्वप्न हैं, जो हमारे सपने हैं, वो हमें आरईएम स्लीप के अंदर में दिखाई देते हैं और एनआरईएम स्लीप में हमारा ब्रेन बिल्कुल डीप स्लीप के अंदर में और एकदम गहरी गहन अवस्था के अंदर में चला जाता है, जहां वो बिल्कुल अपने उसने सिर्फ कुछ जरूरी काम छोड़कर बाकी सब काम करना उसने बंद कर दिए हैं, तो उस समय ब्रेन जो है वो एक्चुअली रिकवर कर रहा है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप चाहे 8-10 घंटे सो रहे हैं या 15 घंटे सो रहे हैं, आपकी एनआरईएम की स्लीप की टोटल जो क्वांटिटी है वो फिक्स है कि आपको पूरे रात के अंदर में 3 घंटे की एनआरईएम स्लीप आनी है, जो कि डीप स्लीप है वो 3 से 3.5 घंटे की आनी है, वो आपकी फिक्स है। अब अगर आप 7 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएगी, आप 10 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएगी, और आप 12 घंटे सो रहे हैं तब भी वो 3-4 घंटे आएंगे। तो जो एक्चुअल नीडेड स्लीप है, हालांकि दोनों नींद की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनआरईएम स्लीप की जरूरत है, बट जो ब्रेन को एक्चुअल रिलैक्स कर रही है, जिसको हम डीप स्लीप या गहन निद्रा बोलते हैं, उसका टाइम बहुत फिक्स है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो नेचुरल स्लीप है, क्योंकि अगर जब आप इससे ज़्यादा सो रहे हैं पर आपकी एनआरईएम स्लीप उतनी रह रही है, तो जो आपकी बाकी स्लीप है वो बेसिकली उसमें आपका बॉडी फंक्शन और आपका दिमाग फंक्शन कर रहा है, वो रेस्ट स्टेट में नहीं जा रहा है। तो हमें अपनी डीप स्लीप को बढ़ाना जरूरी है कंपेयर टू आरईएम स्लीप।
1: जी, कि कई बार लोगों का ये होता है कि वो नींद हमें क्यों रिड्यूस करना है, वो 10-12 घंटा 15 घंटा जो भी है हमें नींद आ रही है, हम सो रहे हैं और हमको कोई काम नहीं है इसलिए हम सो रहे हैं, तो नींद तो अच्छी होती है, हम क्यों कम करें। ऐसा भी लोगों का विचार होता है, खास करके जो यंग जनरेशन्स है, हॉलीडे है या फिर हमने रात को पूरा काम किया है तो अभी दिन में सोएंगे, और वो ऐसा कंटिन्यू होता है कि दिन की 10-12, 1-2 भी बज रहा है लेकिन उठने का वो नहीं होता है उनसे। तो हम कैसे वो मेंटल प्रिपरेशन करें कि नहीं, मुझे कितना भी काम करे मुझे इस टाइम तक सोना है, इसके बाद नहीं सोना है।
2: ये सबसे जरूरी है जानना यहाँ पे कि आपकी प्रोडक्टिविटी आपके जगने में होती है, सोने के अंदर में नहीं होती। नींद हम अपने दिमाग को और शरीर को रिलैक्सेशन देने के लिए कर रहे हैं और नींद का कोई काम नहीं। नींद का काम यह है कि हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा दिमाग रिलैक्स स्टेट में जाए, और उसको एक लेवल तक की रिलैक्सेशन चाहिए, उसके बाद वो रिलैक्सेशन चाहिए इसलिए कि वो दोबारा काम कर सके। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो जगने के अंदर में है, सोने के अंदर में कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। सोने से हम कोई काम नहीं कर सकते, दुनिया में सारे काम सब मेहनत चक्कर ही होती। तो इसमें जो लोगों का कहना है कि हम क्यों जागें, तो सबसे पहले तो इसमें जानना ये जरूरी है कि अधिक सोने से आपको कुछ अधिक फायदा नहीं हो रहा, कुछ लाभ नहीं हो रहा, ना आपको ना आपके शरीर को कोई लाभ नहीं हो रहा, ना आपके मन को, ना आपकी बुद्धि को, ना आपके शरीर को कोई लाभ नहीं हो रहा अधिक सोने से। उल्टा उसके नुकसान जरूर हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी शुगर अनकंट्रोल हो रही है, आपका थायराइड फंक्शन अनकंट्रोल होने लग पड़ता है अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। जब हम जगेंगे तभी हमें, अगर हम 10-12 बजे तक 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो हम अपने जो सुबह के रूटीन है, जो मॉर्निंग वॉक है जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जिम जाना है, जॉगिंग करना है, मेडिटेशन करना है, वो कब करेंगे, अगर हम 12-1 बजे तक सो रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर को उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो अधिक सोने से हमें कोई अधिक सोने से अब नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहे हैं, वो बीमारियों का घर बनता जा रहा है। तो इसलिए सोने के समय को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो सोने के शुरुआत का समय, जब हमें सोने का समय निर्धारित करना जरूरी है, इस समय सोने चले जाना है, 10 बजे मैं बेड पर जाऊंगा, और उसको रोजाना वैसा ही रखना। जब आप वैसा रखेंगे और उसके बाद सुबह उठकर बेड से उठना, जगने का मतलब ये नहीं है कि आप जग गए और उसके बाद बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं। जगने का मतलब जब सोने के लिए आप बिस्तर पर जा रहे हैं, तो जब आप जग रहे हैं तो आपने बिस्तर छोड़ देना है, अपने बिस्तर से खड़े हो जाना है और अपने नित्य कर्म करने हैं। तो जब आप वो करना शुरू करेंगे, एक बार जब बिस्तर छोड़ देंगे तब फिर आप दोबारा नींद आने की संभावना कम है। बट अगर आप जग गए और बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं, सुबह 6 बजे का अलार्म बजा, आपने अलार्म बंद कर दिया, आप गए और बिस्तर पर लेटे हुए हैं, फिर आप दोबारा नींद एक गई। तो हमें उस चीज के ऊपर काम करना जरूरी है कि हम ये समझना होगा कि हमें बिस्तर को छोड़ देना है, नित्य कर्म जो करने हैं, मेडिटेशन करना है, वॉक करना है या पढ़ाई करनी, पढ़ने की जो चीज जो है वो सुबह का होता है, उस समय सबसे ज्यादा चीजें याद रहती हैं। तो उठते हैं तो आपके पास आपको 1-1.5 घंटा मिलता है दिन के सब काम निपटाने के लिए, तो आपके पास में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
1: जी सर, ये तो ओवर स्लीपिंग और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स और स्लीपिंग आवर्स की बात हो गई है। इसमें नींद की जब हम बातचीत करते हैं तो और चीज़ें हैं, एक तो खर्राटे मारते हैं, क्या उनकी नींद उतनी ही गहरी और रिलैक्सिंग होती है? और दूसरा, जब वो खर्राटे मारते हैं उस कारण से दूसरों की नींद डिस्टर्ब होती है, फिर वो लोग नींद ना होने के कारण इरिटेशन है वो सभी चीज़ों से वो जूझते रहते हैं, तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या खर्राटे का भी कोई इलाज होता है? ये साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है? इसका क्या कारण है?
2: जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बात करनी चाहिए बेसिकली कि हम लोगों को क्या लगता है, जो नॉर्मल जो लोग हैं उनके बीच में ये मिथ है कि खर्राटे वाली नींद जो है वो बहुत अच्छी है। मतलब कोई अगर खर्राटे मार के सो रहा है तो लोग उसको बोलते हैं कि अच्छा खासा तो एकदम खर्राटे ले रहा था, इतना अच्छा सो रहा था। ये बात जनरली हम लोग आपस में जो पब्लिक जनरल पब्लिक है वो ये बात हमेशा करती है आपस में कि एकदम गहरी नींद में सो रहा है, घोड़े बेच के सो रहा है, मतलब खर्राटे लेके सो रहा है। तो अब यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि खर्राटों वाली नींद अच्छी नींद नहीं होती। अच्छी नींद वो है जो बिना खर्राटों के आ रही है। खर्राटों वाली नींद बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं होती। जो व्यक्ति खर्राटे लेकर सो रहा है हम उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। वो खर्राटे किस लिए आ रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। खर्राटों का कारण क्या है? खर्राटे एक फिजिकल फिनोमिना है, वो इसलिए हो रहा है कि जब दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो गई
1: जी,
2: तो दिमाग ने ऑक्सीजन की डिमांड करनी शुरू करी बाकी शरीर के साथ, तो दिमाग जग गया। दिमाग सो रहा था, अचानक से उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, वो जग गया, उसके सारे पार्ट अलर्ट हो गए, उसने ऑक्सीजन की डिमांड करनी शुरू करी। अब उस ऑक्सीजन की डिमांड के लिए वो छाती के ऊपर में प्रेशर सिग्नल भेजता है कि आप मुझे और हवा सोक के दीजिए। तो उस कंडीशन के अंदर जो छाती है वो जोर जोर से हवा खींचने की कोशिश करती है और उस समय जो आवाज़ पैदा होती है वो खर्राटे हैं। तो बेसिकली वो ब्रेन डिमांड कर रहा है ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। और वो क्यों नहीं पहुंच पा रही, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसको जनरली जो हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि ज़्यादातर जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा होता है वो लोग बहुत खर्राटे मारते हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। उनमें क्या होता है कि जो जीभ है जब वो सो रहे हैं वो पीछे चली जाती है, टंग फॉल बैक के नाम से आता है, वो जीभ पीछे चली जाती है और वो सांस की नली के रास्ते को रोकने लग पड़ती है। इसलिए हवा फेफड़ों में ठीक ठाक नहीं जा रही। तो जब हवा ठीक ठाक फेफड़ों में नहीं जा रही तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच रही खून के अंदर में, और खून में जब ऑक्सीजन कम हो रही है तो वो दिमाग को कम ऑक्सीजन मिल रही है। तो इसीलिए खर्राटे का फिनोमिना आता है। तो खर्राटों का मतलब ये है कि जब जब खर्राटे लग रहे हैं तो एक्चुअली ब्रेन जो है वो गहरी नींद में नहीं जा रहा है, वो एकदम कच्ची नींद में रह रहा है, वो नींद अच्छी नहीं है। खर्राटों वाली नींद बहुत बहुत ख़राब है। और जिन भी श्रोताओं को खर्राटे आ रहे हैं उनको ज़रूर अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए। खर्राटे साथ वाले मनुष्य के लिए तो जो नुकसान, उसकी नींद तो डिस्टर्ब होती है बट आपकी नींद की क्वालिटी भी एक्चुअली ख़राब है और धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है वो परेशान होता जा रहा है। और जो लोग रात को खर्राटे लेकर सोते हैं उन्हीं को दिन में डे टाइम स्लीपलेस आती है। जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि बैठे बैठे नींद के झटके लग जाना, वो उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं जो रात में खर्राटों वाली नींद ले रहे हैं, जिनको रात में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली अपने टेस्ट करवाने चाहिए, आगे जांच करवानी चाहिए कि ये खर्राटे क्यों आ रहे हैं, कि इनका कारण नाक या मुँह में है या शुगर की वजह से हो रहे हैं या ब्रेन के अंदर में कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से खर्राटों वाली नींद, जो सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं, जबकि ब्रेन के अंदर में नींद के सेल्स गड़बड़ कर रहे हैं या फिर जीभ नीचे जा रही है या वजन बहुत अधिक है। खासकर मैंने जैसे बताया कि मोटे लोगों में खर्राटे लेने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जिनका वजन अधिक है उनमें खर्राटे लेने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो खर्राटों वाली नींद को ठीक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं
1: जी। तो इसका साइकोलॉजी से कोई संबंध नहीं है खर्राटे वालों से?
2: खर्राटे की नींद का न्यूरोलॉजी से संबंध है, बेसिकली न्यूरोसाइकोलॉजी से संबंध है उसका। बेसिकली सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, साइकेट्री और न्यूरोसाइकेट्री संबंध है उसका। नसों का काम है सिर्फ कि ब्रेन जो है वो रात को बार बार जाग रहा है। इसके अंदर में सबसे पहले हम मरीज को वजन कम करने की सलाह देते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो बाईपास बोल के एक मशीन आती है जनरली, वो यूज़ करने के लिए दी जाती है जो ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ में नाक से अंदर की ओर भेजती है ताकि रात की नींद गहरी हो। तो जब एक बार ब्रेन को ऑक्सीजन ठीक ठाक मिलने लग पड़ती है तो चीज़ें ठीक होने लग पड़ती हैं। बट मरीज से हम कोशिश करते हैं कि उसकी शुगर ठीक रहे, उसका वजन कम हो, ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं। ये एक प्योरली मेडिकल इलनेस है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसमें कि खर्राटे की दिक्कत आती है
1: जी। सर, दूसरी प्रकार की जो नींद है जिसमें हम सपने बहुत देखते हैं, कई बार ये कहावतें भी सपनों के रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, जो दिन में सपने देखते हैं या फिर वो जो मृत वेले के टाइम पे जो सपने आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कई लोगों की सपने ऐसे होते हैं वो नींद ख़राब कर देती हैं, हॉन्टिंग होते हैं, इससे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं और वो सपने किसी को सुकून की नींद देती है तो किसी की नींद उड़ा देते हैं, लेकिन अलग, लेकिन क्या ये जो सपने हम देखते हैं उसमें भी हमारी नींद और नींद से जो शरीर को रिलैक्सेशन मिलनी है वो हो रहा है, या फिर हमारी नींद पूरी हो चुकी है लेकिन हम ख्याल कर रहे हैं कि हम सो रहे हैं, या जो भी हम फिजिकली यहाँ पे सो रहे हैं लेकिन कॉन्शियसली कहीं और हैं, एंड देन वी आर नॉट, वो नींद फुलफिल नहीं हो रही है।
2: देखिए, सपने हमारी नींद का बहुत जरूरी हिस्सा है। मैंने जैसा आपको बताया कि नींद के दो पार्ट होते हैं, NREM और REM। तो REM स्लीप के अंदर में सपने आते हैं, क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, पुतलियाँ घूम रही होती हैं, तो उस समय जो भी दिन में या उसके कुछ दिन पहले घटित हुआ है, जो दिमाग में स्टोर हुआ है, दिमाग उसी को आसान फॉर्म में रिलीज करने की कोशिश करता है, और वही चीज़ें जो है वो सपने की फॉर्म में आती है। आप जब, जैसे कि आप किसी पुराने अपने रिलेटिव की अगर बात कर रहे हैं, जो भी मुझे, तो आप देखेंगे कि तीसरे चौथे दिन अगर आप लगातार बात कर रहे हैं तो

0: आपको सपने में वो व्यक्ति दिखाई देने लग पड़ा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमने इतनी बात करी कि दिमाग में जो उस व्यक्ति की छवि थी वो एक्टिवेट हो गई, तो वो सपने में हमें वही छवि दिखाएगी और हम उस व्यक्ति के बारे में जो जो सोच रहे थे वो वैसा वैसा कुछ, मतलब बिल्कुल वैसा नहीं, बट उससे जुड़ा जुड़ा कुछ ना कुछ आपके सपने में आएगा। तब अब जो सपने, जैसे कि जिनको बोलते हैं कि जिनको सपने में भूतों के सपने आते हैं वो डर जाते हैं, तो बेसिकली वो लोग एंग्जाइटी की बीमारी से पीड़ित होते हैं। उनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है तो उन लोगों को सपने अत्यधिक आते हैं, क्योंकि उनका दिन ब्रेन जो है वो सारा दिन बहुत बेचैन और बहुत कोशिश करता रहता है अपने आप को कंट्रोल करने की, तो इस वजह से बहुत डिस्टर्ब रहता है उनका ब्रेन। तो उन लोगों की फॉर्म के अंदर में आती है जिसमें उनको ऐसे सपने आएंगे कि जैसे कि आपको बहुत बारी सपना आएगा कि मेरा एग्ज़ाम छूट रहा है, हालांकि अब मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा, फिर भी मुझे रात को ये सपना आता है कि मैं अपने एग्ज़ाम में टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा, मेरी ट्रेन छूट रही है। बहुत बारी सपना आता है कि मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन निकल चुकी है। इस तरह के सपने आते हैं, उससे उन सपनों से आदमी घबरा के आदमी की नींद खुल जाती है। तो बेसिकली वो हमारी इनर एंग्जाइटी को शो करते हैं। तो अगर एंग्जाइटी के ऊपर में काबू पाया जाएगा वाई JPMR करके या दवाई के साथ में या मेडिटेशन के साथ में, जैसे भी एंग्जाइटी में जब कंट्रोल किया जाएगा तो सपनों की नींद जो है वो कम होने लग पड़ेगी और सपनों की क्वालिटी अच्छी होने लग पड़ेगी। मतलब आपको अच्छे अच्छे स्वप्न आएंगे। स्वप्न आने तो जरूरी है, स्वप्न आएंगे ही आएंगे, उसको बंद नहीं किया जा सकता। बट अच्छे स्वप्न आएंगे तो हमको दिन के समय वो याद नहीं रहेंगे, बट अगर डरावने सपने आए जिसमें हमारी नींद खुल गई अचानक से, तो वो हमें काफ़ी देर तक याद रहते हैं अगर हमारे REM स्लीप वाले स्वप्न आ रहे हैं।
1: तो जिस तरीके से आपने एक स्लीप हाइजीन के बारे में बोला है अनिद्रा के लोगों के लिए, तो इज देयर एनी मेथड या फिर कोई प्रिपरेशन जो ओवर स्लीपिंग या फिर ये सपने हैं, ये सभी तरीके के जो डिजास्टर्स हैं आज जिन चीज़ों पे हमने चर्चा की है, उसके लिए भी कोई तरीका है या प्रिपरेशन है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए?
0: ओवर स्लीपिंग के लिए तो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई कि सबसे पहले जैसे नींद सोने जाने का समय निर्धारित करना है, वैसे ही उठने का समय भी हमें फिक्स करना है। पहला पॉइंट है ये कि हमें उठने का समय हमेशा फिक्स करना है और उठने के बाद हमें बिस्तर को छोड़ देना है। ये दूसरा पॉइंट है कि हमें बिस्तर पे नहीं रहना है। जब सोने जाना है स्लीप हाइजीन के समय, तब बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना है। तो जैसे ही आपके उठने का समय हुआ आपको बिस्तर को छोड़ देना है, बिस्तर का त्याग कर देना। तीसरी चीज, रात के समय शराब या इन सब का सेवन नहीं करना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। वो हमारे को हाइपरसोमनिया को बढ़ा देते हैं या नींद को कम भी करते हैं, पर बहुत केसेस में वो नींद को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो कोशिश करनी है कि हम नशे से दूर रहें, तो उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। चौथी, हाइपरसोमनिया का हमें कारण निकालना पड़ेगा कि कहीं कोई शारीरिक परेशानी की वजह से, कोई मेडिकल इलनेस की वजह से तो नहीं आ रहा। अगर वैसा हो रहा है तो हमें उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। और जो लोग ऑलरेडी हाइपरसोमिक हैं, जो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, उन्होंने तरीका बताया था कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आधा आधा एक एक घंटा कम करते करते अपने आप को 2 से 3 महीने में नॉर्मल लेके आना है। बनिस्पत की आप एक दिन में कोशिश करें कि मैं सुबह 4 बजे कल से उठना शुरू कर दूं, वैसा नहीं करना है। कोशिश करनी है कि एक एक घंटे अपनी नींद को ठीक करते करते आप 1 से 1.5 महीने में अपनी नींद का समय को ठीक करें। और जहाँ तक स्वप्न की बात है, तो स्वप्ने जो जैसे मैंने बताया कि उसमें वो जो डरावने सपने और ये सब डिसऑर्डर आते हैं वो एंग्जाइटी की वजह से बहुत बार होते हैं। तो हमें एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, हमें जड़ के ऊपर में काम करने की कोशिश करनी है। तो एंग्जाइटी के लिए जैसा डॉक्टर हर्षिता ने बताया था कि JPMR एक टेक्निक होती है, जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, वो मैम इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बताएंगे। ये हो गया, या फिर एंग्जाइटी के लिए थोड़ा मेडिटेशन, सोने से पहले थोड़ा ध्यान लगाकर सोएं, तो उससे आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो आपके सपने जो हैं वो अच्छे स्वप्न रहेंगे और ऐसे नहीं रहेंगे कि आपको सुबह याद रहें या आपकी रात की नींद में खलल डालें।
1: जी सर, यहाँ पर एक और सवाल है जहाँ पर हम महिलाओं की जागरूकता और महिलाओं की मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी इस प्रकार की स्लीप साइकिल्स को देखने को मिलता है, वो जो रेस्ट चाहिए, या कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान ओवर स्लीपिंग की जो आदत पड़ जाती है, घंटों तक वो सोने की इच्छा होना या नींद करने की। तो इज इट समथिंग डिसऑर्डर या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे या महिलाओं को खास करके अपनी हेल्थ को देखते हुए कुछ प्रिकॉशंस लेना होता है?
0: देखिए, प्रेगनेंसी के समय डेफिनेटली नींद कभी कुछ लोगों की बढ़ जाती है, कुछ लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि वो हार्मोनल डिपेंडेंट होते हैं। बट कोशिश यही करनी है कि नींद जो है प्रेगनेंसी के समय भी हम 8 से 10 घंटे के बीच की नींद रखें, इससे ज़्यादा की नींद ना लें, ठीक है? क्योंकि आप आपको प्रेगनेंसी के अंदर में दिन के सारे कार्य भी करने हैं, नॉर्मल कार्य भी करने हैं अपने, तो अगर आप नींद बहुत ज़्यादा लेंगी तो उसका ऐसा तो कुछ असर नहीं पड़ता, पर जब एक बार डिलीवरी हो जाएगी, जब पोस्टमार्टम पीरियड आएगा, क्योंकि उस समय जब बच्चा आएगा तो बच्चा माँ के पास ही रहेगा, तो उसके बाद में अचानक से आपकी स्लीप साइकिल चेंज होगी, क्योंकि बच्चा जो है वो रात को भी जगेगा, रात को बहुत बार रोएगा, आपको उठना पड़ेगा, उसको दूध पिलाना पड़ेगा, तो उस समय आपकी नींद जो है वो अचानक से चेंज हो जाएगी। अगर आप प्रेगनेंसी के समय 15-15 घंटे सो रही हैं आखिर में जाकर, तो फिर जब अचानक से आपकी नींद 5-4 घंटे की रह जाएगी, तो आप फिर बहुत डिस्टर्ब फील करने लग पड़ेगी, तो जैसे पोस्टमार्टम की इस तरह की बीमारियां सिर उठने लग पड़ती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रेगनेंसी के समय अपनी नींद को निर्धारित रखें, और पोस्टमार्टम समय में जो मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि बच्चे ने तो रात को जगना ही है, तो मैं हमेशा ये माँ जो पोस्टमार्टम मदर होती है उनको सलाह देता हूँ कि आप अपने सोने का समय अपने बच्चे के साथ निर्धारित करें। जिस समय बच्चा सो रहा है आप उस समय कोशिश करें कि आप अपनी नैप ले लें, क्योंकि आपको कभी भी इकट्ठी 5 घंटे सोने की फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चे को 2-2.5 घंटे में भूख लगनी ही लगनी है, और उसके बाद वो उठेगा, रोना शुरू करेगा, तो आपको जगना पड़ेगा। उसमें जो जीवन साथी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि वो भी वाइफ की मदद करे, कि जिस समय वाइफ आराम कर रही है तो उस समय बच्चे की देखभाल वो करे, क्योंकि पोस्टमार्टम पीरियड आजकल जैसा कि बोलते हैं कि सिर्फ महिला का नहीं, पति का भी साथ में होता है, उसको भी साथ में पूरा का पूरा सहयोग देना पड़ता है। तो महिलाओं के लिए जो क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम भी महिलाओं के लिए है, तो उनके लिए प्रेगनेंसी में अपनी नींद को ठीक ठाक रखना है, 8-10 घंटे सोना है, उसी शेड्यूल को सारी प्रेगनेंसी में मेंटेन करना है, अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं होने देना, और जब पोस्टमार्टम पीरियड आना है तो उस समय कोशिश करनी है कि अपनी नींद को बच्चे की नींद के साथ साथ पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको डेफिनेटली पहले 3-4 महीने सोने का समय बहुत कम मिलने वाला है।
1: जी, इसके अलावा और कोई प्रिकॉशंस या फिर कोई बातें हैं जो नींद को रिलेटेड खासकर महिलाओं के लिए?
0: डॉक्टर हर्षिता अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहती हैं तो वो बता सकती हैं।
1: जी
2: हाँ, श्योर, जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, लाइक रिलेटेड टू जब हम स्पेसिफिकली वुमेन की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो एक स्लीप केयर है वो वुमेन की लाइफ में अगर बहुत डिफरेंट स्टेजेस पे चेंज होता है, अगर हम मेंसुरेशन की बात करें, उसका जो साइकिल होता है उसकी बात करें, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो एक इन जनरल से वहाँ पे PMS के सिम्टम्स अगर आते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं उनके वजह से वुमेन की जो स्लीप डिस्टर्बेंस फील वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो पीरियड्स के पहले जिनको हम PMS बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और पीरियड्स के दौरान स्लीप की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। तो अगर हम कुछ चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखें तो हम उसको भी अच्छा कर सकते हैं, कि जैसे हीट पैड्स होते हैं, हॉट वाटर बॉटल हो सकती है, उसका यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसी टीज आती हैं, चाय आती हैं, अगर वो उनका सेवन करें बेड टाइम पर, तो वो बहुत रिलैक्सिंग, एक आपको रिलैक्स करने में हेल्प करती है। सो एक ये चीज़ हम स्पेसिफिकली वेमेन के लिए कर सकते हैं। दूसरा, जब टाइम आता है मेनोपोज का, उस टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो रात को वेमेन फील करती हैं कि उनको नाइट स्वेट्स होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, एकदम से गर्मी लगती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, तो वहाँ पे भी वो लोग अपनी स्लीप का उस समय पर भी ध्यान रखें, अपने बेडरूम को थोड़ा ठंडा रखें, AC या फैन का यूज़ करें, और अपना सोने का उठने का टाइम फिक्स करें, और एक एक्सरसाइज जो है वो उसमें स्पेसिफिकली ऐड ऑन करें, क्योंकि डेली एक मॉडरेट एक्सरसाइज से हमारी स्लीप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम स्पेसिफिकली वुमेन के लिए ऐड कर सकते हैं।
1: थैंक यू सो मच आप दोनों को, डॉक्टर वीरेंद्र जी और डॉक्टर हर्षिता जी। हमारी जो नींद जीवन का सबसे प्यारी चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में एक संतुलन और एक सही तरीके से सोना और क्यों ज़रूरी है और उसको ठीक कैसे करना है, इन चीज़ों के ऊपर आज प्रकाश डाला और हमारी श्रोताओं को, खास करके हमारी महिलाओं को जागरूक किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी शुक्रिया, धन्यवाद
1: जी। तो दोस्तों, यहीं पे हम विराम लेते हैं और मैं समझती हूँ कि आप सभी को कुछ बेहतर जानकारियाँ मिली हैं, और जहाँ पे भी आपको लगा है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है या फिर हमारे घर में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें और जल्द से जल्द उसको ठीक करने की कोशिश करें। और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं या फिर जो भी जिनसे भी आपको संपर्क करना है उनसे संपर्क करें और अपनी स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखें। हम

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी हरो गांव हरो अंचल। सही में अपना गांव और अपना अंचल नाम जब सुनते हैं, जिस गांव और अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, उस गांव को हम कभी नहीं भूल पाते जहाँ भी रहे, लेकिन अपनापन आता है क्योंकि उसमें पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे। वो खेत खलियान, वो दोस्ती यारी, वो पढ़ाई और वो सभी का जो प्यार, बचपन का दिन याद आता है गांव का नाम सुनते। कहते हैं गांव जिस स्वर्ग जैसे, हेवन जैसे लगता है, अपना भेटमती अपना जन्म स्थान स्वर्ग जैसे लगता है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जब हम

0: और अंचल में जाते हैं, ढाने ढाने जाते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी वर्ग से हम परिचित कराते हैं और उनका गतिविधि को सब तक पहुंचाने के लिए एक मंच, एक स्टेज देता है रेडियो मधुबन। इस मंच का माध्यम से अपना जो फायदा, जो भी गतिविधि, चाहे समस्या हो चाहे समाधान हो, समाधान स्वरूप बनते कभी कभी समस्या स्वरूप भी बन जाते हैं। तो इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब गाँव और अंचल में जाते हैं, हमें बहुत खुशी होता है क्योंकि सभी का बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो समुदाय के लिए, समुदाय द्वारा और समुदाय के हित में प्रस्तुत करते हैं। तो आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज रेडियो मधुबन गांव वासियों के साथ और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, गांव वासियों को खासकर किसान भाइयों लाभ पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा जो लाभ देते हैं उसका तहत आज आपके पास रूबरू कराएंगे स्पेशलिस्ट जो कि कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय लेंगे और आज हमारा इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे। बखूब में बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा। मैं तो कहूँगा ध्यान से हमारा किसान मित्र सुने और उससे बहुत कुछ फायदा मिलेगा। तो पहले उनका परिचय लेंगे, उनका सक्सेस स्टोरी, यहाँ तक कैसे पहुँचे और उनका पोस्ट क्या है और क्या करते हैं कितने दिन से और इसका श्रेय किसको देना चाहते, किसका बदौलत यहाँ पर पहुँचे। कृषि विभाग से जो महान अनुभवी एक्सपर्ट हैं तो उन कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, उनको स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से, सभी अधिकारियों की तरफ से आपका परिचय।
1: थैंक यू सर। सर मेरा नाम राकेश कुमार गरासिया है और मैं पिनवाड़ा तहसील के आमली गांव का रहने वाला हूं और मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो पिनवाड़ा से ही हुई है
0: जी सर,
1: 12th तक। और उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर में BSc करने के लिए, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JET एग्ज़ाम होता है, उसके माध्यम से है जो अपने BSc में अपने एडमिशन होता है। तो वो उस टाइम जब मैं 12th में था जब तक मुझे पता नहीं था कि ऐसे कोई, 11th में था जब पता नहीं था कि कोई जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट भी कुछ होता है। तो गाँव में ऐसे खेलते खेलते थे तो उन्होंने बताया कि भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लो 10th पास करने के बाद। तो वो ले ली, भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अच्छा है, खेती में इंटरेस्ट है, घर पे भी खेती करते हैं, तो मैंने ले ली। फिर 11th पढ़ ली और फिर कहा कि भाई आप BSc करोगे तो उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन आपसे आपका नहीं होगा। तो फिर मैंने 11th में थोड़ा JET के बारे में पता किया और 12th में थोड़ी बहुत तैयारी करी और फिर मैं उदयपुर जो है मेरा सेंटर आया था JET का और वहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरे ऑल राजस्थान में ST कैटेगरी में 9th रैंक मेरे को हासिल हुई थी उस टाइम और मेरे को राजस्थान की टॉप मोस्ट कॉलेज, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेरे को अलॉट हुई थी और मेरी जो BSc है वो राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर से हुई है। और उसके उपरांत मेरे फादर टीचर थे जो फिर 2013 में निधन हो गया था उनका 13 में, तो उसके बाद 2014 में उनकी जगह में अनुकंपा नियुक्ति में पंचायत समिति पिंडवाड़ा में LDC के पद पे मतलब अनुकंपा नियुक्ति में लगा था। और उसके बाद भी मैं निरंतर पढ़ाई चालू ही थी मेरी, BSc तो कंप्लीट हो चुकी थी मेरी, तो रेगुलर स्टडी चालू ही थी। उसके बाद मैंने सहायक कृषि अधिकारी 2015 वाला एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं एग्ज़ाम हाइड भी गया था, इंटरव्यू में कुछ नंबर से रह गया था लेकिन उसमें नहीं हुआ। उसके बाद जस्ट कृषि विभाग की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 आई थी, उसमें मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद मेरा चयन हो गया। जो चयन होने के बाद मेरे को जो है आबरोड पंचायत समिति का जो आवल क्षेत्र है वहाँ पे मेरे को जो है कृषि पर्यवेक्षक पद के रूप में मेरे को जो है यहाँ पे पोस्टिंग मिली है।
0: कब तक कौन सा ईयर में पोस्टिंग, पहला पोस्टिंग?
1: पहला पोस्टिंग सर 2014 से लेके 2020 तक में है जो पंचायत समिति में रहा और 2020 में मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे कृषि विभाग में और अभी भी सर निरंतर मैं आगे उच्च पद के लिए तैयारी जारी है सर मेरी।
0: तो राकेश सर धन्यवाद देते हैं इस तरह मेहनत करके पढ़ाई और लगन। एक आदिवासी जो गरासिया जाति से आप उभर कर आए हैं ये काम बात नहीं है क्योंकि आपका समाज के लिए आप एक उदाहरण एग्जाम्पल बने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते हैं और उन लोग का जो आर्थिक स्तंभ बहुत कम होने के नाते पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते और बच्चों का भले आर्थिक रहेगा तब भी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि संघ दोष में उनका जो रीति रिवाज संस्कृति को फॉलो करते हैं, कम समय में शादी कर देना और ड्रॉप आउट हो जाना ये इसका मुख्य कारण होता है जिसका चलते बच्चे आगे नहीं आ पाए। कोई कोई बच्चे इससे आ निकले, इस तरह कुछ बच्चे अभी होशियार होकर निकल रहे हैं, लेकिन ये
2: अंचल के लिए और खासकर आपका जो समाज गरज से समाज के लिए प्रेरणा गई, आप बने एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसे। आपका जो ज्वलंत एग्जाम्पल है, इससे हमारा जो श्रोता मित्र खासकर यूथ जो पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे इसे सोच रहे, तो आपका जो प्रेरणा गई सक्सेस स्टोरी का जो आप बताए इससे जरूर फायदा ले, ये हमारा भावना है। सर, जैसे आप पढ़ाई का समय में कितने घंटा मेहनत करते थे और क्या प्रिपरेशन करते हैं और आपका फोकस क्या रहता है, वो चीज के बारे में थोड़ा बताएं
1: सर,
2: इससे जो बच्चे आना चाहेंगे उनको भी प्रेरणा मिले।
1: बिल्कुल सर। सर, ये पढ़ाई के मामले में सर देखा जाए तो अधिकतर जो ट्राइबल क्षेत्र के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो यूँ सोचते हैं कि हमें सर समय नहीं मिलता या हमें फैसिलिटी नहीं मिलती है। एक्चुअल में ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। सही बात तो है, वो पढ़ते ही नहीं है। अगर अपने पास किताब है, भले एक किताब भी हो, तो उसको ढंग से अगर पढ़ा जाए ना तो आराम से पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के लिए क्या है कि हमारे समाज में क्या लड़के ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं और वो बस यूँ जब कोई एग्ज़ाम होता है उसके 15-20 दिन पहले शुरुआत करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे अपन को टारगेट लेके चलना पड़ेगा, साल भर 6 महीने का टारगेट, उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपन को एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे को इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो मैं सर क्या करता था कि बिल्कुल एकांत जगह गाय चराने चला जाता था, गाय चराने जाता था, वहाँ बिल्कुल जंगल में एकांत जैसा था, किताब लेके जाता था। जिस दिन छुट्टी होती यूँ तो फिर बढ़िया आराम से पढ़ता था, शांति से छुट्टी होती थी उस दिन। और ऑफिस वर्क में 2014 के बीच ऑफिस वर्क में दिन में तो पढ़ाई सर नहीं हो पाती थी, रात के टाइम में 2-3 घंटे सर निकाल लेता था, 2-3 घंटे, कभी कभी 4-5 घंटे, कभी कभी पूरी नाइट भी निकाल लेता था। शुक्रवार का दिन होता था, शनिवार को छुट्टी होती थी, तो फिर वो पूरा नाइट उसमें जी गुजरता था।
2: ये हो गया मेहनत और जिसका चलता है। जी सर, ठीक सर। तो हाँ जी, तो जैसे आपने बताया अपने समाज को देखे होंगे और आप जो अनुभव किए हैं और उस तरह सिचुएशन से, उस तरह जो क्लाइमेट है, उस तरह जो परिस्थिति आता है, उस परिस्थिति से आप निकल कर अपना स्वास्थ्य नीति को बजाय रखें और कैसे हम पढ़ाई करें और कहाँ पर करेंगे और जिससे हमारा फायदा होगा, वो चीज को देखें। उस संघ में नहीं गए, संघ दोष में जाने से खराब हो जाते हैं, लेकिन आपको संघ भी अच्छा मिला और एकांत प्रिय भी होते थे और पढ़ाई को लगन से करते थे, दृढ़ता ले ली, ये ठान लीजिए मुझे कुछ करना है और सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं ले पा रहे, ये तो हमारा गलती है। इतना सुविधा है SC ST के लिए, रिजर्वेशन का कोटा, उनका छात्रवृत्ति, पढ़ाई में बहुत सुविधा मिलता है, फिर भी हम उसका फायदा तो नहीं ले पाएंगे, तो हमारा ही कमी रहेंगे। तो इस कार्यक्रम को जिसे आपने सजाया और आपने सक्सेस स्टोरी किस तरह पहुँचा, क्या मेहनत किया, क्या उतार चढ़ाव आया, जैसे आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना आज AA कौन सा पोस्ट में?
1: सर मैं भी कृषि पर्यवेक्षक हूँ, लेकिन अतिरिक्त चार्ज मेरे को AA का दे रखा है मूंगथला का, लेकिन कृषि पर्यवेक्षक हूँ मैं।
2: जी जी, कृषि पर्यवेक्षक में आप रह रहे हैं और फिर भी इतना मानसा नहीं देखते, अपना कर्म को भगवान को जो मानते हैं और इष्ट को मानकर आप चलते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो सर, ये जो आज इस मंच का माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का बात क्या करेंगे सोच रहे, तो उनके लिए आपका क्या की मैसेज होगा, क्या आपको जैसे आपने बताया मैं ऐसे करता था और ऐसे पाया है, तो जो बच्चे सुन रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या की मैसेज होगा वो स्टूडेंट के लिए?
1: सर मेरा की मैसेज यही होगा कि किसी भी सब्जेक्ट से आप हो भले, लेकिन आपको टारगेट तो बनाना ही पड़ेगा। किसी भी एग्जाम को फाइट करना है तो 5-6 महीने की तैयारी तो कम से कम चाहिए, भले छोटे से छोटे जॉब हो, 5-6 महीने की तैयारी चाहिए। उससे ज़्यादा अपन कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, तो दिन का कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 घंटे तो निकालने चाहिए, 4-5 घंटे तो आपको तैयारी करनी होगी, तब जाके आजकल कंपटीशन हर जगह टाइट हो गया है। TSP क्षेत्र में भी कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि 2018 में ये और TSP क्षेत्र में दूसरे गाँव भी जुड़े हैं, तो अब और TSP में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए उनको कम से कम 5-6 घंटे तो डेली स्टडी करनी जरूरी है और 5-6 महीने का टारगेट जरूरी है।
2: सर इसके लिए आर्थिक संबल कुछ बैकग्राउंड में उसको सपोर्टिंग करता है, आर्थिक जिसका परिस्थिति बहुत कम है, क्या वो अचीव कर सकता है?
1: बिल्कुल सर, वो भी कर सकता है, अगर चाहे तो कर सकता है, क्योंकि इसमें किताबें तो हर किसी के पास आजकल मिल जाती है, ज़्यादा महंगी कोई हाथी है नहीं किताबें, और एक दो किताबें खरीद लेता है तो भी 2-3 किताबों से वो फाइट कर सकता है। अब जैसे छोटे लेवल की तैयारी करनी है तो जैसे अब NCERT की पुस्तकें हैं, जैसे 6ठी से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें हैं, ये छोटे एग्जाम में सीधे इसमें से क्वेश्चन आता है, ये इन किताबों को खरीदने जाने की जरूरत ही नहीं है, कि गवर्नमेंट स्कूल में आप लाइब्रेरी है, वहाँ से आप जहाँ पढ़े हैं वहाँ से टीचर से रिक्वेस्ट करके उनकी अच्छी तरह पूरा एक एक लाइन लाइन मतलब पढ़नी जरूरी है, तब जाके वो उसका बेसिक तैयार होता है, क्योंकि जब पहले अपन पढ़ते थे छठी सात जब उतना नॉलेज नहीं था, बस ऐसे ही पास हो गए और वो चलो। अब वो चीजें बहुत काम की है, वो चीजें इतनी काम की है और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं, छठी से लेके बारहवीं तक की पुस्तकों में से हर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं।
0: मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन आप अच्छा ये बता दिए।
1: और मैं सबसे ज्यादा मैं भी खुद एनसीईआरटी की बुक पढ़ता हूँ, छठी से लेकर बारहवीं तक की भी पढ़ता हूँ। बाकी हाँ उससे आता है, बाकी कोचिंग वोचिंग तो ठीक है नॉलेज के लिए कि भाई कैसे क्या कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, बाकी वो पुस्तकें अगर आप पढ़ते हो आप तो उससे मतलब बहुत अच्छा आपका बैकअप तैयार हो जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए। मतलब
0: आपको तकलीफ नहीं होगी,
1: कोई तकलीफ नहीं होगी।
0: तो सभी हमारा जो टैलेंट बच्चे जो सुन रहे हैं और जो क्या करेंगे आगे के लिए, उनका फ्यूचर क्या है, कौन गाइड करेगा, लेकिन रेडियो मधुबन गाइड करने के लिए इस तरह एक्सपर्ट को रखते हैं और अनुभवी को रखते हैं जिसका फायदा लेना चाहिए इस मंच का माध्यम से। जो भी श्रोता सुन रहे और अभिभावक सुन रहे होंगे, माता पिता भी सुन रहे होंगे, बच्चे तो सुन रहे, लेकिन अभिभावक सुनने के बाद उनके बच्चों को ऐसे तैयारी करिए, उनको ऐसे सपोर्टिंग करिए, तो उनको समझाइए, क्योंकि माता पिता समझदार होते हैं, अभिभावक समझदार होते हैं, तो उनका बच्चों को उनका जो छोटे छोटे जो उनका डिपेंड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको थोड़ा सलाह देकर छाता मैसेज उन तक पहुँचाएंगे तो जरूर ब्लॉक जाएगा किसी न किसी रूप में। लेकिन ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे, ट्राई करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं फल मिलेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद रखे सर को इस तरह कार्यक्रम में अपने सक्सेस स्टोरी का सब किस तरह मेहनत करते थे और किस तरह मेहनत करने के साथ मैसेज के माध्यम से। ये
1: सर एक और मैं बताना चाहूँगा, जैसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए जैसे जो स्टूडेंट अगर 11th 12th में है, अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं 10th के बाद में, तो उनको क्या है सर 5,000 रुपये मिलते हैं प्रति वर्ष के, 11th and 12th के लिए 5,000 रुपये। अगर वो ग्रेजुएशन करता है तो उसको 12,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे।
0: अच्छा बात बता सर, इसके ऊपर डिटेल्स बताए, क्योंकि हम तो जितने स्कूल कॉलेज में हॉस्टल में जाते हैं
1: बिल्कुल,
0: तो बच्चों को ये अच्छा पॉइंट मिलेगा उनको लेने के लिए एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और बच्चे कृषि में हर में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई एडमिन बड़ा भी ऑफिसर भी होगा तो उनका जो बागवानी करते गार्डनिंग करते वो कृषि से रिलेटेड है, और बच्चों को एक अच्छा मौका मिलेगा, एक रास्ता आगे के लिए फ्यूचर के लिए काम आएगा। तो 11th में
1: सर जैसे अपन एडमिशन ले लेते हैं एग्रीकल्चर में, एडमिशन ले लिया उसके बाद या संबंधित क्षेत्र में अपने जो भी कृषि पर वेक्षक है या सहायक कृषि अधिकारी है उससे आप जाके मिल लो, वो फॉर्म भर देगा और वो फॉर्म भर के जैसे ही जिला स्तर पे सबमिट के बाद उसके जो है स्कॉलरशिप जो है शुरू हो जाएगी। स्कॉलरशिप ये कृषि विभाग में उसको एक बार एडमिशन लेने में कृषि विभाग से संपर्क करना पड़ेगा सर।
0: सर उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट देना?
1: डॉक्यूमेंट तो सर कुछ नहीं है, जैसे स्टडी कर रहा है तो उसने इलेवंथ पास कर लिया तो उसके बाद 11th किस मिलेगी?
0: 10th पास कर लिया।
1: हाँ 10th तो पास हो गया, 11th में एडमिशन ले लिया, 11th पास हो गया तो 11th की मिलेगी।
0: अच्छा पास होने के बाद 11th?
1: हाँ हाँ हाँ
0: ओके
1: सर। तो उसके लिए सर 11th का
0: 11th पास होने के बाद सबमिट करेगा।
1: हाँ जैसे सबमिट करेगा भाई,
0: इसका पहले एग्रीकल्चर वहाँ पर क्या सब्जेक्ट होता है
1: एग्रीकल्चर में सर,
0: 11th क्या बताना पड़ेगा?
1: जैसे 10th तक तो सबके कॉमन होता है
0: जी,
1: और 11th में सब्जेक्ट जैसे साइंस मैथमेटिक्स होता है
0: जी,
1: साइंस बायोलॉजी होता है और एग्रीकल्चर भी साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस यहाँ पूरे सिरोही जिले में, सिरोही में है, भीमवाड़ा है, अबू रोड में नहीं है सर, इसलिए यहाँ के क्षेत्र को के लोगों को अभी जानकारी नहीं है। अगर यहाँ अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मिल जाए तो लोगों को जानकारी भी हो जाए। यहाँ
0: तो आपका ऊपर अधिकारी एस डी एम साहब का पहुँचा ये बात बिल्कुल रेडियो के माध्यम से हमारे एस डी एम साहब भी सुन रहे हैं, तो ये
1: नहीं अभी सर एग्रीकल्चर में हो सकता है नेक्स्ट आबरो का नंबर आ जाए। वैसे आबरो बड़ी सिटी के रूप में सिरे से बड़ा माना जाता है वैसे आबरो, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ये अभी साल से शायद सरकार ये इसमें कृषि विभाग में चालू कर दे स्कूलिंग,
0: तो 12th में भी ले सकता है।
1: हाँ 11th से
0: शुरू, कभी
1: 11th से शुरू, 11th 12th, और 12th के बाद में बीएससी के लिए अपन जैसे अदर सब्जेक्ट में डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें सर बीएससी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जेईटी एग्जाम देना पड़ता है। हाँ उसके माध्यम से वो स्टेट लेवल का, अगर अपन को ये चाहते हैं कि अपन नहीं अपन तो भारत में कहीं भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आईसीएआर होता है एग्जाम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो एग्जाम देना पड़ता था। ऑल इंडिया में कहीं भी कॉलेज वो मिलती है, वो भी ग्रेजुएशन है उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो अलग ही है उनके लिए।
0: जैसे साइंस और आर्ट्स कॉमर्स होता है,
1: हाँ तो वैसे साइंस एग्रीकल्चर भी होता है,
0: साइंस एग्रीकल्चर होता है, ये तो पहला बार हम सुन रहे हैं आपसे, ये भी बहुत अच्छा
1: सब्जेक्ट दोनों कॉमन ही होता है, साइंस में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री और तीसरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर होता है, बाकी जो बायोलॉजी और ये केमिस्ट्री दोनों सेम होते हैं
0: सर। क्या साइंस जहाँ पर है जैसे मावल में है, दबर स्कूल में है,
2: गंगा आवासीय स्कूल में साइंस है तो साइंस एग्रीकल्चर होना चाहिए।
1: हाँ साइंस एग्रीकल्चर
2: मैथ फिजिक्स ऐसे नहीं।
1: हाँ एग्रीकल्चर होना। हाँ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दोनों सेम ही होते हैं। मैथ अमेरिका में फिजिक्स होता है, बायोलॉजी में फिजिक्स होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर होता है। बाकी दोनों सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों सेम होते ही।
2: तो स्वतंत्र जो भी हमारा अभिभावक जो शिक्षा विभाग में और जो प्रशासन में जो सुन रहे हैं जरूर इस हाईलाइट करें और आप रोज पंचायत में हो जैसे
1: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबनी।

सत कर्म

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें बहुत खुशी है इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से एक सक्सेस स्टोरी और एक प्रेरणादायी देते हैं, जैसे दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे राकेश सर अपना कार्यक्रम को सजा रहे हैं। आज कृषि ऊपर में हम बात कर रहे हैं, कृषि विभाग ग्राम पंचायत बहादुरपुरा से आज हम लोग बात कर रहे हैं पंचायत ऑफिस में। सारा खासकर हमारा सभी किसान भाइयों के लिए और उनका तरफ से आपको स्वागत करते हैं। पुनः किसान देश का रीढ़ है, जैसे शिक्षक, कृषक और सैनिक, तीन पिलर जैसे लगता है भारत का बदलाव में चले हुए। और जितना राजस्व भी उसी से ज्यादा आता है और रक्षा करने में तो सैनिक ही है। और शिक्षक हमारा अवेयरनेस हमको इतना जागरूक कराते हैं, जिसका बदलाव हम सर्विस मिलता है, हम होशियार बनते हैं। तो इस सभी को तो नमन करना चाहिए। और जो अन्नदाता कहते किसान भाइयों, खासकर भाइयों, तो आज उनके लिए आप देवदूत होकर आए हैं। तो आपके पास जितना भी स्टॉक है या जितना भी जानकारी है, रेडियो का मंच के माध्यम से सबको लुटाइए और स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोजेक्ट जो कि अति सहज सहूलियत से उनको फायदा मिले। खासकर भाई का जो गारे से समाज के लोग हित में प्राप्त हुए, क्या करने से उनका आर्थिक संबल और बढ़ेगा, दोगुना ने चार गुना बढ़ेगा उनका प्रोडक्शन। तो सरकार क्या मदद करते हैं, क्या सब्सिडी देते हैं, कब देते हैं, किस तरह देते हैं और कहां पर देते हैं, किसको देते हैं?
1: सभी किसान भाइयों का नमस्ते। मैं कृषि विभाग के बारे में योजनाओं की जानकारी दूंगा। इसमें सबसे पहले कृषि विभाग की मुख्य जानकारी है, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना में अलग अलग है, जैसे पाइपलाइन हो गया, फव्वारा हो गया, रेनगन हो गया, खेत तलाई हो गया, जलौज हो गया, सब में अलग अलग सभी की क्राइटेरिया हैं और सब में अलग अलग सब्सिडी मिलती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन स्कीम है, उसके अंतर्गत किसानों को 50% सब्सिडी मिलती है। पाइपलाइन 50 पाइप लेने होते हैं और 50 पाइप पे 50% लगभग 15,000 अधिकतम उनको जो है राशि मिलती है। और पाइपलाइन लगाना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है, जापाकर क्षेत्र में आजकल अपन देखे होंगे तो कुआं बहुत दूर होता है, कुएं से पानी लेके जाते हैं, बोरवेल से पानी लेके जाते हैं, तो क्या है वो नालियां बना रख, तो नालियों से खेत तक पानी पहुंचने में जैसे किसी का 1 किलोमीटर हो, किसी उससे कम हो, 300-400-500 मीटर तक हो, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो आधा पानी तो ज़मीन में वैसे चला जाता है, पहुँच नहीं पाता, पानी वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए जो है पाइपलाइन सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से रहेगी और है भी। उसके लिए पाइपलाइन जोड़ता सीधा खेत में पानी जो स्रोत है वहाँ से सीधा पानी फसल तक आसानी से पहुँच सकता है।
0: 100% मिलेगा,
1: हाँ 100% जितना पानी है, ज़्यादा पानी है तो वो आराम से सीधा मिलेगा, आपका पानी वेस्ट कहीं नहीं होगा। 20-20 फीट के जो पाइप होते हैं और वो आपस में जुड़ते हैं, आराम से उसको जोड़ भी सकते हैं। और कोई भी दो किसान भी हो तो भी, एक दो किसान होंगे तो भी उसको जोड़, छोटा बच्चा भी कर सकता है ये, मतलब आराम से आसानी से कर सकता है। यूँ नहीं तो वो बिल बनाते हैं, उसमें कहीं फूट जाता है, फिर वापस जोड़ता है, फिर वापस किसान खेत में देखता है कि यार पानी आ नहीं रहा है, फिर देखता है वापस चला जाता है कि यार पानी यहाँ फूट गया है, वापस जोड़ता है, फिर वापस खेत में भागता है, तो उसको समस्या ये समान हो जाती है इससे। और दूसरा है फव्वारा यंत्र। फव्वारा में सर क्या होता है कि खेत के अंदर 6 फव्वारे लगाते हैं, मतलब 6-7 फव्वारे अलग अलग अपने उससे लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है सर कि पानी का बचत
0: होता है।
1: हाँ बचत होता है फव्वारे में सर, ये है सब्सिडी इसके अंतर्गत है, अपने लागत का 55% जो है वो सब्सिडी इसमें मिलती है फव्वारा संयंत्र में। और इसका जो आवेदन है वो भी ऑनलाइन ही होता है, किसान राज किसान साथी पोर्टल से है जो इसका ऑनलाइन आवेदन होता है। और उसके लिए सर जन आधार कार्ड आवश्यक है, जन आधार कार्ड अगर नहीं बना है तो आवेदन नहीं कर सकता है, और जन आधार कार्ड बना हुआ है तो उसके लिए आवेदन कर सकता है। और ये जितनी भी स्कीम है उसके लिए राज किसान साथी पोर्टल से ही आवेदन होगा और जन आधार कार्ड ही चाहिए, और जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और इसके लिए आप ई मित्र पे जाएंगे, जन आधार कार्ड से अपन आवेदन करेंगे। मान लो सिंचाई पाइपलाइन का आपको आवेदन करना है तो आप जन आधार कार्ड लेके गए और आपका जो भी खेत है उसकी जमाबंदी और नक्शा जो होता है खेत का, पटवारी जो है निकाल के देता है उनको, और आजकल ऑनलाइन भी होता है तो ऑनलाइन निकाल के पटवारी से प्रमाणित करवा के और ई मित्र पे लेके जाओ। ये दो चीज़ मुख्य है, और तीसरा आधार कार्ड। तो जन आधार पे ऑनलाइन करके डॉक्यूमेंट चढ़ाने होते हैं और जैसे ही वो आवेदन हो जाता है तो वो आवेदन हमारे जिला कार्यालय है एग्रीकल्चर का वहाँ चला जाता है,
0: सिरू।
1: हाँ सिरू चला जाता है, वहाँ से वो आवेदन हमारे पास ऑनलाइन ही अपने आईडी पे आता है। तो जैसे आईडी पे आता है तो हम उस
0: जिसको लाभ मिलता है,
1: हाँ किसान को संपर्क करते हैं, भाई आपको कहाँ चाहिए, तो हम वहाँ जाके प्री वेरिफिकेशन करते हैं
0: जी।
1: प्री वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद वापस ऑनलाइन ही उसकी फोटो वोटो खींचते हैं, जियो टैग करते हैं और वापस भेज देते हैं, सिरोही चला जाता है। और वहाँ से उसकी स्वीकृति जारी होती है, प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है, और प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है तो हमारे मोबाइल में आ जाता है, हमारे पास वो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति की कॉपी आ जाती है। उसके बाद हम किसान से संपर्क करते हैं कि आप जो भी पाइपलाइन है, वारा है, जो भी है आप लेके आ जाओ और आप खुद खरीदो, क्योंकि उसको खुद ही खरीदना होता है। सब्सिडी तो बाद में जमा होती है, सामान पहले लाना पड़ता है इसमें, ये है। तो सामान वामान लेके आ जाओ और बिल ला के हमें सुपुर्द बता दो, तो वापस हम दोबारा उसके खेत पे जाते, चेक करते भाई इसने फुवारे लगाए हैं कि नहीं लगाए, पाइप लगाई है कि नहीं लगाई है, फिर हम जाके और बिल विल चेक करते और फिर वापस उसका जो भौतिक सत्यापन ऑनलाइन ही ऐप के माध्यम से करते हैं, राज किसान साथी पोर्टल से। और उसके बाद वो जैसे आवेदन हम कर लेते कंप्लीट, भौतिक सत्यापन कर लेते हैं, उसके बाद वो वापस जिला कार्यालय में चला जाता है और उसके लगभग महीने भर के अंदर अंदर लगभग वो है उसका भुगतान, लगभग वो पेमेंट जमा हो जाता है खाते में सीधे।
0: बहुत अच्छा बात बताया और ये प्रोसेस बताया, लेकिन जैसे आपने बताया सब पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तो इतना पैसा लोग के पास रहता नहीं है, जैसे कम से कम तो 5-6 हज़ार मिनिमम तो सब करने के लिए तो चाहिए, तो बाद में तो सरकार देगा 50%, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में इतना जो खरीदने के लिए जो संभव होना चाहिए उनको मिलेगा, जिसके गरीब लोग को कैसे फायदा मिलेगा कहाँ से?
1: सर ये ST SC अदर जनरल सभी में सर ये अपन को इसमें एग्रीकल्चर में यही है, आपको सामान तो पहले खरीदना ही है, पहले ही आपको लाभ किसी में पैसा वगैरह नहीं मिलेगा।
0: तो मान लीजिए पैसा पहले मिल जाएगा तो क्या दिक्कत होगा सर?
1: पैसे मिल पहले मिलते हैं तो सर क्या है कि जो ट्राइबल एरिया के जो किसान है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं शायद, मेरे हिसाब से। पहले शायद गवर्नमेंट पहले पैसा देती थी, इसलिए उसका क्या है लोग दुरुपयोग करते हैं, तो दुरुपयोग करते हैं तो उसको वास्तव में वो जो गवर्नमेंट जो चाहती है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है,
0: तो नेग्लेक्ट करेगा।
1: हाँ हाँ
0: हाँ करेगा, दूसरा टाइम में
1: इन्वेस्ट कर लेगा या फिर वो
0: आदमी
1: दारू पी
0: लेगा कर सकता है।
1: और इसमें क्या है वास्तविक जिसको चाहिए
0: वो करेगा,
1: वो करेगा और उसको फिर पैसा भी पूरा पूरा मिलेगा, एक भी रुपया कहीं जाता नहीं, सीधे सब्सिडी से उसके खाते में, किसी को मतलब बिचौलियों के चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं, सीधे उसके खाते में पैसे जमा होंगे और उसको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है।
0: ये खास राज है क्योंकि इससे जो जेन्युइन है, जो लाभार्थी जो करने के इच्छुक है उनको ये फायदा मिलेगा, जिसका इच्छा नहीं है इसको जबरदस्त दे देंगे पैसा, वो पैसा को दूसरा जगह में वो इन्वेस्टमेंट करने लगेगा, जिसका सबसे नुकसान भी होगा और सरकार का जो मंशा है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस तरह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सर जो पाइप का जो सिस्टम मुझे बताया, बस हमारा किसान भाई को बताया, वो क्या सेफ्टी रहता है ना चोरी वगैरह? जैसे हम पाइप लगा दिए, जैसे अपने पाइप का सिस्टम लगे, पानी जो 1 किलोमीटर लेना है वहाँ से मोटर से, लेकिन पाइप को हम जो रखने हो चाहे हमको उसको सेफ्टी का चोरी भी हो जाता है खेत में जो रख देंगे,
1: बिल्कुल
0: तो फिर उसका तो दिक्कत होगा
1: सर। इसमें पाइप एक तो आता है वो बाहर ओपन लगा सकते हैं 20-20 फीट के, और एक ग्राउंड वाला भी आता है, वो अगर किसान चाहे तो उसको ग्राउंड के अंदर लगा दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई चोरी भी नहीं कर सकता उसका, वो लंबा रोल आता है, रोल भी लगा सकता है। और भाई मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सिंगल पाइप 20-20 फीट के है उसको लगा सकता है, जैसे कहीं 300 मीटर पानी ले 300 मीटर का पाइप लेके आ गया वो, और उसके भाई 200 तक ही पहुँचाना है तो उसमें क्या 200 तक ही पहुँचा, नहीं तो फिर वो क्या पूरी 300 मीटर पाइप डाल दी और उसको 200 मीटर तक पानी पिलाना वापस, तो वापस वहाँ से पानी इधर लाना पड़ेगा पाइप से। और इसमें कहा जहाँ तक जितना पाइप लेके जाना है वहाँ तक अपन पाइप जोड़ सकते हैं, ये इसमें एक फायदा है सर।
0: जैसे हम करंट लेते तो अंडरलाइन करना करना और ऊपर लेना में तो दिक्कत होती है, बाढ़ आता है तूफान आता है तो गिर जाता है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अंडरलाइन करते तो सेफ्टी रहता है, लेकिन जो किसान मित्र जो इस तरह परमानेंट का खेती है और उनको करना ही लाभ मिल रहा है, तो एक टाइम वन टाइम इन्वेस्ट कर लीजिएगा, अंडरग्राउंड कर लेंगे तो सेफ्टी का बात,
1: वो फिर चोरी का टेंशन नहीं है, फिर
0: आपको इधर उधर करने का जरूरत नहीं, चोरी हो सकता है लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन खोदाई करके लेना इतना लोग को इतना पैसा, आजकल तो चोरी बहुत कम हो गया, पहले होशियार हो गए थे, पहले कुछ पैसा नहीं था, आजकल तो 2 घंटा कमाई करेंगे कहाँ भी 200-300 रुपये मिल जाता है, पैसा के लालच में कोई चोरी नहीं, पहले था ऐसे चोरी करते थे, लेकिन आज सबका संभाग मैंने सरकार भी दे रहा है, भोजन भी दे रहा है, रहने के लिए व्यवस्था सब कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छा बात बताए। ये था कृषि संबंधित हमारे किसान भाइयों के लॉटरी कहेंगे कि उनका आगे खोलेगा, जब सब्सिडी सरकार तरफ से जो मिल रहा है उसका सही जानकारी होना अति आवश्यकता है, और इसका उसका बात नहीं सुन के
2: गलत अफवाह से नहीं सुन के सरकार का जो दिशा निर्देश कृषि अधिकारी से संपर्क करें और उसका एक पोर्टल जैसे सर ने बताया
1: राज किसान साथी पोर्टल
2: में जाकर अपना जानकारी जिस चीज में हमको पूछा है वो चीज रहता है। आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आपका बच्चे आज तो पढ़े लिखे ही है, क्योंकि आपका जमाने में इतना पढ़ाई नहीं था, लेकिन आज बच्चे तो फोन एंड्रॉइड फोन में सब चीज अवेलेबल है, तो बड़ा फोन में आप कर सकते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबनी।

इतना ध्यान, इतना ध्यान धरेगा कौन, माँ धरती जितना इतना प्यार करेगा कौन।

हरदम याद, हरदम याद करेगा कौन, माँ करती जितना इतना प्यार करेगा कौन, माँ करती है जितना इतना प्यार करेगा कौन। दूर देश जब कोई जोए,

0: वापस आ जाए। माए कहे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा वापस आ जाए। हरदम प्यार हरदम प्यार करेगा कौन, माँ करती जितना इतना प्यार करेगा कौन, माँ करती है जितना इतना प्यार करेगा कौन।
1: मैं हूँ वजाहत हबीबुल्ला और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं राकेश सर। राकेश सर हमारा साथ जुड़े हुए हैं और सभी को अपना अनुभव आधार से जो भी सुविधाएं जो डोर टू डोर जाकर बताते थे, लेकिन आज रेडियो मंच का माध्यम से सभी किसानों दे रहे हैं, जो भी जहां पर भी सुन रहे हैं कैसे लेना है, कहां पर लेना है, किस तरह लेना है, कौन एंटाइटल, सब चीज़ बता रहे हैं। एक एक प्रोजेक्ट के बारे में, एक एक योजना के बारे में बता रहे हैं। जैसे इसका पहले हम सुन रहे थे पाइपलाइन और फुहारा के बारे में।
3: बिल्कुल बिल्कुल पाइपलाइन।
2: हाँ, तो अभी कौन सा बारे में सुना?
3: अभी में एक कांटेदार तार बनती है, होती है, उसमें भी एग्रीकल्चर जो है सब्सिडी देती है, उसके लिए मैं आप जानकारी दे रहा हूँ। इसमें सर कृषि विभाग से जो तार बंदी लगाते हैं उसमें तीन हेक्टर मतलब 12 बीघा जो जमीन है कम से कम चाहिए, और तीन किसान चाहिए, तीन किसानों का समूह होना चाहिए और जिनके खेत पास पास में है, और जमीन अगर तीन हेक्टर मतलब 12 बीघा, हाँ तीनों का मिलाकर 12 बीघा होनी चाहिए और आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। न्यूनतम इतनी हो सकती है, अधिकतम हो सकती है कितनी भी, और तीन किसान न्यूनतम चाहिए ग्रुप में, और 7-8 किसान भी हो सकते हैं। कहीं जिसे कि जमीन कम पड़ रही है, तीन किसानों की नहीं हो रही 12 बीघा, तो 10 किसान भी हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं आपस में। हाँ, तो इसमें सर अधिकतम 40,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, 40,000 रुपये तक सब्सिडी मिलती है इसमें सर, और अधिकतम 400 मीटर तक की सब्सिडी मिलेगी किसी भाई के। जैसे मान लो 600 मीटर हो गया तो उसको 400 मीटर तक की सब्सिडी मिलेगी, 400 मीटर के ऊपर जो है वो खुद वहन करेगा। और इसमें भी सर ये है कि आवेदन ऑनलाइन करके और फिर तारबंदी का कार्य प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है, और इसके बाद तारबंदी का कार्य भी पूरा अपन को ही करना है, किसान को ही सारा करना है। करने के बाद जो बिल वगैरह है वो सारा ला के हमें देगा, तो हम उसका जो है वहाँ पे आगे करेंगे, तो उसकी सब्सिडी वो पूरी उसकी
2: अच्छा योजना है। और खेत को सुरक्षा रखने की,
3: सुरक्षा रखने आजकल सर जो सुअर इतने असर हो गए हैं जो मक्का एक दिन में सारी मक्का खराब कर देते पूरा खेत, इसलिए ये तारबंदी होने से सर बहुत फायदा मिलेगा किसानों को। ये
2: जैसे हम कपड़ा पहनते हैं अपना शरीर को ढकने के लिए, सेफ्टी के लिए, धूली मिट्टी नहीं लगे, हेलमेट लगा देते हैं, तो खेत को भी हेलमेट लगाना
3: बिल्कुल जरूरी है,
2: चार तरफ बाउंड्री लगाना जरूरी है, क्योंकि उससे किसान तरह आराम से नींद से सो पाए, नहीं तो नींद नहीं होगा,
3: नींद नहीं होगा तो
2: उसका मन तो उधर ही है, स्वास्थ्य खराब होगा, तो स्वास्थ्य रखने के लिए डॉक्टर पैसा क्यों दे, खेत में लगा सरकार उसका भी फायदा दे रहे, करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर जैसे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे आपने बताया 3-4 प्रोजेक्ट बताया, जो भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, पाइप हो चाहे फुहारा हो चाहे कांटा जो लेने के लिए, इसके लिए क्या कोई भी सामान को अपने हिसाब से लेंगे ना आप, उसको थोड़ा वो मटेरियल को थोड़ा स्टडी करते हैं, इस मटेरियल लगाओ, आप सजेशन देते हैं, कोई भी मटेरियल जो खुद खर्च लाता है उसमें आप क्या सजेशन देते हैं?
3: सर उसमें ये होता है कि ये प्रमाणित जो राजस्थान से जो ISI मार्क से जो भी है, अच्छा। राजस्थान गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड है
2: उसको
3: वही चीजें आप लाओगे तो ही सब्सिडी मिलेगी।
2: ओके,
3: ये है।
2: हाँ।
3: इसमें अगर वो राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं, लोकल उससे नहीं लेना है, लोकल से आप नहीं ले सकते हो, और बाकी किसी से भी ले लो, लेकिन उसमें राजस्थान गवर्नमेंट जो चीजें वो अप्रूव्ड होनी चाहिए उसमें, राजस्थान गवर्नमेंट। हाँ, उसमें जो पहले से सारी लिस्टें आ रखी होती है ये पाइप में कौन कौन सी जो कंपनीज है जिसमें ISI मार्क और कंपनी जो है राजस्थान गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है,
2: तो किसान को कैसे पता चले सर ये मटेरियल क्या है? मैंने जो आपने बताया तो ठीक है आप जानते हैं, लेकिन किसान भाइयों को कैसे अवगत होगा?
3: किसान भाइयों को सर इसलिए अवगत हो जाएगा क्योंकि सर यहाँ जैसे डीलर है, यहाँ आब रोड में है, मंडार क्षेत्र में वो काम करते हैं फील्ड में, वो सब जो किसान भी लगभग उनको जानते हैं। तो क्या है कि वो वहाँ से वो सामान खरीद सकते हैं, यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे आब रोड में फैसिलिटी अवेलेबल है, 3-4 डीलर्स हैं उनके पास से आप जो प्रमाणित सामान है वो आप खरीद सकते हैं।
2: तो सभी किशन भाई ध्यान से सुने, कभी सामान लेते हैं तो लीजिए, लेकिन उसका जो उचित जो मूल्यांकन उसको थोड़ा परख है, नहीं समझ में आता है तो एक बार कृषि अधिकारी भी रहता है अपना ग्राम पंचायत में, कोई ना कृषि विभाग से पता करिए और ISI लिखा होना चाहिए तो पता चला ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट द्वारा, तो आप उसमें सब्सिडी मिल सकता है। नहीं तो आपने लोकल मेड में कोई आपने खुद बनाया उसमें लगा देंगे तो सब्सिडी मिलेगा नहीं। जैसे कोई भी बिल लेते कोई सामान खाते उसको बिल भी पक्का बिल चाहिए, क्योंकि उसको टीन बोल TIN
3: टीन नंबर वाला बिल वो मिल
2: बिल तब जाकर अप्रूवल होगा, नहीं तो अप्रूवल नहीं होगा। लोकल
3: लोकल बिल
2: मान्यता नहीं है तो लीजिए, सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कंजूस मत करिए पैसा का चक्कर में, थोड़ा ऐसे नहीं करने का, जो सिस्टमेटिक है उसको नहीं तो आप अपना सलाह लेकर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या आप बताना चाहेंगे?
3: दूसरा सर ये है कि अपने यहाँ क्षेत्र में जैसे अपन बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर ये कहता है कि ब्लड टेस्ट करवाओ, तब देख के बताता है कि इसमें क्या क्या ये बीमारी है। अब सॉइल में कोई बीमारी होगी, मृदा में कोई बीमारी होगी खेत के अंदर, तो अपन को थोड़ी ऐसे पता होगा इसमें क्या बीमारी है। तो उसके लिए भूमि का मृदा सॉइल टेस्ट करवाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक बहुत जरूरी है, क्योंकि
2: कोई भी सॉइल
3: सॉइल खेत में खेती करते हैं उसकी टेस्ट कराना अति आवश्यक है। अपन को क्या पता इसमें किस चीज़ की कमी है, कौन से खाद अपन डाल रहे हैं, हो सकता है उस खाद डाल रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं अपन डाल रहे हो, और जो चीज़ डालनी है उसको अपन डाल ही नहीं रहे हैं, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। इसलिए सॉइल टेस्ट कराना अति आवश्यक है, और सॉइल टेस्ट करवाने के लिए अपने संबंधित जो क्षेत्र का जो कृषि पर्यवेक्षक है उसको बुलाएं, और वो आपका जो है सॉइल टेस्ट मृदा से ले लेगा, सैंपल ले लेगा। और आप भी अगर किसान भाई अगर जानकार हैं तो आप भी ले सकते हैं, किसान के खेत के चारों कोनों से
2: दिशा से
3: जैसे ये खेत है 5 जगहों से मिट्टी लेनी है, 1 फीट अंदर खोद के और मिट्टी लेनी अंदर से चारों कोनों में और एक बीच में से मिट्टी लेके, और उनको मिक्स करके अच्छी तरह से
2: सभी को मिक्स
3: आधे आधे किलो मिट्टी लेके 5 भाग से, और फिर उनको मिक्स करके उसमें से है जो पाप भर मिट्टी या आधे किलो मिट्टी है वो लेके, और फिर उसको जो कृषि विभाग में जमा करा दो, और उसके जो शुल्क है वो सिर्फ मात्र 5 रुपये है।
2: अच्छा अच्छा
3: 5 रुपये उसकी जो शुल्क है, और 5 रुपये में पूरी मिट्टी की पूरी जाँच होके आ जाती है 15-20 दिन में।
2: आबू रोड
3: में सर ये सुविधा नहीं है, लेकिन वो हमारे पास जैसे सैंपल आता तो हम जिला में वहाँ लैब बनी हुई है सिरोही, वहाँ जाके हम टेस्ट करवा लेते हैं और उसकी रिपोर्ट हम किसानों को देते हैं। अभी हमारे जो कृषि विभाग के जितने भी कृषि पर्यवेक्षक है उन्होंने 50-50 सॉइल सैंपल लिए थे, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, आज भी हम लेके आए हैं कार्ड, और उसमें पूरा दे रखा है कि कितना क्या क्या देना है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि अपने किसान भाई देते हैं, ज़्यादा देते हैं, उनको पता नहीं रहता, ऐसे यूरिया है DAP है वगैरह वो डालते रहते हैं, लेकिन उसमें खेत में ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे यहाँ की जो मिट्टी है उसमें थोड़ी सारी अपने जिप्सम की कमी है, मोस्टली जिप्सम की कमी है, तो जिप्सम अगर लेते हैं किस तो सोसाइटी से लेते हैं तो उसमें भी 50% आपको अनुदान पे जिप्सम मिल जाएगा, तो वो जिप्सम को आप लेके और मिला के मिट्टी मिला के आप उसका जुताई कर देते हैं तो वो फसल के प्रोडक्शन के लिए अच्छा रहेगा। और जिप्सम है, जिप्सम अगर उसमें जिंक सल्फेट है और फेरस सल्फेट है, ये दोनों भी अभी हम अनुदान पे दे रहे हैं, 50% अनुदान पे हम दे रहे हैं। तो उससे क्या है सर, ये जैसे ऑयल क्रॉप से सरसों वगैरह है तो ये जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट डालने से इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी बढ़ती है। और यहाँ इस फील्ड में जैसे है जो जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट की कमी है, तो ये अगर किसान अगर सॉइल टेस्ट करा लें तो उसका पता चल जाए तो आगे इस संबंध में उन किसानों को लाभ हो सकता है,
2: बहुत कुछ बचत भी हो सकता है, इनका खेत भी बचत कर सकते हैं, और इनका जो प्रोडक्शन जो होता है उत्पादन को भी बचा सकते हैं, और हमारा वेस्टेज नहीं जाएगा।
3: नहीं नहीं सर, वेस्टेज नहीं,
2: और हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे हम कोई भी टेस्ट साल में बताए, कोई भी ऑपरेशन करने का पहले आपका ब्लड टेस्ट पूरा सब यूरिनल टेस्ट हम टेस्ट करते हैं, इसके बाद मेडिसिन देते तो काम में आता है क्या आवश्यकता है, तो खेत को भी क्या आवश्यकता है वो चीज़ हम जब जाँच करेंगे, भले पहले शुरू में जब करेंगे तो उनको लगेगा भाई ये प्रोसेस है, फिर उसको पकड़ो तो टाइम जाता है, लेकिन एक बार आपका खेत का पूरा पता चल जाएगा तो आपको उसी हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा।
3: सही है।
2: जैसे हमको सिर दर्द होता है, बीपी होता है, तो हम शुगर होता है, तो हम चीनी का थोड़ा कंट्रोल करेंगे ना, हम टेस्ट ही नहीं करेंगे, कैसे चलेगा। और उसी तरह खेत को भी अपना पहले टेस्ट कराइए, भले समय लगे, लेकिन जैसे आप टेस्ट कराने के लिए खेत को जाना पड़ेगा, 5 जगह से मिट्टी लेना पड़ेगा, फिर उसी परिवेक को उनको बताना पड़ेगा, ये चीज़ें तो प्रोसेस सर। इसमें थोड़ा पैसा वगैरह कुछ हेर फेर होता है क्या, जो जिसको हम बुलाएंगे वो क्या फीस लेते हैं ना, फ्री में जाते हैं?
3: नहीं सर, फ्री में है, निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को अगर बुला ले या खुद मिट्टी लेके आ जाए तो और भी बेस्ट है
2: जी।
3: और जैसे हम क्षेत्र में खुद मिट्टी लेके आ जाते हैं, किसान एक बार बता देते हैं, समझा देते हैं कि भाई ऐसे आप मिट्टी ले लेना, और वो खुद की मिट्टी लेके आ जाता है, उससे सिर्फ 5 रुपए की रसीद लेंगे हम बस।
2: लेकिन किसान भाई लोग बता रहे हैं हमको बहुत चक्कर लगाना पड़ता है, 2 बार गए तो सार नहीं थे।
3: हाँ सर, ये पहले था, लेकिन अभी क्या, हम जैसे सब जगह पोस्टिंग हो चुकी है। पहले यहाँ पूरे आबू रोड क्षेत्र में 2 सुपरवाइजर थे, 15 पोस्टें हैं, और सुपरवाइजर 2 थे, और पूरा 15 पोस्टों का काम संभालते थे, तो वो हो नहीं पाता था। अब हर जगह मतलब 10 पोस्ट तो ऑलरेडी भर चुकी है और 5 पोस्ट ही खाली है, तो अब हर जगह दिक्कत नहीं होगी आप किसान भाइयों को, जो है कृषि परिवहन समय पर हर जगह मिल जाएगा और आपका काम भी आसानी से।
2: इतना सुविधा है सरकार दे रही है, और इतना पैसा तनखा आपका पीछे, इतना लोग जो अपॉइंटमेंट किया है, कितना तनखा जा रहा है, और उसका फायदा लेना चाहिए।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: आप जब नहीं लेंगे उसको काम नहीं दे रहे, तो मुझे तनखा सरकार का जो राजकीय पैसा जो जा रहा है वो वेस्टेज जा रहा है।
3: सही है सर,
2: तो उनको काम दीजिए और उनको भी खुशी होगा।
3: सही है सर,
2: और वो पैसा भी खत्म भी होगा।
3: सही है,
2: और बट बट करेंगे तो मन भी इधर उधर होगा, भ्रष्टाचार में जाएगा।
3: सही है,
2: तो इसलिए हमारा किसान भाई का नम्र निवेदन है, सार से जितना फायदा लेना हो पहले जाइए, बार बार जाइए, एक बार गए, कुछ उनका भी कुछ प्रॉब्लम होता होगा, मैं कहाँ ऑफिशियल ड्यूटी होते सर आज यहाँ पर है, तो मान जो अपना ऑफिस में कोई ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं ना
3: सर। हमारे ऑफिस के बाहर हमारे सबके नंबर लगा रखे हैं हमने, अगर कोई भी हम अगर फील्ड में भी जाते हैं, हमारा वैसे फील्ड का ही काम होता है पूरे दिन, अगर ऑफिस में नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ जाके ऑफिस के बाहर नंबर से एक बार कांटेक्ट कर लें, हो सकता है आपके आसपास ही कहीं हो, फील्ड में हो, तो नंबर भी लिखे हुए हैं।
2: हर सेक्टर में जैसे आपका सेक्टर कितने ग्राम पंचायत को लेकर आप सर?
3: सर मेरे जैसे मुंथला डब्ल्यू में तो जैसे 9 पंचायतें आती है,
2: 9 ग्राम पंचायत
3: सिर्फ मैं सुपरवाइजर का काम करता हूँ, पूरे सभी मेरे अंदर 4 सुपरवाइजर है, 4, और खुद ही मैं सुपरवाइजर हूँ, तो मेरे खुद के आवल और चनार 2 ग्राम पंचायतों का काम मैं खुद देखता हूँ। इसके अलावा ओरिया है, बहादुरपुरा है, चंडेला है, मुंथला है, क्यारिया है, दामसरा है, ये इनका सुपरविजन मैं करता हूँ। ये
2: एरिया को पूरा हरा भरा करने का दायित्व आपने कप्तान गिरिद करते हैं, जितने किसान को खुश रखते हैं, क्योंकि किसान जब खुश रहेगा देश खुश रहेगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल, किसान
2: और आप उसका कमान आपका हाथ में, और जो आप एक आदिवासी समाज में बिलोंग करते हैं, आदिवासी लोगों को समझाने अपना भाषा में सहज भी होता होगा, इस तरह बहुत कम मिलता है कैंडिडेट।
3: बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ सर इस फील्ड में समस्या भी होती है, जैसे अधिकतर जो हमारे साथी लोग हैं वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं समझ पाते
2: जी,
3: जो किसानों को मोटिवेट करने में थोड़ी समस्या आती है, और किसान भी क्या है कि जल्दी बाहर के किसी लोग एकदम भरोसा नहीं करते, और मेरे यहाँ होने से क्या होता है कि जैसे मैं लोकल लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ तो उनको मेरी खुद की भाषा में बात करता हूँ आदिवासी भाषा में, तो उनको जल्दी समझ में भी आ जाता है और वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये है सर,
2: सही बात, इतना दायित्व लेकर फिर भी आप खुश रहते हैं, और सबको देने के लिए आपको खुशी मिलता है कहीं सेवा में।
3: खुशी सर कृषि विभाग में देने देने गई है इसमें सब दे, लेकिन किसान को मोटिवेट होके हमारे संपर्क करना बहुत अति आवश्यक है। हम भी हर जगह हमारी किसान गोष्ठी होती है, अभी हाल फिलहाल में मुंथला में किसान गोष्ठी हुई थी, 100 किसानों की हुई थी, हम हर जगह जहाँ भी गोष्ठी करते हैं किसानों को जानकारी देते रहते हैं, महिलाओं की अलग गोष्ठी होती है, पुरुषों की अलग गोष्ठी होती है, पूरी स्कीम की है लगभग, हम वहाँ जानकारी देते रहते हैं, और इस क्षेत्र से अब धीरे धीरे थोड़े किसान
2: जागरूक हो रहे हैं
3: और स्कीम में आवेदन भी कर रहे हैं और लाभ भी ले रहे हैं।
2: और ये तो यूथ जैसे यंग आपको अभी पोस्टिंग बहुत कम दिन हुआ है, यूथ खून में देने के लिए भावना है, बूढ़ा तो है हुआ नहीं
3: जी जी जी,
2: लेकिन कोई जिससे सीनियर हो जाते हैं तो उनका देखा उसको इतना आता नहीं करने के लिए, लेकिन आपका जो खून उमंग उसका फायद में देखने को मिलता है, तो इसका फायदा अंतर्वासी ले, खासकर अपना जो सेक्टर बताए, इतना सेक्टर का जो आप कार्यकर्ता है कप्तान चलाते हैं, तो इतना गांव पंचायत आपका पास है, तो खासकर यहाँ का समस्या क्या आती है और उसको आप कैसे निवारण कर रहे हो वो भी जानेंगे, लेकिन पहले स्कीम के बारे में कितने स्कीम है और बाकी रहा लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: जीवन देता है मधुबन।
1: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। राकेश सर इस कार्यक्रम को सुंदर में बखूबी से सजा रहे हैं और किसान भाइयों के लिए जितना देना चाहते हैं वो उससे ज़्यादा देने के लिए तत्पर है, तो उनको पुनः स्वागत करते हैं सर। और कौन सा स्कीम है?
3: और सर एक सबसे बड़ा स्कीम है खेती में काम आने वाले कृषि यंत्र हो गए, जैसे रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, थ्रेसर हो गया, ये सारे जो है कृषि यंत्र है उन पे भी है जो सब्सिडी मिलती है। इसके अंतर्गत कृषि यंत्र में सर है जो एक तो ट्रैक्टर, पानी का टैंकर और एक साथ ट्रॉली है, ये इनमें सर सब्सिडी नहीं मिलती है।
2: अच्छा,
3: इनमें सब्सिडी तो नहीं मिलती है, बाकी जितने भी उपकरण हैं उनमें सब में सब्सिडी मिलती है आपको। और जिसमें STSC को है और लघु सीमांत किसान है उनको 50% और जनरल को है 40% है, जो उसका टोटल कॉस्ट का है वो इतना है जो सब्सिडी मिलती है।
2: सर इसमें ग्रामवासियों की तरफ से और खासकर किसान भाइयों की तरफ से, जैसे आपने सब्सिडी बताई इंस्ट्रूमेंट लेने में, जो कृषि उपकरण ट्रैक्टर वगैरह छोड़ के और बाकी जो चीज़, और क्या रह गया जो इसमें आप सब्सिडी देते हैं?
3: इसमें सर देखो, इसमें है डिस्क प्लाव है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, ट्रैक्टर ऑपरेटर रिपर है, रिज फेरो प्लांटर है, मल्टी क्रॉप प्लांटर है, चीजल प्लाव है, इतने सारे सर ये उपकरण हैं जिसमें ये जो सब्सिडी अवेलेबल है।
2: कितना परसेंट उसमें सब्सिडी मिलता है?
3: वो ST और SC के लिए 50 और अदर के लिए 40% टोटल कॉस्ट का है। और उसमें थोड़ा SP का डिफरेंस पड़ता है तो ज़्यादा फर्क नहीं आता, HP का पड़ता है तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 40-50 तो है ही है, ये इतनी सब्सिडी तो मिलती है।
2: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी इसका फायदा भी ले, खासकर किसान भाइयों के लिए ये जो उपकरण, जो कृषि यंत्रपाति जो आवश्यकता है उसमें भी आपको सब्सिडी गवर्नमेंट तरफ से मिलता है 50 और 40, जनरल के लिए 40 और ST के लिए, SC के लिए 50 मिल। सर जैसे कृषि के लिए आजकल ट्रैक्टर वगैरह आपने बता दिए, लेकिन जहाँ जहाँ अभी भी हम देख रहे हैं बलद बा जो पशु से खेत करते हैं तो उनका भी बीमारी कभी कभी होता है और डेथ भी हो जाती है, तो उसके लिए क्या सब्सिडी वगैरह सरकार तरफ से?
3: पशुओं के लिए वैसे सर ये तो पूरा पशुपालन विभाग से है, लेकिन इसमें सर ये मेरे ध्यान में जहाँ तक इन पशुओं के भी बीमा होता है
2: जी।
3: तो बीमा होता है तो बीमा तो हर इंसान भी करवाता है, तो पशुओं का भी करवाना चाहिए। तो पशुओं का बीमा करवा, अगर ऐसी दुर्घटना बाय चांस हो जाती है तो उससे सबसे पहले पशुपालन विभाग से संपर्क करके और उसके बारे में उनको बताना आवश्यक है।
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कौन सा स्कीम सर? जो
3: सर ये स्कीम तो लगभग पूरी हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ ऐसे इंटेंसिव स्कीम है, जैसे छोटी छोटी स्कीम है, वैसे मिनी किट वितरण से
2: जी,
3: जो इसमें क्या है गवर्नमेंट मिनी किट वितरण करती है किसानों को 10% टोकन राशि रुपये लेके, और अभी सरसों के जैसे मिनी किट आए हुए हैं तो उसमें हम 2 किलो सरसों है वो 13 रुपये में, हम 13 रुपये टोकन राशि लेके केवल महिला कृषकों के नाम से हम उनको देते हैं
2: जी।
3: ये है मिनी किट। और दूसरा सर ये है अपने प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, स्प्रे वगैरह होते हैं सर, तो दवाई छाटने के होते हैं ना सर स्प्रे, उनमें भी सर सब्सिडी मिलती है। तो बैटरी ऑपरेटर जो है प्लांट इक्विपमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, उसमें 1500 रुपये तक सब्सिडी है। आज हम खुद लेके भी आए हैं, किसान के लिए बोला है, इसमें अपन को पहले 3000 रुपये भरने पड़ेंगे और 1500 रुपये वापस सब्सिडी के रूप में खाते में जमा होंगे। और एक दूसरा होता है जो केवल हाथ से चलाते हैं दवाई छाटने वाला, उसमें 750 रुपये तक सब्सिडी मिलती है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएं और किसानों का हित के लिए हम सब तत्पर हैं। और रेडियो मधुबन एक मंच देता है जिस मंच का माध्यम से किसान का समस्या सुनते भी है, और आज समस्या को समाधान करने के लिए रेडियो मधुबन का मंच का माध्यम से राकेश सर ने पूरा डिटेल जितना उनका पास है, सरकार का जो गाइडलाइन है दिशा निर्देश को लेकर, जो सब्सिडी से लेकर सब चीज़ रखें, बहुत अच्छा लगा इस तरह कार्यक्रम में सुंदर रूप में सजाने के लिए। राकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और समय मिलेगा तो कभी पुनः उनसे मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे, और किसान भाइयों के लिए जितना जानकारी समय प्रति समय आपके पास पहुंचता रहेगा, ये हमारा सुभावना है। सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे?
3: किसानों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप कृषि विभाग में जितनी मैंने स्कीम्स बताई है और आगे भी कैंप हैं उनमें आप अगर ये सुनते हो तो हर जगह आपको आवेदन तो एक बार करना ही है, हर स्कीम में भले लो या मत लो लेकिन आवेदन करोगे तो आपको जानकारी भी मिलेगी और उसके बारे में उससे जो फ़ायदे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होगी। धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे लिए पहला अवसर है कि मेरी जो बात है जो मतलब मैं सोच रहा था पहले कि कहीं मेरी बात भी ऐसे मैंने YouTube पे ऐसे डालूं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ रेडियो मधुबन को कि जो मेरी बात है किसानों तक पहुँचाएंगे आप। धन्यवाद सर।
2: आज तो ट्रायल सर था, हमेशा आपका साथ हम रहेंगे और जितना आप डोर टू डोर देते थे लेकिन कभी भी मौका मिलेगा तो आपसे संपर्क करके उनका हित में किसानों का हित में जरूर संपर्क रखेंगे
3: जी।
2: जिसका चलते हमारा किसानों को जल्दी फायदा मिले और जो भी समस्या है कभी कभी लाइव में अभी आप आ सकते हैं
3: बिल्कुल,
2: जिसका चलते डायरेक्ट आप किसान से बात कर सकते हैं
3: सही,
2: जिसका चलते आपको भी लगेगा चलो आज मेरा जो मंशा जो सपना था आज हमारे कास्तर भाइयों के लिए कुछ कर रहे हैं तो बहुत खुशी लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तरह कार्यक्रम में सजाने के लिए।
3: थैंक यू सो मच।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक और जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है मन की आंखों से, आज मन की आंखों से कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूं। और मन की आंखों से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में हम ऐसे साथियों से आप सबको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने आंखों संबंधित समस्या होने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जिया है, और न सिर्फ जिया है बल्कि सफलता के नए नए आयाम स्थापित किए हैं विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, और कहीं ना कहीं समाज को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही एक मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं कोमल अग्रवाल मैम का। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार आप सभी को और रेडियो मधुबन के हमारे तमाम श्रोताओं को भी मेरी तरफ से सादर अभिवादन।
0: श्रोताओं, मैं बताऊं आपको, कोमल मैम दृष्टिबाधित हैं और कोमल मैम बहुत ही अच्छी लेखिका हैं जितना मैं इनके बारे में जानता हूं। इसके अलावा वो क्या क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से संघर्षों से किस किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है और वर्तमान में वो क्या कर रही हैं, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज मन की आंखों से के इस अनोखे सफर पर। तो कोमल मैम बताइए जरा अपने बारे में, बिल्कुल शुरुआत से जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर, सर्वप्रथम तो संदीप सर पहले आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, आप जिस तरह से पूछ रहे हैं बहुत कंफर्टेबल है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो एक लेखिका होने से पहले मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर और एक लाइफ कोच रही हूँ। ये जो सफर शुरू हुआ ये आफ्टर ब्लाइंडनेस शुरू हुआ।
0: अच्छा।
1: वो सब कहते हैं ब्लाइंडनेस इज अ कर्स, मैं कहती हूँ ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ब्लाइंडनेस मेरे लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि अगर ये नेत्रहीनता नहीं होती तो हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते ना। ऐसा होता है ना कि फैमिली में औरतें जो होती हैं या तो पति पर डिपेंड है, पहले पिता पर डिपेंड, फिर पति के ऊपर डिपेंड, उसके बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड। यस, तो ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। ये मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने कुछ ऐसा किया मेरे जीवन में कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपना आत्मनिर्भर होना सीखा। जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ब्लाइंडनेस नहीं था, तब हम दूसरों से सहारे की उम्मीद करते थे। अब हम स्वयं आत्मनिर्भर हो गए हैं तो मुझे लगता है ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो ये बात है। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूं सर। तो ये एक बहुत मतलब बड़ी विकराल समस्या है उन लोगों के लिए जो लेट ब्लाइंड होते हैं।
0: निश्चित रूप से,
1: क्योंकि जैसा ये बिल्कुल वैसा ही है संदीप सर, जैसा कि आपने ट्रेन की टिकट कटाई है मुंबई के लिए और आपको रास्ते में उतार दिया गया।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
1: तो हाँ, जो और फिर ना ऐसे वक्त पर हो जाती है कि जहाँ पर हमारे करियर का एक मोड़ होता है ना, जहाँ से हमारे करियर की जर्नी शुरू होती है, वहीं पर जाकर ये ब्लाइंडनेस होती है। और दिस इज रेटिनाइज पिगमेंटोसा व्हाटएवर आई हैव सफरिंग। और ये जो डिजीज है, जैसे कि लोग कहते हैं जेनेटिक है। ओके, तो बचपन से ही कम दिखता था, तो क्लास 7 तक आते आते मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मुझे बाकी लोगों की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोगों देख पा रहे हैं। तो ब्लैक बोर्ड इतना अच्छा से दिखाई नहीं देता, फर्स्ट रो से भी ब्लैक बोर्ड इतना क्लियरली मतलब देख नहीं पाती थी। तो मैथमेटिक्स में इसलिए कमजोर है, बाकी तो देखिए थ्योरेटिकल होते हैं सब सब्जेक्ट, तो वो सारे सब मैं आसानी से कर लेती थी। लेकिन जहाँ मैथमेटिक्स की, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री की बात आती थी, तो वहां पर मैं बिल्कुल मतलब निराश हो जाती थी और अपने फ्रेंड्स की कॉपी से चीटिंग मार मार के लिखती थी आंसर। यस, तो क्या होता था कि 7th में आते आते जैसे कोई नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, पूरा तो नहीं लेकिन काफी हद तक नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो जिसकी वजह से कभी किसी ड्रेन में गिर जा रहे हैं, चलते चलते ठोकर लग जा रही है ना, थाली परोस रहे हैं, तो ट्यूबुलर विजन की वजह से क्या हो रहा है कि भाई राइट साइड का आपको लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है, सेंट्रल आपका विजन है, राइट लेफ्ट का विजन नहीं है, तो ये चीजें ऊपर नीचे की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी चीजें। और स्क्विंट भी आई मेरा, हाँ, तो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा ना कि भाई अब चेहरे की सुंदरता खत्म हो गई, बेसिक स्क्विंट आ गया आई में कि एक आंख से तिरछा देख रहे हो और एक आंख सही दिख रही है, तो लोग इसके लिए हमको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगे, ताने मारने लगे कि ये
0: अच्छा,
1: लड़की
0: परिवार
1: देखो।
0: में?
1: हाँ मतलब परिवार में भी, और जैसे कुछ भी मतलब नॉट इन माई फैमिली, जैसे जो रिलेटिव होते हैं जैसे चाचा ताऊ में मामा ऐसे होते हैं ना लोग, हमारे रिलेटिव होते हैं, तो होता है। तो वो एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो भीतर कहीं ना कहीं बस गया। ठीक है, तो बस गया ना इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कुछ बोलने के लिए आगे नहीं गया। और चूंकि मेरा जीवन बहुत अभावों में गुजरा, पिता बहुत ही कह सकते हैं बहुत सामान्य, मतलब मध्यम वर्गीय भी नहीं करेंगे, लोअर मिडिल क्लास बोलेंगे कि उस तरह
0: जी
1: से रहे, बिजनेस बिजनेस पापा का पहले शुरू में अच्छा चलता था, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास 7-8 तक पास किए, तब तक पापा का बिजनेस है ना ठप हो गया, किसी पर्सनल कुछ कुछ रीजंस की वजह से, तो
0: जी
1: बिजनेस ठप हो गया, दुकान वगैरह बंद करनी पड़ी, तो इस वजह से पापा भी बहुत परेशान रहे। तो हम लोग का जीवन अभाव में गुजरा, तो क्या बोलेंगे कि हमको डॉक्टर के पास दिखाओ, है ना। तो ऐसे करके 10th आ गया। 10th में जब स्कूल में मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, जैसे कुछ कैंप वगैरह लगते हैं, तो वहां
0: बिल्कुल
1: पर डॉक्टर
0: बिल्कुल
1: ने मुझे सीरियसली बोला कि आप जाकर के अपने घर में बोलो कि आपको कोई मतलब एकदम कोई सीरियस मेजर प्रॉब्लम है, ओके, और आप जाके घर में ये बात बोलो, ओके। तो आई वेंट, ओके, और मैं पापा के पास जाके बोली कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोले हैं। तो फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया, तो वहां पर इन
0: अच्छा
1: डॉक्टर ने कहा देखो कि ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और आप लोग कहीं बाहर दिखाइए, मैं इसमें कुछ समाधान नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो चूंकि बाहर जाने के लिए ना तो फाइनेंशियल है ना दशाएं ऐसी थी, ठीक है, तो ये सब चीजें रही, तो कहीं बाहर दिखा नहीं पाए, ये रही, ये चलता रहा, चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये समस्याएं चलती रही। सर क्लास 10 में मैथ्स में मैं फेल हो गई इसी वजह से, और उसी
0: ओहो,
1: दौरान
0: अच्छा
1: मुझे टाइफाइड हो गया, तो उस
0: जी
1: समय पेंसिलिन इंजेक्शन लगते थे, और उसका साइड
0: जी
1: इफेक्ट हुआ या क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जब ये इंजेक्शन लगते थे उसके बाद मैं काफी बीमार हो गई, तो उस समय ब्लाइंडनेस काफी बढ़ी, मतलब काफी मतलब जो दिखता था वो विजन भी काफी लॉस हो गया, लेकिन तब तक ये पता नहीं था कि ये बीमारी है। तो आगे इस तरह से चलता रहा, प्लस 2 में फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ाई करके पूरे हमारे जिले में टॉप किया,
0: क्या
1: तो
0: बात है, वाह।
1: वहाँ जी, तो क्योंकि पढ़ना बहुत मतलब पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा एक क्रेज था, तो एक सर से इंग्लिश भी सीखी उस दौरान, वो बहुत अच्छा गाइड किए हमारे
0: ये
1: टैलेंट
0: प्लस टू
1: चेक
0: का बता रहे हैं
1: करके।
0: आप, 12th का बता रहे हैं जिसमें आपने
1: जी
0: टॉप किया
1: ट्वेल्थ
0: है
1: का
0: ना?
1: बता रही हूँ, जी 12th में मैंने
0: क्या
1: फर्स्ट डिविजन
0: सब्जेक्ट उस
1: के,
0: समय,
1: हाँ
0: 12th में
1: जी,
0: सब्जेक्ट क्या रहे आपके?
1: जैसे पॉलिटिकल साइंस था और हिस्ट्री लाइक था, ओके, तो और
0: अच्छा, हिंदी
1: हिंदी
0: मीडियम
1: जो
0: या इंग्लिश
1: कास्ट
0: मीडियम?
1: में हिंदी इंग्लिश मीडियम। 10th तक
0: इंग्लिश
1: देखिए,
0: मीडियम।
1: मैं 7th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी, फिर हमारी तरफ इंग्लिश मीडियम का इतना चलन नहीं था, पैसे बहुत लगते थे, तो मैं उड़िया मीडियम में गई, 10th तक उड़िया मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम, एक वुमेन्स कॉलेज था वहां पे मैंने प्लस 2 किया, प्राइवेट कॉलेज था, तो वहां पर मैं जितने कॉलेजेस थे हमारे जिले में उस समय 2 ही कॉलेज थे, तो उस समय दोनों कॉलेज में मैंने टॉप किया उस समय। तो
0: जी
1: इसके बाद जो अब आई प्लस 3 के बाद, तो प्लस 3 में हिंदी ऑनर्स को एज अ सब्जेक्ट चुना, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की सिचुएशन नहीं थी, पैसे नहीं थे फीस भरने के लिए,
0: जी
1: फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज था शहर से बहुत दूर और कोएड भी था, तो पिता थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव भी फैमिली से हम लोग रहे, मारवाड़ी फैमिली है ना, और
0: जी
1: तो इसलिए फिर अकेले जाने का सुविधा भी नहीं था इतना दूर कॉलेज, तो क्या किए प्राइवेट में पढ़ाई की, अब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्या करें, प्राइवेट कितना पढ़ेंगे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाई डोंट आई टेक अ जॉब, ओके, सो आई गेव इंटरव्यूज इन मैनी स्कूल्स, लेकिन सभी स्कूल वालों ने कहा कि यू आर नॉट बीए, ग्रेजुएशन नहीं है आपका, बीएड नहीं, कुछ नहीं है, आई कैन नॉट टेक। फिर एक स्कूल वाले ने मेरे स्पीकिंग को देखते हुए और जो भी हमारे पढ़ाने का तरीका है, एक उन्होंने मेरा क्लास भी लिया बच्चों के साथ में, एंड दे वर सेटिस्फाइड और उन्होंने मुझे रख लिया फाइनली, यस। तो उसके बाद फिर वहां पर 1 साल का मेरा ये चला, प्लस 3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने प्राइवेट पढ़ते पढ़ते वो स्कूल में नौकरी की, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि नियति एक कुचक्र चलाती है, तो वो भी नहीं था कि भाई जिसको इंसान दुख देता है ना उसको हर तरीके से देता है, इधर से भी दे रहा है उधर से भी दे रहा है, पहले अभाव में गुजरा, फिर ब्लाइंडनेस हो गई, ब्लाइंडनेस हुआ, जॉब लगी, पहली सैलरी 900 रुपए मिली सर, दैट वाज द फर्स्ट सैलरी ऑफ माय लाइफ, ओके, ये जो कि इंग्लिश मीडियम
0: जी
1: में मैंने पाया, तो आई वाज सो हैप्पी। लेकिन 10th सेकेंड ईयर जब फाइनल एग्जाम हुआ, तो तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी जिनका पापा के ऊपर काफी दबदबा था, तो वो कहने लगी कि भाई आपके इनके शादी कर दो क्योंकि मेरे जीते जी कर दो, तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं, है ना? तो हाँ जी समझे आया। तब तक आंखों का स्क्विंट काफी हद तक अपने आप ही ठीक हो चुका था एंड आई वॉज लुकिंग यू नो कि चलो भाई पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर लड़की है, इसकी शादी कर दो और क्या चाहिए, है ना? हमारा
0: आंखों का क्या ठीक हो गया था, वापस बताएं आंखों का क्या ठीक हो गया था?
1: आंखों का जो तिरछापन है वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो गया था।
0: अच्छा, मतलब आपकी रोशनी वापस से ठीक होने लग गई थी?
1: नहीं, रोशनी नहीं हो रही थी, जो स्क्विंट था तिरछापन जो था पुतलियां
0: टेढ़ापन था,
1: वो सही हो रहा था। तो बस वो प्लस थ्री सेकेंड ईयर में फिर एंगेजमेंट कर दी गई एंड आई वाज फोर्स्ड टू मैरी। के
0: ओके, तो आपकी एंगेजमेंट आपके जैसे व्यक्ति से हुई थी या सामान्य व्यक्ति से?
1: साइटेड, क्योंकि तब तक तो सर रेटिनाइज पिगमेंटोसा क्या होता है उसका आर नहीं पता था हमें।
0: आप इस स्थिति में नहीं रहे कि आप कुछ कह सके, अपनी बात रख सके परिवार?
1: बिल्कुल। तो इवन आई वॉज अनेबल टू, मैं लोगों को ये भी नहीं बता पाई कि मुझे, मैं बोल रही हूँ कि मुझे 20-30% दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी राइट। जैसे तैसे जितना भी दिख रहा था आई वॉज मतलब बीइंग मैरिड। ओके, तो 99 में हमारी शादी हो गई जून के समय में, इस वजह से जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो धरा करता रह गया, वो हम दे नहीं पाए। ठीक, तो ये चीजें रही। फिर उसके बाद सर लाइफ होनी चाहिए थी भाई कि आप सपनों की जिंदगी शुरू हो गई है, यही अरमान लेकर के, है ना? हर कोई मैरिज करता है,
0: हर कोई यही सोचता है
1: कि चलो आप जो जितना दुख झेले हो गया अब सुख के दिन आए रे भैया, वो कहते हैं। तो यहाँ भी मैं
0: दुख भरे दिन बीते रे भैया
1: जी। लेकिन कहते हैं ना कार्मिक अकाउंट से, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ये सब हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उसका फल होता है। तो मैं इन सब बातों को अभी समझती हूँ। उस समय तो हम लोग भगवान को, तकदीर को बड़ा दोष देते थे और कहते थे कि मैं ही क्यों विक्टिम हूँ, मतलब व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई बहन मेरे सब लोग फैमिली मेंबर एवरीवन इज हैप्पी, व्हाई आई एम नॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत आता था और बहुत मतलब शिकायत करते थे भगवान से। तो मैरिड लाइफ भी कोई सुखी नहीं रही। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वॉज द विक्टिम ऑफ डाउरी, दहेज ये बहुत बड़ी समस्या रही। पहले तो जैसे होता है ना कि भाई लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, चलो शादी कर दो, है ना, हो गया। उसके बाद दहेज प्रताड़ना शुरू हो गई। ठीक है, वहां जाके पता चला कि द पर्सन इज आल्सो नॉट, मतलब डिजर्विंग पर्सन नहीं था, थोड़ा एंटी सोशल क्रिमिनल।
0: जॉब वगैरह थी?
1: कुछ नहीं था सर, अपने फैमिली के टुकड़ों पर, हाँ अपने भाइयों के थे ना, वो चल रहा था। तो खैर उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, देखिए इतना बस।
0: नहीं, कोई बात नहीं, हाँ,
1: क्योंकि अब वो बीत गई है तो
0: वो वैसे भी पर्सनल, वो वैसे भी पर्सनल लाइफ है, रही है तो कोई बात नहीं।
1: हाँ जी, तो फिर वो चल नहीं पाया। ठीक है, देन माय सन वाज बोर्न इन द ईयर 2000। यस, तो 2000 में उसका बर्थ था। तो उसके बाद फिर जिंदगी कुछ यूं गुजरी कि 6 महीने मायके में पैर रहा, 6 महीने ससुराल में, है ना। तो 2004 में जा करके मेरे पापा मम्मी ने जब मेरी आईज का ट्रीटमेंट कहीं करवाने का थोड़ा बहुत पैसे वैसे अरेंज किए और दिखाने के लिए किया, तो हम लोग को विशाखापट्टनम, है ना, यहाँ पर मैक्सी विजन और विशाखा आई हॉस्पिटल वगैरह वहां पर हमको ले गए। तो यहाँ पर जो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ सर कि इतना ट्रेजिकल होता है कि सडन आपको, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल रहा है कि यू हैव अ डिजीज एंड दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, वो क्योर नहीं हो सकता।
0: आप एक ऐसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं जो ठीक नहीं हो सकता
1: कई सालों से, मतलब है ना, पिछले 10-15 सालों से आप ये बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको पता ही नहीं। और डॉक्टर साहब जो थे विशाखा, मैं छोड़िए नाम लेना तो सही नहीं है, तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने फाइल बिल्कुल मतलब ऐसे फेंक दिया, मेडिकल फाइल।
0: अच्छा?
1: एक्सरे जो रिपोर्ट आई थी जितनी, सब ऐसे फाइल को मेरे तरफ इधर फेंक करके बोल रहे हैं कि यू मतलब वो यहाँ कुछ नहीं हो सकता आपका, यू कैन गो। यस, आई सेड टू हिम कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता, बट आप पोलाइटली बोल सकते हैं इसको, है ना, थोड़ा सिंपथाइज कर सकते हैं।
0: डॉक्टर तो नॉर्मली मतलब ऐसा करते नहीं है, न जाने क्या हुआ
1: है। हाँ, वो कहते नहीं यू कैन गो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब वेरी रूडली। यस, फिर उसके बाद एक और आई हॉस्पिटल में उन डॉक्टर्स ने काफी कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो तुम्हारा ट्यूबुलर विजन है और अब तुम घर में ही रह सकती हो, यू शुड नॉट गो टू मतलब लाइक रोड पे मत जाना, अब रोड पे जाने की तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम सड़क खुद से सोचोगे मैं क्रॉस कर लूं और मैं आराम से खाना पका लूं या कुछ भी ड्राइविंग मैं कर लूं, इस तरह का स्विमिंग, इस तरह का काम तुमको नहीं करना, यू शुड स्टे एट होम, है ना। तो उन्होंने कुछ कुछ मेरे को गाइड किया कि आप इस तरह से अब आप घर पे रहो एंड यू कांट डू एनीथिंग लाइक, है ना। ओके फिर उन्होंने मेरे थोड़ा सा यू नो कंसोल करने के लिए, भाई सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया कुछ मेडिसिन, खाते रहो, अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, है ना, विजन जितना है शायद इतना रुक जाए, जो थोड़ा बहुत 10% विजन बचा है वो शायद रुक जाए, लेकिन जो 10-15% बचा था ना विजन सर, वो माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हुई कि वो उसी साल चला गया। I was in, you know, depression, पूरा होता है ना एक आदमी का, पूरा डिप्रेशन में मैं चली गई कि अब क्या जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, एवरीवेयर इट इज डार्कनेस।
0: और उन्हें बेटे की बेटे का लालन पालन भी साथ में चल रहा है,
1: वो सब तो मैं, हाँ वो सब तो देखिए सिंस आई एम अ क्विक लर्नर, तो शायद एक पहले से एक काफी होता है ना कि भाई हम लोग सुनते हैं कि एक भगवान कुछ और देता है हमको और शक्तियां दे देता है, तो उन शक्तियों की वजह से मैं सारे काम खुद करने लगी, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, एवरीथिंग, मतलब बच्चे का लालन पालन सब कुछ अपने आप चलता गया। Yes, और I was habituated to survive with blindness. Blindness के साथ ही मैं जिंदगी को आसानी से जीने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। फिर भुवनेश्वर में मैंने 3 दिनों की ट्रेनिंग की, वहाँ पर भुवनेश्वर में 3 दिनों की ट्रेनिंग की, मेरे पापा मेरे को लेके गए, तो वहाँ पर जैसे व्हाइट केन चलाना थोड़ा सीखा, कंप्यूटर में जैसे आपको थोड़ा दिख रहा है तो उन लोग जूम करते थे स्क्रीन को और जॉज वगैरह के बारे में पता चला, सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर उसके बाद में वहीं से मेरे को सक्षम ट्रस्ट के बारे में भी पता चला जो कि दिल्ली में है, और आई एम सो थैंकफुल टू सक्षम ट्रस्ट क्योंकि उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, सक्षम ट्रस्ट वालों ने।
0: और ब्रेली भी सीखी मैडम
1: जी? मैंने ब्रेल भी ट्राई किया सर, एक हमारे नोन में मेरे एक दूर के अंकल है उनको भी यही आती है, तो मैंने उनसे थोड़ा ब्रेल भी बेसिक सीखा, और लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया बिकॉज मैं फिर कंप्यूटर सीखने लगी अपने आप, है ना। कंप्यूटर मैंने लोन लिया सक्षम से, और फॉर्चुनेटली उन लोगों ने लोन दिया मुझे, और धीरे धीरे करके लैपटॉप एक बाय किया उसी लोन के पैसों से, देन कंप्यूटर में जो NVDA सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करके साइबर कैफे वालों से करवा लिया, फिर धीरे धीरे करके हम समझने लगे कंप्यूटर की चीजें। और क्योंकि मैं 2008 में मेरा डिवोर्स भी हो गया था और इट वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस केस भी मैंने फाइल किया था, तो उस तहत आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट हुआ और मैंने सन की कस्टडी और डिवोर्स ये दोनों चीजें मांगी थी जो मुझे मिल गई, थोड़े बहुत मेरे पापा ने जो पैसे दिए थे कुछ 2-3 लाख रुपए वो मुझे मिल गए, दैट्स इट। और उसके बाद लाइफ चलो कि भाई अब अपनी जिंदगी है ना, तो मतलब अकेले की जिंदगी, आपके कोई तलवार नहीं लटक रही है सर पर, तो ये चीज जब दूर हो गई ना तो हम थोड़ा शांति से जीवन जीने लगे। यस, तो बस 2008 में मैंने एक कोचिंग शुरू की जो कि मेरी विनर्स एजुकेशन है कोटा में एक, तो उन सर से कॉन्टेक्ट किया, वहां से मैंने फ्रेंचाइजी बाय की, सर से ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, मतलब ऐसे क्योंकि जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन ही सीखा उनसे जो भी नोट्स वगैरह सब सर ने मुझे दिए, गाइड किया कैसे पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो मैं खुद भी मतलब खुद भी अपना रिसर्चर है कि खुद ही भी पढ़ रही है कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है। सक्षम वालों ने मुझे इतना बताया मैंने इतना सीखा, लाइक है ना, उन्होंने चीटी बताया मैंने हाथ में सीखा कहते हैं, है ना, तो खुद ही एक्सप्लोर कर कि कंप्यूटर में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है सब कुछ ऐसे। और मेरे पिताजी इस मामले में मुझे बहुत उन्होंने सहयोग किया, मतलब ही वॉज लाइक कह सकते हैं कि आज मैं कहूँ कि जो भी कुछ हूँ पिताजी की वजह से हूँ, वो मुझे किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, इंग्लिश की ग्रामर की किताबें पढ़ते थे, पूरी रेनन मार्टिन किताब उन्होंने मेरे लिए पढ़ी, और भी जितनी किताबें होती थी सब मुझे बैठते थे पढ़ के पढ़ते रहते थे, मैं सुनते रहती थी, ही वॉज लाइक डूइंग दैट, तो मेरे को हर जगह पे ले जाना, जैसे उनके पास एक एक्टिवा थी तो हर जगह पे मुझे ले जाना, झारचूड़ा में जैसे इनवाइट करते थे कि कहीं पे आइए पोइट्री पढ़िए, कहीं पर कुछ के लिए बुला रहे हैं, तो हर एक इवेंट में मुझे ले जाना, हर एक फंक्शन में हाथ पकड़ के ले जाना, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। मेरे मैंने जो डोमेस्टिक वायलेंस केस दिया था, मुझे कोर्ट ले जाना, सब कुछ उन्होंने किया, तो आज वो नहीं है बट व्हाटएवर आई एम, मैं उनके लिए क्रेडिट देती हूँ पिताजी को।
0: आपके जीवन में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है ऐसा समझ में आ रहा है।

0: जी पढ़ाई लिखाई में भी, पूरे कोचिंग की स्थापना में, उसके पूरे पैम्फलेट छपाना, बैनर सब जगह लगवाना, पूरी कोचिंग की पब्लिसिटी करना, सारा कुछ, सब कुछ मेरे पिताजी ने किया। अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती,
1: हम
0: सब
1: समझ रहे
0: वो
1: हैं
0: एक
1: कि आप
0: मेहनत बन के रहते हैं जी।
1: भावुक भी हो रहे हैं उनको याद करते हुए,
0: जी
1: निश्चित रूप
0: तो
1: से, क्योंकि बहुत ये जो दौर था वो मतलब उनके सपोर्ट के बिना आप बिल्कुल नहीं निकाल पाते हैं।
0: तो ही वॉज अ बैकबोन टू मी एंड मेरे हीरो भी रहे हैं सच कहूं तो बस पिताजी की सहायता से, सहयोग से। वो कहते थे मतलब जैसे कोई उनको कहता था ना, सर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ कि बेटी आपके पास रह रही है, ये कितना बड़ा बात है आप लोग बेटी को रखे हैं। तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ, मेरी बेटी पैसे कमाती है, तो सच में मायने में कहा जाए ना तो बेटी हमको रखती है, हम बेटी को नहीं रखते हैं।
1: हाँ वाह क्या
0: जानते
1: बात
0: हैं
1: है।
0: मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब वो कहते थे लोगों को कि बेटी हमको रखी है, हम बेटी को नहीं रखे हैं, ऐसे कहते थे डैड। तो
1: जी
0: उन लोगों का मुंह बंद कर देते थे जो लोग ये कहते थे कि अरे ये ब्लाइंड है, इसको कहाँ, मतलब तुम लोग इसको बोझा ढो रहे हो, ऐसे कहते थे, है ना। ऐसे
1: जी
0: भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं कि आप ब्लाइंड पर्सन खाना नहीं खा सकता था, ब्लाइंड पर्सन पानी कैसे पीते हो तुम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर, अजीबोगरीब।
1: जी
0: मैं
1: बिल्कुल
0: आपको बताऊं,
1: नहीं।
0: हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड लोगों के प्रति दो रुख है। मैंने क्योंकि मैं साइटेड के बीच में ही रही हूँ, मैं कभी कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में रही नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ साइटेड का रुख पता है कि या तो नकारात्मक है, पूरा नकारात्मक है आपके प्रति, या फिर
1: जी
0: आपके प्रति बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि सहानुभूति वाला, कि मतलब एकदम सहानुभूति, अपने से लो देखेंगे कि यह छूट टाइप है ना, सहानुभूति दिखा रहे हैं बस कि हाँ दया दिखा रहे हैं, तरस खा रहे हैं, वैसा एक ये रुख है लोगों का। और दूसरा रुख है कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग तो मतलब बिल्कुल कोई काम के नहीं है, यूजलेस पीपल है, इनका होना नहीं होना समाज में नहीं होते तो ज्यादा बेटर होता हमारी सोसाइटी, ऐसा भी इन लोगों का रुख है। यस, तो ये नेत्रहीनों के साथ सिर्फ नहीं है सर, अदर दृष्टि दिव्यांगों के साथ भी है, अदर दिव्यांग जो जन है उनके साथ भी है ना। लाइक मतलब वी कैन बी बैगर्स और वी कैन बी सिंगर्स, राइट। मैं कड़वे शब्दों में यही कहूंगी कि वो लोग यही समझते हैं सर
1: ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: जी, है ना। तो ये बात है। तो जब कोचिंग चलने लगी और बहुत नाम कमाया सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ शायद, क्योंकि कोई मेरे बिहाफ में यहाँ बोलने वाला नहीं है,
1: जी
0: बट मैंने बहुत नाम कमाया। स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो मैंने स्थापना की, वन एंड ओनली बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑफ आवर सिटी रहा,
1: वाह
0: और
1: क्या
0: भगवान
1: बात है।
0: ने बहुत बहुत तरक्की दी। मोर देन 4 to 5 thousand स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया, और सब साइटेड, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को, मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, हाउसवाइफ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जॉब सीकर, अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे हैं। टीचर्स
1: क्या
0: ट्रेनिंग दी
1: बात
0: है मैंने लोगों को, प्रिंसिपल्स तक को पढ़ाया है स्कूल के, तो बहुत टीचर्स, पूरा
1: बहुत अच्छा।
0: स्टाफ पढ़ाया है कि बहुत सारे हमारी, जैसे झारचूड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि वेदांत, आदित्य बिरला, भूषण, ऐसे बहुत से हमारे तो इंडस्ट्रियल जो है उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो ट्रेनिंग के लिए भी मुझे बुलाया जाता था, तो उसमें भी मैं जाती थी, पिताजी लेके जाते थे, तो ये सब भी है। इसके अलावा उसके बाद टाई अप किया, टाई अप भी हुआ, कई लोगों ने अप्रोच किया अदर कोचिंग सेंटर्स ने, तो दो कोचिंग सेंटर से मेरा टाई अप हुआ, विद्या गुरुकुल है ना एंड शिक्षा कोचिंग सेंटर, ऐसे अपर्णा एक है इसमें, उन लोगों ने टाई अप किया, तो
1: जी
0: इन सब में भी मैंने उनके यहाँ भी जा रखे, मैं सैटरडे संडे पढ़ाती थी, जैसे अपना मंडे टू फ्राइडे अपना कोचिंग चला रहे हैं और बाकी दिन उनके सैटरडे संडे इनके यहाँ जा करके पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से भी ट्रेनिंग दी लोगों को, तो पूरा फुल बिजी, लाइफ वॉज फुल बिजी, मतलब सिंस 9 o'clock
1: उस समय
0: टू
1: मतलब आपने यही लक्ष्य बना
0: हाँ
1: लिया कि
0: नाइन टू
1: बस अब तो
0: टेन यस
1: मुझे।
0: हाँ पूरा 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक, मतलब मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, इतनी बैचेस, मतलब 9 से 10 बैचेस में पढ़ाती थी सर, 1 घंटे की हमारी एक बैच होती थी दैट। तो बहुत बहुत सक्सेस मिला कोचिंग बिजनेस में, और फिनेंशियली भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, और उसके बाद में बुक्स लिखना शुरू किया सर, बाकी टाइम पे फिर किताबें लिखना शुरू किया, तो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर मैंने 4 किताबें लिखी हैं और एक ग्रामर की बुक लिखी है, तो दो मैंने
1: अरे वाह,
0: कोर्स बुक लिखी सर और दो लिखी वर्क
1: क्या
0: बुक हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये हमारे जो विनर्स एजुकेशन के सर रहे डॉक्टर आनंद पिहाउजा, उनके गाइडेंस में मैंने लिखी, तो उन्होंने भी काफी इसमें करेक्शन मुझे बताए। तो ये जो दो कोर्स बुक है और जिससे मैं पढ़ाती हूँ जिसके, और दो हमारी वर्क बुक है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, तो ये चीजें अच्छा। हैं। और मैं आपको अच्छी बात एक और बताती हूँ, सर आप खुश हो जाएंगे सुन के। तो मैंने जितने भी डिजेबल स्टूडेंट्स हमारे रहे, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी हूँ शुरू से। ये मेरा
1: क्या एक बात, बात, बात, बात,
0: और कई लड़कियां आती थी जैसे बहुत पुअर बैकग्राउंड से, किसी के जैसे फादर नहीं है तो मामा क्या रह रही है नहीं है, तो उन लड़कियों को भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया है। जिसका कहते हैं ना उनका आशीर्वाद होता है, तो उस आशीर्वाद से हम इतना फले फूले, तो ये मैंने किया, कोशिश की। लेकिन चूंकि वो जो हमारे एरिया था ना, वहाँ पे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट था ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो भाई हम कोशिश करते थे कि कहीं से कोई मतलब इस तरह के लोगों की हेल्प मिले, तो कुछ गरीब लड़कियों को भी जैसे पढ़ाया जो मिले सो मिले, है इस तरह के। तो ये चीजें हमने की, उसके बाद इस तरह से सिलसिला चलता गया और किताबें लिखी। और चूंकि किताबें भी लिखी और कोचिंग भी पॉपुलर हो रही थी और उड़ीसा में काफी नाम हो गया था कि भाई ऐसे ऐसे एक ब्लाइंड लड़की है और पढ़ाती है और किताब भी लिख डाली है, तो एक अजूबा

0: जी, जब जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है तो फिर इन सब बातों के बारे में
1: जी
0: फिर सोचने का कोई मतलब भी
1: नहीं
0: नहीं है।
1: सोचता इंसान, है ना, नहीं सोचता बस,
0: अच्छा।
1: है ना, क्योंकि उस समय हमारी सर पे देखिए पहले फिनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधरे, वो सही हुई, है ना। उसके बाद देखिए बेटे की जिम्मेदारी रही एज अ सिंगल पेरेंट, उसमें भी मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, है ना, और ईश्वर की दया से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से देखिए आज बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, 25 ईयर्स का है और अपना पार्ट टाइम कुछ कुछ कर रहा है, अपने कंप्यूटर का भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है धीरे से करके, शॉप भी एक ओपन करेगा
0: बहुत
1: अभी और
0: बहुत
1: स्टार्टअप है उसका
0: वेरी
1: अभी। हाँ जी,
0: गुड।
1: तो अब जब वो मुझे कहता है कि मम्मी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, यस आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन
0: क्या बात
1: मैं फिर भी सोचती हूँ नहीं, मैं जब तक मैं मेरी सांस है तब तक मैं काम करना है मुझे, दैट्स, तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहा था। भगवान की दया से देखिए पापा ने, बेटे ने, इवन मेरी मदर के बारे में जरा बात करूंगी कि मेरी मदर शुरू से मतलब कोई काम नहीं घर का करना है, देखिए अगर हम घर का कुकिंग करने लगे सब करने लगे तो बड़ा फिर कुछ का काम नहीं कर सकते, तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि घर का कोई काम तुमको करना नहीं है, तुम अपना सेटल, तुम अपना काम करो, तुम अपना लिखो पढ़ो, तो अध्ययन अध्यापन लेखन ये तीनों चीजें मेरी मदर के सपोर्ट की वजह से चलता रहा, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते थे जी। तो ये बात हुई, लेकिन कहते हैं कि सब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती है, तो क्या हुआ कि
0: जी
1: 2017 में पिताजी को कैंसर हो गया, इट वाज
0: अच्छा।
1: ओरल कैंसर जी, तो ओरल कैंसर हो गया और ओरल कैंसर की वजह से फिर वो काफी सफर किए और मेरे मदर फादर जैसे ट्रीटमेंट के लिए फिर बाहर रहे, भोपाल में रहे काफी समय तक, वहाँ इलाज चलते रहा, मैं यहाँ पे बेटे के साथ मैं अकेले रहती थी, अपना लाइफ इंडिपेंडेंट थोड़ा ठीक है, अपना काम भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सर्जरी भी हुई पिताजी की, है ना, लेकिन बस ये समस्या हुई कि 2018 में फिर उनका देहांत हो गया, वो सफर नहीं, वो कीमोथेरेपी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सके, तो इन द ईयर 2018 ही वाज एक्सपायर्ड, तो दैट वाज अ ग्रेट लॉस टू आवर फैमिली, तो बहुत ग्रेट लॉस हुआ। और सर मेरी ऐसे लैब पे उन्होंने से रखा हुआ था व्हेन ही गॉट एक्सपायर्ड, इट वाज द लास्ट उनका था, एंड उनका मेरा बहुत हार्ट एक फुल कनेक्शन है ना वो रहा, तो पिताजी के जाने के बाद काफी हम लोगों ने मदर को बहुत संभाला, और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अभी क्योंकि अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा, तो मदर को संभाला, मदर संभल भी गई, वो भी समझी बातों को कि नहीं उसको लेकर के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है जीवन में, तो फिर उसके बाद में पिताजी की डेथ के बाद इन द ईयर 2022 2022 में हमने शहर छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा पापा की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था भाई से, है ना, तो फिर उसके बाद में उसको सेल आउट करके हम लोगों का जो भी बंटवारा होता है दैट इज वो के, फिर उसके बाद में हम छत्तीसगढ़ आ गए, और यहाँ से फिर कहते हैं अभी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ, दैट इज, तो ये
0: छत्तीसगढ़ में
1: रहा,
0: कौन से
1: और
0: शहर में आप?
1: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के थोड़ा पास में सर, इट्स अ कस्बा टाइप एक जगह है, बिलाईगढ़ एक प्लेस है, वहां
0: अच्छा
1: से
0: अच्छा
1: मैंने
0: अच्छा
1: वो
0: हाँ।
1: जी
0: तो आपने छत्तीसगढ़ ही आने का कैसे सोचा?
1: जी हाँ, क्योंकि मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं और उन्होंने हमको सपोर्ट किया,
0: ओके
1: एंड उन्होंने
0: ओके
1: ही
0: ओके
1: हमको यहाँ पर ला करके कि भाई अब मैं हूँ, है ना, एज अ फादर तुम्हारे यहाँ पर, फिर जमीन वगैरह खरीद
0: 2008 से
1: के
0: लेके 2022 तक पूरा आपने ओडिशा में
1: जी
0: ही अपने आप को
1: बचपन से
0: मतलब
1: ही पूरा
0: सर्वाइव
1: मतलब,
0: भी किया,
1: हाँ बिल्कुल,
0: फ्लरिश भी
1: हाँ
0: किया, और सारे मतलब अच्छे बुरे दौर
1: बिल्कुल
0: वहीं देखे आपने।
1: सब सब
0: एक बात बताइए मैम, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि भाई ब्लाइंडनेस को लेकर के यानी दृष्टि बाधित लोगों को लेकर के
1: यस
0: जानकारी का बहुत अभाव था और जागरूकता भी नहीं थी लोगों में,
1: जी
0: तो ये बात समझ में आती है और ऐसा है भी। लेकिन जब आपने
1: यस
0: कोचिंग शुरू की
1: जी
0: तब लोगों के मन में नहीं आया कि एक ब्लाइंड टीचर हमें क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, हम कैसे इसके इनके
1: जी
0: पास जाएं पढ़ने के लिए, और
1: यस
0: फिर आपको इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे
1: बिल्कुल
0: मिलने लगे?
1: जी, मैं वही बताती हूँ, सी देखिए एक तो रेटिनाइज पिगमेंटोजा जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी आईज की बनावट वगैरह सब कुछ अच्छी है, तो नो बडी कैन जज बाय सीइंग यू कि आप ब्लाइंड है, पहली बात तो ये, तो हम अच्छे खासे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं और फिर प्रेजेंटेबल भी हैं, तो ये भी चीजें रही। है ना, जिसने एक प्लस एड ऑन किया,
0: किसी ने नोटिस नहीं किया कि
1: जी,
0: उनको पढ़ाने वाला
1: हाँ
0: टीचर जो है वो शायद
1: हाँ
0: ब्लाइंड है।
1: ब्लाइंड है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन देखिए क्योंकि चूंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ सब चीजों के प्रति, तो मैं हमेशा कोई भी पर्सन मेरे पास एडमिशन करता था तो मैं

0: पहले बताती थी, है ना, ताकि आप शिकायत ना करो कल को, ओके। और वो लोग वैसे भी देखिए सर, मेरी जो पब्लिसिटी हुई ना वो ओरल रही, माउथ टू माउथ रही, कि भाई एक ने किसी को बताया, ये अच्छा पढ़ाती है इनके पास जाओ, सबको पता था मैं ब्लाइंड, मैक्सिमम सबको पता था कि मैं ब्लाइंड, जो भी आता था। और जिसको दो चार इक्के दुक्के को नहीं पता होता था तो वो पता चल जाता था एक दूसरे से। और कई कई तो सर ऐसे भी थे कि 6 महीना पूरा कोर्स कर डाला, उनको पता नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ। एक एक ऐसा भी इंसिडेंट मेरे साथ रहा, ऐसे भी रहे मेरे साथ में, है ना। तो क्योंकि मैं आई कांटेक्ट भी करती हूँ, बहुत अच्छे तरह से कर लेती हूँ, आवाज को रिस्पॉन्ड भी मैं बहुत तरीके से करती हूँ।
1: आपने रेंटल जो बिल्डिंग है वो रेंटेड ले रखी थी, अपना कुछ खुद का ही खरीद लिया था, कैसे कर रहे थे आप?
0: जी नहीं, पहले तो मेरे पिताजी का जो थोड़ा छोटा हाउस था, एक थोड़े अबंडेंट हाउस भी कह सकते हैं उसको, फिर तो वो बहुत काफी दुर्दशा हो गई उसकी, खराब हो गया हाउस, तो फिर रिपेयर कराने की स्थिति नहीं थी, तो फिर हमने रेंट पे हाउस लिया, वहीं पर एक कोचिंग सेटअप डाला, जैसे एक बड़ा सा हॉल
1: उसी पर ही करते रहे थ्रू आउट।
0: हाँ बस एक हॉल जैसे था, तो उस पर कोचिंग सेटअप डाली, अंदर में अपने रूम्स वगैरह है, क्योंकि अब जाने आने की तो सर सुविधा नहीं है, देखिए रोज कौन जाएगा, फिर उसको मेंटेन भी करो, स्टाफ भी रखो, ये सब मैं नहीं सक सकती थी, तो मैंने सोचा जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, तो घर पे ही एक हॉल में सेटअप डाला कोचिंग का, दैट वहीं पर डेस्क वगैरह बेंच वगैरह लगा के सेटअप कर लिया, और बस इस तरह से कोचिंग चलने लगी हमारी। और बाकी फिर जहाँ भी जाती थी पिताजी के साथ जाती थी, और वहाँ पे जो स्टाफ रहते थे वो सब लोग कोऑपरेट करते थे। तो
1: ये ओडिशा में कौन सा शहर बता रहे हैं आप? जादू
0: झारसुगुड़ा जी, झारसुगुड़ा सर, JHAR झारसुगुड़ा। हाँ ये बिल्कुल राउरकेला के नजदीक है सर, और ये वेस्टर्न उड़ीसा में आता है, और इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत फेमस है।
1: तो एक बात बताइए, जब आपकी कोचिंग चल निकली और जब कहना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आ गए,
0: जी,
1: तो आपके हस्बैंड की साइड से लोगों ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे कभी या नेवर?
0: सर कोशिश किया था, बट वी डिड नॉट, हम लोगों ने कभी पलट के नहीं देखा
1: ये, क्योंकि मेरे मन में एक बात आ रही थी कि शायद ऐसा हुआ हो कि मन में थोड़ा उनके भी आया हो कि यार चलो
0: वो थोड़ा सन का थोड़ा था सर, तो सन के प्रति थोड़ा रुझान रहा होगा, तो लेकिन सन ने फिर नहीं देखा कि जिसने मतलब हमको पहले नहीं अपनाया, है ना, एक बार जो ठुकरा दे सर उसके तरफ पलट के देखने का कोई सेंस नहीं है, तो ये बात बेटे को भी पता है बहुत अच्छी तरह से। जी
1: बिल्कुल ठीक बात है, बहुत जबरदस्त, मतलब संघर्षों से आपने आज एक तरह से मुझे लगता है कि कहना चाहिए ब्लाइंड जगत की नीतू मैम है आप, दिल्ली में है एक नीतू सिंह मैम है, इंग्लिश की कोच हैं शायद, उनका भी ऐसे ही कोचिंग सेंटर चलता है। तो दुनिया, मतलब वही बात है कि आपके संघर्ष की कहानी मेन स्ट्रीम में मुझे लगता है जानी चाहिए, वो उनके बारे में लोग बातें करते हैं, उनकी कहानी आती हैं, लेकिन आपका संघर्ष किसी भी मायने में उनसे कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक कदम ज्यादा ही है। खैर सबका अपना अपना संघर्ष होता है, कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आपको सुनेंगे उन्हें पता चलेगा डेफिनेटली, और लोग इस बारे में आगे भी चर्चाएं करेंगे। और श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, कार्यक्रम है मन की आंखों से, और आज क्या कहना चाहिए, बहुत सारे आयाम हैं, अभी तो हमने इनके लेखन कार्य के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है, बात कर रहे हैं कोमल अग्रवाल मैडम से जो कि अपना कोचिंग सेंटर चला चुके हैं, लाइफ कोच रह चुके हैं, लेखिका तो वो हैं ही, बहुत अच्छी और दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने ये सब काम किए हैं, और वो भी तब जब समाज ने उनके संघर्ष को पहचाना नहीं, समझा नहीं, और कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया। खैर तो अब आपके बारे में कोमल मैम बात करते हैं कि लेखन कार्य की शुरुआत दरअसल कैसे हुई?
0: जी मैं सर तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखती हूँ, अभी आपने एक रुख फोकस ऑन इंग्लिश ट्रेनिंग और मेरे पर्सनल लाइफ से संबंधित सुना, अब मैं आपको सुनाती हूँ जो हार्ट के बहुत नजदीक रहा, बहुत नजदीक के दिल का रिश्ता है जिसे, तो वो है लेखन और कनेक्टिंग ड्रीम्स।
1: एक बात तो हमें ये समझ में आ रहा है मैडम, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि चूंकि आपने जिंदगी के इतने आयाम देखे हैं, आपकी लाइफ के इतने शेड्स हैं, तो कहीं ना कहीं लेखन के फील्ड में तो मतलब जाना लगता है, कुदरत भी चाहती थी कि आप जाएं उस ओर तो
0: जी। और मेरे पिताजी भी शायर थे, वो भी लिखते थे कविता वगैरह और शायरी लिखते थे, तो मैं उनसे भी कहीं ना कहीं एक जीन आता है जो रहता है, तो वो भी रहा
1: जी। आप बताइए,
0: क्लास 10 में सर मेरी पहली जो कविता जिसकी है मुझे तलाश, ये संवेद शिखर एक अखबार में प्रकाशित हुई, जिसकी मेरे पिताजी जिसको बेचते थे हॉकर जैसे, मतलब यू नो जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना न्यूज़पेपर के, तो वो काम कर रहे थे उस समय पे, तो काफी अखबारों के वो मतलब सेलिंग करते थे और लड़कों को।
1: आपको याद हो तो मैम दो लाइनें हो जाए
0: जी, बिल्कुल सर होती है। तो वो पहली कविता थी सर जिसकी, मतलब इतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैं सुनाती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो सोचती हूँ आखिर वह क्या है, सोचती हूँ आखिर वह क्या है जिसकी मुझे तलाश है, है वह मंजिल यही कहीं या पूरा आकाश है, सपनों का वह नीड़ कहाँ, कागज की वह नाव कहाँ, मेरे बचपन के वो साथी अब तक मन के पास है, मन मेरा बेचैन है अधरों पर भी प्यास है, अस्तित्व खोजती मैं अपना, अस्तित्व खोजती मैं अपना, कहो किसी ने देखा क्या, मेरी मंजिल मेरा आकाश जिसकी है मुझे तलाश, जिसकी है मुझे तलाश।
1: बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
0: तो ये सर प्रथम कविता जब पब्लिश हुई ना तो मैं हवा में उड़ने लगी, अब मुझे लिखना आ गया है ना, काफी मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर जो यू नो ब्लाइंड लोग आप जानते हैं बहुत इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार होते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात भी नहीं करता है उनसे, इतना दोस्त नहीं कुछ नहीं, तो मेरी डायरी मेरी दोस्त बनी, सिर्फ डायरी में सिर्फ लिखना लिखना अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें, कहीं पढ़ रहे, पढ़ना और लिखना बहुत शौक रहा। और चूंकि मेरे ताऊजी की किताब की दुकान थी तो मैं वहां से किताबें लाती थी, बहुत राइटर्स को पढ़े सर, एक से बढ़कर एक राइटर जिनका नाम कहाँ कहाँ सुनते थे, कोर्स की किताबों के साथ जनरल रीडिंग बहुत किया, रामधारी सिंह दिनकर, निराला,
1: आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी तो तब तब ये हाल है ना,
0: तब किताब ऐसे घुस घुस के पढ़ रहे हैं सर, इतना शौक है मतलब आंखें खराब हो रही है तो हो रही है, लेकिन पढ़ना है।
1: तो मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि श्रोताओं देखिए पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं होता है
0: जी
1: जी,
0: तो मैं किताब लाती उनसे है ना और पढ़ के वापस एकदम अच्छे से बहुत अच्छे से रख के, किताब खराब नहीं होनी चाहिए, तो किताब ला करके वापस पढ़ करके वापस लौटा दी थी, ऐसे कर करके सर किताबें पढ़ती रही, तो ये एक बहुत एक अच्छी चीज रही। और उसके बाद पहला उपन्यास मैंने शुरू किया था जिसका नाम था खामोशी से आवाज तक, लेकिन वो जला दी गई थोड़ा सा है ना लॉस के यहाँ, तो अब मेरे पास वो उपन्यास नहीं है जिसका मैंने आधा से भी ज्यादा उपन्यास लिख चुकी थी मैं है ना, तो हाँ तो वो कहते थे कागज काले करती है तो है ना लिखने, मतलब पांच पांच छह छह डायरी ऐसे भरी हुई रहती थी, खाली लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ये काम चलता रहा, मतलब डेली रूटीन जो चल रहा है कि भाई खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं घर का, इसके अलावा जितना भी समय मिलता था ना वो पठन पाठन अध्यापन ये सब में स्टूडेंट्स को भी, जैसे कुछ बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं शाम को, इससे अपनी जीविका भी चला रहे हैं, ये सब चलता रहा सर, और रात रात भर पढ़ती थी। उसके बाद सर जब पढ़ने का आया कि भाई अब ब्लाइंड हो गए अब कैसे पढ़े, तो सक्षम प्रेस ने मुझे बहुत हेल्प किया सर, मतलब मैं आपको बताऊं मैंने सैकड़ों किताबें वहां से सीडी में मंगाई, मैं उन लोग को बोलती थी मेरे को इतनी भेज दो, उन लोग मेरे को बोलते थे नहीं इतने अलाउड नहीं है आप लिमिट में मंगवाइए, 10 रुपए सर एक सीडी का लेते थे, और मैं बहुत जनरल रीडिंग बहुत किया चूंकि मुझे फिक्शन पढ़ने का बहुत शौक रहा, और नॉन फिक्शन मैं बहुत कम पढ़ी हूँ मैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है, तो कल्पनावादी संसार होता है ना उसमें बस उड़ रहे थे कि उसमें बस, उड़ान, तो बस
1: एक बार जब घुस गए तो निकलने का कोई मतलब नहीं,
0: तो फिक्शन बहुत पढ़ा, शिवानी को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, डॉक्टर सूर्य बाला सिन्हा, ये सब मेरी फेवरेट राइटर रही हैं, प्रेमचंद जी रहे है ना, विमल मित्र, तो इन सब लोगों को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है, एक जैसे राइटर की पसंद आती तो उनके और मंगाती, और कोई बुक है क्या उसको खोजती बैठ के, तो इस तरह से सक्षम ने काफी हेल्प की, एनएबी से भी मैंने किताबें मंगवाई जो जो यहाँ नहीं मिलती थी, उधर बुक शेयर का भी मेंबरशिप लिया और इस तरह से पढ़ते रहे, तो ये रहा। और 2020 में सर आ गया अपना कोरोना, तो अब रहा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग ये एक बड़ा डिजास्टर लाइफ में आएगा कि भाई कोचिंग अब बंद हो गई, अब क्या किया जाए, तो आपको पता है मेरे बेटे ने मेरे को गूगल मीट वगैरह चलाना सिखाया और बोला मम्मी आप इसमें क्लास करो, हाँ तो ये एक बहुत अच्छी बात रही, बोलते कोरोना लोगों के लिए समस्या लेके आया, बहुत समस्याएं लेके आया, लेकिन उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, और सिर्फ मैं वहां के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, इवन मेरे पास उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के और लोग भी आते थे, और दो दो महीना जैसे यू नो औरतें अपने मायके में रहती है उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे पास क्लास करवाने के लिए दो दो महीना रहते थे और पढ़ते थे, लेकिन सब बाहर के लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो लोग पूछते थे कोई प्लेटफॉर्म है क्या पढ़ने का आपके पास में, तो मेरे पास तो नहीं है भाई पढ़ने का, वीडियो ऑडियो दे दो बोलते थे, मैं बोली नहीं नहीं मैं वो नहीं दे पाऊंगी। तो कोरोना के समय में जब गूगल मीट से स्टार्ट किया पढ़ाना, तो बहुत लोग जुड़े जो लोग चाहते थे, और सब लोग मेरे को अप्रोच करते थे कि भाई हम कैसे पढ़ सकते हैं, दोस्त भी मेरी सहेलियां भी बोलती थी कि कोमल मुझे पढ़ा दे। तो सब मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर और लोग जुड़ते गए, फिर उसके बाद डिजिटल थोड़ा मार्केटिंग किया बेटे ने, और उसके बाद हमको कोविड के समय में भी इवन हमारे पड़ोसी तक हमसे ऑनलाइन पढ़ने लगे तो जी, तो इस तरह की चीजें हुई। तो कोविड ने मुझे और स्टूडेंट्स दिलाए, जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन में नहीं थे, बहुत बहुत किया क्लासेस। और इसी दौरान तब जो क्लब हाउस एक ऐप से जुड़ी मैं, और वहां पर हमने अपना एक क्लब स्थापित किया, उस पे मैं स्टार्ट की कि भाई विजुअली चैलेंज्ड लोग सब एक जगह पे इकट्ठा होकर के अपने टैलेंट को कैसे शोकेस कर सकते हैं। तो क्लब हाउस से मैंने ये अभियान शुरू किया, और यहाँ से उसके बाद हम लोग देखे कि जैसे मेरे को लोग क्या बोलते थे कि देखो कि हम लोग वीडियो बना नहीं पाते, इसलिए हमारे यूट्यूब में चैनल पॉपुलराइज नहीं है, ये हुआ। तो मैं उस समय लिख भी रही थी, और पहली जो मैंने कहानी लिखी, पहली कहानी तो नहीं जो मतलब जिसको लोग बहुत पढ़े, कहानी तो बहुत सी लिखी, क्योंकि मेरी काफी मैगजीन्स में न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई कहानियां। और मैं आपको बताऊं सर, 2002 में 3 में मैंने नवभारत में भी लिखा हुआ है, उसमें आर्टिकल आता था पर्सनालिटी ऑफ द वीक, उस समय मैंने वहां पे भी लिखा हुआ है। मैं महिला समिति की सेक्रेटरी थी जिस जगह पे मेरी शादी हुई थी वहां पर, तो वहां पर भी मैं काम कर रही थी लेखन का, और वहां पे सचिव का काम कर रही थी, चूंकि लेखन का ही काम है ये सब। तो मेरी बहुत सी इवन राजस्थान के भी कई, भरतपुर से एक मैगजीन निकलती थी महावैश्य सम्मेलन, उसमें भी कविताएं कहानी पब्लिश हुआ करती थी छोटी छोटी, तो ये सारी चीज हुआ करती थी। तो उसके बाद में एक कहानी मैंने लिखी, उसका नाम था कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। तो ये विधवा पुनर्विवाह पर एक 10 पेज की कहानी थी। इसको मैंने सब ग्रुप में जब भेजा तो मुझे बहुत से फोन आए, बहुत लोग फोन करने लगे वीआई कम्युनिटी से कि आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, आप साइटेड हो क्या, क्योंकि आपने जो नायिका है उसकी साड़ी के फूलों का वर्णन किया है, उसके केश कैसे है वर्णन किया है, वो किस कलर की बिंदी लगाती है आप बताते हो, तो क्या आप साइटेड हो, है ना। और चूंकि मेरी फोटो भी जैसे कोई देख रहे हैं जो लोग, है ना, जो लो विजन वाले भी देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लाइंड है कि क्या है, तो फिर ये भी एक रीजन रहा कि सब पूछते थे नहीं नहीं आप साइटेड ही होगे जरूर, है ना। तो ये मिथ बना रहा काफी समय तक, तो लोगों को ये समझने में देर लगी कि मैं ब्लाइंड हूँ। ओके ये बात है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं मैं सच में ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं दिखता है। ओके तो ये रही। तो उस पे मेरे को कई लोगों ने बोला कि इस पे एक ड्रामा बनाना चाहिए, प्ले बनाना चाहिए, तो प्ले बनाना चाहिए, तो चलो प्ले बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड थे नहीं है, विकास शर्मा जी हैं, ये साइटेड है मुंबई से, और ये मेरे को मिले टीम विजन, एक मुंबई में एक संस्था है जो कि विजुअली इम्पैक्ट के लिए काम करती है, उसमें ये एंकर वगैरह का काम करते हैं और मेंबर है टीम के। तो मैंने इनके एक पोइट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया था ऑनलाइन कोविड के समय में, और मुझे इसमें इन्होंने अवार्ड किया था। तो अच्छा। वो जब ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने लगे तो उनके साथ में मेरी बातचीत होने लगी, तो मेरे को पता चला कि ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है, और मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं ब्लाइंड लोगों के साथ में। तो उनके साथ में हमारा एक कहते हैं ना एक कनेक्शन बरकरार रहा। तो ये कनेक्शन मेरे को काम आया कनेक्टिंग विम्स की स्थापना करने के लिए।
1: जी
0: जी,
1: तो यानी अब आपने अपना खुद का एक तरह से एक कहना चाहिए कि सोशल वेंचर शुरू कर दिया है,
0: कनेक्टिंग वेंचर शुरू किया जिसका नाम कनेक्टिंग विम्स दिया, और ये हमारी वीआई कम्युनिटी के लोगों और साइटेड लोगों के बीच का एक वीआई भी नहीं अदर दिव्यांगता भी इसमें है, सब लोग हैं, तो एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, एक पहल है जिसमें हम लोग हमारे जो वीआईज हैं, अदर डिजेबल पीपल हैं और साइटेड भी हैं, उन सभी के टैलेंट को शोकेस करने के लिए, उनके भीतरी गुणों, उनकी जो प्रतिभा है उसको सामने लाने के लिए एक प्रयास है। तो एक मंच हुआ, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पहले बना, उसके बाद हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें हमारे सभी जो भाई बहन हैं दृष्टिबाधित, मैक्सिमम दृष्टिबाधित हैं, तो इन सभी की किसी की कविता, किसी का भजन, किसी का गीत, किसी की कहानी, ये सब कुछ इसके अंदर आती है। तो हमने पहली ऑडियो सीरीज 19 एपिसोड की बनाई, कैन आई होल्ड योर हैंड, खूबसूरत एहसास। पहले मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, योगेश गोयल, ये आगरा से हैं और इन्होंने मुझे एडिटिंग के लिए बहुत सहयोग किया और मुझे गोल्ड वेब की एडिटिंग सिखाई, तो मैं उनके प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये भी एक ब्लाइंड पर्सन है और एक्सेसिबिलिटी टेस्टर है, तो इन्होंने मुझे सिखाया और उसके बाद मैं खुद भी ट्यूटोरियल सबसे देख देख के सीख गई, तो एडिटिंग भी आ गई। तो लिख रहे हैं, हमारे सभी ब्लाइंड लोगों को जोड़ा सबसे फोन पे बात करके, व्हाट्सएप चैटिंग कर करके कि भाई आप आओ जूम पे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे कहानी, स्क्रिप्ट लिखी गई पूरी। और सब सब लोग बोलते थे कोमल नहीं, हम लोग कभी डायलॉग नहीं बोले हैं। मैंने बोला इसीलिए आप लोग बोलो, क्योंकि अंदर का डिप्रेशन निकलेगा, हीन भावना निकलेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होगी। तो मैंने उन लोगों से काम करवाया जो लोग कभी एक लाइन नहीं बोले थे किसी प्लेटफॉर्म पर। तो सब लोग, हमने किसी पॉलिश्ड किसी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं किया संदीप सर, ये मैं आपको सबसे पहली बात बताती हूँ। 0% इन्वेस्टमेंट पे काम किया, किसी को एक रुपए नहीं दिए, ना म्यूजिक के लिए नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, खुद म्यूजिक बनाया, आयशाला से बनाए, फ्री ऐप से बनाए, है ना, आयशाला से किए, तानपुरा में चला रहे हैं और गाना सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी टीम में लोग जुड़ते गए। मैं इसमें नाम लेना चाहूंगी आपके जयपुर से श्री ओम वेनावरिया, जो बीएड कंप्लीट किए हैं और ये संपूर्ण रूप से दृष्टि बाधित है, ये हमारे चैनल से जुड़े, इन्होंने हमारे चैनल के लिए बहुत काम किया है और अभी भी कर रही है। तो ये लड़का मतलब बहुत अच्छा लिरिसिस्ट, पोएट, राइटर सब है, तो इन्होंने भी कनेक्टिंग ड्रीम्स के एज अ लाइक कोर मेंबर की तरह से और सचिव भी कहते हैं, सचिव की भूमिका में भी ये हैं अभी। और विकास शर्मा जी को फाउंडर है और इन्होंने जो भी वीडियो एडिटिंग हमारे चैनल पे होती है, अपलोड का जो सिस्टम है, टेक्निकल जो भी इश्यूज होते हैं सारे यही डील करते हैं, और जो साउंड से रिलेटेड काम है, ऑडियो से रिलेटेड, वो सारा कुछ मैं करती हूँ। और ओम भी नावरिया भी इसमें ऑडियो लैब से करते हैं, मैं गोल्ड वेव सेट करती हूँ। तो ये कनेक्टिंग टीम हमने बनाया, इसमें हमारे चार कोर मेंबर और हैं जिनका नाम क्रमशः सुरेश शर्मा, अभय गोयल, सुधांशु कुलश्रेष्ठ और रजनी गर्ग है। तो ये हमारी टीम के कोर मेंबर रहे हैं और बाकी हमारे टीम में 100 से भी ज्यादा मेंबर हैं जो कि भारत के अलग अलग शहरों से हैं। तो इसमें 1/4 लोग जो हैं वो साइटेड हैं और बाकी जितने भी लोग हैं 80% लोग अराउंड सभी दिव्यांगजन हैं। तो कोई लोग ऐसा नहीं, कोई कम्प्लीटली ब्लाइंड है। तो लिखने का ये रहा, तो ऑडियो सीरीज बनाई, स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी पहले, फिर उसी पर स्क्रिप्ट लिखी, फिर कहानी लिखने का सिलसिला चलता चला गया। के बाद हमने और ऑडियो सीरीज बनाई, एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ, ये 8 एपिसोड की हमने बनाई। इसमें हमारे 30 से ज्यादा भाई बहनों ने काम किया, ब्लाइंड भाई बहनों ने, और कैन आई होल्ड योर हैंड में तो 60 से ज्यादा लोगों ने काम किया। और उसके बाद हमने एक दहेज एक कुप्रथा, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे कि दहेज क्यों बनाई, तो दहेज एक कुप्रथा ये मैंने एक
1: बिल्कुल समझ गया मैं, वो वही कहा ना कि जो जिया है वही लिखा है।
0: तो विधवा पुनर्विवाह पर कैन आई होल्ड योर हैंड बनाया, एक अनबुझी प्यास जो है वो समाज की दोहरी मानसिकता पर कुठाराघात करती हुई एक सशक्त कहानी है, जिसमें एक वुमेन की कहानी है कि एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का एक डिसीजन वो रहा उसमें। तो ये तीन हमने बनाई और इसके अलावा हमने ब्लाइंड लोगों के ऊपर एक मूवी बनाई जिसका नाम है यस आई एम 40। सर आप देखते हैं कि हम लोग आवाजों से जज करते हैं ना कौन कितना एज का है
1: जी,
0: तो हमने इस पर एक बहुत ही लाइट हार्टेड एक मूवी बनाई है यस आई एम 40, आपको जरूर देखनी चाहिए और सभी को देखनी चाहिए, बहुत ही सुंदर। हमारे सभी ब्लाइंड आर्टिस्ट ने इसमें काम किया, 12 लोगों ने तकरीबन इसमें काम किया है, बहुत सुंदर इसमें ब्लाइंड लोगों की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के कि वो लोग कितने एफिशिएंट है वो भी हमने दिखाया है इसमें, वो किस तरह से जॉब्स को यूज करते हैं और जॉब में है, बैंक में एक जन जॉब कर रहा है, जो लड़की है वो एक और ऑफिस में है। तो ये हमने एक तरह से हम साइटेड लोग सब हमारी जब देखते हैं इन ऑडियो सीरीज को सुनते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मतलब कर सकते हैं, तो हमने साइटेड तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। हाँ ये हो सकता है कि हम बहुत बहुत रीच नहीं है लेकिन इन फ्यूचर
1: हो जाएगा, आज कल बिल्कुल, आज नहीं तो कल, जो सोचा है वो तो होना ही वाला है जी।
0: अगर हम आज 4-5 हजार लोगों तक पहुँच पा रहे हैं तो हो सकता है कल ये संख्या में 0 और लग जाए, तो ऐसा हो सकता है। हम पॉजिटिव कहते हैं कीप योर फेस टू द सन,
1: एक के अनेक 0 लग जाएंगे
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: अनेक 0 लग जाएंगे और अनेक हीरो मिल जाएंगे, अनेक हीरो बन जाएंगे आपकी इस मुहिम के माध्यम से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी तक कौन कौन से नॉवेल्स और कहानियां और कविताएं आपने लिखी हैं या ड्रामास लिखे हैं, कुछ याद आ रहा हो कितने मतलब टोटल, ऐसे एक संख्या में कभी नोटिस तो
0: जी जी। हाँ संख्या में अगर मैं बताऊं तो 3 ऑडियो सीरीज हमने बनाई जिसकी कहानी स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके बाद 3 हमने मूवी बनाई। इसके अलावा मेरी जो कहानियां हैं वो सर अभी तक अगर जोश पब्लिश नहीं हुई है, मैं उनके बारे में बताऊं कि 50 से भी अधिक मैंने लिखा हुआ है कंटेंट कहानियां।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं, पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को, डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

शांति। आज 7 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर आधार बताया है नए विश्व की या भारत पर सतयुगी स्वराज्य के स्थापना की। बाबा ने कहा कि बच्चे, भारत में सतयुगी स्वराज्य की स्थापना का आधार है पवित्रता का बल। इस पवित्रता के बल से ही तुम आत्माएं पावन बनती हो। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, बच्चे, ज्ञान और योग का बल भी आत्माओं को पावन करता है, साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाता है। जितना ज्ञान योग का बल होगा, उतना उस पावन दुनिया के मालिक बनते जाएंगे। तीसरी बात बाबा ने कही कि बच्चे, श्रेष्ठ कर्मों का बल भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना श्रेष्ठ कर्म उतनी श्रेष्ठ प्रारब्ध है। और चौथी बात बाबा ने कही, भारत पर सतयुगी स्वराज्य की स्थापना तुम बच्चे अपने ही तन मन धन से करते हो, खुदाई खिदमतगार बनते हो और इस भारत भूमि को सतयुगी स्वराज्य सृष्टि में परिवर्तन करते हो। बाबा कहते, तुम बच्चे इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, गुप्त सेना हो, और गुप्त सेना किस तरह से विकारों के सामने युद्ध करते हुए विकर्मा जीत, माया जीत बनते हो, संस्कार जीत बनते हैं और उस नई दुनिया में जाने के योग्य बन जाते हैं। तो ये है आधार सतयुगी स्वराज्य सृष्टि की स्थापना के। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बात को याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है, पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। दूसरी बात बाबा कहें, ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। ज्ञान और योग बल से पावन दुनिया के मालिक बनते हैं और इस बल से ही एक मत की स्थापना हो जाती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खेवैया व बागवान व सदगति दाता

एक ही बाप है। भक्ति करते हैं इसलिए जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है, उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। सदगति माना श्रेष्ठ गति। श्रेष्ठ गति किससे? तो दुख शांति की दुनिया से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहां पवित्रता सुख शांति थी, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। नई सतयुगी स्वराज्य में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जहां पवित्रता सुख शांति थी। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते, वास्तव में माताओं की हम जिन्स राधे हैं, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, माताएं भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। आजकल तो दुनिया के अंदर राधा अष्टमी भी मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का, समझ तो कुछ है नहीं। उन्हों के जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी है शिव परमात्माय नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। मनुष्य की जो जीवन कहानी है उसको तो लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी कह देते हैं, लेकिन देवताओं की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहा जाता है। बाबा कहते जब शिव परमात्मा नमः कहते हैं, लेकिन उनकी जीवन कहानी कोई नहीं जानते हैं। परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, देवताओं की जीवन कहानी नहीं कही जाती है, मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वो कहां गए, कैसे राज्य किया लक्ष्मी नारायण ने, फिर वो कहां गए, ये बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है, रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है। इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सतो रजो तमो होते हैं। तीन कैटेगरी है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ या कहो सतो रजो तमो। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतो गुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजो गुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसीलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अप्रतिज्ञा करते हो
कि हम प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रदान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है कि हम प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको इतला करनी है, यानी दूसरों को खबर करनी है, गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे। बाबा कहते गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अपतित राज्य है। अगर पावन राज्य चाहते थे तो इसका मतलब यही हुआ कि वो भी समझते थे कि अपतित राज्य है। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित है, रावण है पांच विकार। कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतना करते हो, यानी उनको भी खबर करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। श्रीमत के बल से ही हम ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। बाबा कहते मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक ही राज्य था। बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, आजकल तो दुनिया में बहुत कुछ देखते रहेंगे। जैसे मुसाफिर से नजदीक आते जाते हैं अपने देश तरफ तो खुश होते हैं। जैसे कहीं मुसाफिरी में गए हैं, बाबा कहते अगर नजदीक आते जाते हैं अपने देश के तरफ तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते थे कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो, समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। पहले तो बाबा को एक एक बातें समझाने में टाइम लगता था। बाबा कहे जैसे जैसे समय आता जाएगा तो हफ्ते में ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्म का चक्र बिल्कुल ठीक है। ये भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राज योग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कितनी सुंदर बात बाबा ने एक लाइन में कही, शिव बाबा की श्रीमत पर सहज राज योग बल से अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपना ही तन मन धन लगाते हैं, दूसरे किसी का धन नहीं लगाते हैं। अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो, तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं।
खर्चा भी तुम्हें करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है? उनके पास कुछ है क्या? कन्याओं के पास बाबा के कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं, वहां कितना पढ़ाई में खर्चा होता है, यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा वहां पाएंगे, जितना यहां करेंगे उतना वहां पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं, यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता है। उन दिनों में इतना खर्चा नहीं लगता था। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान, तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है, बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में, रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था, भारत नया भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नरक है। इनको कहा जाता है रौरव नरक। मनुष्य की ही बातें हैं। बाबा कहते ये सारी बात मनुष्य की ही है। यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है, सच्चा सुख तो यहाँ है ही नहीं। यह कोई सुख थोड़ी है, सन्यासी भी कहते हैं। इस समय का सुख कागविष्टा समान है, इसलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर न सके। श्री कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं, ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना, गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता ही नहीं रहता है, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है, बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर वन फूल है श्री कृष्ण, स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं जो बनना है सो बनो, आपके हाथ में है, जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़ी बनता है, प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं, सेकंड थर्ड होते हैं ना। तो यहां भी डिनेस्टी है, बाप के पिछाड़े फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे ये घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है, इसीलिए क्रिश्चियंस में प्रिंस ऑफ वेल्स 1, 2, 3 वो भी कहां से लिया है, सतयुगी स्वराज्य से, के राजधानी जो चली लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको देख करके उन्होंने कॉपी किया। तो इसीलिए बाबा कहते क्रिश्चियनों ने भारत वालों से ही ये कॉपी किया है, इसलिए कनेक्शन है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है, लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वह कितना धन ले गए हैं, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। ये यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है, दो बिल्ले लड़े, बीच में मक्खन बंदर खा गया।
ये बात अभी की है। वह आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती है, बंगाली है, ये है, नहीं, ये मत भेद भी निकल जाना चाहिए। बाबा कहते ये मत भेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? शिव बाबा की श्रीमत पर हम फिर से अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से, श्रीमत से, ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हैं, सारा पवित्रता का बल है, श्रीमत का बल, ज्ञान योग का बल और पवित्रता का बल। कहते भी है कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहां उल्टे धंधे में जाकर सब भूल जाए। यहां सन्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं, नदियों में तो वह लहरें नहीं होती। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं? तुम जानते हो ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी। आगे ये बॉम्बे थोड़ी थी, छोटा एक गांवड़ा था। ये माताएं तो भूली है, ये इतना लिखी पढ़ी नहीं है। यहां तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। यहां तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंच ते ऊंच है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा, उनसे ऊंचा कोई होता नहीं, इससे बड़ी आसामी कोई नहीं है। बाप दादा से बड़ी आसामी कोई है ही नहीं, परंतु चलते देखो कितना साधारण है ना? बाप दादा कितना साधारण से चलते हैं, कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं। ब्रह्मा बाबा कैसे साधारण रीति से रहते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि ये कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना? अगर श्री कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके। अगर श्री कृष्ण का तन होता और उसमें परमात्मा आकर पढ़ाते तो भीड़ लग जाती है, फिर तो पढ़ा भी ना सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। कहेंगे भाई हमको दर्शन करना है बस। यहां तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना, अननोन वॉरियर्स जो कहते हैं, यानी गुप्त सेना। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जय राज्य करूंगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है, आत्मा सदैव मेल है। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, लेकिन मैं हूं अविनाशी आत्मा। आत्मा मेल है फीमेल नहीं, शरीर हिसाब किताब के अनुसार मेल फीमेल का मिलता है। यह चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा, विनाश के आसार भी सामने देखते हैं। वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा।
किस रूप में, किस तन में है वह तुम बच्चों के अलावा किसको भी पता नहीं है। कहते भी है, मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूं, मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता हूं। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं, मैं इनके बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आता हूं। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती है, पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए, माना आगे आना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कमाल है ना, कितना नाम निकालेंगी, लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेगी। बाबा कहते जब ऐसी कुमारियां खड़ी हो जाती है अर्थात आगे आती है तो कमाल कर देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरी पॉइंट, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है, याद और पवित्रता का बल जमा करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजयी अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए तीन बातें साथ साथ चाहिए। कौन सी तीन बातें? पहली रूहानियत, दूसरी रुहाब और तीसरी रहम दिल का गुण। रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण, जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण जब ये प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे में कर्म में दिखाई दे तब कहेंगे कि अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। आज का स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत हो तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। आज का व्यक्ति इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। अच्छा, ओम शांति।